0: प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहां अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं।
1: जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है।
0: जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने हो, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
2: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
3: बिल्कुल, वो तो है।
2: बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
3: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
2: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
3: किला किसी का नहीं होता है।
4: आराम से चलिए।
3: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
5: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
3: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगे भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
0: प्रशांत किशोर की जीत हुई, सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
6: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
7: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
3: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा। अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
8: गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रवारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि मांझलपुर में उनका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
9: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा। मांझलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
10: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
11: खुशी का माहौल है। भारत देश के तने का बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है, तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
9: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राहत। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत है।
12: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
13: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हरेक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है, और उसका परिणाम है।
9: मांझलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांझलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांझलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की, और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांझलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा आज तक।
8: सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है, लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है, अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदात ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र ही हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया। उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जाँच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगी।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते, उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनतकश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हमने यही बता रहे कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ते नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी भी है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता है, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए। और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
7: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रिजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
8: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
7: दरअसल 3 साल पुराने इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
8: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
7: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
9: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
10: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करें, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में जाए।
7: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
6: रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
11: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खा के और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करें सर, हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
12: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
11: ऐसे गाँव से आते हैं सर, वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है, पूरे खानदान का, पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने लगे। अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते।
12: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए, सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप की जवाब दे सके,
11: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर, और गरीब आदमी हैं अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं। एक रूम में हम लोग कितना दिन से यहाँ हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर, कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
12: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून सी चुभनी चाहिए, क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
13: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है, उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
12: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
6: बारिश कभी राहत बनकर आती है तो कभी आफत बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। पश्चिम भारत इस वक्त पानी के ऐसे ही प्रहार से जूझ रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात तक आसमान से बरसता पानी अब जिंदगी की रफ्तार को रोक रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कई शहरों की गलियां तालाब बन चुकी हैं, तो कई करोड़ों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में कबाड़ में बदल चुकी हैं।
12: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। कामबारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा दे रही है। पानी इतना बढ़ चुका है कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां एक एक कर डूबने लगी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की हर नजर नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है। अब जरा रुक कीजिए जलगांव का। यहाँ पहली ही तेज बारिश ने मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन बहा दी। जिस सड़क पर रफ्तार दौड़ती थी वहाँ अब सवाल खड़े हैं। मंत्री मौके पर हैं, जांच के आदेश हैं, लेकिन तस्वीरें विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल छोड़ रही हैं।
14: अतिशय गंभीर है। माननीय गडकरी साहेबांच्या कारवर मी स्रोत टाकलेला आहे, त्यांनी सांगितलं की जर कडक ऍक्शन आपण त्या ठिकाणी घेऊ, पण मोठी दुर्घटना टळली असे म्हणायला हरकत नाही। अन्यथा या ठिकाणी वाहन चालले असताना जर असं झालं असतं तर मला वाटतं मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी झाली असती। पण या संदर्भामध्ये तर आम्ही सर्वजण, म्हणजे मी बाहेरगावी होतो, रात्री नाशिकहून आलो, गुलाब भाऊ पण या ठिकाणी बाहेर, आम्ही आज ठिकाणी निघालो, राजू मामा इथले आमदार आहेत, आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। पण कडक कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये ठेकेदारावर मग त्याला ब्लॅकलिस्ट करा, त्याच्यावर कारवाई करा।
12: महाराष्ट्र के नांदेड़ के सहस्रकुंड झरने का नजारा अद्भुत है, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी में चेतावनी भी छिपी है। यही बारिश कहीं सैलानियों को आकर्षित कर रही है तो कहीं लोगों की जिंदगी को बेबस बना रही है। ये मंजर गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी का है, जहां सड़कें नदी बन गई और हजारों कारें पानी में डूबकर कबाड़ में बदल गई। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई अभी बाकी है।
15: 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिजास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके, और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है।
16: मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे, और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है, बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के, ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे।
12: अब देखिए खेड़ा जिले के महमदाबाद के रिंछोल गाँव की तस्वीरें। बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छों को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ, बाहर सहमे हुए लोग, और बीच में जान जोखिम में डालकर चलता रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के अलग अलग रंग, कहीं जानलेवा तो कहीं खुशनुमा। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है तो सिर्फ नदियां नहीं उफनती हैं, सिस्टम की तैयारी भी बेनकाब हो जाती है। बारिश अभी जारी है, इसलिए खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बांकेपुर सीट नहीं बचा पाई बीजेपी, प्रशांत किशोर की बड़ी जीत। कामयाबी के बाद सम्राट पर साधा निशाना, दतिया सीट कांग्रेस के खाते में, बीजेपी बोली गंभीरता से करेंगे आत्ममंथन। संसद में नहीं थम रहा बवाल, आज भी दोनों सदनों में हंगामे की संभावना। छात्रों पर एक्शन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा विपक्ष, चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा की मांग। यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार के अनुपूरक बजट की संभावना। 2027 चुनाव को लेकर कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले संभव। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 11वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान। बीजेपी के हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा, सीएम से इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग। और जम्मू कश्मीर में मानसूनी आफत का दौर जारी, पहलगाम, बांदीपुर, गुरेज समेत कई इलाकों में फ्लैश फ्लड। लद्दाख के कारगिल और उत्तराखंड के चमोली में भी दिखी तबाही।

0: देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और दिन के सबसे पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 3 राज्यों में 3 सीटों पर हुए चुनाव की बात करेंगे। बड़ी खबर ये कि बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली है। सीधे बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने सर्जिकल स्ट्राइक की। उपचुनाव में प्रशांत किशोर 19,000 से ज्यादा वोट से जीते। ये बीजेपी के लिए छोटा मोटा झटका नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, बीजेपी का गढ़, और वहां पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया, लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे जनता की लहर साथ है।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई।

0: बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहां अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने हो, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
3: आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
4: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
2: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी के जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
0: प्रशांत किशोर की जीत हुई, सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
5: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
6: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा

0: है, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
1: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी हार पर सियासत तेज है, खासकर इंडिया गठबंधन दलों के नेता अब बीजेपी पर तंज कस रहे हैं।
2: आप संकेत है कि बांकीपुर में बांका चल गया, और भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता वर्ग है, नौजवान खासतौर से, उसका बुरी तरीके से मोह भंग हो चुका है प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी की पूरी सरकार से, और ये नतीजा कहीं ना कहीं ये संकेत देता है, जैसे एक बार जनमोर्चा के प्रत्याशी के तौर पे बीपी सिंह जी ने उस समय प्रयागराज से जीत हासिल की थी, वैसी ही बड़ी जीत के रूप में, क्योंकि 35 साल से बीजेपी कभी हारी नहीं वहां पे,
3: 52,000 से जीती थी,
2: 35 साल से कभी हारी नहीं। तो जब 415 सीट थी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त बीपी सिंह जी बाय इलेक्शन जीते थे, और उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया था। तो ये जो खासतौर से बांकीपुर की सीट का जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से ये इस बात का संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोह भंग हुआ है, और जेन जी ने पहला सबक मोदी जी को बांकीपुर में सिखाया है।
4: कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। जिस तरह से वहां पे कैंडिडेट्स बदले गए, आखिर क्या कारण रहा वहां पे कैंडिडेट्स बदलने का? कहीं ना कहीं देखिए, वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए, और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए, बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, जहां 35-40 वर्षों से विकास का कार्य नहीं हुआ है, उसको वो कैसे कहते हैं कि हम 4 साल ही बचा है, 4 साल में वो कैसे उसको बदल देंगे? आप बताइए कि जाके वहां कहते हैं गरीब बच्चों को हम पटना के अच्छे प्राइवेट स्कूल में, नोटोडेम में लड़कियां हैं तो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, अगर लड़के हैं तो वो कहते हैं कि सन माइकल में एडमिशन करा देंगे, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने तो अपनी तरफ से एक संदेश देने का बिल्कुल प्रयास किया है, उनको सच्चाई पता नहीं है अभी कि प्रशांत किशोर जी ही ओरिजिनल बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो अभी जनता को थोड़ा समय लगेगा इस बात को समझने में।
5: जो लोग ये कहते हैं कि जब वो हारता तो कहता है कि अभी वो जीतता अगर तो कहता कि ईवीएम जो है वह हैक कर लिया, ये लोग कर लिया, गड़बड़ है ना। आज सरकार हमारी है देश में भी और वहां भी, तो आज यह साबित हो गया ना कि ईवीएम सही है। हम लोग लोकतंत्र में जनादेश का स्वागत करते हैं, जो जीता यह लोकतंत्र है, जनता की जीत है, परंतु विपक्ष इसको स्वीकार करे। विपक्ष कभी ईवीएम पर ठिठरा फोड़ता है।
6: बांकीपुर भी है और मध्य प्रदेश का दतिया भी है, और जिन नौजवानों को देशद्रोही आरएसएस कर रहा था, उन नौजवानों का ट्रेलर है। मैं इस जीत का श्रेय नौजवानों को देता हूँ।
7: फिर पब्लिक का मैंडेट है, हम इन्हें स्वीकार करना पऊ, कला इतों नहीं, इन्होंने शुरुआत होगी। पहला कहने से इस्तीफा नहीं देंदे होंगे, असी इस्तीफा भी हो गया, फिर कहने से असी यूटर्न नहीं मारते होंगे, यूटर्न भी हो गया। तो बस आने वाले दिनों के जड़िया चोणा हो लोग इन्हों रास्ता दिखा देंगे।
1: आमतौर पर चुनावी विश्लेषक ये कहते हैं कि उपचुनाव का कोई असर नहीं होता, राज्य के समीकरण बहुत ज्यादा नहीं बदलते, लेकिन कई सारे उपचुनाव ऐसे होते हैं जो बहुत सारी परिस्थितियां बदल देते हैं। इन चुनावी नतीजों का असर क्या है, ये कितना बड़ा है, इसको देखने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सोचिए अगर ये तीनों सीटें बीजेपी जीत जाती जेनजी आंदोलन के बाद तो क्या कुछ सुनने को मिलता। बस उसी का असर आप उसी तरह समझें, लेकिन बीजेपी गुजरात जीती, तीन राज्यों के तीन सीटें थी। प्रशांत किशोर बिहार की बांकीपुर सीट कोई साधारण सीट नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की पारंपरिक सीट जहां कभी कोई हारा ही नहीं, वहां प्रशांत किशोर जीत जाते हैं। लेकिन बिहार की तरह मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी हार गई। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम

0: 6000 वोटों से चुनाव हार गए और इसी के साथ बीजेपी लगातार दूसरा उपचुनाव हार गई। दतिया विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं है, कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को इस सीट पर हराकर यह संकेत दिया कि दतिया की लड़ाई अब प्रदेश की नहीं बल्कि बड़ी राजनीतिक बहस बन चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी बीजेपी पीछे रह गई। आपसी लड़ाई उसका नतीजा दिखाई दिया, यहां कांग्रेस को 291 और बीजेपी को 264 वोट मिले थे। और कांग्रेस के खेमे में तो देखिए जश्न की तस्वीरें भी सामने आई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारे पिछली बार से 1700 वोट ज्यादा मिले हैं, उन्हें जनता का फैसला मंजूर है।
1: कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है, ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं, हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे।
0: तो नीट परीक्षा, पेपर लीक, जेंजी आंदोलन के बाद हुए इस पहले उपचुनाव में ऐसा नहीं कि बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने निर्णायक जीत दर्ज कर ली। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर अपनी सीट बरकरार रखी। देखिए सत्येंद्र भाई पटेल जो है इन्होंने जीत हासिल कर ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। कम मतदान हुआ, वोटिंग कम हुई, उसके बावजूद बीजेपी अपने मजबूत जनाधार को गुजरात में कायम रखते रही। उसने स्पष्ट संदेश दिया कि मांजलपुर में उसका संगठन और सियासी अभी भी पार्टी के साथ है और पार्टी की ओर से जब सत्येंद्र भाई पटेल को चेहरा बनाया गया तो वो जीत गए, उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है।
2: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा। मांजलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
3: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
4: देखो खुशी का माहौल है, भारत देश के पहले का बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
2: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राहत। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांजलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत।
5: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
6: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हर एक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है और उसका परिणाम है।
2: मांजलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांजलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांजलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांजलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा, आज तक।
0: और आपको दिखाते हैं कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है अभिजीत दीपके को लेकर के, उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे को लेकर के गुजरात के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने तो लगाई एप्लीकेशन, वो पूछ रहे कि इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा किसने दिया। अभिजीत दीपके ने कहा कि मुझे तो स्कॉलरशिप मिली थी, हमने लोन लिया था। बहरहाल रुख करते हैं अगली खबर का। 6 तारीख को मुंबई में आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत अब जेन जी से संवाद करेंगे। क्यों जरूरी है? जेन जी आंदोलन के बाद उपचुनाव हुए और नतीजा देखे तो 100 शहरों के 15 से 19 साल के 2000 से ज्यादा छात्रों को इस यूथ कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। इससे पहले आरएसएस के सर कार्यवाहक अतुल लिमय ने जंतर मंतर प्रदर्शन को सिर्फ राजनीति के नजरिए से नहीं देखने की बात कही।

0: जंतर मंतर पर जेंजी के जिस आंदोलन ने सरकार को खबरदार किया, जिस आंदोलन की वजह से सड़क से संसद पर सरकार को घेरने की कोशिश अब भी हो रही है, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसे लेकर आरएसएस की तरफ से जो बयान आया है उससे इस मुद्दे पर नए सिरे से सियासी टकराव होना तय माना जा रहा है।
1: हे आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातला एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेला आंदोलन आहे।
0: या तो लिमे आरएसएस के सर सह कार्यवाह पद के हिसाब से आरएसएस में तीसरे बड़े पद पर बैठे नेता, इतने बड़े पद पर बैठे आरएसएस के नेता अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन देश विरोधी और संविधान विरोधी कहेंगे तो विवाद तय है।
1: हे आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातला एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेला आंदोलन आहे, या अर्थाने बघा। अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन, या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे, या अर्थाने याच्या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे।
0: महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के सर सह कार्यवाह ने ये बातें कही और हिदायत दी कि इसे सिर्फ राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए।
1: कि विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे, पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीत पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला, म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका।
0: छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर, लेकिन आरएसएस की तरफ से आए इस ताजा बयान विपक्ष को हमले का नया मौका दे दिया।
2: छात्रों को एंटी नेशनल कहते हुए इन्हें शर्म नहीं आती? बच्चों को, नौजवानों को, इस देश के भविष्य को एंटी नेशनल बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है?
3: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां, नागपुर में जाकर करेंगे, यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी है आरएसएस की? संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है, सरकार आने दो हमारी, बता देंगे इनको।
0: आरएसएस की तरह ही बीजेपी के पूर्व सांसद जो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे, रमेश विधूड़ी, इन्होंने भी अब जेंजी के आंदोलन को लेकर नया विवादित बयान दिया है।
4: कोई बोल रहे थे वहाँ पर, अफजल तेरे काफिर जिंदा है, हम शर्मिंदा है, कि जो लोग भड़क जाएं और आपस में लोगों में अव्यवस्था फैल जाए, तो इस प्रकार से उस मानसिकता के लोग वहाँ पर ज्यादा आए हुए थे जो अव्यवस्था फैलाना चाहते थे। ओखले से लेकर, बल्लीमारान से लेकर, शाहीनबाग से लेकर, नगीना से लेकर, कहाँ कहाँ से लोग लाए गए थे, वो भारत विरोधी विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग राजनीतिक दलों के द्वारा लाए गए थे। इसीलिए जो जेन्युइन जेंजी है, जो जेन्युइन बच्चा है पढ़ने वाला, वो भी भटक रहा था।
0: दिल्ली के तुगलकाबाद में जेंजी सम्मेलन का आयोजन रमेश विधूड़ी ने करवाया, इसमें दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए, इसके अलावा बड़ी तादाद में नौजवान आए। इसी कार्यक्रम के दौरान जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन की वीडियो चलाए गए और इसमें बताया गया कि वहां पर देश विरोधी और हिंदू विरोधी ताकतें इकट्ठा थी। इस दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी ने ये तक कह दिया कि जंतर मंतर पर पंचर और चाबी बनाने वाले ज्यादा थे,
5: वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ।
0: रमेश विधूड़ी इतने पर नहीं रुकते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वालों का रिश्ता भी पंचर और ताला लगाने वालों से जोड़ दिया।
5: भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों,
0: पिछले 12 सालों में जो काम विपक्ष नहीं करवा पाया उसे दिल्ली पर जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन ने करवाया, लेकिन फिर जिस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसी का आधार बनाकर बीजेपी ने देशवासियों के अपमान से जोड़कर इसे भुनाने की कोशिश की, लेकिन अब मामला आंदोलन को संविधान विरोधी और देश विरोधी बताने पर जा पहुंचा है।
6: इसी के साथ उनके छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
8: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
9: कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से विवाह जल्दी हो जाता है? कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से पढ़ाई, ज्ञान और विद्या में लाभ होता है? और रुद्राक्ष धारण करके आपकी सुरक्षा कैसे हो जाती है? क्या है रुद्राक्ष की महिमा और क्या हैं इसके प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
8: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
10: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
8: Big 12 Radio.
11: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
8: and
11: down.
8: And talk sports.
12: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
8: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
7: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
13: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

बांकीपुर सीट नहीं बचा पाई बीजेपी। प्रशांत किशोर की बड़ी जीत, कामयाबी के बाद सम्राट पर ज्यादा निशाना। दतिया सीट कांग्रेस के खाते में, बीजेपी बोली गंभीरता से करेंगे आत्ममंथन। संसद में नहीं थम रहा बवाल, आज भी दोनों सदनों में हंगामे की संभावना। छात्रों पर एक्शन को लेकर गृहमंत्री शाह के बयान पर अड़ा विपक्ष, चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा की मांग। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज योगी सरकार के अनुपूरक बजट की संभावना। 2027 चुनाव को लेकर कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले संभव। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 11वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान। बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, सीएम से इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग। और जम्मू कश्मीर में मानसूनी आफत का दौर जारी, पहलगाम, बांदीपोरा, गुरेज समेत कई इलाकों में फ्लैश फ्लड। लद्दाख के कारगिल और उत्तराखंड के चमोली में भी तबाही दिखी।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मानसून सत्र आज की दूसरा दिन है। 2027 चुनाव की तैयारियों के बीच योगी सरकार आज उत्तर प्रदेश के लिए अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। उससे पहले योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। इस बैठक में बड़े फैसलों, अध्यादेशों पर मुहर लग सकती है। कई अहम अध्यादेशों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। कैबिनेट से मंजूर अध्यादेश विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। बजट से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक को सरकार के अहम नीतिगत फैसलों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अनुपूरक बजट होगा और इसके बाद जो है, क्योंकि अगले साल जनवरी से फरवरी के बीच विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। आज पेश होने वाले इस अनुपूरक बजट का आकार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। बजट में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का विशेष ध्यान रखा जा सकता है। और अब आपको दिखाते हैं कि एक दिन पहले शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान हंगामा हुआ। पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
1: यूपी का विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जबरदस्त हंगामा बरपा। समाजवादी पार्टी के नेता तख्तियों पर तेवर लिखकर लाए थे। राम मंदिर में चहावा चोरी इनका अहम मुद्दा था। समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र लेकर पहुंचे थे।
2: बीजेपी बेनकाब हो गई है। बीजेपी एक ही बात कहती थी कि आस्था पर फैसला अदालते नहीं करती। आज आस्था पर सबसे बड़ी अगर लूट और आस्था के साथ कोई खिलवाड़ किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी।
3: समाजवादी पार्टी आज तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दर्शन करने नहीं गए, न अपने विधायकों को ले गए, तो वो जब उसके अस्तित्व को ही नहीं मानते। उनके नेताजी मुलायम सिंह जी संसद में कहते थे कि वहाँ बाबरी मस्जिद है।
1: समाजवादी पार्टी ने सदन के बाहर नीट पेपर लीक को लेकर भी जोरदार प्रदर्शन किया।
4: बीजेपी सरकार ने क्या कहा था, प्रोटेस्ट में कहा था कि इस छात्र छात्राओं पे एफआईआर नहीं होगी, उन पे एफआईआर वापस ली जाएगी। लेकिन ये मोदी जी की पुलिस, ये योगी जी की पुलिस उन्हीं छात्र छात्राओं को परेशान करने का काम कर रही है।
5: वहां से समाजवादी पार्टी ने स्कूलों को छोड़ा था, न बच्चों के पैर में जूते चप्पल होते थे, न किताबें मिलती थी, न बैग मिलते थे। आज सब कुछ मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय मेरी विधानसभा देवरिया में आया है। 30 करोड़ का विद्यालय जिसमें गरीब बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, तो किन मुद्दों पर बात करेंगे? मुद्दे नहीं है, इसीलिए भगवा का अपमान करते हैं।
1: इस सत्र में जिन मुद्दों पर सदन में गर्मा गर्मी होनी तय है, पहले उन पर गौर करें। राम मंदिर चहावा चोरी, नीट का पेपर लीक, सरकारी स्कूल मर्जर, E20 पेट्रोल और महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण, बिजली और खाद संकट, ये तो तय मुद्दे हैं। लेकिन लड़ाई इन्हीं दायरों में सीमित नहीं रहने वाली। सीएम योगी ने मानसून सत्र में मोर्चाबंदी की खास तैयारी कर रखी है। सीएम ने सदन में कम शब्दों में सटीक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जेन जी और जेन अल्फा से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा है। बैठक में सीएम ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के युवा जो नए वोटर बचे हैं, वो 2017 से पहले की एसपी सरकार की करतूतों को नहीं जानते हैं, इसलिए जेन जी युवाओं से नियमित संवाद जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक योगी ने चहावा चोरी पर भी विपक्ष को आक्रामकता से जवाब देने को कहा। तो सदन के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर दोनों ओर से तैयारियां जारी हैं। साफ है कि आने वाले वक्त में 27 के समर की तैयारी देखने को मिलेगी। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: अब आपको झारखंड लिए चलते हैं। रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज प्रदर्शन का 11वां दिन है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे हैं। बीती शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
6: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खा के और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करें सर, हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
7: मदद की थाली हाथ में पकड़े युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
6: ऐसे गाँव से आते हैं सर, वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है, पूरे खानदान का, पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने। अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते।
7: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए, सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप कि जवाब दे सके,
6: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर, और गरीब आदमी हैं, अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, एक रूम में हम लोग कितना दिन से यहाँ हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर, कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
7: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून सी चुभनी चाहिए, क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
8: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है, एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है, साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है, उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
7: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: रांची में जारी प्रदर्शन पर छात्रों से बात की है आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार ने।
8: रांची का यह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है जहां प्रोटेस्टर्स का एजुकेशन चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी में जो लार्ज स्केल करप्शन है और इनका जो आरोप है कि सीटें भेज दी जाती है, आम बच्चे जो तैयारी करते हैं वो टकटकी लगाए बैठे रह जाते हैं, नौकरी कोई और ले जाता है, पैसे वाले को नौकरी मिल जाता है। अब यह आर पार की लड़ाई के मूड में है और दिन रात इसी तरह से इस टेंट के अंदर नारेबाजी होती रहती है और लगातार जो है ये नारे लगाते रहते हैं। क्या क्या क्या नारा लग रहा है ये
9: देखिए, हम लोग इधर उधर का बात नहीं जानते हैं। हेमंत सोरेन इज द डेमोक्रेटिक हेड ऑफ द झारखंड और हेमंत सोरेन मुखिया है। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही पूछना चाहेंगे उनसे कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा। रहजनों से कोई गिला नहीं है। जेपीएससी अध्यक्ष, जेएसएससी सेक्रेटरी, दे ऑल आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर गवर्नमेंट, दे आर द बाय प्रोडक्ट। हम ये कहना चाहते हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा। मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं है, तेरी रहबरी पर सवाल है, तेरी रहबरी पर सवाल है, और इसलिए इस मैदान में आज बवाल है और ये तब तक बवाल रहेगा जब तक तत्काल प्रभाव से हाल के दिनों में जेपीएससी और जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई है सरकार रद्द करे और सरकार स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है स्टेट के लिए एक कानून बनाए कि जो भी व्यक्ति इस तरह के पेपर लीक में संलिप्तता पाई जाती है उसको 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रायल करके फांसी का सजा होगा, उससे नीचे नहीं होगा।
8: रात भर जाग रहे हैं,
9: देखिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है कुछ पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है कुछ पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, जेपीएससी, जेएसएससी, एलडीसी, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं।
8: देख सकते हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इनका जुर्म क्या है, क्यों अपने अधिकार से ये वंचित है, क्यों अपने अधिकार से जो है ये मरहूम है। ये सवाल जो है ये गाना गाकर नारे लगाकर लगातार सरकार से अपने बातों को पूछ रहे हैं, अपने सवालों को पूछ रहे हैं और अपने भावनाओं का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। सत्यजीत कुमार रांची आज तक।
0: सड़क पर उतरना किसी का शौक नहीं होता, ये मजबूरियां हैं जो इन युवाओं को, इन बच्चों को, इन छात्रों को सड़क पर ले आई हैं। बेहतर है कि सरकार इनके सुने। उधर महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बीजेपी नेता, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया।
10: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
11: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
10: दरअसल 3 साल पुराना इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में बृजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
11: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
10: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
12: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
13: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करें, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में दे।
10: देखना ये है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: सिद्धि विनायक, वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता, आम भक्त सब गणपति बापा के चरणों में एक समान होकर माथा टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में है। राज ठाकरे का आरोप है कि सिद्धि विनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। ट्रस्ट का दावा है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है, लेकिन चढ़ावे पर ग्रहण की बात अब सामने आई तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं पा रही है।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है, अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदाद ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ, यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती, त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया। उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जाँच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगा।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते, उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनतकश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: अभी मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हमने यही बता रहे हैं कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ दे नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी में है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता है, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए, और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: अभी राम मंदिर में चोरी और लूट की घटना ने लोगों के जख्म भरे भी नहीं थे कि सिद्धि विनायक मंदिर में बाल गणेश के मंदिर में चोरी की खबर सामने आ गई है। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि मॉनसून संकट की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख हिंदुओं कुदरत के बेहिसाब संकट का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड, उससे तबाही हुई है। लद्दाख के कारगिल में भी डरावना मंजर देखने को मिला है।
7: जब पहाड़ों पर बादल फटते हैं तो कैसी तबाही मचती है, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। ये लद्दाख के करगिल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं। वहां एक गांव में अचानक बाढ़ आ गई, बादल फटने के बाद सैलाब रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचा। ये करगिल का हरदास इलाका है, यहां आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई। हालात ऐसे हो गए कि सेना, पुलिस और प्रशासन ने बचाव और राहत अभियान चलाया। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी अचानक बाढ़ आ गई, यह हादसा गावरा इलाके में हुआ। वहां फ्लैश फ्लड की वजह से सड़क का हाल उफनती नदी जैसा हो गया। पानी का स्तर लगातार बढ़ने के कारण लोगों को पानी से भरी सड़कों से गुजरने में मुश्किल हो रही है, और बाढ़ से हुए नुकसान की वजह से कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें तबाह हो गई हैं। गुरेज में भी हालात गंभीर हैं, लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से आबादी वाले इलाके वीरान पड़ गए हैं। कुदरत का कहर टूटा तो कई बेजुबान बह गए। कश्मीर के कई हिस्सों में ऐसा संकट है, लोलाब इलाके में तबाही के मंजर नजर आए। वहां रिहायशी इलाके में फ्लैश फ्लड से तबाही हुई है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पहलगाम में आए संकट ने तो तांडव का रूप दिखाया, लंगलाई और अरवा इलाके में फ्लैश फ्लड का पानी सड़कों पर भर गया। तेज धार लहरें सब कुछ बहाने को बेताब थी। हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि इसके दोनों सिरों पर कई पर्यटक फंसे रहे। इलाके में रेस्क्यू के लिए SDRF को तैनात करना पड़ा। दक्षिण कश्मीर के त्राल में भी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी अचानक घुसने से अफरा तफरी मच गई, कई घर पानी में डूब गए, सड़कें तबाह हो गई, सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। तबाही की तस्वीरें राजौरी में भी दिखी है। वहां ऊपरी इलाके में भारी बारिश की वजह से जलस्तर खतरनाक हो गया है, इसका असर रिहायशी इलाकों में दिखा। वहां से गुजरने वाले नालों में पानी का बहाव काफी तेज दिखा। आज तक ब्यूरो।
6: इस बुलेटिन में बस एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports. sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
10: कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से विवाह जल्दी हो जाता है? कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से पढ़ाई, ज्ञान और विद्या में लाभ होता है? और रुद्राक्ष धारण करके आपकी सुरक्षा कैसे हो जाती है? क्या है रुद्राक्ष की महिमा और क्या हैं इसके प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
11: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
12: Right field,
11: from the first pitch of the season to the stretch run.
12: That's the ball game.
11: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
13: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

बांकीपुर सीट नहीं बचा पाई बीजेपी। प्रशांत किशोर की बड़ी जीत, कामयाबी के बाद सम्राट पर ज्यादा निशाना। दतिया सीट कांग्रेस के खाते में, बीजेपी बोली गंभीरता से करेंगे आत्ममंथन। संसद में नहीं थम रहा बवाल, आज भी दोनों सदनों में हंगामे की संभावना। छात्रों पर एक्शन को लेकर गृहमंत्री शाह के बयान पर अड़ा विपक्ष, चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा की मांग। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज योगी सरकार के अनुपूरक बजट की संभावना। 2027 चुनाव को लेकर कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले संभव। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 11वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान। बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, सीएम से इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग। और जम्मू कश्मीर में मानसूनी आफत का दौर जारी, पहलगाम, बांदीपोरा, गुरेज समेत कई इलाकों में फ्लैश फ्लड। लद्दाख के कारगिल और उत्तराखंड के चमोली में भी तबाही दिखी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में रुद्राक्ष धारण करने की विशेष परंपरा पाई जाती है। तो आज आपको बताएंगे रुद्राक्ष के महत्व के बारे में और इसको धारण करने के नियमों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 10:03 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 9:54 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:54 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जब बात होती है भगवान शिव के भक्ति की और भगवान शिव के कृपा की, तो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है रुद्राक्ष धारण करने पर। तो रुद्राक्ष की महिमा क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है जिसका औषधीय और आध्यात्मिक दोनों महत्व है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए थे, उनके नेत्र से आंसू निकले और उससे रुद्राक्ष पैदा हुआ। इसीलिए रुद्र का अक्ष यानी शिव नेत्र से प्राकट्य माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने से और विशेष प्रयोग करने से विशेष तरह के परिणाम और फल जीवन में प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने पर अकाल मृत्यु से और शत्रु बाधा से रक्षा होती है। भगवान शिव की विशेष कृपा जीवन में आ जाती है। सामान्यतः कुल मिलाकर 14 मुखी रुद्राक्ष आराम से पाए जाते हैं और इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष भी पाया जाता है। हर तरह के रुद्राक्ष में अलग तरह की शक्ति होती है और जीवन में जैसी शक्ति की आवश्यकता होती है उस हिसाब से रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। रुद्राक्ष पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और सावन के पावन महीने में आपका भाग्य कैसे चमकेगा ये बताएंगे सावन सूत्र में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, परिवार में अशांति से बचाव करें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अगर आप एक दाना रुद्राक्ष पहनते हैं या रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं तो रुद्राक्ष धारण करने में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? सामान्यतः अगर एक दाना रुद्राक्ष पहनते हैं तो रुद्राक्ष को लाल धागे में या पीले धागे में धारण करना अच्छा होगा। रुद्राक्ष को महीने में किसी भी पूर्णिमा को, अमावस्या को या सोमवार को पहनना चाहिए और सावन के पावन महीने में किसी भी दिन आप शिव जी को समर्पित करने के बाद रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष 1, 27, 54 या 108 की संख्या में धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला आप पहने या रुद्राक्ष का दाना आप पहने, इसको धारण करने के बाद मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को अगर धागे के बजाय आप मेटल में पहने, चांदी में पहने या सोने में पहने तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। अगर आप तांबे में डाल करके या तांबे के साथ रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आपको चमत्कारी परिणाम अपने जीवन में देगा। दूसरे की धारण की गई रुद्राक्ष की माला धारण ना करें। हालांकि अगर आपके गुरु, कोई संत महात्मा, कोई आचार्य अपनी रुद्राक्ष की माला देता है तो उसको आशीर्वाद के रूप में ले सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के धारण किए गए रुद्राक्ष को खुद धारण नहीं करना चाहिए। और सोते समय रुद्राक्ष गले से निकाल दें।
अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद आप दोबारा रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

कन्या राशि यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मोहन लाल जी ने हमें लिखा है और मोहन लाल जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 दिसंबर 1975, शाम के 3:50, रोहतास बिहार। मोहन जी कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार कर रहा हूं काफी समय से पटना में, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरा पैसा फंस गया है जिसकी वजह से व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा फंसा हुआ पैसा निकल आए। मोहन जी, सबसे पहले बता दूं कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक कर्ज देने से बचिए, तब तक कर्ज मत दीजिए, वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। और दूसरा ये है कि इस साल के अक्टूबर से प्रयास करिएगा लगातार, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका डूबा हुआ धन मिलेगा, क्योंकि अप्रैल 27 के बाद से आपकी स्थितियां काफी मजबूत दिख रही हैं। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए और अलग अलग तरीके का लाभ लेने के लिए आप अलग अलग स्वरूपों के रुद्राक्ष पहन सकते हैं। किस तरह के लाभ के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए आइए आपको बताते हैं। शीघ्र विवाह के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष पहनिए या गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना चाहिए। शिक्षा को बेहतर करने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष यानी 5 मुख वाला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए 1 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अगर आपके नौकरी या रोजगार में दिक्कत आ रही है तो नौकरी या रोजगार की बाधाओं से बचने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। व्यसन छुड़ाने के लिए, बुरी आदतों को दूर करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहने, 1 दाना इधर 1 दाना उधर, बीच में 1 दाना 1 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। भक्ति बढ़ाने के लिए, मन को पूजा उपासना अध्यात्म में लगाने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जो बच्चे बहुत चंचल हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो पढ़ाई में एकाग्र नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को 5 मुखी रुद्राक्ष के अलावा गणेश रुद्राक्ष भी लाल या पीले धागे में डालकर

गले में पहना सकते हैं। किस राशि के व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, आंखों का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिससे उनकी रक्षा हो और उनको जीवन में सफलता मिले। अगर मेष और वृश्चिक राशि की बात करें तो ये मंगल की राशियां हैं, इनके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष उत्तम होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि का और तेज का स्वरूप माना जाता है, एनर्जी का सबसे बड़ा रुद्राक्ष है। वृषभ राशि और तुला राशि शुक्र की राशियां हैं, इनके लिए छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे उत्तम होता है। छह मुखी रुद्राक्ष को भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। मिथुन राशि और कन्या राशि बुध की राशियां हैं, इनको चार मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए अपनी बुद्धि, अपने दिमाग और अपनी सुरक्षा के लिए। चार मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। कर्क राशि, इनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम और सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, यानी उसमें भगवान शिव और माता पार्वती दोनों समाहित हैं। सिंह राशि, इनके लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है।
और एक मुखी रुद्राक्ष शिव जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति देव हैं। इनके लिए पांच मुखी रुद्राक्ष पहनना अच्छा होता है। ज्ञान के लिए, विद्या बुद्धि के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। और पांच मुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि भी कहा जाता है। मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों राशियां शनि की राशियां हैं। इनके लिए सात मुखी रुद्राक्ष पहनना सबसे बेहतर है। और सात मुखी रुद्राक्ष सप्त मातृका का या सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। तो जब आप अपनी राशि के अनुसार सही रुद्राक्ष पहनते हैं तो सबसे पहले रुद्राक्ष धारण करने से आपकी सुरक्षा होती है। और दूसरे नंबर पर जिस कामना के लिए आप रुद्राक्ष पहनते हैं वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई छोटी यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

से काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद या रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप उसको पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराते हैं, उसके बाद धारण करते हैं, तो रुद्राक्ष के अंदर शिव जी की ऊर्जा, शिव जी की पवित्र शक्ति बनी रहती है। अगर आप रुद्राक्ष पहनकर नॉनवेज खाएंगे या अल्कोहल लेंगे तो शिव जी की शक्ति का प्रभाव भंग हो जाएगा और तब आपको रुद्राक्ष पहनने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो पवित्रता बनाए रखें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और रात में सोते समय रुद्राक्ष को निकालकर अपने सिरहाने रख लीजिए और सुबह नहा करके दोबारा धारण करिए। रुद्राक्ष की एनर्जी बनी रहेगी और आपको लाभ होता रहेगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 3, करियर में लाभ के योग हैं। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, करियर की रुकावट दूर होगी। नंबर 9, बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी को लाल फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें। आपकी कर्ज संबंधी और धन संबंधी समस्या हल हो जाएगी। अगर आपको आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रखकर जाइएगा, काम आपका बन जाएगा और काम हो जाने के बाद फूल को हटा दीजिएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का,
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा।

होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला वालों के लिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज षष्ठी तिथि है, मंगलवार की षष्ठी को बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है, इसलिए आज कोई भी नया काम मत करिए। और आज भगवान कार्तिकेय की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो अब आपको बताते हैं कि सावन में आप अपना भाग्य कैसे चमकाएंगे सावन सूत्र में।

पत्ते ले लें, उसकी एक माला बना लें और सावन में किसी भी दिन शिव जी को शिवलिंग पर इस माला को अर्पित कर दीजिएगा। आपकी नौकरी से जुड़ी हुई अगर कोई बाधा है, नौकरी पाने की, बदलने की, तरक्की की, तो वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

लोकसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की शुरुआत संभव। संसद में विपक्ष का सरकार पर फिर हमला, नीट और छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के साथ गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। गृहमंत्री के साथ पीएम की गैर मौजूदगी पर भी विपक्ष का विरोध, सदन में आओ के नारों से गूंजा संसद का परिसर। आज एनडीए की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक, पिछले मंगल मिलन बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। खड़गे ने विपक्ष की मांगे गिनाई, बोले पीएम और गृहमंत्री पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में जवाब दें। यूपी में विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, आज फिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा जारी रहने की संभावना है, पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध भी जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार साल 2026-27 के लिए अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में इसे पेश करेंगे। युवाओं और महिलाओं को लेकर यूपी सरकार की बड़ी पहल, अधूरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी संभव है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को रफ्तार मिल सकती है, डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक टाउनशिप समेत कई बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट में फंड का प्रावधान भी संभव है। नितिन नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला, बोले अहंकार रखने वालों को भगवान ने नचा दिया, वोट चोरी से लेकर नौकरी आरक्षण चोरी का परिणाम बताया। चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, बांगीपुर दतिया में हार हुई, गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी के सिर जीत का ताज। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन मेन ने कहा चुनाव नतीजों पर आत्ममंथन करेंगे। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में बड़ी उलटफेर हुई, प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को करारी हार दी। करीब 19,000 वोटों से स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर जीते, कहा 30 साल पुराना गढ़ 30 दिनों में ही ढह गया। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में कई दलों की जमानत भी जब्त हुई, बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट ने सफाई दी है, उद्धव की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष सदासर वनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करीब 18 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें अब तक 9 कर्मचारी अरेस्ट हुए हैं, 45 निलंबित हुए हैं, शिवसेना यूबीटी से कनेक्शन का दावा भी किया। गुजरात के मांजलपुर ने बीजेपी की इज्जत बचाई, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल। E20 पेट्रोल के खिलाफ नागपुर में गडकरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग, सुरक्षा घेरा तोड़ने पर हिरासत में लिए गए कई नेता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी से करेंगे बातचीत, 6 अगस्त को मुंबई में IIM यूविन के 15वें वार्षिक सम्मेलन में देशभर से पहुंचेंगे 2,000 से ज्यादा छात्र। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक केस में सभी 15 आरोपियों की भिवंडी कोर्ट में पेशी हुई, 17 अगस्त तक सबकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने अपनी गलती मानी, संसदीय समिति की बैठक में माफी भी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में हंगामे के बीच जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल बिना चर्चा के पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह 38 जज होंगे। जंतर मंतर हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा गंभीर आरोप वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को केस वापस लेने की छूट दी गई है, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राज्य केस को खत्म कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, 18 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कर्नाटक कैबिनेट में विस्तार में जगह नहीं मिली, कांग्रेस के 2 विधायक यशवंत रायगौड़ा, वी पाटिल और सागर विधानसभा सीट से विधायक बेलूर गोपाल कृष्णन ने किया इस्तीफे का ऐलान। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार से बाहर किए जाने पर कांग्रेस विधायकों के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, नाराज समर्थकों ने सीएम डीके शिवकुमार का पुतला फूंका और आगजनी की। कावेरी जल विवाद को लेकर के तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कर्नाटक सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु का कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद उसे उसका उचित हिस्सा नहीं देने का दावा, कहा CWMA और CWRC के आदेशों के बावजूद निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ा जा रहा। पंजाब कांग्रेस की तीसरे दिन की बैठक पर विरोध, चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने नाराजबाजी करते हुए भूपेश बघेल गो बैक के नारे लगाए।
जयपुर में यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर के रैली करनी सेना ने निकाली। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाकर खदेड़ा। इंदौर में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ा। साल 2026 में अब तक डेंगू के 45 मामले दर्ज। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले वेटलिफ्टिंग टीम का सम्मान। स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख, रजत पदक विजेता को 20 लाख, कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम मिला। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 8 मेडल जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाली मीराबाई चानू से दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। सिंधिया ने मीराबाई के प्रदर्शन की तारीफ की। वाराणसी में एनडीआरएफ ने 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग की। गंगा नदी में बढ़े हुए जलस्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्मदिवस के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। सुनील ग्रोवर ने मत्था टेक कर बाबा का आशीर्वाद लिया। सावन के पहले सोमवार पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा। बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारधाम के दर्शन किए हैं। मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बीच भी रोजाना हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में नोटों वाली कांवड़ दिखी, जिसमें 10, 20, 50, 100 के अनगिनत नोट लगाए गए। भोले के जलाभिषेक के लिए दिल्ली जा रहे कांवड़। गुरेज के कोरखबल में बादल फटा। अचानक बाढ़ से खानाबदोशों का झुंड फंस गया। दक्षिण कश्मीर में भारी बारिश से अचानक बाढ़ आई। कई घर इसमें जलमग्न हो गए। लंगनई अबूरा के पास फ्लैश फ्लड से सड़क बह गई। पहलगाम का सड़क संपर्क टूटा। दोनों ओर पर्यटक समेत यात्री फंसे। श्रीनगर में बारिश से गर्मी से तो राहत मिली। लाल चौक में सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। बांदीपोरा में फ्लैश फ्लड से सड़क दरिया बन गई। कई गांवों का संपर्क इसमें टूट गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जोजिला रोड पर भारी बारिश से भूस्खलन हुआ। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग अस्थायी रूप से यातायात के लिए रोक लगा दी गई है। चमोली में कर्णप्रयाग नैनसैन मार्ग पर अचानक पहाड़ दरक गया। खौफनाक मंजर सामने आया। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूधसान हुआ। जगह जगह दरारें पड़ी। घंटों ठप रहा आवागमन। विदिशा में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे स्कूल जाते बच्चे। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पर। हरिद्वार कांवड़ मेले में नया रंग दिखा। पैदल कांवड़ के साथ साथ अनोखी विशाल कांवड़ भी लोगों का ध्यान खींच रही है। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी है। शिव परिवार अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल ले जा रहे हैं। डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़ी आगे बढ़ रहे हैं। हाईवे पर बम बम भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालु उत्साह के साथ अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का अनोखा रूप देखने को मिला। शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियों वाली कांवड़ लेकर कांवड़िए निकल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ओवरसाइज डीजे कांवड़ यात्रा पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है। तेज डीजे सेटअप को हरिद्वार से आगे जाने की अनुमति ही नहीं दी जा रही। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता वेटलिफ्टिंग टीम का सम्मान किया गया। स्वर्ण विजेता को 30 लाख रुपए, रजत को 20 लाख रुपए, कांस्य को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। वेटलिफ्टिंग में 1 गोल्ड समेत कुल 8 पदक अपने नाम किए। गोल्ड मेडल विजेता मीराबाई चानू से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ने शानदार प्रदर्शन की सराहना की। ग्लासगो में साक्षी चौधरी का स्वर्णिम पंच। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष अरविंद चौहान ने बधाई दी। लिखा, देश और महाराष्ट्र का मान बढ़ाया। गुजरात के एक युवक के अंगों से कई लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। अंकलेश्वर में वंदे भारत ट्रेन रोककर अहमदाबाद भेजा गया एक धड़कता दिल। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर है। पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ से हालत गंभीर है।

0: गोकुल 1757 का पोस्टर जारी कर दिया गया। 1757 में अहमद शाह अब्दाली की सेना के खिलाफ गोकुल के युद्ध की एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। फिल्म इलियास रुक्मिणी का वीडियो जारी हुआ, फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे नितिन। यश की फिल्म टॉक्सिक 8 अगस्त को रिलीज होगी, 26 अगस्त को ये पूरी फिल्म सामने आएगी। फिल्म झिम्मा 3 की शूटिंग शुरू हो गई है, 1 जनवरी 2027 को ये फिल्म रिलीज होगी। फिल्म सिंह वर्सेस कौर 2 का टीजर जारी हो गया है, 11 सितंबर को फिल्म पहले पर्दे पर दस्तक देगी। अब ईएमआई पर मंथन करने के लिए सोमवार से शुरू होगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। अनुमान है कि महंगाई की जगह विकास दर पर फोकस रखने की वजह से फिलहाल रेपो रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच आईपीओ मार्केट की रफ्तार धीमा पड़ने का दावा है। निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए कई कंपनियों ने अपने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन को घटाना शुरू कर दिया है। जुलाई में यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1 साल में 22% की तेजी के साथ डिजिटल पेमेंट में नया इतिहास रचा है। मिडल ईस्ट में शांति बहाली की उम्मीदों से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। ईरान के साथ बातचीत के संकेत मिलते ही ब्रेंट क्रूड 4% से ज्यादा लुढ़का, $84 प्रति बैरल के नीचे पहुंचा। यूक्रेन युद्ध के दौरान लगी पाबंदियों को दरकिनार करके रूस से भारत का तेल आयात अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जुलाई में कुल क्रूड इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 55% से ज्यादा हुई। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर है, पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ से हालत गंभीर। मुंबई के साकीनागा में चलती बाइक में आग लगी, ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा हादसा टाला। असम के कशार क्षेत्र में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, 28 करोड़ के हीरोइन पुलिस ने जब्त की, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के कच्छ में एक खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने तुरंत इस पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। मुंबई हाईवे पर गड्ढे में एक बाइक जा गिरी, टीडीआरएफ जवान की जान गई, जिम्मेदार अधिकारियों ठेकेदार पर अब कार्रवाई की मांग हो रही है। रूस के ब्लैक सी हॉलिडे रिसॉर्ट में यूक्रेन का भीषण हमला, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, कई लोगों की हालत गंभीर है। समुद्री बीच के पास अचानक ये ड्रोन गिरा, हमले के बाद अफरा तफरी मची। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर निशाना, कहा ईरानी नेतृत्व अब दोहरा रवैया अपना रहा है, पहले बैठक करने के लिए कहते हैं और फिर पलट जाते हैं, कहते हैं हम ओमान से बात कर रहे हैं। ट्रंप के दावे के बीच ईरान ने अमेरिका से बातचीत से इनकार किया, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा जब तक अमेरिका उल्लंघन बंद नहीं करता तब तक जलडमरू मध्य बंद रहेगा। 5 साल बाद पहली बार दिखे म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की, इंटरनेशनल कमेटी रेडक्रॉस के प्रतिनिधि से मुलाकात की, सैन्य सरकार ने आंग सान सू की तस्वीरें भी जारी की। जापान के प्रधानमंत्री तकाइशी ने भूकंप प्रभावित कुमामोटो प्रांत का दौरा किया, भूकंप पीड़ितों से मुलाकात की, चिकित्सा सुविधा सफाई अभियान तेज करने का निर्देश। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशरा ने इराक के कुर्दिश क्षेत्र के राष्ट्रपति बारजानी से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय तनाव को कम करने को लेकर चर्चा हुई। ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टी रिफॉर्म यूके का बड़ा ऐलान, कहा इंग्लिश चैनल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलाएंगे सबसे बड़ा सैन्य अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों को रोकना होगा। स्पेन के सेउटा में फंसे प्रवासियों का दर छलका, कहा हमें स्पेन में नौकरी चाहिए इसलिए जान जोखिम में डालकर घुसपैठ कर रहे हैं। रोमानिया में सूखे की वजह से संकट गहरा गया है, डेन्यूब नदी का रुख मोड़ने के लिए नौसेना ने लाइव विस्फोट कराया, जल स्तर कम होने की वजह से चेर्नावोडा परमाणु ऊर्जा प्लांट को भी बंद करना पड़ा है। अमेरिका में जंगलों की आग से बड़ी तबाही मची है, वाशिंगटन राज्य में घरों तक आग पहुंची, घर और दुकान समेत 600 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई हैं, हजारों लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
4: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
5: They created this Frankenstein called Bhindranwala.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सो सॉरी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया था। आज जो निचली अदालत है उन्होंने उनको इस पूरे मामले में जो है वो बरी कर दिया है। बृजभूषण जी, कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया?
2: हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है। और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी दो एक पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बाकीपुर सीट जीतने के बाद प्रशांत किशोर के निशाने पर सम्राट चौधरी, कहा किसी काबिल आदमी को सीएम बनाए, दतिया में कांग्रेस की विजय, बीजेपी बोली हार का आत्ममंथन करेंगे। संसद में नहीं थम रहा बवाल, आज भी दोनों सदनों में हंगामे की संभावना, छात्रों पर एक्शन को लेकर गृहमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष, चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा की मांग। यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार के अनुपूरक बजट की संभावना, 2027 चुनाव को लेकर कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले संभव। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 11वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान, बीजेपी के हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, सीएम से इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग की। और जम्मू कश्मीर में मानसूनी आफत का दौर जारी, पहलगाम, बांदीपोरा, गुरेज समेत कई इलाकों में फ्लैश फ्लड, लद्दाख के कारगिल और उत्तराखंड के चमोली में भी तबाही।

0: सुबह के 8 बजे हैं और वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ में हूं आशुतोष मिश्रा। इस बुलेटिन में कई अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बांकीपुर के चुनाव परिणाम की, साथ ही ये भी बताएंगे कि संसद में क्यों जारी है हंगामा। बात करेंगे पप्पू यादव पर उठे सियासी सवाल की और बवाल की। दिखाएंगे E20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल के मोर्चे की खबर। साथ ही रांची में छात्रों के अल्टीमेटम की भी जानकारी देंगे और बताएंगे कि यूपी में बीजेपी के चुनावी मोड और एक्शन में क्या तैयारी है। खबरें मौसम की भी होंगी। दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में जारी तबाही की तस्वीरें और साथ ही उत्तराखंड के चमोली वाली आफत की भी पूरी खबर आपको बताएंगे। तो चलिए खबरों को विस्तार शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में नतीजों की। बीजेपी के 2 राज्यों में बिहार एमपी में झटका लगा है, जबकि गुजरात की सीट पर पार्टी कामयाब हुई है। सबसे बड़ा झटका बांकीपुर सीट का है, जहां लगातार 5 बार बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जीत हासिल कर चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव हुए तो वहां से प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को मात दे दी, विजय हासिल की। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को हरा दिया। तो 3 राज्यों के जो नतीजे से, उन नतीजों से क्या सबक मिलता है, उन नतीजों का आखिर असर क्यों बड़ा है, क्योंकि इसी समय अलग अलग प्रदर्शन हो रहे थे, जेंजी प्रदर्शन हुआ, नीट का मुद्दा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? 3 ये वो चेहरे हैं जो जीते हैं तीनों जगहों पर। अब देखिए प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी से बांकीपुर, जो कि बिहार में बीजेपी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी, पहला चुनाव वो लड़ते हैं, वहां पर उपचुनाव लड़ते हैं और उसी में बीजेपी के गढ़ में सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरी सीट घनश्याम सिंह कांग्रेस दतिया मध्य प्रदेश में, यहां से भी उपचुनाव होता है बीजेपी के उम्मीदवार को। सबसे पहले बीजेपी में आंतरिक खबर की खाई और उसके बाद यहां पर जो है कांग्रेस को जीत मिलती है। तीसरी सीट सत्येंद्र भाई पटेल बीजेपी की, जो कि गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन परिणाम को लेकर सबसे ज्यादा इंतजार बिहार की बांकीपुर सीट का था, क्योंकि वहां से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़कर अपने सियासी सफर की शुरुआत की। अपनी जीत के साथ उन्होंने बीजेपी को करारी मार दी। बांकीपुर से प्रशांत किशोर की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं।
1: ...2025 के बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी ने पहली बार सियासी अखाड़े में किस्मत आजमाया था, लेकिन तब एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली थी। अब एक सीट पर बड़ी जीत हासिल हुई है। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इससे पहले बांकीपुर से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे, वो लगातार 5 बार चुनाव जीते थे। अब इस हाई प्रोफाइल सीट पर आया जनादेश बीजेपी की चिंताएं बढ़ा रहा है।
2: भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके।
1: उपचुनाव नितिन नवीन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, तो बतौर सीएम सम्राट चौधरी के लिए भी परीक्षा की घड़ी थी। ऐसे में जनसुराज का खाता खुलना बीजेपी के लिए एक बड़ी चोट है। इस पर नितिन नवीन ने कहा है कि बांकीपुर और रतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे। बिहार में बीजेपी नेतृत्व बांकीपुर में मिली हार पर अब चिंतन मनन में जुटा है।
3: तांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
1: प्रशांत किशोर की इस जीत के बाद विपक्ष लगातार बीजेपी को आईना दिखा रहा है, उन्हें घेरने का मौका मिल गया है। शशिभूषण कुमार, पटना, आज तक।
0: बांकीपुर से प्रशांत किशोर की जीत के बाद आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने बीजेपी और पीके दोनों पर हमला बोला। उनसे खास बातचीत की आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने।
4: बाकीपुर की लड़ाई कुत्ता बिल्ली पर चली आई थी। आइए बात करते हैं, हमारे साथ मीसा भारती हैं, राजद की वरिष्ठ सांसद और नेता, और उनसे पूछते हैं क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने ये लड़ाई लड़ी सम्राट चौधरी से लेकर नितिन नवीन और बीजेपी की साख और नाक दांव पर थी, क्या लगता है आपको ये किसके लिए सबसे बड़ा झटका, नितिन नवीन की सम्राट
5: जब बाकीपुर का चुनाव जब प्रारंभ हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा और ये 5 वर्षों से गढ़ नहीं है, करीब 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ रहा है। वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देके, वहाँ से एमएलए के इस्तीफा देके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उनको, यहाँ राज्यसभा में आए, वहाँ के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उस एरिया को अगर बाकीपुर का खासतौर पर आप देखिएगा तो वहाँ जो बासिंदे हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एकदम कट्टर समर्थक हैं। लेकिन
4: बोरिंग रोड से लेके सारी रोड
5: सारी जगह पे आप नहीं मतलब सुनने को मिला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही एक सुनने को मिला, जो आप भी प्रश्न में पूछ रही थी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो वहां से जीत जाएगा। लेकिन भैया भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुत्ता बिल्ली पे विश्वास नहीं किया है, वो एक लोमड़ी दे दिया है,
4: लोमड़ी दे दिया है
5: प्रशांत किशोर के रूप में,
4: यानी कि जो जीते प्रशांत किशोर लोमड़ी है
5: बस बिल्कुल, और उनको जिता दिया गया। तो जो नीरज सिन्हा जी थे वो असली उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी है।
0: अब संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर से विपक्ष इस समय इस जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है, इसका असर भी संसद में आज दिखाई दे सकता है। लगातार सरकार के खिलाफ विपक्ष के उग्र तेवर अपनाए हुए हैं, तो एनडीए खासकर बीजेपी ने भी अन्य राज्यों में हुई परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाकर पलटवार किया है। स्थिति यह है कि आज भी माहौल वैसा ही रहने की संभावना है, संसद में तनाव जारी है, टकराव है, छात्रों पर पुलिस एक्शन, विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह आए और जो सवाल है उस पर वो जवाब दें। अब उधर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी घेर रहा है, विपक्ष की मांग है कि दोनों सदनों में चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा हो।
6: लेकिन आप कंडीशन लगा करके
7: संसद के दोनों सदनों में जिद सियासी है, टकराव पेपर लीक और चढ़ावा चोरी को लेकर है, आरोप विपक्ष के हैं और सवाल के जवाब सरकार से मांगे जा रहे हैं। विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, संसद के बाहर और सदन के अंदर चंदा चोरी का शोर है, तो छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से जवाब मांगे जा रहे हैं। सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी ये दोनों मुद्दे उठे। सूत्रों के मुताबिक बीएसई की मीटिंग में कांग्रेस ने छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग की, साथ ही अयोध्या राम मंदिर मामले पर भी चर्चा की मांग की है। सोमवार को इन दोनों मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में कार्यवाही बार बार स्थगित हुई।

0: मोबाइल के टॉर्च जलाकर रांची के छात्र राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल भी जारी है। बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ कुछ वैसा ही अब रांची में हो रहा है। वहाँ परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र आवाज बुलंद कर रहे हैं।
1: परीक्षाएं विलंबित है या जिनका कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है, परीक्षाएं हो ही नहीं रही है, सारी परीक्षाओं का आयोजन हो। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का जो मामला है, 26 साल में सिर्फ 8 एग्जाम हुआ है। 14 जेपीएससी बोल देने से 14 जेपीएससी नहीं हो जाता, सिर्फ 8 एग्जाम अभी तक हुआ है और एज रिलैक्सेशन में छात्रों को ओवर एज करके डिवार्ड कर दिया जा रहा है।
0: छात्रों के साथ न्याय की मांग को लेकर छात्र नेता ने रविवार से अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू कर दिया है।
2: 2 जुलाई को जब पीटी परीक्षा जेपीएससी का रिजल्ट आया तब से, और जांच पे इतना खुलासा के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। पीटी परीक्षा तक कोई भी रद्द नहीं किया।
0: आज 11वां दिन है जब छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इस प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी समर्थन कर चुकी है। छात्र नेताओं की माने तो सोनम वांगचू से उनकी बात भी चल रही है। रांची में हुए छात्रों के मसाल जुलूस को लेकर बीजेपी विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रही है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि इस आंदोलन में न देश तोड़ने वाले नारे हैं, न आतंकियों की रिहाई की मांग करने वालों का जमावड़ और न ही हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों की भीड़। शायद इसीलिए वामपंथी सोच रखने वाले विपक्षी दल और उनके समर्थक इससे पूरी तरह दूर हैं। परीक्षा में धांधली का मुद्दा गर्माता जा रहा है। छात्रों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। उन्होंने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान कर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
3: तो अब आपको बताते हैं कि रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन के बीच उनके समर्थन में परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के सामने क्या मांगे रखी हैं। सबसे पहले तो ये कि सोरेन सरकार 6.5 साल के पहले यानी परीक्षा के जो मामले हैं उनकी सीबीआई जांच हो। 6.5 साल की हर प्रतियोगी परीक्षा संदेह के घेरे में है, तो तमाम परीक्षाएं जो संदेह के घेरे में है उनकी सीबीआई जांच हो, ये बीजेपी मांग कर रही है। जबकि नीट को मामले को हमने देखा कि जब पूरा विपक्ष था उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो। दूसरा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। अब केंद्र सरकार में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा तो बीजेपी मांग कर रही है कि यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दें, क्योंकि यहां पर जो है परीक्षा संदेह के घेरे में यहां अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ी हुई। इसी के साथ जेपीएससी के सभी सदस्यों को बर्खास्त कर दिया जाए, नई नियुक्तियां हो, पूरी बॉडी नई बनाई जाए ताकि परीक्षाओं पर जो संदेह है वो खत्म हो। अब इसी के साथ साथ इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी लगातार आक्रामक है।
4: मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, पीटी परीक्षा रद्द हो और सीबीआई जांच की अनुशंसा हो, और सबसे महत्वपूर्ण 6.5 वर्षों से ज्यादा के समय में जितनी परीक्षाएं हुई सब पर कुछ न कुछ आरोप लगा, सबकी जांच होनी चाहिए। ये हमसे प्रश्न करते हैं कि हमारे समय में गड़बड़ियां होंगी, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया, 7 वर्षों से ये सीबीआई के चार्जशीट को दबा कर क्यों बैठे हैं, अब तो प्रश्न हम इनसे करेंगे।
3: तो एक हंगामा संसद में हो रहा है, दूसरा हंगामा फिर सड़क पर होगा। खबर E20 पेट्रोल से जुड़ी हुई कि इस मुद्दे पर दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने की तैयारी में हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और यह ऐलान किया कि 100 लोगों के साथ पेटीशन की कॉपी लेकर वो प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि वो खुद पीएम मोदी को याचिकाएं सौंपेंगे। उनका आरोप है कि एथेनॉल खरीदने के मामले में ट्रंप के आगे झुक गए हैं केजरीवाल। आज के मार्च के ऐलान के बीच दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने उनकी पार्टी आपको अब तक मार्च के लिए अनुमति नहीं दी है। नई दिल्ली इलाके के संसद सत्र के चलते यहां 163 लगी हुई है। 12 बजे आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर से लेकर के प्रधानमंत्री आवास केजरीवाल की मार्च करने की तैयारी है।
5: प्रश्नों के जवाब दिए बिना कोई तर्क दिए सरकार जबरदस्ती थोप रही है, उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं, ट्रंप अपने देश का इथेनॉल जबरदस्ती इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है भारत मोदी जी जो है वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां खराब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। मैं 100 लोगों के साथ 12 बजे अपने दफ्तर से यहां से निकलूंगा।

0: प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ, और ये पिटीशंस हम चाहते हैं कि पर्सनली उनको हैंडओवर करके आएं और उनसे चर्चा करें कि कैसे इथेनॉल जो है वो गलत है और लोग किस तरह से परेशान हैं। मैंने चिट्ठी लिख के भी उनसे समय मांगा था लगभग 1 महीना पहले, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया।
1: और अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। मानसून सत्र का आज वहां दूसरा दिन है। 2027 चुनाव की तैयारियों के बीच योगी सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। आज दोपहर 12:20 पर वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक भी है। अब माना यह जा रहा है कि इस बैठक में बड़े फैसलों, अध्यादेशों पर मुहर लगाई जा सकती है। इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की भी संभावना है। कई अहम अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की भी संभावना है। अब कैबिनेट से मंजूर अध्यादेश विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। बजट से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक को सरकार के अहम नीतिगत फैसलों से जोड़कर देखा जा रहा है। आज पेश होने वाले अनुपूरक बजट का आकार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। और यह भी माना जा रहा है कि आज पेश होने वाले अनुपूरक बजट में सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का विशेष ध्यान रखेगी। और अब खबर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की। इस मामले में जो जांच जारी है वो अहम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंचने जा रही है। मामले की जांच कर रहे एसआईटी एसबीआई की नया घाट शाखा में सुरक्षित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों का वेरिफिकेशन कर सकती है। जांच की दिशा में एसआईटी अब एक कदम और आगे बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बैंक लॉकर में रखी गई सोने चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषणों, अन्य मूल्यवान वस्तुओं के अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि पिछले 2 दिनों से ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट से जुड़े जगदीश ओफले समेत अकाउंट संबंधित लोगों के साथ बैंकिंग और लॉकर में रखे सामानों का रिकॉर्ड तैयार किया है। साथ ही सभी सामानों की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। अब बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की सुरक्षित संपत्तियों का जांच के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में तत्काल सत्यापन किया जा सके। सूत्रों के अनुसार एसआईटी का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बैंक लॉकर में सुरक्षित सभी बहुमूल्य वस्तुएं ट्रस्ट के अभिलेखों के अनुरूप मौजूद हैं या नहीं। एक बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा की कंपनी में भीषण आग लग गई है। हादसा इकोटेक 3 में हुआ है। ILGIM नाम की इस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का काम होता था। आग बुझाते समय एक और हादसा हो गया। कंपनी के साइट की एक दीवार, लोहे का एक बीम गिर गया। इसमें 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया है। यह हादसा देर रात करीब 3 बजे हुआ। इकोटेक 3 में कंपनी में आग लगी। आग बुझाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय राहत बचाव कार्य अभियान चलाया जा रहा था और तभी एक हिस्सा जो है वो नीचे गिरता है। इसमें 2 फायर कर्मियों की मृत्यु हो गई। और अब खबर मानसून संकट की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दिनों कुदरत के बेहिसाब संकट का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड और उससे तबाही हुई है। लद्दाख के कारगिल में भी डरावना मंजर दिखा है।
2: जब पहाड़ों पर बादल फटते हैं तो कैसी तबाही मचती है, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। ये लद्दाख के कारगिल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं। वहां एक गांव में अचानक बाढ़ आ गई। बादल फटने के बाद सैलाब रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचा। यह करगिल का हरदास इलाका है। यहां आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई। हालात ऐसे हो गए कि सेना, पुलिस और प्रशासन ने बचाव और राहत अभियान चलाया। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी अचानक बाढ़ आ गई। यह हादसा गावरा इलाके में हुआ। वहां फ्लैश फ्लड की वजह से सड़क का हाल उफनती नदी जैसा हो गया। पानी का स्तर लगातार बढ़ने के कारण लोगों को पानी से भरी सड़कों से गुजरने में मुश्किल हो रही है और बाढ़ से हुए नुकसान की वजह से कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें तबाह हो गई हैं। गुरेज में भी हालात गंभीर हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से आबादी वाले इलाके वीरान पड़ गए हैं। कुदरत का कहर टूटा तो कई बेजुबान बह गए। कश्मीर के कई हिस्सों में ऐसा संकट है। लोलाब इलाके में तबाही के मंजर नजर आए। वहां रिहायशी इलाके में फ्लैश फ्लड से तबाही हुई है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पहलगाम में आए संकट ने तो तांडव का रूप दिखाया। लंगलाई और अरुवा इलाके में फ्लैश फ्लड का पानी सड़कों पर भर गया। तेज धार लहरें सब कुछ बहाने को बेताब थी। हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि इसके दोनों सिरों पर कई पर्यटक फंसे रहे। इलाके में रेस्क्यू के लिए SDRF को तैनात करना पड़ा। दक्षिण कश्मीर के त्राल में भी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी अचानक घुसने से अफरा तफरी मच गई। कई घर पानी में डूब गए, सड़कें तबाह हो गई, सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। तबाही की तस्वीरें राजौरी में भी दिखी है। वहां ऊपरी इलाके में भारी बारिश की वजह से जलस्तर खतरनाक हो गया है। इसका असर रिहायशी इलाकों में दिखा, वहां से गुजरने वाले नालों में पानी का बहाव काफी तेज दिखा। आज तक ब्यूरो।
1: उधर उत्तराखंड के चमोली में भी कुदरत का कहर जारी है। कर्णप्रयाग नैनसैंड मोर मार्ग पर एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। भरभरा कर गिरने के बाद इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह चट्टाने तेजी से नीचे गिर रही हैं। गनीमत यह रही कि जिस समय पहाड़ दरका, उस वक्त सड़क से वहां कोई गुजर नहीं रहा था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। अरब खबर पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के उनके दहशत की। कुख्यात लश्कर आतंकी का खौफ ना कि ऐसा वीडियो सामने आया। एक सभा को संबोधित करते हुए उसने जो बयान दिया उससे साफ है कि आतंकी संगठनों में कितनी दहशत है।
3: पहला था वो तौहीन का लंबरदार था। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं।
1: अरब खबर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा की, जहां रविवार को स्वात में काबुल पुलिस स्टेशन के मुख्य गेट पर आत्मघाती हमला हुआ। अब उस धमाके की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि शांति रैली के दौरान इस हमले में 5 पुलिसकर्मियों समेत 15 लोगों की मौत हो गई थी। और अब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियंस की बात करेंगे। पदक जीतकर भारत लौटे एथलीटों का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने खिलाड़ियों को फूलमालाएं पहनाई, मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान खिलाड़ियों के परिवार वाले भी मौजूद रहे। भारत पहुंचते ही खिलाड़ियों के परिजनों ने उनका गले लगाकर स्वागत किया। कॉमनवेल्थ गेम्स की ये विजेता 2026 में भारत में 13 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं, 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीते हैं। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से। In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: Tune in is your all-in-one audio app, radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know: you can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
7: Sokudo.
8: आगे आगे
9: उधर
8: करेक्ट करेक्ट
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। I wake up wearing someone else again.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
2: New entrepreneurs came up. There was Dhirubhai Ambani. He was a rag to riches story. He built industries. He built, you know, the whole nylon business, the textile, and then, of course, then into petrochemical.
3: There were others like him, but he was by far the biggest and the most prominent of them all. He was also the most controversial because of his business methods. We did the stories on him as a success. We did a story of him under pressure. It was a churn that was taking place, and it led to lots of stories.
4: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
5: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
4: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
6: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
4: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
7: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भाग्यपुर सीट जीतने के बाद प्रशांत किशोर के निशाने पर सम्राट चौधरी, कहा किसी काबिल आदमी को सीएम बनाए, दतिया में कांग्रेस की विजय, बीजेपी बोली हार का आत्ममंथन करेंगे। संसद में नहीं थम रहा बवाल, आज भी दोनों सदनों में हंगामे की संभावना, छात्रों पर एक्शन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा विपक्ष, चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा की मांग। यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार के अनुपूरक बजट की संभावना, 2027 चुनाव को लेकर कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले संभव। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 11वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान, बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, सीएम से इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग। और जम्मू कश्मीर में मानसूनी आफत का दौर जारी, पहलगाम, बांदीपोरा, गुरेज समेत कई इलाकों में फ्लैश फ्लड, लद्दाख के कारगिल और उत्तराखंड के चमोली में भी तबाही।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: लोकसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन, विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की शुरुआत संभव है। संसद में विपक्ष सरकार पर फिर हमला कर चुकी है, नीट और छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के साथ गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठा रही है। गृहमंत्री के साथ पीएम की गैर मौजूदगी पर भी विपक्ष का विरोध, सदन में आओ के नारों से गूंजा संसद का परिसर। आज एनडीए की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक होने वाली है, पिछले मंगल बैठक में शामिल हुए थे पीएम मोदी। खड़गे ने विपक्ष की मांगे दोबारा गिनवाई, कहा पीएम मोदी और गृहमंत्री पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में जवाब दें। यूपी में विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, आज फिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हावी रह सकता है, पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध। यूपी सरकार साल 2026-27 के लिए अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 12:20 पर विधानसभा में इसे पेश करेंगे। युवाओं और महिलाओं को लेकर यूपी सरकार की बड़ी पहल, अधूरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान संभव है। यूपी में एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को रफ्तार मिलेगी, डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक टाउनशिप समेत कई बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट में फंड का प्रावधान संभव। नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला, बोले अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया, वोट चोरी से लेकर नौकरी आरक्षण चोरी को परिणाम बताया। 3 उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है, बांकीपुर, दतिया में हार, गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी के सर सजा जीत का ताज। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा चुनाव नतीजों पर आत्ममंथन करेंगे। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में बड़ी उलटफेर हुए, प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को करारी हार दी। करीब 19,000 वोटों से जीते जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर, कहा 30 साल पुराना गढ़ महज 30 दिनों में ढह गया। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में कई दलों की भी जमानत जब्त हुई, बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट ने सफाई दी, उद्धव की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि करीब 18 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें अब तक 9 कर्मचारी गिरफ्तार हुए, 45 निलंबित, शिवसेना यूबीटी से कनेक्शन का जिक्र किया। गुजरात के मांजलपुर ने बीजेपी की इज्जत बचाई, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल। G20 के खिलाफ नागपुर में गडकरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग, सुरक्षा घेरा तोड़ने पर हिरासत में लिए गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैन जी से बातचीत करेंगे, 6 अगस्त को मुंबई में IIM UN के 15वें वार्षिक सम्मेलन में देशभर से पहुंचेंगे 2000 से ज्यादा छात्र। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक केस में सभी 15 आरोपियों के भिवंडी कोर्ट में पेशी हुई, 17 अगस्त तक सबकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने गलती मानी, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में हंगामे के बीच जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल बिना चर्चा के पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह 38 जज होंगे। जंतर मंतर हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि गंभीर अपराध वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को केस वापस लेने की छूट दी गई, यानी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राज्य केस को खत्म कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। 18 अगस्त को अब इसकी अगली सुनवाई होगी। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार में नहीं मिली जगह, तो कांग्रेस के 2 विधायक यशवंत रायगौड़ा, वी पाटिल और सागर विधानसभा सीट से विधायक बैलूर गोपाल कृष्ण ने इस्तीफे का ऐलान किया। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार से बाहर किए जाने पर कांग्रेस विधायकों के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, नाराज समर्थकों ने सीएम डी के शिवकुमार का पुतला फूंका और आगजनी की। कावेरी जल विवाद को लेकर के तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, कर्नाटक सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु का कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद उसे उसका उचित हिस्सा नहीं देने का दावा है। पंजाब कांग्रेस की तीसरे दिन की बैठक में भी विरोध जारी रहा। चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए भूपेश बघेल गो बैक के नारे लगाए। जयपुर में यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर रैली करनी सेना ने निकाली तो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाकर खदेड़ा। इंदौर में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। साल 2026 में अब तक डेंगू के 45 मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले वेटलिफ्टिंग टीम का सम्मान किया गया। स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख, रजत पदक विजेता को 20 लाख जबकि कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने 1 गोल्ड जीते, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 8 मेडल जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाले मीराबाई चानू से दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। सिंधिया ने मीराबाई के प्रदर्शन की तारीफ की। वाराणसी में एनडीआरएफ ने 24 घंटे गंगा की पेट्रोलिंग की। गंगा नदी में बढ़े हुए जलस्तर को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एहतियात बरते गए। मैसूर हाश अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्मदिवस के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। सुनील ग्रोवर ने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में अजब उत्साह दिखा। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बीच भी रोजाना हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में नोटों वाली कांवड़ दिखी। 10, 20, 50, 100 रुपए के अनगिनत नोट लगाए गए हैं। गुरेज के कोरकबल में बादल फटा, अचानक आई बाढ़, खानाबदोशों का झुंड इसमें फंस गया। दक्षिण कश्मीर से भारी बारिश से अचानक तबाही आई है, कई घर जलमग्न हो गए। लंगनई और अबूरा के पास फ्लैश फ्लड आया, सड़क बह गई, पहलगाम का सड़क संपर्क टूटा, दोनों ओर पर्यटक समेत यात्री फंसे रहे। श्रीनगर में बारिश से गर्मी से तो राहत मिली, लाल चौक में सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे लोग। बांदीपुरा में फ्लैश फ्लड से सड़क दरिया बन गई, कई गांवों का संपर्क इससे टूट गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से अब दूर रहने की सलाह दी गई है। पंचजुला रोड पर भारी बारिश से भूस्खलन हुआ। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी रूप से यातायात पर रोक लगा दी गई है। चमोली में कर्णप्रयाग नैनसन मार्ग पर अचानक पहाड़ दरक गया, खौफनाक मंजर सामने आया। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूधसान से जगह जगह दरारें ठप पड़ी, घंटों तक आवागमन ठप रहा। विदिशा में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे स्कूल बच्चों का वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन अब अलर्ट है। हरिद्वार कांवड़ मेले में दिखा नया रंग, पैदल कांवड़ के साथ अनोखी विशाल कांवड़ भी लोगों का ध्यान खींच रही है। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। डीजे की धुन पर कांवड़िये नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं। हाईवे पर बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का अनोखा रूप दिखा, शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियां लेकर कांवड़ यात्री निकल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ओवरसाइज डीजे पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है, तेज डीजे सेटअप को हरिद्वार से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता वेटलिफ्टिंग टीम का सम्मान किया गया। स्वर्ण विजेता को 30 लाख, रजत को 20 लाख और कांस्य को 10 लाख रुपए का पुरस्कार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। वेटलिफ्टिंग में 1 गोल्ड समेत कुल 8 पदक अपने नाम किए। गोल्ड मेडल विजेता मीराबाई चानू से मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शानदार प्रदर्शन की सराहना की। ग्लासगो में साक्षी चौधरी का स्वर्णिम पंच देखने को मिला। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बधाई भी दी। गुजरात के युवक के अंगों से कई लोगों को अब नई जिंदगी मिली। अंकलेश्वर में वंदे भारत ट्रेन रोककर अहमदाबाद भेजा गया, धड़कता दिल। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर है, पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं। मुंबई के साकिनागा में चलती बाइक में आग लग गई, ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा हादसा टाल दिया। असम के कछार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, 28 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। मुंबई हाईवे पर गड्ढे में गिरी बाइक, डीआरएफ जवान की जान गई, जिम्मेदार अधिकारियों ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। गुजरात के अंबाजी में सीएनजी पंप पर बेकाबू कार ने चारपाई पर बैठे शख्स को जोरदार टक्कर मारी, मौके पर ही मौत। आसनसोल में गो चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की, पुलिस ने हिरासत में लिया। सहारनपुर में गली से गुजर रहे दो युवकों पर आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला किया, एक घायल हुआ। अकोला में पॉस्को मामले में फरार पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया, 20 दिन बाद नांदेड़ से पकड़े गए आरोपी। रामपुर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, 1.5 करोड़ के स्मैक पाउडर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। फिल्म गोकुल 1757 का पोस्टर जारी हो गया है। एम एस शाह अब्दाली की सेना के खिलाफ गोकुल के युद्ध की एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है फिल्म। फिल्म अलियास रुक्मिणी का वीडियो जारी हुआ है, मुख्य भूमिका में नजर आएंगे नितिन। यश की फिल्म टॉक्सिक 8 को अगस्त रिलीज हो रही है, 26 अगस्त को ट्रेलर के बाद पूरी फिल्म रिलीज होगी। फिल्म जिम्मा 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, 1 जनवरी 2027 को फिल्म रिलीज होगी। सिंह वर्सेस कौर 2 फिल्म का टीजर जारी कर दिया गया है, 11 सितंबर को यह फिल्म भी रिलीज होगी। आपकी ईएमआई पर मंथन करने के लिए सोमवार से अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होगी। अनुमान ये है कि महंगाई की जगह विकास दर को फोकस रखने की वजह से फिलहाल रेपो रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच आईपीओ मार्केट की रफ्तार धीमा पड़ने का दावा किया गया है। निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए कई कंपनियों ने अपने आईपीओ के साइज और वैल्यूएशन को घटाना शुरू किया है। जुलाई में यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक साल में 22% की तेजी देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की उम्मीदों से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। ईरान के साथ बातचीत के संकेत मिलते ही ब्रेंट क्रूड 4% से ज्यादा लुढ़का। यूक्रेन युद्ध के बाद लगी पाबंदियों को दरकिनार करके रूस से भारत का तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। जुलाई में कुल इंपोर्ट 55% से ज्यादा हुआ। रूस के ब्लैक सी हॉलिडे रिजॉर्ट में यूक्रेन ने भीषण हमला किया। 3 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हुई, 40 से ज्यादा घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरानी नेतृत्व तो दोहरा रवैया अपना रहा है, पहले बातचीत करने के लिए कहते हैं और फिर पलट जाते हैं। ट्रंप के दावे के बीच ईरान ने अमेरिका से बातचीत से इनकार किया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा जब तक अमेरिका उल्लंघन बंद नहीं करता तब तक स्ट्रेट बंद रहेगा। 5 साल बाद पहली बार म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू सामने आई। इंटरनेशनल कमेटी रेडक्रॉस के प्रतिनिधि से मुलाकात की। सैन्य सरकार ने आंग सान सू की तस्वीरें भी जारी की। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने भूकंप प्रभावित कुमामोटो प्रांत का दौरा किया, भूकंप पीड़ितों से मुलाकात की। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इराक के कुर्दिश इलाके के राष्ट्रपति बारजानी से मुलाकात की। ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टी रिफॉर्म यूके का बड़ा ऐलान, कहा इंग्लिश चैनल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाएंगे। स्पेन के सेउटा में फंसे प्रवासियों का दर्द छलका, कहा हमें स्पेन में नौकरी चाहते हैं इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर घुसपैठ कर रहे हैं। रोमानिया में सूखे की वजह से संकट गहरा गया है, डेन्यूब नदी का रुख मोड़ने के लिए नौसेना ने लाइव विस्फोट कराया। अमेरिका में जंगलों की आग से बड़ी तबाही मची है, वाशिंगटन राज्य में घरों तक अब जंगल की आग पहुंचने लगी है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 10:03 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 9:54 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:54 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, परिवार में अशांति से बचाव करें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

लिखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, आंखों का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई छोटी यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खान पान में सावधानी रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: चुनावों के दिग्गज रणनीतिकार की पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके ने खुद की सियासी पारी से मानो अचानक बिहार का सियासी समीकरण बदल दिया है। कहने को तो बांकीपुर बिहार की सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव है, जिससे न राज्य की सम्राट चौधरी सरकार की सेहत पर फर्क पड़ेगा और केंद्र की बात तो दूर की कौड़ी है। लेकिन बांकीपुर में पीके के प्रदर्शन को सिर्फ एक हार जीत में नहीं देखा जा रहा। पीके खुद पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बिहार में पहला चुनाव है। बांकीपुर नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है, जिसे उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ी है। ये वो सीट है जिसे 1995 के बाद से बीजेपी कभी नहीं हारी थी। पीके अपने प्रदर्शन को बिहार में सकारात्मक राजनीति को मिला समर्थन कह रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: आप बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: बांकीपुर में पीके का प्रदर्शन न सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार पर भारी पड़ा है, बल्कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आरजेडी कैंडिडेट रेखा कुमारी मुकाबले में कहीं नहीं टिकी है। यानी अचानक पीके की मौजूदगी इस विश्लेषण को भी मजबूत करेगी कि क्या वो बिहार की राजनीति का मजबूत विकल्प है।
3: भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही एक सुनने को मिला, जो आप भी प्रश्न में पूछ रही थी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो वहां से जीत जाएगा। लेकिन भैया, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुत्ता बिल्ली पे विश्वास नहीं किया है, वो एक लोमड़ी दे दिया है।
4: लोमड़ी दे दिया है
3: प्रशांत किशोर के रूप में,
4: यानी कि जो जीते प्रशांत किशोर लोमड़ी है।
3: बस बिल्कुल, और उनको जिता दिया गया। तो जो नीरज सिन्हा जी थे वो असली उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी है।
0: हालांकि 2025 के बिहार चुनाव में पीके की पार्टी जनसुराज का खाता नहीं खोला था, जबकि पार्टी ने लंबी तैयारी के बाद बिहार चुनाव लड़ा था। वैसे अब नई शुरुआत हुई है और राज्य में पीके के दांव बड़े हो सकते हैं। काउंटिंग शुरू होने से पहले खुद पीके ने बांकीपुर के चुनाव को सम्राट सरकार के खिलाफ रेफरेंडम कहा था।
5: सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं।
0: बांकीपुर के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी को झटका लगा है। सिर्फ गुजरात के मंजलपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी दमदार प्रदर्शन के साथ जीत सकी है, इसीलिए इसे संकेत और संदेश के चुनाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
6: भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं।
7: असल बात यह है कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश जी को जो करारी हार का सामना करना पड़ा, उस हार के बाद से अखिलेश यादव जी पूरी तरह से हाइबरनेशन में चले गए हैं। वे इस तरह के गलत बयानों को देकर के, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके आम जन को भ्रमित करने का और भड़काने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम किया है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बस चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा की मांग। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 11वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान। बीजेपी का हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा, सीएम का इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग। फरीदाबाद के स्कूल कंपाउंड में महिला टीचर का दिन दहाड़े मर्डर। नकाबपोश ने क्लास से बुलाकर संध्या के शरीर पर किए चाकुओं से ताबड़तोड़ कई बार, हत्या के बाद मौके से फरार। और जम्मू कश्मीर में मानसूनी आफत का दौर जारी, पहलगाम, बांदीपुरा, गुरेज समेत कई इलाकों में फ्लैश फ्लड। लद्दाख के करगिल और उत्तराखंड के चमोली में भी तबाही।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम, सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। बांकीपुर के उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की, बीजेपी अपना गढ़ नहीं बचा सकी। वहीं आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। सवाल, विधानसभा में प्रशांत किशोर की एंट्री से किसकी टेंशन बढ़ेगी? इसके साथ ही बात करेंगे संसद में जारी सियासी संग्राम की, जहां छात्रों पर एक्शन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष अड़ा हुआ है और इसे लेकर दोनों सदनों में फिर हंगामे के आसार हैं। वहीं विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी अब जोर शोर से उठाने की रणनीति बना रहा है। बात झारखंड की करेंगे, जहां पर परीक्षा धांधली पर जारी है छात्रों का आंदोलन, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा से आई एक सनसनीखेज वारदात की खबर के साथ, जहां पर फरीदाबाद में एक स्कूल टीचर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना फरीदाबाद के सिकरौना इलाके की है, जहां आरोपी ने 27 बार चाकू मारकर टीचर की हत्या की। पुलिस ने बताया कि अमित नाम का आरोपी महिला टीचर से वो कई दिनों से परेशान कर रहा था। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में नकाबपोश अमित दिखाई दे रहा है, स्कूल परिसर में वो पीड़िता का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही टीचर बाहर आती है, आरोपी उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने लगता है। वीडियो में महिला की चीख पुकार सुनाई दे रही है। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर एक शख्स मदद के लिए आता है, लेकिन आरोपी उसे भी चाकू दिखाकर पीछे करता है और महिला पर वार करने लगता है। आरोपी पीड़िता पर तब तक वार करता है जब तक वो मर नहीं जाती। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, बेहद सनसनीखेज वारदात। दिन दहाड़े एक स्कूल परिसर में इस तरह से एक शख्स का दाखिल होना, महिला टीचर पर वार करना, तमाम तरीके के सवाल भी खड़ा करता है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कब तक पकड़ा जाएगा? क्योंकि फुटेज तो साफ बता रहा है कि मारने की ही मंशा से अमित वहां दाखिल हुआ था इस टीचर को।
2: जी, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अभी अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगातार अमित को पुलिस ट्रैक कर रही थी, उसके पीछे कई टीमें लगाई गई थी और अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल अमित जब पहुंचा था तो उसने देखिए दो चीजों का फायदा उठाया। एक तो संध्या के पति लंच लेके जाते थे दोपहर में, दूसरा ठीक स्कूल के सामने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सड़क वड़क बन रही है तो इसलिए धूल रहती है, तो धूल की वजह से वहां पर चेहरा ढक लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल उस इलाके में कुछ लोग अपने को धूल से बचाने के लिए चेहरा ढक लेते हैं। तो जब पहुंचा वहां पर अमित, तो उसने पहुंच करके जो बाहर जो शख्स मौजूद था उसने विकी का मैसेज भिजवाया, यानी विकी संध्या का जो हस्बैंड है उसके नाम से मैसेज भिजवाया और संध्या आई। लेकिन आप देखिए सीसीटीवी में क्लियर है कि वो दरवाजे के पहले रुक गई, उसे शायद शक हुआ और उसने हाथ से बकायदा पकड़ के संध्या को बाहर की तरफ खींचा और उसके बाद उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। कोई बातचीत नहीं किसी तरीके की, कोई उसके पहले कोई आर्गुमेंट नहीं, सीधे उसने चाकू निकाला और अटैक कर दिया। यानी बिल्कुल साफ था हत्या के इरादे से, पूरी प्लानिंग से और एक सिस्टम कि उसका पति जाता है तो उसके नाम से जाऊंगा, चेहरा छिपा कर जाऊंगा तभी मिलेगी, क्योंकि अमित के खिलाफ तो उसने पहले ही छेड़खानी का केस दर्ज करा रखा था, तो माफी भी मांगी थी इसने। ऐसे में वो जब जाता तो कोई मिलने उससे मिलने संध्या तो आती नहीं, तो इसलिए उसने बकायदा चेहरे को छिपाया, एक प्लान बनाया, टाइम फिक्स किया, उस टाइम पे पहुंचा और जैसे ही संध्या मिली उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया। वहां से जब वो भागा तो पुलिस को काफी वक्त नहीं लगा उसको पहचानने में, क्योंकि आसपास के उन सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने ट्रैक किया जिसमें उसका चेहरा क्लियर दिख रहा था। और उसके बाद टीम बनाई गई, उसको ट्रैक किया गया और देर रात पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उससे लगातार पूछताछ जारी है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है और तेज बारिश के बीच नदी नाले उफान पर हैं, जिंदगी मुसीबत में घिरी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं इस वक्त जो जम्मू कश्मीर से तस्वीरें आ रही हैं, बेहद परेशान करने वाली। गांदरबल हो, सोनमर्ग, रजौरी, श्रीनगर, कारगिल, जम्मू श्रीनगर हाईवे, सब जगह इस वक्त बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि इस समय तक मानसून उस तरीके से रफ्तार नहीं पकड़ता है जैसा कि अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन जोरदार बारिश का अलर्ट और ज्यादा ये संकट बढ़ सकता है ऐसा माना जा रहा है। तो नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और देखिए किस तरीके से हर जगह इस वक्त सैलाब जैसा मंजर। रजौरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड आने के बाद ढेर सारा मलबा मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। ये गुरेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुरेज में भी इसी तरह से जैसा रजौरी में देखा गया था वैसी हूबहू तस्वीर सामने आ रही है। बांदीपुरा की तस्वीर देखिए, यहां पर भी जगह जगह नदी नाले बह रहे हैं और उसमें वाहनों को गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में जबरदस्त मुसीबत इस वक्त जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में दिखाई दे रही है। और अब बात मानसून संकट की करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दिनों कुदरत के बेहिसाब संकट का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड और उससे तबाही हुई। लद्दाख के करगिल में डरावना मंजर दिखाई दे रहा है।
3: जब पहाड़ों पर बादल फटते हैं तो कैसी तबाही मचती है उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। ये लद्दाख के करगिल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं। वहां एक गांव में अचानक बाढ़ आ गई, बादल फटने के बाद सैलाब रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचा। ये करगिल का हरदास इलाका है, यहां आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई। हालात ऐसे हो गए कि सेना, पुलिस और प्रशासन ने बचाव और राहत अभियान चलाया। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी अचानक बाढ़ आ गई। यह हादसा गावरा इलाके में हुआ, वहां फ्लैश फ्लड की वजह से सड़क का हाल उफनती नदी जैसा हो गया। पानी का स्तर लगातार बढ़ने के कारण लोगों को पानी से भरी सड़कों से गुजरने में मुश्किल हो रही है और बाढ़ से हुए नुकसान की वजह से कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें तबाह हो गई हैं। गुरेज में भी हालात गंभीर हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से आबादी वाले इलाके वीरान पड़ गए हैं। कुदरत का कहर टूटा तो कई बेजुबान बह गए। कश्मीर के कई हिस्सों में ऐसा संकट है। लोलाब इलाके में तबाही के मंजर नजर आए, वहां रिहायशी इलाके में फ्लैश फ्लड से तबाही हुई है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पहलगाम में आए संकट ने तो तांडव का रूप दिखाया, लंगलाई और अरुवा इलाके में फ्लैश फ्लड का पानी सड़कों पर भर गया। तेज धार लहरें सब कुछ बहाने को बेताब थी। हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहां स्थिति ऐसी हो गई है कि इसके दोनों सिरों पर कई पर्यटक फंसे रहे। इलाके में रेस्क्यू के लिए SDRF को तैनात करना पड़ा। दक्षिण कश्मीर के त्राल में भी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी अचानक घुसने से अफरा तफरी मच गई, कई घर पानी में डूब गए, सड़कें तबाह हो गई, सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। तबाही की तस्वीरें राजौरी में भी दिखी है, वहां ऊपरी इलाके में भारी बारिश की वजह से जलस्तर खतरनाक हो गया है। इसका असर रिहायशी इलाकों में दिखा, वहां से गुजरने वाले नालों में पानी का बहाव काफी तेज दिखा। आज तक ब्यूरो
0: अशरफ वानी में सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, सबसे ज्यादा इस वक्त कहां पर आफत आई है, कहां ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है?
4: नेहा, दरअसल ये कुछ अटपटंग का मौसम है। अभी आप देख रहे हैं धूप निकली है, अभी कुछ मिनटों के बाद मौसम एकदम बदल जाएगा और तेज बारिशें होंगी। ऐसा ही हाल पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है। धूप निकलती है, उसी बीच कहीं पर बादल फटता है और फ्लैश फ्लड जो है वो तुरंत नदी नालों में आते हैं। कश्मीर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जहां पर भी कहीं क्लाउड बस्ट होता है तो पानी मिनटों में बस्तियों में पहुंच जाता है। वही स्थिति हमने पिछले 24 घंटों के दौरान देखी, एक दर्जन से भी ज्यादा जो है बादल फटे हैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों में और कई सारे सड़कें जो है वो इन फ्लैश फ्लड्स में ढह गई, खेत ढह गए, यहाँ तक कि दो लोगों की मौत भी हो गई है फ्लैश फ्लड्स के कारण जो है गुरेज के इलाके में। तो जाहिर है कि अभी भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है इस मौसम की मार से। जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में जितने भी मुख्य राजमार्ग हैं वो स्थायी तौर पर बंद होते हैं, फिर उनको खोला जाता है, फिर फ्लश आ जाता है और फिर रोड जो है ढह जाते हैं, चाहे वो जम्मू श्रीनगर की बात हो, मुगल रोड की बात हो, श्रीनगर करगिल हाईवे की बात हो, या फिर छोटे छोटे रास्ते जो कश्मीर और जम्मू के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में हैं। तो जाहिर है कि मौसम विभाग ने कहा है कि ये सिलसिला जो है एक हफ्ता और जारी रहेगा, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती है कहां पर ये फटेगा, कहां फ्लश फ्लड आएगा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही इसका जो इलाज है कि लोग सतर्क रहे, नदी नालों के पास रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वो नदी नालों से दूर रहें, यहां तक कि जो कश्मीर का सबसे बड़ा झील वुलर है उसमें भी पानी का स्तर अब इन फ्लैश फ्लड्स के कारण पड़ गया है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर उत्तराखंड के चमोली में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। यहाँ पर कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया और इस घटना का वीडियो जब सामने आया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि

0: फैक्ट्री।
1: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, यहाँ तो केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से मदरसों को बंद करने की हिमाकत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो तो आतंकवाद का अड्डा है, जबकि सरकार कुछ ही हिस्सों को बंद करने की सोच रही है, एक डिग्री कोर्स या फिर कुछ और।
2: अब बिल्कुल देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब केशव प्रसाद मौर्य ने भले ही वो बयान बांग्लादेश के सापेक्ष में दिया हो, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि बांग्लादेश जिस तरीके से, चाहे वो मदरसा बांग्लादेश में हो या किसी भी देश में, भारत में हो, वहां पर आतंकवाद को पैदा करने की फैक्ट्री है। तो ये साफ तरीके से संदेश दे दिया है कि मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है वो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में ऐसे लोग निकल रहे हैं जो आतंकवाद की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इशारा वो है कि मदरसों में बंद करने की पूरी हिमायत पर उत्तर प्रदेश की सरकार है, और यही वजह है कि आज कैबिनेट में एक फैसला भी आना है। हालांकि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर है, लेकिन उसमें जरूर है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी तरीके से बंद की जानी है और इंटर तक की पढ़ाई होगी। मदरसों को लेकर सरकार लगातार इस तरीके की बातें कहती रही है, और इस बयान के बहुत मायने हो जाते हैं, जहां डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से हिमायत करते नजर आ रहे हैं कि ये जो मदरसे हैं उसमें आतंकवाद की फैक्ट्री है। तो इसमें साफ हो गया है कि आखिर ये मदरसों की जो अपोजिशन बढ़ावा देता आया, चाहे वो 2017 से पहले का हो या अब तक हो, हमेशा से कहीं ना कहीं मदरसों के बीच में एक सरकार और अपोजिशन के बीच खिंचाव भी होता रहा है, और अब ये बयान इस समय आया है जब आज कैबिनेट का फैसला भी होना है और पूरी तरीके से मदरसों को लेकर लोगों की नजरें बनी हुई है। कहीं ना कहीं साफ तौर से जरूर जताता है कि मदरसों में जिस तरीके से ये भर्ती घोटाले आए सामने, मदरसों में जिस तरीके से अटेंडेंस घोटाले आए, मदरसों में जिस तरीके से स्टडी होती है उसको लेकर ये बड़ा बयान माना जा रहा है कि वहां पर जो भी लोग हैं, जो भी आ रहे हैं, वो सब एक तरीके से आतंकवाद की पैदा करने की फैक्ट्री है। ये मैसेज साफ है, और इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने, डिप्टी सीएम जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ किया है, और ये बड़ा बयान है जिसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा भी हो रही है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वही यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त जंग होने के आसार है, क्योंकि एक दिन पहले यूपी का मानसून सत्र शुरू हुआ है और चढ़ावा चोरी मुद्दे पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। आज भी समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा सकते हैं, जिसे लेकर सियासी संग्राम और तेज हो सकता है।
3: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, ऐसा मुद्दा जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, नई एसआईटी तेजी से जांच में जुटी है, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा सियासी जंग छिड़ी है, जिसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। यूपी का विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जबरदस्त हंगामा बरपा, समाजवादी पार्टी के नेता तख्तियों पर तेवर लिखकर लाए थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी इनका अहम मुद्दा था। समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र लेकर पहुंचे थे।
4: बीजेपी बेनकाब हो गई है। बीजेपी एक ही बात कहती थी कि आस्था पर फैसला अदालतें नहीं करती। आज आस्था पर सबसे बड़ी अगर लूट और आस्था के साथ कोई खिलवाड़ किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी।
5: समाजवादी पार्टी आज तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दर्शन करने नहीं गए, न अपने विधायकों को ले गए, तो वो जब उसके अस्तित्व को ही नहीं मानते। उनके नेताजी मुलायम सिंह जी संसद में कहते थे कि वहाँ बाबरी मस्जिद है।
3: समाजवादी पार्टी ने सदन के बाहर नीट पेपर लीक को लेकर भी जोरदार प्रदर्शन किया।
6: बीजेपी सरकार ने क्या कहा था, प्रोटेस्ट में कहा था कि इस छात्र छात्राओं पे एफआईआर नहीं होगी, उन पे एफआईआर वापस ली जाएगी, लेकिन ये मोदी जी की पुलिस, ये योगी जी की पुलिस उन्हीं छात्र छात्राओं को परेशान करने का काम कर रही है।
7: वहां से समाजवादी पार्टी ने स्कूलों को छोड़ा था, न बच्चों के पैर में जूते चप्पल होते थे, न किताबें मिलती थी, न बैग मिलते थे। आज सब कुछ मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय मेरी विधानसभा देवरिया में आया है, 30 करोड़ का विद्यालय जिसमें गरीब बच्चों के लिए सुविधाएं हैं। तो किन मुद्दों पर बात करेंगे, मुद्दे नहीं है, इसीलिए भगवा का अपमान करते हैं।
3: इस सत्र में जिन मुद्दों पर सदन में गर्मा गर्मी होनी तय है, पहले उन पर गौर करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट का पेपर लीक, सरकारी स्कूल मर्जर, E20 पेट्रोल और महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण, बिजली और खाद संकट, ये तो तय मुद्दे हैं, लेकिन लड़ाई इन्हीं दायरे में सीमित नहीं रहने वाली। सीएम योगी ने मानसून सत्र में मोर्चाबंदी की खास तैयारी कर रखी है। सीएम ने सदन में कम शब्दों में सटीक जवाब देने के निर्देश दिए। जिनसी और जिन अल्फा से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा। बैठक में सीएम ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के युवा जो नए वोटर बने हैं,

0: वो 2017 से पहले की एसपी सरकार की करतूतों को नहीं जानते हैं, इसलिए जेंजी युवाओं से नियमित संवाद जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक योगी ने चढ़ावा चोरी पर भी विपक्ष को आक्रामकता से जवाब देने को कहा। तो सदन के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर दोनों ओर से तैयारियां जारी हैं। साफ है कि आने वाले वक्त में 27 के समर की तैयारी देखने को मिलेगी। आज विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी इस पर जबरदस्त हंगामा दिखेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, आज भी चढ़ावा चोरी अहम मुद्दा बनकर सामने आएगा, ठीक से विधानसभा चल पाएगी या फिर एक बार फिर से भंग होने के आसार है?
2: नया देखिए, बाहर बादलों ने तेवर बदले हैं और ठीक वैसा ही मौसम आज सदन में भी बदलने वाला है। और ये सियासी मौसम है, कल से जिसकी शुरुआत हो गई थी। कल समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा उठाया और आज फिर यहां पर शुरुआती दौर में ही एक प्रदर्शन की जो खबर सुनने में आ रही है कि कई विधायक पहुंचेंगे प्लैकर्ड्स लेकर, तख्तियां लेकर, जो यहां प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आज सबसे अहम अनुपूरक बजट है जो 12:20 पर पेश किया जाएगा और इस बजट को लेकर भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सरकार को काउंटर करती नजर आ सकती है। एक प्रदर्शन तो आपको विधानसभा के भीतर दिखाई पड़ेगा और एक प्रदर्शन वेल में भी हो सकता है, क्योंकि कल विधान परिषद में वेल में पहुंच गए थे समाजवादी पार्टी के विधायक, जिसकी वजह से 15-15 के लिए दो बार विधान परिषद स्थगित करनी पड़ गई थी। तो आज तो कुल मिलाकर कल कॉन्डोलेंस विधानसभा में हो गई थी, आज कॉन्डोलेंस नहीं है, आज पूरा विधानसभा चलना है। तो ऐसे में जो सियासी सरगर्मी है वो यहां देखने को मिल सकती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की पूरी तैयारी है कि एक एक सवाल का विपक्ष के काउंटर किया जाए, जवाब दिया जाए और अनुपूरक बजट के जरिए जो यूपी का चुनाव है उसे साधने की भी तैयारी कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के अलावा आपका। चढ़ावा चोरी मामले की जांच आज अहम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंचने जा रही है और मामले की जांच कर रही एसआईटी सीएसबीआई की नया घाट शाखा में सुरक्षित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल संपत्तियों का वेरिफिकेशन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बैंक लॉकर में रखी सोने चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दो दिन से ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट से जुड़े जगदीश ओफले समेत अकाउंट संबंधित लोगों के साथ बैंकिंग और लॉकर में रखे सामान का रिकॉर्ड तैयार किया है, साथ ही सभी सामान की वीडियोग्राफी कराई है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की सुरक्षित संपत्ति जांच के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में तत्काल सत्यापन किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक लॉकर में सुरक्षित सभी बहुमूल्य वस्तुएं ट्रस्ट के अभिलेखों के अनुरूप मौजूद हैं या फिर नहीं। और अब बात संसद के मानसून सत्र की, जहां हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए और सबसे ज्यादा बड़ा वाल चढ़ावा चोरी और छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस एक्शन को लेकर है, जिसे लेकर आज भी संसद में जबरदस्त उबाल देखा जा सकता है।
3: चढ़ावा चोरी का मुद्दा, विपक्ष का हमला, संसद में जारी संग्राम अब नए स्तर को छू सकता है, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने चढ़ावा चोरी पर सरकार की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है।
4: अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है।
5: और जब जब डिवोशन पे समर्पण में लोगों के अगर आघात पहुंचेगा तो ये मुद्दा तो उठेगा, क्योंकि सवाल चंदे का है, सवाल दान का है, जो लोगों ने अपने संकल्प लिए थे, आफ्टर ऑल सवाल तो उस बात का है। और कहीं ना कहीं हर वो लोग जो दान लेकर आए हैं कहीं ना कहीं इस बात से आहत हुए हैं कि आखिरकार ये चंदे का पैसा जा कहां रहा था, आखिरकार इसका कौन जिम्मेदार है।
3: यूं तो चढ़ावा चोरी का मुद्दा पहले से ही विपक्ष के टॉप एजेंडे में था। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एसपी की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से उठा ही नहीं सका। फिर पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन और उन पर हमले को लेकर नया ही बवाल छिड़ गया।
6: सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो।
7: जिस प्रकार उन्होंने 31 जुलाई को कार्य किया, बकायदा पूरा चोला पहन करके और विभिन्न चीजें लिख करके, एक तो सदन के भीतर भी रहे और ये सदन का पूरा कैंपस जो है वह लोकसभा स्पीकर इसके कस्टोडियन होते हैं, इसलिए जो मकर द्वार के सामने भी उन्होंने किया है उसके लिए 100% वह दोषी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 222-223 रूल के खिलाफ उन्होंने जो किया है उसको हर हालत में कार्रवाई होनी चाहिए।
3: सिर्फ चढ़ावा चोरी का मुद्दा नहीं, छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर भी संसद में भारी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री से जवाब मांगे जा रहे हैं। एक दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी ये दोनों मुद्दे उठे। सूत्रों के मुताबिक बीएसी की मीटिंग में कांग्रेस ने छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। सोमवार को इन मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। विपक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं, छात्र प्रदर्शनकारियों को देश विरोधी बताने वाले बयान पर खड़गे ने सरकार को घेरा है।
8: इनोसेंट बच्चे जो आए थे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए और पेपर लीक के लिए आए थे, उनको आप देशद्रोही मान रहे हैं। देशद्रोही तो आप लोग हैं क्योंकि इस डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं।
3: सोमवार को राज्यसभा में विपक्षी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद में अहम बिलों पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेती।
9: इतना इम्पोर्टेंट बिल्स आया है वो हिस्सा नहीं ले रहे, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है। हम तो चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्स पे सब सांसद बोलना चाहिए। मैंने खड़गे जी को भी बोला कि आपने कांग्रेस एमपीओ को थोड़ा समझाई है, कम से कम बिल में हिस्सा तो ले। लेकिन खड़गे जी भी अपना कांग्रेस एमपीओ को समझा नहीं पाया, उनका व्यवहार बहुत खराब था।
3: अब सदन की कार्यवाही को कैसे ढंग से चलाया जाए इस पर बीएसी की मीटिंग में बात हुई है, लेकिन अभी भी संसद का शोर थमता नहीं दिख रहा। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात E20 पेट्रोल पर छिड़ी सियासत की करेंगे। इस मुद्दे पर दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल पीएम आवास तक मार्च करने की तैयारी में। एक दिन पहले ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि वो खुद पीएम मोदी को याचिकाएं सौंपेंगे। आरोप उन्होंने ये लगाया कि भारत अमेरिका से इथेनॉल खरीदने के मामले में ट्रंप के आगे झुक गया है। केजरीवाल के आज के मार्च के ऐलान के बीच दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने या फिर उनकी पार्टी आपने अब तक मार्च के लिए परमिशन नहीं ली है। आपको बता दें नई दिल्ली इलाके में संसद सत्र को लेकर पहले से धारा 163 लगी हुई है। और अब आज झारखंड की, जहां पर छात्रों का आंदोलन जारी है। रांची में जेपीएससी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। छात्र लगातार धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उधर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

0: मोबाइल के टॉर्च जलाकर रांची के छात्र राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल भी जारी। बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ कुछ वैसा ही अब रांची में हो रहा है। वहां परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र आवाज बुलंद कर रहे हैं।
1: सभी छात्रों का जो मांग पत्र है उसको हमने तीन भागों में बांटा है। पहला रद्द, दूसरे जांच और तीसरा रिफॉर्म। रद्द में है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं तथा अभय तिवारी से संबंधित सभी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो।
2: हम लोगों की सलाह है कि पूर्व मुख्य सचिव श्री आर एस शर्मा के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया जाए, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से अन्य रिफॉर्म इन आयोगों में किया जा सकता है। और अगर हमारी ये उपयुक्त मांगे नहीं पूरी की जाती तो कार्मिक के विभागीय प्रधान होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नैतिकता में रूप में इस्तीफा दें।
0: छात्रों के साथ न्याय की मांग को लेकर छात्र नेता ने रविवार से अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू कर दिया है।
3: अन्न का त्याग कर दिए हैं, आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है, क्योंकि ये आंदोलन जो शुरुआत हुआ वो आज से ठीक एक महीना पहले दो जुलाई को जब पीटी परीक्षा जेपीएससी का रिजल्ट आया तब से, और जांच पे इतना खुलासा के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। पीटी परीक्षा तक कोई भी रद्द नहीं किया है।
0: आज 11वां दिन है जब छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इस प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी समर्थन कर चुकी है। छात्र नेताओं की माने तो सोनम वांगचू से उनकी बात भी चल रही है।
4: सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, आंदोलन का 11वां दिन है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके छात्र नेता भी अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या सीजेपी का खुलकर इन्हें समर्थन हासिल हो रहा है? ठीक है, सत्यजीत से संपर्क करेंगे। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा दें, छात्र आंदोलन का 11वां दिन है, लगातार रांची में प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में ये छात्र जुट रहे हैं। उनके नेता भी इस वक्त आंदोलन पर बैठे हुए हैं और ये इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इन परीक्षाओं को रद्द कराया जाए क्योंकि इसमें धांधली हो रही है। और अब बात मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे की करेंगे। इसमें एक बार फिर एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक होने जा रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू सहित तमाम बड़े नेता बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। छात्रों पर पुलिस एक्शन और चढ़ावा चोरी जैसे मामलों को लेकर संसद में गतिरोध अब भी बना हुआ है। बैठक में ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। ये तस्वीरें अभी की हैं जब अमित शाह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। पिछले हफ्ते भी इसी तरह का मंगल मिलन आयोजित किया गया था जिसमें तमाम दिग्गज नेता शिरकत कर रहे थे। आज एक बार फिर से मंगल मिलन रखा गया है। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हाजीपुर जीतने के बाद विशाल किशोर के निशाने पर सरकार, कहा सम्राट को हटाएं, किसी काबिल को सीएम बनाएं। दतिया में कांग्रेस की विजय, बीजेपी बोली हार का करेंगे आत्ममंथन। संसद में नहीं थम रहा बवाल, आज दोनों सदनों में हंगामे के आसार, छात्रों पर एक्शन लेकर गृहमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष, चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 11वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान, बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सीएम के इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग। फरीदाबाद के स्कूल कंपाउंड में महिला टीचर का दिन दहाड़े मर्डर, नकाबपोश ने क्लास से बुलाकर संध्या के शरीर पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार। जम्मू कश्मीर मानसूनी आफत का दौर जारी, पहलगाम, बांदीपुरा, गुरेज समेत कई इलाकों में फ्लैश फ्लड, लद्दाख के करगिल और उत्तराखंड के चमोली में भी तबाही। और रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का, लेकिन इस बीच तस्वीरें आ रही हैं मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच आज एक बार फिर से एनडीए ने सांसदों के मंगल मिलन का बैठक का आयोजन किया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू सहित तमाम बड़े नेता बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। छात्रों पर पुलिस एक्शन और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ है। लगातार अमित शाह के बयान की मांग की जा रही है। बैठक में ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तस्वीरें उस वक्त की जब गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे।

0: तो राजनाथ सिंह भी अब से कुछ ही देर पहले इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और अब रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। गुरेज के कोरखबल में बादल फटा, अचानक आई बाढ़ से खाना बदोशों का झुंड फंसा। दक्षिण कश्मीर भारी बारिश से अचानक बाढ़, कई घर जलमग्न। लंगनई और अवूरा के पास फ्लैश फ्लड से सड़क बही, पहलगाम का सड़क संपर्क टूटा, दोनों ओर पर्यटक समेत यात्री फंसे। श्रीनगर में बारिश से गर्मी से मिली राहत, लाल चौक के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे लोग। बांदीपुरा में फ्लैश फ्लड से सड़क बनी दरिया, कई गांव का संपर्क टूटा। जम्मू कश्मीर के रजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड, संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह। जोजिला रोड पर भारी बारिश से भूस्खलन, श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी रूप से यातायात पर रोक। चमोली के कर्णप्रयाग नैनी सैण मार्ग पर अचानक दरकापाड़, खौफनाक मंजर आया सामने। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूधसान से जगह जगह दरारें, घंटों ठप रहा आवागमन। विदिशा में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते स्कूल जाते बच्चे, दिखाई दिए वीडियो वायरल। लोकसभा में आज मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन, विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की शुरुआत संभव। संसद विपक्ष का सरकार पर फिर हमला, नीट और छात्र प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के साथ गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। गृहमंत्री के साथ पीएम की गैर मौजूदगी पर विपक्ष का विरोध, सदन में आओ के नारों से गूंजा संसद परिसर। आज एनडीए की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक, पिछले मंगल बैठक में शामिल हुए थे पीएम मोदी। खड़गे ने गिनाई विपक्ष की मांगे, बोले पीएम मोदी और गृहमंत्री पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में दे जवाब। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, आज फिर जारी रहेगा चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा। यूपी सरकार 2026-27 के लिए अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में पेश करेंगे। युवाओं और महिलाओं को लेकर यूपी सरकार की बड़ी पहल, अधूरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान संभव। यूपी में एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक टाउनशिप समेत कई बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट में फंड का प्रावधान संभव। नितिन नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला, बोले अहंकार रखने वालों को भगवान ने नचा दिया, वोट चोरी से लेकर नौकरी आरक्षण चोरी का बताया परिणाम। 3 उपचुनाव में बीजेपी को झटका, बांकीपुर और दतिया में हार, गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी के सिर सजा, जीत का चेहरा। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कहा चुनाव नतीजों पर करेंगे आत्ममंथन। बिहार बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में बड़ा उलटफेर, प्रशांत किशोर ने मारी बाजी, करीब 19,000 वोटों से जीते जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का 30 साल पुराना गढ़ 30 दिन में ढह गया। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में कई दलों की जमानत जब्त, बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार भी नहीं बचा पाए जमानत। और बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, संबित पात्रा बोल रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलेंगे।
1: कुछ इंडिया अलायंस के दलों के व्यवहार को देखा है, मुझे तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स पे आश्चर्य होता है। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। और इस पर अभी तक राहुल गांधी जी की चुप्पी है, और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आज भी वो पार्लियामेंट शायद चलने नहीं देंगे, मगर यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया, अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई, मगर जब उसी विषय पे जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी राहुल जी पूरी तरह से चुप है। आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही है। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। आपको आश्चर्य होगा, मैं कुछ बिल्स का नाम लूंगा जो बिल पास हो गए लोकसभा में पास हो गए मगर उन पे एक मिनट की भी चर्चा नहीं हुई। पास होना अनिवार्य था क्योंकि जनता का कार्य है, चर्चा नहीं हुई, जनता अनभिज्ञ है कि इन बिलों में क्या है, इस कानून में क्या प्रावधान है, जनता को कैसे लाभान्वित किया जाएगा। कल ही मैं सदन में मौजूद था, वोटिंग होके पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को लेकर जो केस पेंडेंसी इत्यादि है उसे कैसे समाप्त की जाए, ये इतना बड़ा रिफॉर्म देश लेके आ रही है, उससे कोई सरोकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को और अपोजिशन को। और हम सब भूल जाइए कि मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मगर हिंदुस्तानी तो हूं, हम सबको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार इतने बड़े मसले पर हिंदुस्तान में वार्ता जानी चाहिए कि नहीं, लोगों को यह विषय पता होना चाहिए कि नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026, कितने दिनों के अंदर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, जन्म और मृत्यु ये निरंतर प्रोसेस है जो देश में और विश्व में चलता रहता है, उसको लेकर नागरिक अपने अधिकारों को किस प्रकार वो प्रयोग करें, क्या नया कानून आया, एक मिनट की भी चर्चा नहीं होने दी कांग्रेस पार्टी और उनके अनुयायी दलों ने। क्या संदेश जा रहा है देश में, क्या यह विषय गंभीर है या नहीं है। कल निर्मला जी मौजूद थी, मेरे सामने ही चर्चा चल रही थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026। ये कितना बड़ा रिफॉर्म है, सभी का सरोकार बैंकिंग से है, मगर बैंकिंग से सरोकार रखने वाले भारत की जनता को द बैंकर बुक्स रिफॉर्म बिल के बारे में कोई चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां हुड़दंग मचा हुआ है। और हुड़दंग भी कैसा, अगर हुड़दंग के पीछे सबके तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऑपोजिशन में नहीं थे, हम ऑपोजिशन में थे, हमने भी ऑपोजिशन के नाते जो अपना दायित्व था उसका निर्वहन किया, मगर ऑपोजिशन के नाते पूरे देश के साधु संतों का अपमान करना, साधु के वेश में आना, साधु को चोर दिखाना, श्रावण के महीने में जब हजारों लाखों लोग कांवड़ यात्रा में निकले हुए हैं, वैसे में आप साधुओं को चोर के रूप में दिखाना, साधुओं को घसीट घसीट के लेते हुए आप जा रहे हैं, वह भी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के प्रांगण में। एक साधु को घसीटना, साधु को मारने की कोशिश करना, ये गांव गांव तक क्या खबर पहुंचाती है? कहीं ना कहीं ये अंतर मन के अंदर गांव में ये खबर पहुंचाती है कि सारे साधु चोर हैं। जो ऐसे कपड़े पहनते हैं वो चोर हैं, जो चंदन और टीका लगाते हैं, जो त्रिपुंड लगाते हैं वो चोर हैं, चोरों को पकड़ो और उन्हें पीटो। क्या किसी भी धर्म में, यह तो सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास का देश है, क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं, विश्व जल उठता अगर इस प्रकार से वेश बदल करके किसी और धर्म के धर्म गुरु को घसीटते हुए पीटते हुए चोरों के रूप में दिखाया जाता। मगर आपने हिंदू धर्म का जो अपमान किया पार्लियामेंट के प्रांगण में, यह अक्षम्य है। समय बताएगा, रण अभी शेष है, समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा। मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के अहंकार के बोल हो, चाहे झारखंड के छात्रों की अनसुनी आवाज हो और उसको सिलेक्टिव रूप से ऑपोजिशन उठा रही हो, चाहे बिल्स पे कोई डिस्कशन नहीं होना, पार्लियामेंट में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पार्लियामेंट को बंद रखना, या साधु संतों का अपमान हो, ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान की वो दास्तां है जो सारे जनरेशन्स के लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं। और मैं आज बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं, इसे गंभीरता से सोचिएगा और गंभीरता से इस पर विचार करिएगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।

0: संबित पात्रा को सुन रहे थे आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद को नहीं चलने देना चाहता है, कोई भी बिल पेश होने नहीं दिया जा रहा है। लगातार ये मांगे जो संसद परिसर में प्रदर्शन द्वारा की जा रही हैं, ये उचित नहीं है। साधुओं को चोर के रूप में दिखाया जा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। साधुओं को घसीटते दिखाया गया। संबित पात्रा का जाहिर तौर पर सांसद पप्पू यादव पर इशारा था, जिन्होंने संसद परिसर में साधु के वेश में प्रदर्शन किया था। विपक्ष ने हिंदू धर्म का अपमान किया है और समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। छात्र आंदोलन जो कि झारखंड के रांची में चल रहा है, उसको लेकर भी हमला लगातार संबित पात्रा ने किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दोहरे मापदंड हैं, दिल्ली में कोई और मापदंड है और रांची में कोई और। ऐसे में ये छात्र आंदोलन जिस पर विपक्ष अब तक चुप है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जाहिर तौर पर करारी चोट यहां पर विपक्ष पर संसद चलने नहीं देने को लेकर और जो कुछ झारखंड में चल रहा है उसे लेकर भी।
1: देखिए, जाहिर तौर पर बिल्कुल सरकार भी चाहती है कि जिस तरीके से विपक्ष ने जो है छात्रों के आंदोलन पर राजनीति की और अब भारतीय जनता पार्टी को भी जब मौका मिला है तो भारतीय जनता पार्टी भी जाहिर तौर पर राजनीति करना चाहती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो झारखंड में जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चल रहा है पेपर लीक मामले को लेकर, उसी को एक बड़ा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी भी बनाती हुई दिख रही है और विपक्ष की जो वहां इंडिया गठबंधन की सरकार है उस पर लगातार जो है हमले वो किए जा रहे हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुकेंगे फिर से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
7: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
6: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट।
4: नोबडी एक्सपेक्टेड दैट ही वुड टेस्ट विद इन 3 मंथ्स ऑफ टेकिंग ओवर एज प्राइम मिनिस्टर।
5: टू मॉक टेस्ट वर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली ऑन 13th मई 1998।
4: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशरी, मॉडर्न ज्यूडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ओह सॉरी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया था। आज जो निचली अदालत है उन्होंने उनको इस पूरे मामले में जो है वो बरी कर दिया है। बृजभूषण जी, कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया?
2: हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है। और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी दो एक पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सड़क से संसद तक हमलावर विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस करती है सिलेक्टिव राजनीति। झारखंड पेपर लीक पर क्यों है चुप्पी। पप्पू यादव ने किया साधु संतों का

का ब्यौरा, संसद में आज भी चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार के अनुपूरक बजट की संभावना, 2027 चुनाव को लेकर हो रही है कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर के निशाने पर सरकार, कहा सम्राट को हटाएं, किसी काबिल को सीएम बनाएं। दतिया में कांग्रेस की विजय, बीजेपी बोली हार का करेंगे आत्ममंथन। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 11वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान, बीजेपी का हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा, सीएम का इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज सुबह में आपका स्वागत है। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में बात चार बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी संसद के मॉनसून सत्र की, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है। आज विपक्ष इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संग्राम बढ़ने के आसार हैं। इसके साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों पर दिए गए उस बयान की, जिस पर सियासी घमासान छिड़ना तय है। साथ ही बात झारखंड में जारी छात्र आंदोलन की भी करेंगे, जिसे लेकर हेमंत सरकार पर दबाव अब बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की, जहां हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। सबसे ज्यादा बवाल चढ़ावा चोरी और छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस एक्शन को लेकर है, जिसे लेकर आज भी संसद में जबरदस्त उबाल देखा जा सकता है। उधर विपक्ष के इन हमलों के बीच गैर बीजेपी और गैर एनडीए शासित राज्यों में पेपर लीक का मुद्दा उठाकर विपक्ष की घेराबंदी की भी तैयारी है। बीजेपी का आरोप है कि कई राज्य में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर विपक्ष दोहरा मापदंड अपना रहा है। उसका इशारा झारखंड छात्र आंदोलन की तरफ है। तो आपको बता दें कि जो छात्र आंदोलन लगातार झारखंड में जारी है, उसको लेकर आज बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने कैसे निशाना साधा विपक्ष पर।
1: झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही है। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की।
0: तो बीजेपी के संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर कई हमले किए, उनमें से एक हमला पप्पू यादव पर भी था। चंदा चोरी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने संसद के अंदर प्रदर्शन किया था, उसको लेकर उन पर हमला किया। संसद में विपक्ष के आक्रामक तेवर के बीच सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में आज फिर दोनों सदनों में हंगामा दिख सकता है।
1: हमने भी ऑपोजिशन के नाते जो अपना दायित्व था उसका निर्वहन किया, मगर ऑपोजिशन के नाते पूरे देश के साधु संतों का अपमान करना, साधु के वेश में आना, साधु को चोर दिखाना, श्रावण के महीने में जब हजारों लाखों लोग कांवड़ यात्रा में निकले हुए हैं, वैसे में आप साधुओं को चोर के रूप में दिखाना, साधुओं को घसीट घसीट के लेते हुए आप जा रहे हैं, वह भी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के प्रांगण में एक साधु को घसीटना, साधु को मारने की कोशिश करना, ये गांव गांव तक क्या खबर पहुंचाती है? कहीं ना कहीं ये अंतर मन के अंदर गांव में ये खबर पहुंचाती है कि सारे साधु चोर हैं। जो ऐसे कपड़े पहनते हैं वो चोर हैं, जो चंदन और टीका लगाते हैं, जो त्रिपुंड लगाते हैं वो चोर हैं, चोरों को पकड़ो और उन्हें पीटो। क्या किसी भी धर्म में, यह तो सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास का देश है, क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं, विश्व जल उठता अगर इस प्रकार से वेश बदल करके किसी और धर्म के धर्म गुरु को घसीटते हुए, पीटते हुए चोरों के रूप में दिखाया जाता। मगर आपने हिंदू धर्म का जो अपमान किया पार्लियामेंट के प्रांगण में, यह अक्षम्य है। समय बताएगा, रण अभी शेष है, समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा।
0: और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का। पीयूष, दो बड़े मुद्दे थे विपक्ष के पास और अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उन्हीं दो मुद्दों को लेकर जिस पर विपक्ष आक्रामक हो रहा था उनके जवाब में उन्हीं पर हमला शुरू कर दिया है।
2: जी बिल्कुल अंजलि, और इसीलिए आज सुबह सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के द्वारा, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ झारखंड में पेपर लीक का मुद्दा उठाया बल्कि जिस तरह से भगवा का अपमान हुआ, पप्पू यादव मकरद्वार के ठीक बाहर एक साधु के वेश में वहां पहुंचे और चंदा चोरी करने का पूरा एक नाटक जो है वहां पर दिखाया गया, तो इसी के खिलाफ बीजेपी काफी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। संबित पात्रा ने यह कहा कि अगर किसी और धर्म का ऐसा माहौल बनाया गया होता तो पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में जो है आग लग जाती। इस तरह की बातें बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा की जा रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जहां मैं मौजूद हूं वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। यहां चल रही है एनडीए की संसदीय दल की बैठक। नरेंद्र मोदी के अलावा सभी एनडीए के सांसद यहाँ पर मौजूद है। सूत्रीय बता रहे हैं कि आज कहने के प्रेजेंटेशन होने वाली है यूथ पर, एम्प्लॉयमेंट पर, स्पोर्ट्स पर, और उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी सीडब्ल्यूजी जो गेम्स हैं उसमें जिस तरह से भारत का प्रदर्शन है उस पर अपनी बातचीत रखने वाले हैं। उसके बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास जब ये मीटिंग खत्म होती है तो सभी सांसद संसद भवन की तरफ जाएंगे एनडीए की, और उसके बाद 11 बजे के आसपास फिर से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन आज फिर वही इस तस्वीर देखने को मिल सकती है जहां पर विपक्ष जो है फिर से चंदा चोरी के मुद्दे के अलावा गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांगने की बात कर सकता है। संसद के पटल पर फिर से हंगामा हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही संसद के बाहर यानी मकर द्वार पर भी विपक्ष के द्वारा धरना प्रदर्शन देने की तैयारी कर ली गई है। तो आज भी हंगामेदार दिन हो सकता है, लेकिन उसको लेकर बीजेपी और एनडीए भी अपनी रणनीति बना रही है।
0: जी पीयूष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो साफ है कि मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच आज एक बार फिर एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू सहित तमाम बड़े नेता और सांसद वहां मौजूद हैं। ये एनडीए दलों के नेता हैं जो वहां मौजूद है और इसमें एक अहम प्रेजेंटेशन भी होने वाली है जिसमें स्पोर्ट्स और युवाओं को लेकर के सरकार की तरफ से क्या क्या किया गया और उपलब्धियां मिली हैं इस पर भी एक प्रेजेंटेशन मंत्री देने वाले हैं। रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का ज्यादा जानकारी के लिए। ये बताइए हिमांशु की मंगल मिलन बैठक जो आज एनडीए की है उसमें क्या एजेंडा रहेगा और इसके बाद जब रवाना होंगे सब संसद की तरफ तो उस समय क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या आज के लिए भी रणनीति तय हो जाएगी?
3: देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि एनडीए की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है मंगल मिलन, इस बैठक के अंदर एजेंडा तो ये है कि आगे संसद का जो बाकी बचा हुआ सत्र है इसमें किस तरीके से जो है आपको पार्टिसिपेशन करना है, कौन कौन से बिल जो है वो लाए जा सकते हैं, इसकी एक छोटा सा ब्रीफ जो है वो दिया जा सकता है, उसकी एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी कि विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है तो आप शांति बनाए रखिए और सरकार का काम है अपने जो संसदीय कार्य हैं उनको पूरा करना, तो आप हो हल्ले हंगामे का पार्ट मत बनिए। हंगामा अगर हो रहा है तो आप उससे दूर रहिए, किसी भी तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो है छींटाकशी या कुछ ऐसे बातें ना कहें जिससे कि संसद के अंदर सदन का माहौल जो है वो खराब हो। उसके साथ साथ जो है कॉमनवेल्थ और उसके साथ जो खेलों के अंदर भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ला रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होने हैं या आने वाले दिनों में एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रदर्शन जो है वो कैसे बेहतर हो, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है एक प्रेजेंटेशन जो है खेल मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से दी जाएगी। उसके साथ साथ एक प्रेजेंटेशन और होनी है और उसके बाद जो है अंत में अगर सही समय रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है एनडीए के जो संसदीय दल की बैठक है इसको संबोधित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से जो है संसद के अंदर अपने आचरण और व्यवहार को रखना है और सरकार जिन बिलों को लेकर आ रही है उसकी तैयारी आपको कैसे करके रखनी है और जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है पिछले दिनों में उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है विपक्ष को, ये सारे जो है मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ

0: कोई कहा है, सवाल दान का है, जो लोगों ने अपने संकल्प लिए थे, आफ्टर ऑल सवाल तो उस बात का है। और कहीं ना कहीं हर वो लोग जो दान लेकर आए हैं कहीं ना कहीं इस बात से आहत हुए हैं कि आखिरकार ये चंदे का पैसा जा कहां रहा था, आखिरकार इसका कौन जिम्मेदार है।
1: यूं तो चढ़ावा चोरी का मुद्दा पहले से ही विपक्ष के टॉप एजेंडे में था। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एसपी की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से उठा ही नहीं सका। फिर पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन और उन पर हमले को लेकर नया ही बवाल छिड़ गया।
2: सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1,00,000 बार कुर्बान हो, जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो।
3: जिस प्रकार उन्होंने 31 जुलाई को कार्य किया, बकायदा पूरा चोला पहन करके और विभिन्न चीजें लिख करके, एक तो सदन के भीतर भी रहे और ये सदन का पूरा कैंपस जो है वह लोकसभा स्पीकर इसके कस्टोडियन होते हैं, इसलिए जो मकर द्वार के सामने भी उन्होंने किया है उसके लिए 100% वह दोषी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 222-223 रूल के खिलाफ उन्होंने जो किया है उसको हर हालत में कार्रवाई होनी चाहिए।
1: सिर्फ चढ़ावा चोरी का मुद्दा नहीं, छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर भी संसद में भारी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री से जवाब मांगे जा रहे हैं। एक दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी ये दोनों मुद्दे उठे। सूत्रों के मुताबिक बीएसी की मीटिंग में कांग्रेस ने छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। सोमवार को इन मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। विपक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं, छात्र प्रदर्शनकारियों को देश विरोधी बताने वाले बयान पर खड़गे ने सरकार को घेरा है।
4: इनोसेंट बच्चे जो आए थे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए और पेपर लीक के लिए आए थे, उनको आप देशद्रोही मान रहे हैं। देशद्रोही तो आप लोग हैं क्योंकि इस डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं।
1: सोमवार को राज्यसभा में विपक्षी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद में अहम बिलों पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेती।
5: इतना इम्पोर्टेंट बिल्स आया है वो हिस्सा नहीं ले रहे, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है। हम तो चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्स पे सब सांसद बोलना चाहिए। मैंने खड़गे जी को भी बोला कि आपने कांग्रेस एमपीओ को थोड़ा समझाई है, कम से कम बिल में हिस्सा तो ले। लेकिन खड़गे जी भी अपना कांग्रेस एमपीओ को समझा नहीं पाया, उनका व्यवहार बहुत खराब था।
1: अब सदन की कार्यवाही को कैसे ढंग से चलाया जाए इस पर बीएसी की मीटिंग में बात हुई है, लेकिन अभी भी संसद का शोर थमता नहीं दिख रहा। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और बात उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों पर दिए गए बयान। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसा कहीं भी हो आतंकवाद ही पैदा करता है। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान ऐसे समय आया है जब योगी सरकार मदरसों को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आज कैबिनेट की बैठक में मदरसों पर बड़ा फैसला हो सकता है। मदरसों में डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, ऐसे में यह बयान आया है।
7: मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
6: तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त जंग है। एक दिन पहले यूपी का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। आज भी समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा सकते हैं, जिसे लेकर सियासी संग्राम और बढ़ सकता है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, लगातार हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा चाहे संसद में हो या यूपी में हो, विधानसभा में उठ रहा है, लेकिन आज की क्या तैयारी है वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसदों की, क्योंकि कल तो हमने सीढ़ियों पर देखा था प्रदर्शन, आज बजट का भी दिन है।
8: बिल्कुल, आज यूपी में अनपूरक बजट पेश किया जाना और उससे पहले एक तरीके से समाजवादी पार्टी विधायकों का हल्ला बोल शुरू हो गया। यहाँ तमाम विधायक आपको दिखाई पड़ेंगे जो पहुंचे हुए हैं। आपको कमाल अख्तर जहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या मुद्दे आप लोग के रहने वाले?

0: देखिए बात लोगों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ जन विरोधी काम कर रही है और उसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। ये 68,500 शिक्षकों की भर्ती भी माना है, घोटाला किया गया है, तो सरकार को जांच करानी चाहिए।
1: तस्वीरें दिखाएं जरा एक बार, जो विधायक हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आपको हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर दिखाइए जरा तस्वीरें, किस तरीके से पार्टी एमएलए जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, ये विधानसभा है, बारिश होती हुई और यहाँ पर तमाम पार्टी विधायक भारी संख्या में, शिवपाल सिंह यादव जो है यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तमाम विधायक जो है, इस तरफ अगर आप आ जाए मेरी तरफ तो आपको दिखाएंगे तस्वीरें अन्य विधायकों की यहाँ से, कि किस तरीके से भारी संख्या में ये विधायक यहाँ पहुंच गए हैं। और बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं प्रमुखता से क्या मांग रही है आज आप?
2: अरे हम लोग की मांग ये है कि देखिए बेरोजगारी बढ़ गई है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज जो भगवान श्री राम के मंदिर का चंदा चोरी करके बीजेपी,
1: शिवपाल सिंह यादव को सुनते हैं कुछ कह रहे हैं। शिवपाल जी,
3: ये देखो आतंकी सब भारतीय जनता पार्टी पालती है और उन्हीं के दफ्तरों में मिलते हैं। ये आतंकवादी सब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को ट्रेनिंग देती है, उन्हीं के दफ्तरों में, उन्हीं के घरों में मिलती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हार शुरू हो गई है और आते आते 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दे।
1: आप यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव से हमने बातचीत की है और शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ हमसे बातचीत में कहा है बिहार के चुनाव को लेकर।
4: जी बिल्कुल, तो लगता है शिवपाल यादव ने जवाब दे दिया वहाँ केशव प्रसाद मौर्य की बयान का। तो चढ़ावा चोरी मामले की जांच आज अहम और निर्णायक पड़ाव तक पहुंचने वाली है। मामले की जांच कर रही एसआईटी एसबीआई की नया घाट शाखा में सुरक्षित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों का वेरिफिकेशन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बैंक लॉकर में रखी सोने चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के अभिलेखों का परीक्षण किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले दो दिन से ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट से जुड़े जगदीश ओफले समेत अकाउंट से संबंधित लोगों के साथ बैंकिंग और लॉकर के रखे सामानों का रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, साथ ही सभी सामानों की वीडियोग्राफी भी कराई है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की सुरक्षित संपत्तियों की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में तत्काल सत्यापन किया जा सके। सूत्रों के अनुसार एसआईटी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक लॉकर में सुरक्षित सभी बहुमूल्य वस्तुएं ट्रस्ट के अभिलेखों के अनुरूप मौजूद हैं या नहीं है। और अब खबर E20 पेट्रोल पर छिड़ी सियासत की। इस मुद्दे पर दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने की तैयारी में है। एक दिन पहले ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो खुद पीएम मोदी को याचिकाएं सौंपेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत अमेरिका से एथेनॉल खरीदने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गया है। अरविंद केजरीवाल के आज के मार्च के ऐलान के बीच दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने यानी कि अरविंद केजरीवाल ने या उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने अब तक मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं मांगी है। आपको बता दें कि नई दिल्ली इलाके में संसद सत्र को लेकर पहले से ही धारा 163 लगी हुई है।
5: प्रश्नों के जवाब दिए बिना कोई तर्क दिए सरकार जबरदस्ती थोप रही है, उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं, ट्रंप अपने देश का इथेनॉल जबरदस्ती इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है भारत मोदी जी जो है वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां खराब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। मैं 100 लोगों के साथ 12 बजे अपने दफ्तर से यहाँ से निकलूंगा प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ, और ये पिटीशन हम चाहते हैं कि पर्सनली उनको हैंडओवर करके आएं और उनसे चर्चा करें कि कैसे इथेनॉल जो है वो गलत है और लोग किस तरह से परेशान हैं। मैंने चिट्ठी लिख के भी उनसे समय मांगा था लगभग एक महीना पहले, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया।
4: तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आगे आगे
4: उधर
3: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
7: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
6: असली शहद, असली स्वाद।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: To right field, and it will.
4: From the first pitch of the season to the stretch run,
5: and that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: Savari. So.
6: His two biggest blunders have defined Indian politics since. He responded to the Shah Bano judgment.
7: Didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shah Bano was a disastrous decision.
6: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.
8: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
9: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
8: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
10: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
8: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
11: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस करती है सिलेक्टिव राजनीति। झारखंड पेपर लीक पर क्यों है चुप्पी, पप्पू यादव ने किया साधु संतों का अपमान। एनडीए के मंगल मिलन में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, खेल मंत्री ने दिया उपलब्धियों का ब्यौरा। संसद में आज भी चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। 2027 चुनाव में पहले बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम योगी। कैबिनेट की बैठक में मदरसों से डिग्री कोर्स को हटाने का हो सकता है फैसला। केशव प्रसाद मौर्य बोले, मदरसे कहीं भी हो आतंकवाद फैलाते हैं। बाकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर के निशाने पर सरकार, कहा सम्राट को हटाएं, किसी काबिल को सीएम बनाए। दतिया में कांग्रेस की विजय, बीजेपी बोली हार का करेंगे आत्ममंथन। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 11वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान। बीजेपी ने मांगा सीएम का इस्तीफा, सीबीआई जांच की भी मांग।

0: आज से हमारे 5 साथी भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं।
1: आपने हमें मजबूर किया है तो हम घर छोड़ करके आज एक खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं।
2: सुजल बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है इसमें, और जैसे से सुजल में बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं।
3: जेपीएससी की एग्जाम को आप रद्द करें और जितने लोग दोषी पाए गए उम्र कैद की सजा दें।
4: और ये तब तक बवाल रहेगा जब तक तत्काल प्रभाव से जेपीएससी और जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई है सरकार रद्द करे।
5: झारखंड में जारी छात्रों के प्रदर्शन की, रांची में जेपीएससी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उधर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की अब मांग कर दी है। आपको बता दें कि रांची में छात्र लगातार 11 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड में पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम हुए उसमें धांधली हुई है। जिस एजेंसी को यह मामला दिया गया था एग्जाम कराने का, वो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड थी दूसरे राज्यों में, उससे कराया गया। उनका कहना है जिन्होंने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस परीक्षा को रद्द माना जाए। और ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर कांग्रेस क्यों चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार में वहां मौजूद है, उसके भी मंत्री सरकार में है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल एक मशाल जुलूस भी उन्होंने निकाला ताकि उनकी आवाज ऊपर तक पहुंच सके। मोबाइल टॉर्च जलाकर वो इस मुद्दे पर रोशनी डालने की कोशिश लगातार करते आ रहे हैं।

0: मोबाइल के टॉर्च जलाकर रांची के छात्र राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल भी जारी। बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ कुछ वैसा ही अब रांची में हो रहा है। वहां परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र आवाज बुलंद कर रहे हैं।
1: सभी छात्रों का जो मांग पत्र है उसको हमने तीन भागों में बांटा है। पहला रद्द, दूसरे जांच और तीसरा रिफॉर्म। रद्द में है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं तथा अभय तिवारी से संबंधित सभी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो।
2: हम लोगों की सलाह है कि पूर्व मुख्य सचिव श्री आर एस शर्मा के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया जाए, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से अन्य रिफॉर्म इन आयोगों में किया जा सकता है, और अगर हमारी ये उपयुक्त मांगे नहीं पूरी की जाती तो कार्मिक के विभागीय प्रधान होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नैतिकता में रूप में इस्तीफा दें।
0: छात्रों के साथ न्याय की मांग को लेकर छात्र नेता ने रविवार से अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू कर दिया है।
3: अन्न का त्याग कर दिए हैं, आज वो हड़ताल का दूसरा दिन है, क्योंकि ये आंदोलन जो शुरुआत हुआ वो आज से ठीक एक महीना पहले दो जुलाई को जो पीटी परीक्षा जेपीएससी का रिजल्ट आया तब से, और जांच पे इतना खुलासा के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। पीटी परीक्षा तक कोई भी रद्द नहीं किया है।
0: आज 11वां दिन है जब छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इस प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी समर्थन कर चुकी है। छात्र नेताओं की माने तो सोनम वांगचू से उनकी बात भी चल रही है। रांची में हुए छात्रों के मसाल जुलूस को लेकर बीजेपी विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रही है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि इस आंदोलन में न देश तोड़ने वाले नारे हैं, न आतंकियों की रिहाई की मांग करने वालों का जमावड़ा, और न ही हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों की भीड़। शायद इसीलिए वामपंथी सोच रखने वाले विपक्षी दल और उनके समर्थक इससे पूरी तरह दूर है। परीक्षा में धांधली का मुद्दा गर्माता जा रहा है। छात्रों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। उन्होंने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान कर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
4: तो रांची में प्रदर्शनकारी छात्र लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। दावा यही है कि जब तक पेपर में गड़बड़ी को लेकर सख्त एक्शन नहीं होता तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यजीत इस वक्त हमारे साथ। आइए सीधा रुक करते हैं उनका और जाने की कोशिश करते हैं कि आंदोलन आगे कहां तक पहुंच रहा है। ये बताएं सत्यजीत कि ये आंदोलन जिसे लेकर अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग की जा रही है, उसको लेकर विपक्ष पर भी हमला किया जा रहा है, दिल्ली में भी, इसमें अभी क्या चल रहा है?
5: देखिए, अभी तक कोई डायलॉग इनका सरकार के साथ नहीं हुआ है। आइस ब्रेक करने वाली जो बात होती है वो अटेम्प्ट सरकार के तरफ से नहीं देखा गया है, और स्टूडेंट्स अब ऐसा लगता है कि लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं। आज 11वां दिन है, दो खेमे में जो है इनका आंदोलन चल रहा है। एक पहला खेमा जो है दैट इज लेड बाय जेल केएम लीडर देवेंद्र नाथ महतो, वो इंडेफिनिट पास पे है तीन दिनों से। सामने एक टेंट है और एक टेंट ये है जहाँ स्टूडेंट जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी 5 लोग इंडेफिनिट पास पे बैठेंगे। उसके अलावा विधानसभा घेराव का इनका प्रोग्राम है, और इनका साफ तौर से कहना है कि ये इसलिए रात रात जाग रहे हैं ताकि सरकार को जगा सके, और उनके डिमांड्स अगर कंसीड नहीं किए जाते हैं तो ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। हालांकि ये कहा गया है कि एक कमेटी सरकार की तरफ से बनाई जा रही है जो इनके साथ डायलॉग करेगी, हालांकि उसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। ये स्टूडेंट्स हैं लगातार जो है यहाँ पे जो है आंदोलन पे हैं। आप कहाँ से आते हैं, नाम बता दीजिए पहले अपना। दुमका से आए हैं, घर में पता है सबको कि आप दुमका से
6: हैं।
5: कितने दिनों से?
6: 4 साल से।
5: फादर क्या करते हैं?
6: एक तरफ से बोलिए तो अभी किसान
5: हूँ। पैसा घर से मंगाते हैं यहाँ टीकन वगैरह पास से? घर से मंगा रहे हैं। घर वाले क्या बोल रहे हैं, कितना दिन और सबको पूछा कभी?
6: एग्जाम दे के आते हैं, एग्जाम तो ठीक जाता है, पता चल रहा है घर जाते जाते कुछ ठीक हो जा रहा है।
5: चलिए, अब आगे क्या है आप लोगों का सरकार से कोई बातचीत? कितना लंबा आंदोलन चलने वाला है? कार्यक्रम बताइए। यहाँ 5 लोग अनशन पे बैठने वाले हैं, कौन लोग होंगे?
6: पांच लोग यही चांसेस में बैठेंगे, कमेटी का चुनाव हो चुका है, 10 तारीख को है विधानसभा का चुनाव रखा गया है, 6 मेगा ग्रुप का पहला पुण्यतिथि है, तो आपको सोच रहा है कैंडल मार्च से आप
5: देखिए यहाँ इस तरह के पोस्टर जो है आपको हर जगह मिल जाएंगे और अलग अलग फनी पोस्टर्स भी हैं। आप देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ जो लिखा हुआ है रेंजर परीक्षा, ये अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी झारखंड के बच्चों के साथ जो है ये इस तरह का हमेशा लिखा हुआ है। रेड चार्ट लेकर भी ये घूम रहे थे, बड़ा फनी सा पोस्टर था कि कितने पोस्ट में इनका आरोप है कि सीट बिकता है। ये लगातार जो है इस तरह की जो है तस्वीरें जो है यहाँ सामने आ रही है और शाम होता है तो माहौल और दूसरे तरह का रहता है, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल रहता है, इनको सपोर्ट हर जगह से मिल रहा है। अभिजीत दीपके ने भी फोन से बात की है एक सेक्शन से, कहा है कि हर तरह का सपोर्ट मिलेगा, लॉजिस्टिक्स और फूड मैनेजमेंट सपोर्ट इनको मिल रहा है, अलग अलग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वो आगे आ रहे हैं जिससे जो बन पड़ रहा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा अगर हम इधर दिखाए देखिए अभी भी नाश्ते का टेबल जो है वो लगा हुआ है, पानी बिस्किट्स आपको दिख रहे होंगे, इस तरह से हर तरफ से जिस तरह से जंतर मंतर में देखा गया था वो सपोर्ट आ रहा है। जो मैं लिंकेड और बाकी जो डिलीवरी पार्टनर्स है वो आ रहे हैं,
7: ये
5: नहीं बता रहे हैं कि किसने बुक किया है, वो लगातार आ रहे हैं। एक छोटा सा इनसे बात कर लेते हैं, आप कहाँ से आए हैं?
6: मेरा घर देवघर हुआ लेकिन यही पे रहते हैं हम, पत्ते
5: कितने साल से?
6: हम पिछले 5 साल से रांची में।
5: तो घर में घर से सपोर्ट आता है या अपना खुद?
6: एक टाइम ट्यूशन पढ़ाते थे लेकिन अभी छोड़ दिया, अभी तक आंदोलन में है कि हमारे साथ जो इंडस्ट्री हुआ CGL और JPSC परीक्षा में उसके साथ न्याय हो।
7: जी सत्यजीत, सपोर्ट और समर्थन इन्हें दिल्ली से भी मिल रहा है क्योंकि अब बीजेपी और NDA भी इनकी बात को उठा रही है। उधर रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विपक्षी दलों पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर विपक्ष दोहरा मापदंड अपना रहा है।
8: प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर JPSC एग्जाम, जो 14वां JPSC एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की।
7: और आइए फिर से रुक करते हैं दिल्ली में चल रही राजनीति का। इस वक्त संसद में क्या हो रहा है, संसद की परिसर में क्या हो रहा है, आपको आइए दिखा देते हैं। इस वक्त विपक्ष लगातार जो आंदोलन करते आए हैं, जो विरोध प्रदर्शन करते आए, एक बार फिर से आज भी वही कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता हो, सांसद हो या दूसरी विपक्षी पार्टी के सांसद हो, वो सब एकजुट होकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो सभी सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता हमें यहाँ नजर आ रहे हैं जो आज फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का दान पात्र लेकर, जो वो एक संकेतात्मक प्रदर्शन करते हैं दान पात्र के साथ, उसको लेकर फिर से खड़े हो गए। साथ में दूसरे मुद्दे भी उठा रहे हैं विपक्षी सांसद। पीछे वही बैनर आ गया है, गृह मंत्री कहाँ हैं, क्यों गायब हैं, इसको उठाते हुए सवाल पूछते हुए अमित शाह कहाँ हैं, जवाब दीजिए, इसका बैनर भी साथ में हमें देखने को मिल रहा है। तो मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मौसमी, मुद्दे कौन से हैं, आज फिर तख्तियां और बैनर लेकर पहुंच गए, लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट संसद परिसर से।
9: द्वार जहां पे मैं खड़ी हूँ यहां पर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होके गृह मंत्री अमित शाह कहां है इस तरीके के नारे लगा रही हैं और पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। पीछे दान पात्र जो आपको नजर आ रहा है वो दान पात्र है जिसमें रोज पैसा इकट्ठा होता है। लगातार एक हफ्ते से समाजवादी पार्टी और सारी विपक्षी पार्टियां इस तरीके का दान पात्र लाती हैं, यहीं पर बैठ के गिनती की जाती है और ये कहा जाता है कि ये जो पैसा है ये अयोध्या मंदिर में जाके दिया जाएगा। तो एक तरफ यहाँ पे नीचे मकर द्वार पे आपको नजर आ रही है विपक्षी पार्टियां, ये देखिए, और वहीं पे दूसरी तरफ जो दरवाजा है जहां से अंदर जाते हैं वहां पर साउथ की जो पार्टीज है डीएमके के एमपीज आपको वहां पे नजर आ रहे होंगे। दान पात्र भी यहां मेरे पीछे है और अलग अलग लोग आके ये देखिए दान पात्र में पैसा दे रहे हैं और ये गारंटी ली गई है कि जिस तरीके से अयोध्या में चंदा चोरी हुई ये इस पैसे की चोरी नहीं होगी और इस पैसे को मंदिर में जाके चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया जाएगा। ऐश्वर्या पालीवाल, मकर द्वार से आज तक दिल्ली।
7: तो चलते हैं अब मौसमी के पास। मौसमी, मुद्दे तो कई हैं लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है लेकिन अब सरकार भी और एनडीए अपनी रणनीति लेकर तैयार है उसी के जवाब में। मौसमी, मौसमी आप मौसमी से बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन देखिए ये तस्वीरें जो इस वक्त संसद के परिसर से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लगातार विपक्ष हमलावर है कुछ मुद्दों को लेकर, उनमें से एक अहम मुद्दा
10: जो रिजल्ट रहा है, क्या कहेंगे आप बायपोल में लगातार बांकीपुर में बीजेपी की हार हुई है।
7: तो प्रियंका गांधी इस वक्त आप देख सकते हैं संसद परिसर में आ गई है, सवाल पूछा गया लेकिन सीधा वो आगे बढ़ गई। उधर दान पात्र सामने रखकर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। तो मुद्दे कई हैं विपक्ष के पास लेकिन उनमें से सबसे अहम मुद्दे जो रहे हैं वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मुद्दा है जो पहले वो नहीं उठा पाए उस तरीके से जिस तरीके से वो चाहते थे। रुक करते हैं मौसमी सिंह का। मौसमी, कितनी कोशिश रहेगी अब विपक्षी पार्टियों की खास तौर पर इस मुद्दे को उठाने की जो दान पात्र का चंदा चोरी का मुद्दा है क्योंकि पहले नीट की वजह से नहीं उठा पाए थे।
11: बिल्कुल, देखिए आइए बात करते हैं क्योंकि राजीव राय भी यहाँ पे हैं, तमाम सपा के सांसद और कांग्रेस के सांसद यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और राजीव जी ये बताइए अंदर उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे आप लोग ये मसला और क्या होगा आगे?
12: देखिए हम लोग रोज उठाते हैं, रोज एडजमेंट मोशन भी देते हैं लेकिन सरकार सुनती नहीं है। सरकार राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी, राम मंदिर के नाम पर सरकार बनाएगी, राम न्यायालय के फैसले को भी अपना बताएगी, बिना मुहूर्त के पूजा कर आएंगे शंकराचार्य के खिलाफ, लेकिन जब वहाँ चोरी और डकैती होगा तो उस पर चर्चा करने से भाग रही है। ये सदन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को देखने को तरस गया है। हम चाहते हैं कि आए और इस पर बात करें,
11: आज बात करें। ये कह रहे हैं राजीव राय, अभी हम लोग देख रहे हैं हमारे सामने फिर से जो चंदा जो ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं अंजलि, वो इसकी काउंटिंग होती है यहीं पे मकर द्वार पे गमछा बिछा के ये लोग काउंटिंग करते हैं। 47,000 रुपए अभी कलेक्शन इन लोग का हो गया है
7: जी।
11: और एक तरीके से प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस
7: जी, मौसमी लगातार विपक्ष का ये प्रदर्शन जारी और हमारी नजर है इस पर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
13: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with
14: Bharat ki apni electric sawari.
15: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
16: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
17: Sokudo.
18: भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं।
17: असल बात यह है कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश जी को जो करारी हार का सामना करना पड़ा, उस हार के बाद से अखिलेश यादव जी पूरी तरह से हाइबरनेशन में चले गए हैं। वे इस तरह के गलत बयानों को देकर के, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके आम जन को भ्रमित करने का और भड़काने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम किया है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पिछले कुछ समय से E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में कम माइलेज और महंगे मेंटेनेंस की शिकायतें लगातार सुनाई दे रही हैं। इसको लेकर लोकल सर्कल्स के ताजा सर्वे में भी पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों ने यही चिंता जताई है। सर्वे कह रहा है कि 2023 से पहले खरीदे गए पेट्रोल वाहनों के 45,000 से ज्यादा मालिकों में से 67% ने कहा है कि 2025 की शुरुआत के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज 10% से ज्यादा घट गया है। वहीं करीब 23% लोगों ने 20% से ज्यादा गिरावट की बात कही और 13% लोगों ने माइलेज के बेअसर रहने का दावा किया है। माइलेज की शिकायतों के साथ सर्वे में गाड़ियों की हालत को लेकर भी बड़ा दावा सामने आया है, जिसके अनुसार 45% लोगों ने इंजन, फ्यूल लाइन, फ्यूल पंप, इंजेक्टर या टैंक में पहले से ज्यादा घिसावट या मरम्मत की जरूरत बताई है। वहीं 44% लोगों ने कहा कि उन्हें कोई असामान्य बदलाव महसूस नहीं हुआ है। इन आंकड़ों से साफ है कि बड़ी संख्या में पुराने वाहन मालिक E20 पेट्रोल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सर्वे में लोगों ने कई तरह की दिक्कतों का भी जिक्र किया। कई वाहन मालिकों ने बताया कि गाड़ी स्टार्ट होने में ज्यादा वक्त ले रही है, इंजन में कंपन बढ़ गया है, पिकअप पहले जैसा नहीं रहा और सर्विस की जरूरत भी जल्दी पड़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि शिकायतें पुराने वाहनों तक सीमित नहीं रहीं। 2023 और 2024 में खरीदी गई E20 कंपैटिबल पेट्रोल गाड़ियों के 22,000 से ज्यादा मालिकों में से 59% लोगों ने 10% से ज्यादा माइलेज घटने की बात कही है। वहीं 4 में से एक मालिक ने 20% से ज्यादा गिरावट का दावा किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार और ऑटो इंडस्ट्री की राय जुदा है। सरकार का अनुमान है कि पुराने वाहनों में E20 से माइलेज पर करीब 3-5% असर पड़ सकता है। वहीं ARAI की टेस्टिंग में भी 2-6% तक माइलेज कम होने की बात सामने आई है, जबकि केंद्र सरकार और ऑटो इंडस्ट्री का कहना है कि तय मानकों वाले वाहनों में E20 से इंजन को नुकसान के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। ये बहस इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि मामला अदालत तक पहुंच चुका है। रायपुर की एक कंज्यूमर कोर्ट ने E20 इस्तेमाल के बाद बार बार इंजन में परेशानी आने की शिकायत पर एक कार को बदलने या रकम लौटाने का आदेश दिया है। कंपनी ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है, इसलिए आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। उधर सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग का दायरा आगे बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लोगों की शिकायतें बनी रहती हैं तो फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग और मॉनिटरिंग को और मजबूत करना होगा, जिससे ड्राइवर का भरोसा भी बना रहे और जेब पर अतिरिक्त बोझ भी ना पड़े। आज तक ब्यूरो।

0: बांकीपुर दतिया की जीत से विपक्ष को मिली संजीवनी। आज संसद के बाहर पूरा ऑपोजिशन लामबंद। चढ़ावा चोरी पर नारेबाजी। एनडीए के मंगल मिलन में शामिल हुए पीएम मोदी और अमित शाह।
1: हमलावर विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस करती है सिलेक्टिव राजनीति। झारखंड पेपर लीक पर क्यों है चुप्पी। पप्पू यादव ने किया साधु संतों का अपमान।
0: सत्ताईस चुनाव से पहले बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम योगी। कैबिनेट की बैठक में मदरसों से डिग्री कोर्ट को हटाने का हो सकता है फैसला। केशव मौर्य बोले मदरसे कहीं भी हो आतंकवाद फैलाते हैं।
1: बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर के निशाने पर सरकार। कहा सम्राट को हटाएं किसी काबिल को सीएम बनाएं। दतिया में कांग्रेस की विजय। बीजेपी बोली हार का करें।

0: ताबड़तोड़वार हत्या के बाद मौके से फरार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
2: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। और शुरुआत करते हैं संसद में जो चल रहा है उसी से। संसद में लगातार विपक्ष हमलावर है कुछ मुद्दों को लेकर, और आज भी उसने विरोध प्रदर्शन किया है। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद के अंदर, सदन से जो कार्यवाही शुरू हो चुकी है उसकी इस वक्त आप देख सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की तस्वीर।
3: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल है, मैं बालू जी आपको इजाजत दूंगा, मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल होता है। और सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाब भी मांगता है, और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने कल भी बीएससी की बैठक में सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जो चर्चा संवाद के लिए, जहां 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है। इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तथ्य लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए, इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तथ्यों से हम लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए माननीय सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: तो सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक बार फिर से प्रश्नकाल के दौरान हंगामा, उसके बाद स्पीकर को स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई।
2: आपको बता दें कि एक बार फिर से नारेबाजी हो रही थी, तो ऐसे में स्पीकर ने साफ कहा कि ये सर्वोच्च मंच है जहां बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने लोकसभा को स्थगित कर दिया 2 बजे तक के लिए। तो विपक्ष लगातार हमलावर है। उन्हें आश्वासन दिया स्पीकर ने कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, प्रश्नकाल को चलने दीजिए, लेकिन विपक्ष नहीं माना।
0: और अब वक्त हो गया है शतक आज तक का।
2: लोकसभा में आज मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन, लोकसभा में हंगामे के साथ सदन की शुरुआत, 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित। सरकार पर हमलावर दिखा विपक्ष, नीट मामले और छात्र प्रदर्शन के में पुलिस कार्रवाई के साथ गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने उठाया सवाल। गृहमंत्री के साथ पीएम की गैर मौजूदगी पर भी विपक्ष का विरोध, संसद के बाहर विपक्ष ने पोस्टर के साथ नारे लगाकर सरकार का जताया विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनाई विपक्ष की मांगे, बोले पीएम मोदी और गृह मंत्री पेपर लीक छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में दे जवाब। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में शामिल। संसद लाइब्रेरी भवन के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में यह बैठक। आज से 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दोपहर बाद असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। असम के बाद 5 अगस्त को नागालैंड पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा। बाढ़ प्रभावित परिवारों से संवाद करेंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा। नागालैंड के बाद 6 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा। फ्लैश फ्लड और बादल फटने से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और राहत शिविरों का करेंगे निरीक्षण।
0: यूपी में विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज फिर जारी रहेगा चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा, विपक्ष का विरोध। यूपी सरकार 2026-27 के लिए अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। युवाओं और महिलाओं को लेकर यूपी सरकार की बड़ी पहल, अधूरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान संभव। एक्सप्रेस वे के जरिए कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक टाउनशिप समेत कई बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट में फंड का प्रावधान संभव। नितिन नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश कांबला, बोले इनकार रखने वालों को भगवान ने नचा दिया। 3 उपचुनाव में बीजेपी को झटका, बांकीपुर दतिया में हार। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी के सिर सजा जीत का ताज। बांकीपुर दतिया उपचुनाव में हार पर बोले नितिन नवीन, कहा चुनाव नतीजों का करेंगे आत्ममंथन। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में बड़ी उलटफेर, प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को दी करारी हार। 19,000 वोटों से जीते जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर। बांकीपुर दतिया उपचुनाव में कई दलों की जमानत जब्त, बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार नहीं बचा पाए जमानत।
2: वाराणसी में एनडीआरएफ ने की 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग। गंगा नदी में बढ़े हुए जल स्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्म दिवस के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के किए दर्शन। सुनील ग्रोवर ने मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। सावन के पहले सोमवार पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के किए दर्शन। मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बीच भी रोजाना पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखी नोटों वाली कावड़। कावड़ में लगाए गए हैं 10, 20, 50 और 100 के अनगिनत नोट। भोले के जलाभिषेक के लिए दिल्ली ले जा रहे हैं कावड़। हरिद्वार कावड़ मेले में दिखा नया रंग। अब पैदल कावड़ के साथ साथ अनोखी और विशाल कावड़ भी लोगों का खींच रही है ध्यान। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण। कावड़िये शिव, शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल लेकर जा रहे हैं। डीजे की धुन पर नाचते गाते बढ़ रहे हैं कावड़िये। हाईवे पर बम बम भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालु उत्साह के साथ कर रहे हैं अपनी यात्रा पूरी। हरिद्वार में कावड़ यात्रा का अनोखा रूप। शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियों वाले कावड़ लेकर निकल रहे हैं कावड़िये। मुजफ्फरनगर में ओवरसाइज डीजे कावड़ यात्रा पर पुलिस की सख्ती। तेज डीजे सेटअप को हरिद्वार से आगे जाने की अनुमति नहीं।
0: गुरेश के कोखरबल में पदा फटा बादल, अचानक आई बाढ़, खाना बदोशों का झुंड फंसा। दक्षिण कश्मीर से भारी बारिश की तस्वीरें आई सामने, कई घर जलमग्न। लंगनई और अबूरा के पास फ्लैश फ्लड से सड़क बही, पहलगाम का सड़क संपर्क टूटा, दोनों पर्यटक फंसे। श्रीनगर में बारिश से गर्मी से मिली राहत, लाल चौक सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। बांदीपुरा में फ्लैश फ्लड से सड़क बनी दरिया, गांव का संपर्क टूटा। जम्मू कश्मीर के रजौरी में कई लोगों को लैंडस्लाइड, संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह। जोजिला रोड पर भारी बारिश से भूस्खलन, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी रूप से बंद। चमोली में कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग पर अचानक दरका पहाड़, खौफनाक मंजर। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूधसान से जगह जगह पड़ी दरारें, घंटों ठप रहा आवागमन। विदिशा में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते स्कूल बच्चों का वीडियो वायरल।
2: दिल्ली में ISSF शॉटगन रेफरी कोर्स की शुरुआत। निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइड तकनीकी अधिकारी तैयार कर रहे हैं कोर्स का मकसद। दिल्ली में ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम का आयोजन, भारत सम्मान कार्यक्रम में सिक्योर ग्रुप सहित कई विभिन्न संस्थाओं को सम्मान। मैच अधिकारी के लिए खास कोर्स, कोर्स में सऊदी अरब और श्रीलंका के प्रतिभागी भी शामिल। गुजरात के युवक के अंगों से कई जरूरतमंदों को मिलेगी नई जिंदगी। अंकलेश्वर में वंदे भारत ट्रेन को रोककर अहमदाबाद भेजा गया युवक का धड़कता हुआ दिल। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर, पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर। मुंबई के साकिनाका में चलती बाइक में लगी आग, ट्रैफिक पुलिस ने टाला बड़ा हादसा। असम के कछार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 28 करोड़ की हीरोइन जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में खड़ी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मुंबई हाईवे पर गड्ढे में जा गिरी बाइक, TDRF जवान की गई जान, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग।
0: इंदौर में वाहन चेक के दौरान लाखों रुपए का शराब से भरा आयशर वाहन जब्त, चालक गिरफ्तार। देहरादून में मां ने अपनी नाबालिग पुत्री को बेचा, सौदे के बाद रची अपहरण की झूठी साजिश, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। हरदोई में दर्दनाक हादसे का लाइव वीडियो, वाहन में बिजली का तार फंसने से गिरा पोल, सड़क से गुजर रही 9वीं की छात्रा की मौत। कानपुर में फेसबुक पर महिला से दोस्ती करना पड़ा भारी, बुजुर्ग ने ऑनलाइन गंवाए 1,25,00,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ निवेश मामले में धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर JCB इंडिया के 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई। गुजरात के अंबाजी में CNG पंप पर बेकाबू कार ने चारपाई पर बैठे शख्स को जोरदार टक्कर मारी, मौके पर मौत। आसनसोल में गौ चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई।

फिल्म जिम्मा 3 की शूटिंग शुरू, 1 जनवरी 2027 को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म सिंह वर्सेस कौर 2 का टीजर जारी, 11 सितंबर को फिल्म होगी रिलीज। ईएमआई पर मंथन करने के लिए सोमवार से शुरू हुई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, अनुमान है कि महंगाई की जगह विकास दर पर फोकस रखने की वजह से फिलहाल नहीं बढ़ेगा रेपो रेट। शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच आईपीओ मार्केट की रफ्तार धीमा पड़ने का दावा, निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए कई कंपनियों ने अपने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन घटाना शुरू किया। जुलाई में यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजैक्शंस ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक साल में 22% की तेजी के साथ डिजिटल पेमेंट्स ने रचा नया इतिहास। मिडल ईस्ट में शांति बहाली की उम्मीदों से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई, ईरान के साथ बातचीत के संकेत मिलते ही ब्रेंट क्रूड 4% से ज्यादा लुढ़ककर $84 प्रति बैरल के नीचे पहुंचा।

0: और आइए सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का आपके लिए। तमिलनाडु से ये बड़ी खबर जो आ रही है, उदयनिधि स्टालिन जो कि एलओपी है तमिलनाडु विधानसभा के, उनको इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया है। ये पूरा मामला दरअसल उदयनिधि स्टालिन द्वारा कुछ कॉमेंट्स को लेकर था जो उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में दिए थे और उसके बाद उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
1: तो उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने हंगामा किया है। सड़क पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। पुलिस और स्टालिन समर्थकों में इस वक्त झड़प हो रही है। एक लंबा चौड़ा यहां पर हुजूम दिखाई दे रहा है जो पुलिस की गाड़ी शायद आगे बढ़ने नहीं दे रहा है।
0: तो ये पूरा मामला शुरू तब हुआ जब त्रिशा को लेकर, जो कि एक अभिनेत्री है और दोस्त है मुख्यमंत्री की, उसे लेकर कॉमेंट किया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो गाड़ी रोक कर इस वक्त शोर शराबा कर रहे हैं उदयनिधि के समर्थक।
1: नागार्जुन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नागार्जुन, सबसे पहले तो कमेंट्स बताइए जो स्टालिन ने किए थे।
2: जी इनफैक्ट कल जो प्रोटेस्ट था चावेरी के ऊपर, नदी के ऊपर जो प्रोटेस्ट था तंजावुर में, उदयनिधि स्टालिन जो विपक्ष नेता थे, एक कमेंट की थी कि एक ही चिंता है मुख्यमंत्री को और वो पॉज लेते हैं। जो लोग गए हैं उस रैली में वो त्रिशा के नाम लेते हैं, त्रिशा त्रिशा की नाम चिल्लाते हैं और उदयनिधि स्टालिन जब हंस के बोलते हैं हम पानी के बारे में बात करते हैं और मुख्यमंत्री को दूसरी चिंता है, तो ये डेफामेटरी रिमार्क टीवी के लगता है कि ये डेफामेशन था और उसी से आज गिरफ्तार हुए उदयनिधि स्टालिन। आज हमें तस्वीरों में भी देख सकते हैं उसको एलओपी को गिरफ्तार करने के बाद तंजावुर लेके जा रहे हैं और उनका बयान भी अभी आया हुआ है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। तो एक ऐसे डेफामेशन हुआ है कि ना किसी का नाम लाई नहीं लेने के बिना भी मुझे अरेस्ट किया गया है, यही उदयनिधि ने अभी बयान दिया है अरेस्ट होने के बाद। लगभग 8 घंटे का रास्ता है तंजावुर जहां उन्होंने स्पीच किया था, उसी रैली के स्टेज के लोकेशन के पास लेके उनका एक जो लोकेशन के ये होता है माजर रिपोर्ट वो भी करवा देंगे। तो शाम तक उदयनिधि स्टालिन तंजावुर पहुंचेंगे और रास्ते में भी आपको देख सकते हैं डीएमके की सपोर्टर्स, उनके कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी की रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर तो थोड़ा भीड़ भी ज्यादा बढ़ गया है, मीडिया भी है, डीएमके सपोर्टर्स भी है और धक्का मुक्की भी हो रही है उधर।
0: जी सवाल ये भी है कि वो नेता विपक्ष हैं और इस पूरे मामले पर एक विद्रोह, आप जैसे कह रहे विरोध प्रदर्शन लगातार वो कर रहे थे, उसके बीच में उन्हें घर से उठाया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। अब डीएमके के पास सिर्फ कावेरी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा भी हो जाएगा, आखिरकार उनके नेता को अरेस्ट कर लिया गया है।
2: जी बिल्कुल, ये तो तमिलनाडु में नॉर्मल हो चुका है। आपको भी याद होगा कि करुणानिधि जयललिता के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, लीडर ऑफ अपोजिशन या जो नेता विपक्ष को भी गिरफ्तार करे हुए थे पहले भी। ये जो पहली बार नहीं हो रहा है तमिलनाडु में और इस बार भी जो सुबह सुबह पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के दरवाजे नॉक किए फिर उनके

0: टीवी ने भी टाइम मांगी कि 10 मिनट दे दीजिए, वो तो अभी उठे हैं, बाथरूम गए हैं, अभी टाइम नहीं है, तो थोड़ा देर टाइम के बाद आइए क्वेश्चन करने के लिए। बस पुलिस ने बयान दिया कि नहीं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें सिर्फ ऑर्डर है कि उनको अरेस्ट करना है, आप हमारी मदद कर दीजिए, आप हमें रोकिए मत। यही बातचीत हुआ उदय नगर के घर में और उसके एक घंटे।
1: और सीधे अब आपको राज्यसभा की कार्यवाही दिखाते हैं। तो राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही क्योंकि प्रश्नकाल में हंगामा शुरू हो गया था। किरण रिजिजू कुछ बोलना चाह रहे थे राज्यसभा में लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। दरअसल लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि अमित शाह बयान दें पुलिस कार्रवाई पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, दिखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
3: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
2: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
4: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
2: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
5: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।
6: आइए हमारे घर मिलने, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की, बोले हम गलत नहीं घर का हाथ
7: दे। कौन है विधायक?
2: कौन है विधायक?
6: वही डीरी का विधायक, रोज फोन करता था, जो नया बना, रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन।
8: बिहार के डेहरी के यू विमल कुमार की पत्नी का डेहरी के LJP रामविलास के विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पर संगीन आरोप। 1 अगस्त की रात डेहरी के ईओ विमल कुमार की औरंगाबाद के बारून में हत्या हो गई थी। ईओ की पत्नी का आरोप है कि हत्या के पीछे विधायक का ही हाथ है, क्योंकि वही पैसे लेने के लिए बार बार फोन करते थे।
6: रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन कर
7: पैसा मांगता था।
6: हाँ।
8: लेकिन पुलिस का कहना है कि विमल कुमार की हत्या उन्हीं के ड्राइवर ने की है। पुलिस की माने तो पूछताछ में ड्राइवर ने कबूल किया कि काम के दबाव और तनाव की वजह से उसने कार्यपालक अधिकारी को मार डाला।
9: ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है, और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था, और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के, उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है।
8: हालांकि ड्राइवर बार बार अपने बयान बदल चुका है। पहले उसने कहा कि कातिल अपाची बाइक पर सवार थे। ईओ की पत्नी आरोपी ड्राइवर का नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रही है।
6: नार्को टेस्ट करवा के जितने भी लोग सारे लोगों को उसका जितना जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मारो, काट दो।
8: डेहरी के ईओ की हत्या का मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ चुका है। 1 दिन पहले बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ईओ के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। तेजस्वी ने इस हत्याकांड की CBI जांच कराने की मांग की है।
10: अब पता नहीं IG साहब इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं कि सारा निर्णय ही जो है सुना दिया गया है, लेकिन अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं। हमको लगता है कि इसकी न्यायिक निगरानी में, जुडिशियल निगरानी में इसकी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए।
8: उधर एलजीपीआर विधायक राजीव रंजन सिंह की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे।
11: एक पत्नी का पति गया है, उस पर कोई राजनीति ना करे। एक हत्या हुई है, उस पर लोग अच्छी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति ना करें। उस पर सब कोई मिलकर सोनू सिंह उनके परिवार के साथ खड़ा है, रहेगा। इसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और मैं डेहरी के विकास की लड़ाई लड़ता हूं, ना कि ऐसी अच्छी राजनीति पर हम विश्वास करते हैं।
8: सच का खुलासा तो जांच से होगा, लेकिन ईओ विमल कुमार की हत्या से एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। सासाराम से मनोज कुमार सिंह के साथ शशिभूषण कुमार, पटना आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: बांकीपुर दतिया की जीत से विपक्ष को मिली संजीवनी। संसद के अंदर और बाहर पूरा ऑपोजिशन लामबंद। दोनों सदन स्थगित। राज्यसभा में चढ़ावा चोरी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने।
1: आक्रामक विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस करती है सिलेक्टिव राजनीति। पप्पू यादव ने किया साधु संतों का अपमान। एनडीए के मंगल मिलन में पीएम मोदी।
0: 2027 चुनाव से पहले बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम योगी। कैबिनेट की बैठक में मदरसों से डिग्री कोर्ट को हटाने का हो सकता है फैसला।
1: तमिलनाडु की राजनीति में भयंकर उबाल। मुख्यमंत्री विजय की दोस्त त्रिशा पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। पुलिस और समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प।
0: बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर के निशाने पर सरकार। कहा सम्राट को उठाएं, किसी काबिल को सीएम बनाएं। दतिया में कांग्रेस की विजय। बीजेपी बोली हार का करेंगे आत्ममंथन।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: ब्रेक के बारे में फिर आप सभी का स्वागत है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में हार का असर एनडीए पर दिखने लगा है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान सामने आया। अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार रहते तो ये नतीजा नहीं आता। जनता ये समझ रही कि नीतीश कुमार को हटाया गया है। जनता इससे नाराज है। अनंत सिंह का यह बड़ा बयान कल की हार के बाद। दरअसल अब एनडीए को लेकर ये तमाम बयान किए दिए जा रहे हैं, जिसमें अनंत कुमार ये कह रहे हैं, अनंत सिंह ये कह रहे हैं नीतीश कुमार को हटाए जाने का ये नतीजा है।
1: तो आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी आत्ममंथन कर रही है, क्योंकि जो हार देखने को मिली है जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जिस तरह की जीत दर्ज की है उसके बाद बीजेपी भी आत्ममंथन मोड में है। और ऐसे में ये बयान आ गया अनंत सिंह का, जो कि कहते हैं कि ये सब नतीजा सिर्फ एक बात का है, नीतीश कुमार को हटाने का।
3: जैसे जनता ने हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजोबरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, बिल्कुल जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे ककर नाम पर, अब ककड़ो कोयले ले कखड़ो को कोखड़ा बना दे, ककड़ो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है।
0: शशि भूषण में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, यहां पर जो अनंत सिंह कह रहे हैं उससे दरअसल ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार को हटाना एक बड़ी नाराजगी की वजह है, लेकिन वोट तो ब्राह्मणों का गया है। नीतीश कुमार रहते या नहीं रहते, इसको किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो?
4: देखिए, वोट किसका गया नेहा, ये तो जब एनडीए या बीजेपी खुद भी जब मंथन करेगी, समीक्षा करेगी हार के कारणों की, तो स्पष्ट होगा। लेकिन अनंत सिंह की एक पहचान है, वो बड़ी बेबाकी से बड़ी बातें कह जाते हैं। वही बात उन्होंने आज कही भी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ, उसके बाद ये मैसेज चला गया जो एनडीए के वोटर्स हैं, जनता है, उनके बीच में कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया। और अनंत सिंह अगर ये बातें कर रहे हैं तो ये भी मानना होगा कि वो जमीनी स्तर पर राजनीतिक समझ उनकी है। भले ही उनकी छवि जो भी रही हो, लोग बाहुबली कह ले या जो भी कह ले, लेकिन राजनीति की इतनी समझ है उनके पास कि हर बड़े मसले पर वो बड़ी बेबाकी से बड़ी बात कह जाते हैं। और यही बात वो कह रहे हैं कि जनता के बीच मैसेज गलत गया है, और कभी भी किसी को हटा देना, कभी किसी को बिठा देना, भले ही आपसी सहमति से ये चीजें हुई हों, लेकिन जनता को ये चीजें पच नहीं रही हैं। और एक सच्चाई भी है नया कि पहली दफे ऐसा हुआ कि पटना की इस सीट पर बिहार में जो गठबंधन बना है एनडीए का नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का, उसके बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी हारी हो या एनडीए की हार हुई हो, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद पहला उपचुनाव जिसमें एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। और अगर एनडीए का आधार वोट किसका है, भले ही ब्राह्मण ही नहीं, सभी जातियों का लगभग हम मान के चल रहे हैं कि वोट जो है वो प्रशांत किशोर को मिला है, तो आखिर ये नाराजगी क्यों? तात्कालिक कारण हो सकते हैं यूजीसी का मसला बताया जा रहा है, नीट पेपर लीक का बताया जा रहा, या दूसरे कारण जो उम्मीदवार की कमजोरी बताई जा रही है। लेकिन हाँ, एक हकीकत यह भी है और जेडीयू इसी को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। अनंत सिंह का बयान तो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन इसके बाद जेडीयू के एक पुराने नेता हैं, मतलब विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, श्याम रजक, उन्होंने भी कहा है कि क्या उदासीनता थी कार्यकर्ताओं में स्थानीय स्तर पे। अब तो ये बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जेडीयू यहाँ पर सवाल चुनावी प्रबंधन और बीजेपी की रणनीति पर उठा रहा है, और आनंद सिंह तो सीधे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को किनारा करना कहीं भारी पड़ गया। जी
1: जी जी बिल्कुल शशि, ऐसे में सवाल यही उठता है कि बीजेपी कहती है हम आत्ममंथन करेंगे, बहुत कम लोग आए वोट डालने के लिए, तो इसमें कई बातें हो जाती हैं, सिर्फ नीतीश कुमार को एक मुद्दा बना लेना ये कहां तक जायज हो जाता है?
4: देखिए जेडीयू के अंदर एक मलाल तो है, ठीक है आपसी सहमति से ही नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ, नीतीश कुमार ने खुद तय किया कि वो राज्यसभा जाएंगे, तमाम तरह की बातें आई जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया अंजलि, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2 दशक से ज्यादा अरसे तक नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब जनता दल यूनाइटेड जो ड्राइविंग सीट पे रही, उनके नेता ने जो कॉम्प्रोमाइज किया और अपनी कुर्सी छोड़ी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद बहुत कुछ दूसरे लोगों को करने के लिए
0: बने रही हमारे साथ। इस बीच बिहार, एमपी और गुजरात की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। बांकीपुर सीट पर बीजेपी को करारी हार मिली, मध्यप्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव के नतीजों के मायने निकाले जा रहे हैं।
1: उपचुनाव के नतीजों को लेकर यूपी में भी खलबली दिख रही है, जहां अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं, या ये महज 2 सीटों पर जीत हार का मसला भर है?
5: दो जीत का संदेश क्या है? बिहार के बांकीपुर में पीके की जीत, एमपी के दतिया में कांग्रेस की जीत, इन दो तस्वीरों का संदेश क्या है? उपचुनाव में बीजेपी की हार के मायने क्या है? क्या इन नतीजों की धमक आगे भी सुनाई पड़ेगी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले जरा बांकीपुर में पीके की जीत के मायने समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार गई। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी हार गई। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिली है।
6: बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हजार रुपए में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है।
5: बांकीपुर की हार बीजेपी को झकझोर देने वाली है, क्योंकि ये वो सीट है जिसे बीजेपी बेहद सुरक्षित मान रही थी। इसकी वजह भी साफ है। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में बीजेपी को 63% वोट मिला। 9 महीने बाद उसी बांकीपुर में बीजेपी को 49.19% वोट मिला। 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। 9 महीने के बाद बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। तो आखिर इन 9 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि बांकीपुर में बीजेपी को 19,000 वोट के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा? क्या ये हार इसलिए हुई कि बीजेपी से सवर्ण वोट इस बार छिटक गए? नीतीश कुमार की चुनाव में सक्रियता नहीं रही, सम्राट चौधरी के सीएम बनने का असर नहीं हुआ, पेपर लीक और अयोध्या में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे का असर बिहार के चुनावी माहौल पर भी पड़ा?
7: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
8: बाकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे और पुनः बाकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले भी हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बाकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा।
5: बीजेपी के लिए दतिया की हार भी बड़ा झटका है। बाकीपुर में तो पीके का बड़ा चेहरा भी फैक्टर रहा, लेकिन दतिया में तो ऐसी वजह भी नहीं दिख रही। इसलिए अब बड़ा सवाल ये है कि उपचुनाव के नतीजे का असर क्या यूपी तक जाएगा? क्या नतीजों पर यूपी में खलबली दिखेगी?
9: भारतीय जनता पार्टी की हार शुरू हो गई है और आते आते 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी।
5: याद रखिए, यूपी वो राज्य है जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बीजेपी बुरी तरह फंसी है और ये वो राज्य भी है जहां सवर्ण वोटों को लेकर भी जबरदस्त खींचतान है। पटना से रोहित सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: तो आइए इस मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी शशि का। शशि, अगर हम इस जीत के बारे में बात करें जो दर्ज की है जनसुराज की, तो कहीं ना कहीं सब मंथन ये कर रहे हैं कि बीजेपी क्यों हारी, ये मंथन भी जरूरी है कि आखिर जनसुराज या प्रशांत किशोर क्यों जीते?
4: बिल्कुल, जितना ये सवाल जरूरी है अंजलि कि बीजेपी क्यों हारी, उससे ज्यादा ये जरूरी जानना है कि प्रशांत किशोर ने आखिर इस किले को ध्वस्त कैसे किया। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे नजर आती है, प्रशांत किशोर ने बहुत अर्ली प्लानिंग की और 2.5 महीने से वो, जब से नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया राज्यसभा से, उसके बाद उनको पता था कि इस सीट पे बाय इलेक्शन होगा, सबको पता था। वो अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए थे, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का ये मजबूत किला ध्वस्त करना है तो इसके लिए सबका साथ देना होगा, जो जाति वाला समीकरण है उससे ऊपर का एजेंडा सेट करना होगा, ये प्रशांत किशोर बखूबी जानते थे। यही वजह रही कि उन्होंने ना केवल भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स के बीच अपनी पैक बनाई बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है जिसमें मुस्लिम
0: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जीत तो प्रशांत किशोर की हुई है, जनसुराज पार्टी की हुई है, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी अपने आप में इतना खुश हो रही है, उनका ये कहना है कि इस जीत का असर दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी पड़ेगा, कैसे?
10: देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चाहे दतिया में बीजेपी की हार हुई हो या बांकीपुर में, अब अगला चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश का है और दो जगह बीजेपी हारी है, ऐसे में आज जिस तरीके का उत्साह या समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से उत्साहित होकर सदन में थे और बार बार ये कह रहे हैं कि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है और हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हरा करके दिखाएगी, तो उन्हें कई मुद्दे भी इस वक्त साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चंदा चढ़ावा का चोरी का मुद्दा है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ पेपर लीक का मुद्दा है, स्कूलों का मुद्दा है जिसे वो लेकर के इस वक्त सामने आए हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा ढलान पर दिख रही है और इसी को समाजवादी पार्टी भुनाने की कोशिश में है। लेकिन एक बात और जोड़ दूं, दतिया में चंद्रशेखर आजाद जो है भीम आर्मी प्रमुख, उनकी पार्टी 22,000 वोट लेकर के आई है, वो इस बार अकेले लड़ने जा रहे हैं चुनाव में, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा कि क्या किसको नुकसान होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरीके से खुला हुआ है, तमाम पार्टियां अपने अपने अपने अपने दांव आजमाएंगी, लेकिन बीजेपी को यहां उत्तर प्रदेश में सतर्क रहना होगा।
1: जी जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो उधर उपचुनाव के नतीजे से समाजवादी पार्टी खेमे में जोश दिख रहा है। धर्मेंद्र यादव का क्या कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी का घमंड चूर हुआ है, आइए सुनिए।
11: सर, बांकीपुर और दतिया सीट बीजेपी की हार हुई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे?
12: सबसे पहले दोनों ही विधानसभाओं के मतदाताओं को, सम्मानित जनता को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उस क्षेत्र के लोगों ने, बीजेपी के लोग जो घमंड में बैठे उनके घमंड को चूर किया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नए या वर्तमान अध्यक्ष जी अपने स्वागत और सम्मान में प्रभु श्री हनुमान जी को भी भाजपा का झंडा थमा देते हैं। ये मैं समझता हूँ ये हनुमान जी की गदा लगी है बीजेपी को, और ये एहसास कराया है कि मर्यादित रहना चाहिए, सत्ता के नशे में घमंड में नहीं आना चाहिए। ये उनकी अपनी विधानसभा की भी जनता ने और दतिया की जनता ने भी एहसास बीजेपी के लोगों को करा दिया है।
0: और कल के उपचुनाव में बांकीपुर की हार के बाद आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद परिसर में मुलाकात कर चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले ये मुलाकात बताई जा रही है, संसद परिसर में प्रधानमंत्री से मुलाकात नीतीश कुमार की। और कुछ देर पहले मैं आपको सुनाया था कि कैसे अनंत सिंह लगातार ये कह रहे थे कि ये हार इसलिए हुई है क्योंकि नीतीश कुमार को हटाया गया।
1: तो बांकीपुर की हार के बाद जो आत्ममंथन चल रहा है, क्या उसमें नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं? क्या नीतीश कुमार भी अब सांसद के तौर पर जो पहुंच चुके हैं संसद, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करके कल की हार पर चर्चा कर रहे हैं, ये सवाल है। तो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और बांकीपुर में जो जोरदार हार बीजेपी को मिली है उसके बाद ये मीटिंग अहम हो जाती है, क्योंकि जेडीयू के नेता की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाए जाने की वजह से ये हुआ है।
0: हिमांशु मेरे से योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये मुलाकात कितनी अहम?
13: देखिए, मुलाकात बहुत अहम थी क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे बांकीपुर हार के बाद, और उनके साथ जो है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा वो मौजूद थे। ये सही हो सकता है कि ये मीटिंग प्रीफिक्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बांकीपुर में चुनावी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद ये मानकर चला जा सकता है कि बांकीपुर में जो हार मिली है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, उसको लेकर भी चर्चा हुई हो, किस के आज समीकरण जो है वो गलत बैठे, इन सब चीजों को लेकर एक लंबा डिस्कशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो सकता है। और अब ये बैठक जो है वो खत्म हो गई है, और नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह तीनों जो है वो पार्टी दफ्तर की तरफ जो है अब आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके।
1: जी, तो ये बताइए कि अगर बांकीपुर की हार की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के ये बात कही गई जेडीयू की तरफ से कि ये सब इसलिए हुआ है कि माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार को हटाया गया। तो ऐसे में ऑप्टिक्स बहुत अहम हो जाती कि नीतीश कुमार उसी वक्त पहुंचने, मिलने के लिए पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी से, तो क्या वो भी अब मंथन का हिस्सा हो जाएंगे?
13: देखिए, बिल्कुल मंथन हुआ होगा क्योंकि बांकीपुर में जो हार है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी हार है, क्योंकि नितिन नवीन जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो सीट से लगातार जो है 5 बार विधायक रहे, उनसे पहले उनके पिताजी जो है वो विधायक रहे, और बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। तो नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद है और उनकी आज जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थी, और इसी मुलाकात के अंदर जो है वो बांकीपुर में हार के बाद चर्चा जरूर हुई है कि क्या रहा, कैसे समीकरण जो है वो बिगड़े हैं, तो तमाम इश्यूज तो रहे होंगे, लेकिन बांकीपुर भी एक चर्चा का विषय जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा इस ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
16: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
17: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.

0: हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया था। आज जो निचली अदालत है उन्होंने उसको उनको इस पूरे मामले में जो है वो बरी कर दिया है। बृजभूषण जी, कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया?
1: हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है। और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी दो एक पार्टियों को छोड़कर के कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से चल रही आईपीओ की तेज रफ्तार हाल के दिनों में थोड़ी धीमी पड़ती नजर आने लगी है। जिन कंपनियों को कुछ महीने पहले तक बाजार से शानदार रिस्पांस मिलने की उम्मीद थी, वो अब अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसकी वजह है कि बाजार में बढ़ती अस्थिरता, निवेशकों की सतर्कता और वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंता ने आईपीओ मार्केट को धीमा कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आईपीओ बाजार में फिलहाल पहले जैसी तेजी नहीं दिखाई दे रही है। कई कंपनियां तो अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रही हैं और हाल ही में जेप्टो ने अपने आईपीओ का प्लान टाल भी दिया है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट की कमजोरी के चलते कई कंपनियां अपने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन कम करने को मजबूर हो गई हैं। इसकी वजह है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बाजार में बढ़ते उतार चढ़ाव ने निवेशकों को ज्यादा सतर्क बना दिया है। वहीं कुछ हालिया लिस्टिंग्स के कमजोर प्रदर्शन के बाद निवेशक शेयरों की कीमत और बिजनेस मॉडल को ज्यादा बारीकी से परखने लगे हैं। बाजार के इस बदलते माहौल का असर केवल निवेशकों पर ही नहीं, उन कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है जो केवल बाजार के जरिए पूंजी जुटाने की तैयारी में थीं। ऐसे में कंपनियां जल्दबाजी में बाजारों में उतरने की जगह सही समय और सही वैल्यूएशन का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ी है। वहीं कई कंपनियों ने बाजार की स्थिति को देखते हुए अपनी लिस्टिंग योजनाओं की टाइमिंग पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है और मर्चेंट बैंकर्स कंपनियों को आक्रामक प्राइसिंग से बचने और निवेशकों के लिए आकर्षक वैल्यूएशन रखने की सलाह दे रहे हैं। यानी जो आईपीओ बाजार पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था, वो एक नए दौर में प्रवेश करता नजर आ रहा है। ऐसे में केवल नाम या चर्चा के दम पर निवेशकों का पैसा जुटाना आसान नहीं होगा। कंपनियों को मजबूत बिजनेस, संतुलित वैल्यूएशन और बेहतर ग्रोथ प्लान के साथ बाजार में आना होगा। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बदलाव लंबे समय में बाजार को और ज्यादा परिपक्व और मजबूत बना सकता है। यानी फिलहाल आईपीओ बाजार में भले ही सुस्ती का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन आगे चलकर यही कमजोरी इसकी ताकत बन सकती है, क्योंकि निवेशकों की बढ़ती समझ कंपनियों को ज्यादा भरोसेमंद बनने का रास्ता तैयार करने में मदद करेगी। आदित्य राणा, आज तक।

0: बागीपुर में बीजेपी की हार और पीके की जीत के बाद पीएम मोदी से नीतीश की मुलाकात, संसद भवन में हुई मीटिंग, जेडीयू के अंदर से उठी आवाज, अनंत सिंह बोले नीतीश होते तो ना हारते। बागीपुर दतिया की जीत से विपक्ष को मिली संजीवनी, संसद के अंदर और बाहर पूरा अपोजिशन लामबंद, दोनों सदन स्थगित, राज्यसभा में चढ़ावा चोरी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। आक्रामक विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस करती है सेलेक्टिव राजनीति, पप्पू यादव ने किया साधु संतों का अपमान, एनडीए के मंगल मिलन में पीएम मोदी। दो हजार 2027 चुनाव से पहले बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम योगी, कैबिनेट की बैठक में मदरसों में डिग्री कोड को हटाने का हो सकता है फैसला, केशव मौर्य बोले मदरसे कहीं भी हो आतंकवाद फैलाते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में भयंकर उबाल, सीएम विजय की दोस्त त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, पुलिस और समर्थकों में जबरदस्त झड़प।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12:12 रिपोर्टर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात की, बात यहां पर की जा रही है। संसद भवन में पीएम मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की, अब इस दौरान जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा भी मौजूद रहे। ये मुलाकात इस वक्त हो रही है जब बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, ऐसे वक्त पर यह मुलाकात हुई है जब बीजेपी की हार, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर भी बयान सामने आए। अब बांकीपुर में हार के बाद पीएम नीतीश की मुलाकात बहुत अहम है, लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। संसद भवन में पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। देखिए, सवाल उठ चुके हैं कि नीतीश होते तो ऐसा नहीं होता। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बांकीपुर की हार और उसके बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात,
2: देखिए बिल्कुल कई मायने हैं। वैसे जो हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, बिहार के कई मुद्दों को लेकर जो है वो नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह ने जो है वो मुलाकात की है, लेकिन क्योंकि कल बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक हार हुई है और ये हार बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के अगर नजरिए से देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने ये सीट जो है खाली की थी राज्यसभा सांसद बनने के बाद, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार होना ये बड़ी है क्योंकि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो 5 बार इस सीट से जो है विधायक रहे हैं और उससे पहले उनके पिताजी जो है वो विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये इस चीज का शायद अंदाजा नहीं था कि बांकीपुर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटक सकती है और यह हार का सामना करना पड़ सकता है। नीतीश कुमार के साथ आज मुलाकात हुई है तो जाहिर तौर पर भले ही अन्य मुद्दे भी रहे हो, बांकीपुर की जो विधानसभा सीट में हार हुई है वो भी एक चर्चा का बड़ा विषय रहा होगा, किन परिस्थितियों में किस तरीके के समीकरण जो है वो गड़बड़ाए हैं, एनडीए के जो सीट भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 2025 में 41,000 से ज्यादा वोटों से हारी जीती हो और अब 17,000 वोटों से ज्यादा मार्जिन से जो है वो सीट हार जाए भारतीय जनता पार्टी, तो इसका मंथन जरूर है और इसी मंथन में नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई होगी कि क्या कारण रहे हैं, किन कारणों की वजह से जो है बांकीपुर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई,
0: और कारणों का पता लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बने रहिए, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। वहीं बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में हार का असर अब एनडीए पर दिखने लगा है, जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान सामने आया। अनंत सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रहते तो ये नतीजा नहीं आता, जनता ये समझ रही है कि नीतीश कुमार को हटाया गया, जनता इससे नाराज है।
3: जैसे जनता हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजोबरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है, अब बात जो रहे लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं, नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, बिल्कुल, जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे ककर नाम पर, अब ककड़ो कोयले ले कखड़ो को खोखड़ा बना दे, ककड़ो खिलौड़ बना दिया, खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। हल्ला यह है कि ऐसा देखे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं अपना राजेश सर काम किया, लेकिन जनता में यह है कि मंजोबरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया, जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, सब हटा दिया, दुखी है जनता।
4: नीतीश कुमार तो ये चीज नहीं होता,
3: हम तो बोलते नहीं होता, जनता भी हिल गया कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया, लेकिन नीतीश जी अपने हट जाए, लेकिन जनता में कि हटा दिया गया।
0: तो हम वोट दिए नीतीश कुमार को और जनता कहे कि हटा दिया गया, ये बात यहां पर कही जा रही है। तो बाकीपुर इफेक्ट संसद के मानसून सत्र में भी नजर आ रहा है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष लामबंद रहा, हंगामे के चलते दोनों सदन स्थगित हुए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच बहस हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर कैश, गहने और जमीन के गबन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है। और अब आपको सीधे लिए चलते राज्यसभा की कार्यवाही की ओर। शुरू हो गई एक बार फिर। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। मानसून लोकसभा तो 2 बजे तक के लिए स्थगित है, लेकिन राज्यसभा में भारी हंगामा चल रहा है। विपक्ष की तरफ से जो नारे हैं वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आखिर क्या वजह है इसके पीछे?
2: देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री जो है वो 20 तारीख को जो है संसद मार्च हुआ और उस पर लाठीचार्ज हुआ है उस मामले में जो है वो स्टेटमेंट दें और उस पर चर्चा हो, और उसके साथ साथ जो है विपक्ष ये भी चाहता है कि चोरी जो राम मंदिर का मामला है इसको लेकर भी जो है चर्चा चाहता, और सरकार की तरफ से भी जो है वो नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि इसको लेकर लगातार जो है संसद में के दोनों ही सदनों में हंगामा जो है वो हो रहा है।
0: अब बिल्कुल वो हंगामा होते हुए हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए भी। और अब खबर E20 पेट्रोल से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे पर दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने की तैयारी में। एक दिन पहले ही उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि वो खुद पीएम मोदी को याचिकाएं सौंपेंगे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि भारत अमेरिका से एथेनॉल खरीदने के मामले में ट्रंप के आगे झुक गया है। केजरीवाल के आज के मार्च के ऐलान के बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि उन्होंने या उनकी पार्टी, आपने अब तक मार्च के लिए परमिशन नहीं मांगी है अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने। और ये भी आपको बता दें कि नई दिल्ली इलाके में संसद सत्र को लेकर पहले से धारा 163 लगी हुई है, भीड़ जुट नहीं सकती। आम आदमी दफ्तर से आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। आशुतोष, क्या तैयारियां चल रही हैं? अरविंद केजरीवाल आज पीएम आवास तक मार्च करने की जो बात कह रहे थे, कहां तक पहुंचा वो?
5: पिटीशन की कॉपी इकट्ठा हो गई है, इसमें ज्यादातर लोगों ने जो साइन किया वो कहा है कि E20 पेट्रोल से जो दिक्कतें हैं या तो इसकी कीमत घटाई जाए या सरकार इसे वापस ले ले। तो ऐसी कुछ पिटीशन की कॉपी है जो एक मेरे हाथ में है। यहाँ पर ये देखिए, आ गए केजरीवाल और बस किसी भी क्षण ये मार्च शुरू होगा। समर्थकों को इकट्ठा किया गया है, उन्होंने कहा था कि 100 लोगों के साथ मैं मार्च करूंगा, लेकिन जब सत्र चलता है और आमतौर पर भी नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लगी होती है, तो अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं और अब यहां से वो पिटीशन की कॉपी लेके वो 100 लोग हैं जिनके साथ ये मार्च करने जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि इन्हें 100 मीटर से ज्यादा आगे न जाने दिया जाए। कोशिश ये भी करते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, ऐलान किया था कि हम जाएंगे, और सीधी दो मांग रखी है कि या तो पेट्रोल पंप पर ये चॉइस दी जाए कि E20 पेट्रोल जो है उसके बीच चयन करने की बात हो, या तो वो चयन कर सके, और अगर ऐसा नहीं है तो E20 वाले जो पेट्रोल है उनकी कीमतों में कटौती की जाए। अरविंद केजरीवाल संभवतः यहां पर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और अब ये मार्च शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दफ्तर से जो पिटीशन है उसकी कॉपी लेकर के अब यहां से मार्च शुरू हो चुका है। जाने की तैयारी तो है प्रधानमंत्री आवास की ओर, लेकिन पूरी संभावना यह है धारा 163 के चलते कि इनको आम आदमी पार्टी दफ्तर में 50 मीटर से आगे न जाने दिया जाए। बाहर जो है दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री, रैपिड एक्शन फोर्स, इन सब की तैनाती है, इसीलिए कि आगे ना जा पाए। लेकिन दरअसल विरोध कई बार सांकेतिक होता है। इस बार आपने देखा है कि सरकार को कई मोर्चों पर विपक्ष की नाराजगी, गुस्सा झेलना पड़ा है, जिसमें E20 भी एक मुद्दा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो लगातार उनके साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह है, पार्टी के दूसरे नेता विधायक हैं, और साथ में वो लोग भी हैं जिन्होंने पिटीशन इसमें दस्तखत किया है। तो ये रस्सी से पूरा एक घेरा बनाया गया है, इसी घेरे के साथ अब ये मार्च आगे की ओर बढ़ता हुआ, उनके साथ जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो भी हैं और मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दरअसल 100 मीटर के आगे आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर एग्जिट पॉइंट है, वहां एक बड़ा घेरा बना दिया गया है कि उसके आगे ना जाने पाए। विरोध आमतौर पर जब भी संसद मार्च जैसे जंतर मंतर से होता था तो इतना सांकेतिक होता कि पार्लियामेंट सीट के पास प्रदर्शनकारियों को या राजनीतिक दलों को रोक लिया जाता था। अब उन्होंने अपने दफ्तर से जाने की बात कही है तो कहां तक जा पाएंगे? हाल ही में अगर आपको याद हो, राहुल गांधी का एक प्रदर्शन हुआ था, प्रधानमंत्री आवास के पास बेहद करीब एक मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे, पुलिस ने वहां से रोक लिया, हिरासत में लिया। तो इन्हें कुछ देर तो रोकने की जरूर पुलिस कोशिश करेगी कि नई दिल्ली इलाके में ज्यादा ना जा पाए, लेकिन अगर उसके बाद भी जाते हैं तो अंततः क्या होता है कि पुलिस जो है हिरासत में ले लेती है। तो अब यहां से

0: और काम करने, औद्योगिक विकास और एक्सप्रेसवेज के निर्माण और लिंक एक्सप्रेसवेज को कनेक्ट करने की बातें भी इसमें सामने आ रही हैं। एक बड़ा प्रदर्शन किया है और चंदा चोरी का मुद्दा एक दफा फिर उठाया है। कुछ विधायक ऐसे भी थे जो खाद की बोरियां लेकर यहां पहुंचे हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी पलटवार कर रही है और ये कह रही है कि आपको OTT की जरूरत नहीं है, विधानसभा आए, सपा विधायकों के प्रदर्शन को देखें और OTT का मजा लें। सियासी तौर पर यह सत्र चुनाव को लेकर एक बड़ी भूमिका पेश करने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी मॉनसून सत्र है।
1: तो वही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की SIT ने जांच अब तेज कर दी। अब SIT की टीम आज SBI की नयाघाट शाखा में सुरक्षित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों का वेरिफिकेशन कर सकती है। सूत्र जो बता रहे हैं, उस दौरान बैंक लॉकर में रखी सोने चांदी की ईंट, बहुमूल्य आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के अभिलेखों का परीक्षण भी किया जाएगा SIT की तरफ से। कीमती सामान के वेरिफिकेशन की तैयारी है।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में SIT ने अपनी जांच तेज कर दी है और अब इस क्रम में SBI बैंक में रखे हुए आभूषण जो दान में दिए गए हैं, पत्र और इसके अलावा जो भी चीजें दान में दी गई उसकी भी अब जांच की जाएगी। यानी कि उन लॉकरों से जहां पर ये रखे हुए हैं आभूषण, पैसा, दान, इन सभी की भी जांच निकाल कर की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं SIT को ये भी शक है कि इन आभूषणों के जरिए भी हेराफेरी की गई है जो रामलला को चढ़ाए गए हैं। अब ऐसे में SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है जहां पर बैंक को भी दायरे में लिया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अब SIT एक एक करके हर क्रम पर आगे बढ़ रही है और उनकी जांच बढ़ा रही है।
1: वहीं रांची में JPSC के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उधर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ BJP ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच CBI से कराने की मांग की है।
3: JPSC और JSSC में करप्शन के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जयपाल सिंह स्टेडियम में जारी है, लेकिन बड़ी बात अब यह है कि दो खेमों में ये आंदोलन चल रहा है। एक टेंट आपको दिखाएं कि इस तरफ है, जबकि दूसरा टेंट जो है वो आपको ठीक मेरी बाईं ओर है, जहां लगातार जो है ढोल नगाड़े के साथ नारेबाजी हो रही है। मांग बेशक एक ही है दोनों खेमों का, लेकिन यहाँ एक जो है वो लेड बाई JLKM लीडर देवेंद्र नाथ महतो जो है वो इसको लीड कर रहे हैं। एक आंदोलन को छात्रों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं और इनडेफिनेट फास्ट पे भी है। तीसरा दिन उनके फास्ट का है।
1: और अब बात कर लेते हैं गुजरात में चांदीपुरा वायरस से मचे हड़कंप की। चांदीपुरा वायरस के चलते अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। राज्य में अभी तक 184 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 35 मरीज चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाए गए। अब वायरस को लेकर गुजरात स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। सरकार ने अस्पतालों को विशेष निर्देश जारी किए हैं और लोगों से अफवाहों से बचने और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है।
4: गुजरात में चांदीपुरा वायरस के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट पे है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि कुल 184 संदिग्ध मामले आए थे, जिसमें से 22 बच्चों की मौत हुई है, जबकि बाकी जो है 35 कुल 35 मामले जो है वो संक्रमित पाए गए थे, उसमें से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि सर्कल की राहत की बात यह है कि ये कोई एक पर्टिकुलर पॉकेट से या एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं आए, 6 से 7 अलग अलग जिलों से ये मामले सामने आए हैं। और उसकी मुख्य वजह यही है कि जब बारिश होती है तब जो कच्चे घर होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, जिसमें दीवारों में जगह होती है, वहां से ये जो मच्छर होता है, उस मच्छर की वजह से ये रोग या ये बीमारी होती है। और इसी वजह से जो है बच्चे इसके संक्रमित, सबसे जो मूल कारण है बच्चों का संक्रमित होना, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, उसकी वजह से वो संक्रमित होते हैं। और उनको अगर तत्काल इलाज मिल जाए तो जो है वो मौत के चांसेस कम हो जाते हैं। पर फिर भी सरकार ने अध्यतन तौर पर सभी बाल विशेषज्ञ डॉक्टरों को जो है कहा गया है कि आप जैसे ऐसे कोई संदिग्ध पेशेंट आए उनको तुरंत अस्पताल रिफर कीजिए। और पूरी तरह से जो है वो सरकार अलर्ट मोड पे है और चाहती है कि अब जो है इससे ज्यादा मौतें ना, और इसी लोगों को भी अपील की है कि आप अफवाहों से दूर रहें और इसके इलाज पे ध्यान दें।
1: और अब तो कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा मांग की है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी

0: हरियाणा को मिलनी चाहिए या हरियाणा को इसका सह मेजबान बनाया जाना चाहिए, और कहा देश के लिए खेल में सबसे ज्यादा योगदान हरियाणा के खिलाड़ी देते हैं, और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा ने जीते हैं। अब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियंस की पदक जीतकर भारत लौटे एथलीटों का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया, तो उन्हीं की बात यहां पर की जा रही है। लोगों ने खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई, बधाइयां दी। इस दौरान खिलाड़ियों के परिवार वाले भी मौजूद रहे। भारत पहुंचते ही कई खिलाड़ियों के परिजनों ने उनका गले लगाकर स्वागत किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीते हैं। और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: To right field, and it will leave.
3: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.
4: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी.
5: कुछ तो बात है इस दिल में.
6: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1930.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
2: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है. भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है. गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं. भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है. ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए. कौन सा? पुलिस. किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने. और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था. ज्यूडिशियरी, मॉडर्न ज्यूडिशियरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया. अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज. तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता.
3: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
2: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने. वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस. ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था. कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को. मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ. पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा.
4: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
2: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा.
5: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है.

जम्मू कश्मीर में संकट काल की ये पहली तस्वीर देखिए। पानी का रौद्र रूप ऐसा है मानो वो सब कुछ अपने में समेट कर ले जाने को बेताब हो। ये तस्वीरें शोपिया के हीरपुरा इलाके की हैं। रविवार को यहाँ अचानक बादल फटा। इस घटना के बाद वहाँ अचानक बाढ़ आ गई। इस घटना को अपनी आंखों से देखकर हर कोई हैरान रह गया। उधर जम्मू में कटरा के बालनी चेक पोस्ट के पास जोरदार लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ टूटकर तिनके की तरह बिखरे तो आने जाने वालों पर आफत टूटी। पहाड़ का मलबा कटरा रियासी नेशनल हाईवे 144 तक जा गिरा। इस घटना के बाद नेशनल हाईवे 144 को बंद कर दिया गया। गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। देर तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। उधर मिनमार जोजिला में भी तबाही हुई। शनिवार को वहां बादल फटे थे। घटना में कई कारें मलबे की चपेट में आईं। हालात ऐसे हो गए कि बचाव दल को जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। प्रशासन, पुलिस और प्रोजेक्ट विजयक टीम की संयुक्त टीम ने मिनमार जोजिला में बादल फटने की घटना में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए जोरदार बचाव अभियान चलाया। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: बांकीपुर में बीजेपी की हार और पीके की जीत के बाद पीएम मोदी से नीतीश की मुलाकात। संसद भवन में हुई मीटिंग, जेडीयू के अंदर से उठी आवाज। अनंत सिंह बोले, नीतीश होते तो ना हारते। बाजीपुर दतिया की जीत से विपक्ष को मिली संजीवनी। संसद के अंदर और बाहर पूरा अपोजिशन लामबंद। राज्यसभा में चढ़ावा चोरी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। आक्रामक विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस करती है सिलेक्टिव राजनीति। पप्पू यादव ने किया साधु संतों का अपमान। एनडीए के मंगल मिलन में पीएम मोदी। और फिर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस वक्त मार्च किया जा रहा है E20 के मुद्दे पर। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से पीएम आवास तक मार्च किया जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के इस मार्च को रोक दिया है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, फिरोज शाह रोड पर केजरीवाल का ये मार्च रोक दिया गया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। देखिए, बीएनएस की धारा 163 लगाई गई थी, भीड़ की अनुमति नहीं थी, और अब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो उनके साथ में आपको पुलिस अधिकारी भी दिखाई दे रहे होंगे। सुनिए वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल और उनके साथ में जो कार्यकर्ता उनके आए थे, नेता आए थे, वो वहीं पर सड़क पर बैठ गए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी और खरीदना बंद कीजिए, हमारे देश के लोगों पे E20 थोपना बंद कीजिए, देश के लोगों को प्योर पेट्रोल दीजिए, लोग प्योर पेट्रोल चाहते हैं, सस्ता दीजिए।
2: अरे क्या करोगे आप?
1: हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप ट्रंप के दबाव में मत आइए और E20 मत थोपिए।
3: अब आप लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया है, आगे क्या कदम रहेगा?
1: वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम कहना चाहते हैं कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी ना आए। ट्रंप का दबाव में आके इथेनॉल यूएसए से खरीदना बंद करें और हमारे देश में E20 थोपना बंद करें।
4: अभी क्या प्लान है?
1: अभी यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे।
4: वहाँ जाने के लिए तो पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है, आप लोग खुद से जाने की कोशिश करेंगे?
1: देखते हैं, प्रधानमंत्री जी को मैसेज भेजा है कि हम मिलना चाहते हैं।
4: आपकी प्रोटेस्ट का क्या होने वाले गवर्नमेंट को आपको लग रहा है?
1: देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, संघर्ष जारी रहेगा। डीजल को भी अब करेंगे।
0: तो अरविंद केजरीवाल का मार्च रोक दिया गया, और जहां पर रोका वहीं पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त बैठ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं यूपी एक्सप्रेस वे का।

यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विधानसभा के बाहर चढ़ावा चोरी के साथ शिक्षक भर्ती और कृषि उत्पादों की महंगाई पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। विधानसभा में चढ़ावा चोरी मामले पर सपा का हंगामा, नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार को घेरा, सदन में मौजूद एसपी विधायकों ने नारे लगाकर विरोध जताया। सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के दान पात्र और खाद सामग्री लेकर किया प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी ने कहा सरकार बजट खर्च नहीं कर पाती, चढ़ावा चोर और बजट चोर बताया। कानून व्यवस्था पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला, बीजेपी ने 2017 अयोध्या आतंकी मामले का किया जिक्र, बीजेपी बोली सपा ने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए। और यूपी सरकार 2026-27 के लिए अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश कर चुकी है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में इसे पेश किया। बिहार नतीजों पर सपा का बीजेपी पर हमला, समाजवादी पार्टी ने कहा बिहार तो बस शुरुआत है, यूपी में बीजेपी साफ होगी, बीजेपी की हार तय। समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान के मामले पर सियासी तंज, कहा ओटीटी देखना हो तो विधानसभा आ जाइए, विधानसभा में एक से एक प्रोग्राम देखने को मिलेगी। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मदरसा पर विवादित बयान, कहा मदरसा आतंकवाद को पैदा करने की फैक्ट्री। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के मदरसे वाले बयान पर एसपी नेता शिवपाल यादव का पलटवार, आज तक से बातचीत के दौरान कहा बीजेपी के दफ्तरों से मिलते हैं आतंकी, बीजेपी पर लगाया ट्रेनिंग देने का आरोप। नितिन नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला, बोले अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया, वोट चोरी से लेकर नौकरी आरक्षण चोरी का बताया परिणाम। अयोध्या में इस्तीफे के बाद पहली बार कैमरे पर आए चंपत राय, संतों से मुलाकात कर साझा की मंदिर प्रकरण की अब तक की कार्रवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी, ट्रस्ट की संपत्ति और लॉकरों की होगी जांच। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एसआईटी करेगी एसबीआई लॉकरों में रखी संपत्तियों का सत्यापन, सोने चांदी और आभूषणों की जांच होगी। चंदौली में कावड़ यात्रा को लेकर रेलवे अलर्ट मोड पर, डीडीयू रेल डिवीजन में बना वॉर रूम, सीसीटीवी से स्टेशन की निगरानी। प्रयागराज में बारिश का दौर जारी है, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या।

0: और अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र की खबर, बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज अनुपूरक बजट पेश कर दिया है उन्होंने। यह बम्पर बजट करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। अब चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार का यह अहम बजट युवा, महिला और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया गया। बजट से पहले ही सुरेश खन्ना ने साफ कर दिया कि विकास के अलावा गरीब, किसान, महिला और युवा ही इस अनुपूरक बजट का आधार है। विधानसभा में सुरेश खन्ना और विधान परिषद में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से अनुपूरक बजट रखा गया। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये उम्मीद से दोगुना बड़ा बजट है, ये कहा जा सकता है?
1: देखिए, इसको चुनावी बजट या अनुपूरक बजट जिसमें चुनाव का तड़का हो, ये कहना ठीक होगा, क्योंकि 9,12,000 करोड़ का बजट इन्होंने, जो इनका चालू बजट था उसमें उन्होंने दिया था 25-26 का, और अब लगभग 60,000 करोड़ का ये बजट है, 59.19। और इसमें जो, जैसा आपने बताया, जो फोकस है वो महिलाएँ हैं, यूथ हैं और गरीब हैं, ख़ास करके आशा वर्कर, आंगनवाड़ी जो हैं, इनके मानदेय को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो होगा। इसके अलावा गांव में अगर आप देखें तो ग्राम रसोइये जो होते हैं स्कूलों में, उनके मानदेय को बढ़ाया जा सकता है। साथ साथ जो ग्राम चौकीदार होते हैं उनको बढ़ाया जाएगा। जो जानकारी है मिल रही है उसके मुताबिक युवाओं के लिए अलग से छात्रवृत्ति, इसके अलावा जो किसान छात्रवृत्ति है
0: जी,
1: उसको भी बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर विशेष फोकस होगा। तो ये पूरा का पूरा जो अनुपूरक बजट है, इसको अगले साल होने वाले चुनाव से देखकर जोड़कर देखा जा रहा है। और तकरीबन उत्तर प्रदेश,
0: अच्छा अभिषेक ये बताइए, इसमें राजस्व लेखा व्यय के मुकाबले जो पूंजी लेखा व्यय है वो करीब 2.5 गुना ज्यादा है, इसका मतलब क्या माना जाए?
1: देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, सरकार का कहना है कि पिछले कई सालों से इनका जो बजट है उसमें घाटा नहीं है। सरकार जितना कमा रही है, सरकार के पास जितना आ रहा है उसका ही वो खर्चा देती है। हालांकि इस बार जो अभी उन्होंने अलग से जो डेटा सामने रखा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो बातें कही जा रही हैं उससे थोड़ी सी बात अलग ज़रूर है, लेकिन चूंकि ये चुनावी साल है इसलिए सरकार अपने खजाने को उसने खोल करके रखा है। उसका कहना है कि कोई बहुत लोन लेकर के हम इस चीज़ को नहीं लेकर के जा रहे हैं, बल्कि ये जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, खास करके जो गरीबों, छात्रों, महिलाओं के लिए वो करना चाहती है, वो उनके बजट के पास उनका जो प्रावधान है उसमें से ही वो करना चाहती है। तो ये दिखाने की भी कोशिश है कि ऐसा नहीं है कि हम लोन लेकर के अपने ये जो जो जो जो, जो सरकारी हमारी योजनाएं हैं उसको हम उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से चुनावी, आप कह लीजिए कि बजट है, अनुपूरक बजट में आने वाले चुनाव का जो असर है, जो रंग है वो दिखाई दे रहा है।
0: शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए भी। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। अब उससे पहले यूपी विधानसभा के दरवाजे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जो आप देख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दल के विधायक अलग अलग मुद्दों पर प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन करते दिखे। उसमें राम मंदिर से लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा और किसानों के लिए खाद की कमी से लेकर नौकरी रोजगार के मुद्दे पर अलग अलग विधायक प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उधर मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट को लेकर पहले ही कह दिया था कि इस बार का बजट युवा, किसान, महिला को केंद्रित करके लाया गया है।
2: देखिए, सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स है, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स है उसको पूरा करना, और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हो सर उनको करवाना, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से जोर देते आए। देखिए, बजट का आधार है किसान, महिला, युवा और गरीब।
3: देखिए, अनुपूरक बजट के नाम पर सिर्फ गुमराहियत करने की कोशिशें कर रही है सरकार पूरी तरीके से। यहाँ जहाँ व्यापारी परेशान है, खास तौर पर सबसे ज्यादा छात्र और छात्राएं परेशान है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं, जो आपने 25,000 स्कूलों को बंद कर दिया उसका क्या मकसद है? आप छोटे स्तर की पढ़ाई, प्राइमरी सेक्शन की पढ़ाई बंद करना चाहते हैं क्या? आप स्कूल बंद कर बंद करना चाहते हैं, उधर आप यूनिवर्सिटी बंद करना चाहते हैं। तो पूरी तरीके से छात्र छात्राओं का जीवन इस वक्त अंधकार में धकेल दिया है भाजपा सरकार ने।
0: तो एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट से पहले ही विपक्ष तरह तरह के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहा था। तो दूसरी तरफ लगातार दूसरे दिन भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा विपक्ष की ओर से सबसे बड़े मुद्दों में से एक नजर आया। तो अयोध्या का मुद्दा समाजवादी पार्टी लगातार दिल्ली से लखनऊ तक जोर शोर से उठा रही है। दिल्ली से संसद भवन के बाहर रोज समाजवादी पार्टी के सांसद दानपत्र लेकर बैठे जा रहे हैं और उसमें विपक्षी दलों के सांसद रोज कुछ न कुछ चढ़ावा डाल रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दानपत्र में दान की रकम डाली है।
4: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस वक्त एक बार फिर से आपको दान पेटी में चंदा दान करते हुए दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी ने ये तरीका निकाला है कि बीते दिनों में लगातार राम मंदिर के मुद्दे पे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए और सदन के अंदर चर्चा की मांग जिस तरह से विपक्ष कर रहा है राम मंदिर के चंदा चोरी के विषय पर, इसी तरीके से हर दिन यहां पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विपक्षी सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद मकर द्वार के ठीक बाहर धरने पर बैठते हैं। विपक्षी सांसदों से दान भी मांगा जाता है और हर दिन इसकी काउंटिंग बकायदा विपक्ष के द्वारा समाजवादी पार्टी के सांसदों द्वारा किया जाता है और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद इस दान पेटी की रखवाली करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक सामने से प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं कांग्रेस सांसदों के साथ और जो विरोध प्रदर्शन है वो समाजवादी पार्टी का यहाँ चल रहा है। मांग कर रहे हैं कि सदन के अंदर राम मंदिर चंदा चोरी के विषय पर जो है डिटेल्ड चर्चा हो और जब तक वो नहीं होता तब तक इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी है। अमित भारद्वाज, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, आज तक।
0: देखिए, कहने को तो समाजवादी पार्टी चंदा और चढ़ावा चोरी मुद्दे को उठाए रखने के लिए कुछ न कुछ रोज कर रही है, लेकिन खेल खेल में ही एसपी के दान पात्र में हजारों रुपए जमा होने लगे हैं। अब उसकी रखवाली खुद डिंपल करने लगी है।
5: इस समय जो आपको दिख रहा है पीछे वो है जिस जो दान पात्र है जो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता डिंपल यादव भी आपको पीछे फ्रेम में नजर आ रही होंगी, वो यहाँ पर बैठे हैं और पैसे की गिनती इस समय यहाँ पर की जा रही है। ये कोशिश यही हो रही है कि जो पैसा है उसको इकट्ठा किया जाए, सबके सामने जो है पैसे की गिनती की जाए और उसके बाद कोशिश ये है कि ये जो पैसा है इसको दिया जाए आखिरकार सही में राम मंदिर के अंदर। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बाकी जो ट्रस्ट के लोग थे उन लोगों ने जिस तरीके से चंदा चोरी करी है, समाजवादी पार्टी आगे आके वाकई में जो असली पैसा है जो यहाँ पे सबके सामने गिना जा रहा है और रिसीट भी दी जा रही है, इस पैसे को वापस लेके जाएंगे अयोध्या और राम मंदिर के कार्य में इस पैसे को लगाया जाएगा। मकर द्वार से ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।
0: तो समाजवादी पार्टी संसद के बाहर रोज राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रही है। संसद के अंदर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आज तो राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से माफी की मांग कर डाली है।
6: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धाजनों की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का सेवा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज दो बड़ी खबरें चर्चा में है। एक खबर तो उस तस्वीर की चर्चा है जिसमें चंपत राय पहली बार सार्वजनिक रूप से साधु संतों से मिलते जुलते दिखाई पड़े हैं। दूसरी खबर है कि चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी अब बैंक में जमा ट्रस्ट के लॉकर्स के अंदर संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करेगी। इसके लिए एसआईटी की टीम अयोध्या में स्टेट बैंक के नया घाट ब्रांच के ट्रस्ट के लॉकर्स की पड़ताल करने वाली है। एसआईटी के सदस्य इन लॉकर्स में रखे गए सोने चांदी के ईंट, बहुमूल्य आभूषणों और अन्य जो मूल्यवान वस्तुएं जो कीमती हैं, उनका अभिलेखों के साथ मिलान करेगी। यदि रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में किसी भी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो उसकी अलग से गहन जांच की जाएगी। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बैंक अधिकारियों के साथ ट्रस्ट के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। अब इससे पहले ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने सचिव जगदीश ओफले के साथ मिलकर अकाउंट और लॉकर के सामानों का रिकॉर्ड तैयार किया है और उनकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। उधर एसआईटी ने भी मंदिर परिसर में मौजूद तथ्यों से लेकर बैंक कर्मियों के बयान तक दर्ज कर चुकी है। लॉकरों के सत्यापन के बाद एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। अब उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अब इसी बीच एक और तस्वीर इन दिनों देखी गई है, जिसे लेकर अयोध्या में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और तस्वीर ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पद से इस्तीफा देने के बाद फिर से संत समाज के बीच जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इन दिनों वो अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान वो संतों को प्रसाद भेंट कर रहे हैं और राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी भी साझा कर रहे हैं। अब सूत्र बता रहे हैं कि चंपत राय ने निर्मोही अखाड़ा के महंत और ट्रस्टी दिनेन्द्र दास से भी मुलाकात की। कहा जा रहा है कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी संतों के साथ संवाद स्थापित कर पूरे घटनाक्रम का पक्ष रख रहे हैं, ताकि प्रकरण को लेकर फैली जो भ्रांतियां हैं और सवाल हैं उनका तथ्यात्मक जवाब दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान एक और सरकारी बयान विवाद की जड़ बन गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि मदरसा चाहे कहीं का भी हो, वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है।
7: यूपी के विधानसभा सत्र के दौरान एक तरफ विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, उस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसे आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है।
8: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है।
9: ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट।
7: केशव मौर्य का यह बयान इसीलिए विपक्ष के निशाने पर आया है क्योंकि यूपी सरकार मदरसा शिक्षा से जुड़े संशोधनों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक की पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। खबर है कि यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
10: तो ये करें क्या, हवा खराब चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
7: दरअसल योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक की पढ़ाई ही करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें अब यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच केशव मौर्य के बयान ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका दे दिया।
11: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें ITI की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और इन मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे।
7: विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर अली जौहर की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यहां वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर, देयर्स ऑलवेज समथिंग टू लिसन टू ऑन TuneIn, म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल इन वन प्लेस। Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
15: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
13: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
14: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सो सॉरी।

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पूरा विपक्ष लामबंद। आक्रामक विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस करती है सिलेक्टिव राजनीति, पप्पू यादव ने किया साधु संतों का अपमान, एनडीए के मंगल मिलन में प्रधानमंत्री।

0: सीएम विजय की दोस्त त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद नेता विपक्ष उदय निधि स्टालिन गिरफ्तार, पुलिस और समर्थकों में झड़प। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। रुक करेंगे नॉनस्टॉप 100 का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मॉनसून सत्र का दूसरा दिन विधानसभा परिसर के बाहर चढ़ावा चोरी, शिक्षक भर्ती और कृषि उत्पादों की महंगाई पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास योजनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। यूपी अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के लिए 17,399 करोड़ का प्रस्ताव, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट। यूपी अनुपूरक बजट पर सरकार का दावा, विकास और प्राथमिकता वाली योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, पेशी के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधानसभा में चढ़ावा चोरी मामले पर सपा का हंगामा, नेता विपक्ष माधव प्रसाद पांडे ने सरकार को घेरा, सदन में मौजूद एसपी विधायकों ने नारे लगाकर जताया विरोध। बिहार नतीजों पर सपा का बीजेपी पर हमला, एसपी ने कहा बिहार तो बस शुरुआत है, यूपी में बीजेपी साफ होगी, बीजेपी की हार तय। सपा विधायक अतुल प्रधान के मामले पर सियासी तंज, कहा ओटीटी देखना हो तो विधानसभा आ जाइए। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मदरसा पर विवादित बयान, कहा मदरसा आतंकवाद को पैदा करने की फैक्ट्री है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे वाले बयान पर एसपी नेता शिवपाल यादव का पलटवार, आज तक से बातचीत के दौरान कहा बीजेपी के दफ्तरों से मिलते हैं आतंकी, बीजेपी पर लगाया ट्रेनिंग देने का आरोप। नितिन नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला, बोले अहंकार रखने वालों को भगवान ने नचा दिया, वोट चोरी से लेकर नौकरी आरक्षण चोरी का बताया पड़ना। लोकसभा में आज मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन, लोकसभा में हंगामे के साथ सदन की शुरुआत, 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित। सरकार पर हमलावर दिखा विपक्ष, नीत मामले और छात्र प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के साथ गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने उठाए सवाल। गृहमंत्री के साथ पीएम की गैर मौजूदगी पर विपक्ष का विरोध, संसद के बाहर विपक्ष ने पोस्टर के साथ नारे लगाकर जताया विरोध। खड़गे ने गिनाई विपक्ष की मांगे, बोले पीएम मोदी और गृहमंत्री पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में दे जवाब। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक, मंगल मिलन, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में शामिल, संसद लाइब्रेरी भवन में जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में बैठक। आज से 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, दोपहर बाद असम के डिब्रूगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। असम के बाद 5 अगस्त को नागालैंड पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा, बाढ़ प्रभावित परिवारों से संवाद करेंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा। नागालैंड के बाद 6 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा, फ्लैश फ्लड और बादल फटने से क्षतिग्रस्त सड़क पुल और राहत शिविरों का करेंगे निरीक्षण। तमिलनाडु में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार, सीएम विजय की दोस्त त्रिशा पर किया था आपत्तिजनक टिप्पणी। 3 उपचुनाव में बीजेपी का झटका, बांकीपुर और दतिया में हार, गुजरात के माजलपुर में बीजेपी के सिर सजा, जीत का ताज। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कहा चुनाव नतीजों पर करेंगे आत्ममंथन। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में बड़ी उलटफेर, प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को दी करारी हार, करीब 19,000 वोटों से जीते जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर।

चुनावों में बीजेपी को झटका, बांकीपुर और दतिया में हार, गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी की सरसजा जीत का ताज। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कहा चुनाव नतीजों पर करेंगे आत्ममंथन। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में उलटफेर, प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को दी करारी हार। करीब 19,000 वोटों से जीते जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का 30 साल पुराना गढ़ 30 दिन में ढा दिया। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में कई दलों की जमानत जब्त, बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार भी नहीं बचा पाए जमानत। अयोध्या में इस्तीफे के बाद पहली बार कैमरे पर आए चंपत राय, संतों से मुलाकात कर साजवा की मंदिर प्रकरण में अब तक की कार्रवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी, ट्रस्ट की संपत्तियों और लॉकर्स की होगी जांच। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एसआईटी करेगी एसबीआई लॉकर्स में रखी संपत्तियों का सत्यापन, सोने चांदी और आभूषण की होगी जांच। चंदौली में कांवड़ यात्रा को लेकर रेलवे अलर्ट मोड पर, डीडीयू रेल डिवीजन में बना वॉर रूम, सीसीटीवी से स्टेशन की निगरानी। प्रयागराज में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कई इलाकों में जलभराव। वाराणसी में एनडीआरएफ ने की 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग, गंगा नदी के बढ़ते हुए जलस्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए की जा रही है पेट्रोलिंग। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्म दिवस पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के किए दर्शन। सावन के पहले सोमवार पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह, बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के किए दर्शन। मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बीच रोजाना पहुंच रहे हजारों भक्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखी नोटों वाली कांवड़, कांवड़ में लगाए गए 10, 20, 50 और 100 के अनगिनत नोट, भोले के जलाभिषेक के लिए दिल्ली जा रहे हैं कांवड़। हरिद्वार कांवड़ मेले में दिखा नया रंग, अब पैदल कांवड़ के साथ अनोखी और विशाल कांवड़ लोगों का खींच रही है ध्यान। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण, कांवड़िये शिव और परिवार अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल ले जा रहे हैं। डीजे की धुन पर नाचते गाते दिख रहे हैं कांवड़िये, हाईवे पर बम बम भोले के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का अनोखा रूप, शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियों वाली कांवड़ लेकर निकल रहे हैं कांवड़िये। मुजफ्फरनगर में ओवर साइज डीजे कांवड़ यात्रा पर पुलिस की सख्ती, तेज डीजे सेटअप को हरिद्वार से आगे जाने की अनुमति नहीं। रेज के कोरखबल में बादल फटा, अचानक आई बाढ़ की खानाबदोशों का झुंड फंसा। दक्षिण कश्मीर में भारी बारिश से आई बाढ़, कई घर जलमग्न। लगनई और अबूरा के पास प्लास्टर से सड़क बही, पहलगाम का सड़क रास्ता टूटा, दोनों ओर पर्यटक समेत यात्री फंसे। श्रीनगर में बारिश से गर्मी से मिली राहत, लाल चौक में सुहाने मौसम का मजा लेते दिखाई दिए लोग। बांदीपुरा में प्लास्टर से सड़क बनी दरिया, कई गांव का संपर्क टूटा। जम्मू कश्मीर के रजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह। जोजिला रोड पर भारी बारिश से भूस्खलन, श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी रूप से यातायात पर रोक। चमोली में कर्णप्रयाग नैनी सैण मार्ग पर अचानक दरका पहाड़, खौफनाक मंजर आया सामने। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूतसान में जगह जगह दरारें, घंटों ठप पड़ा रहा ट्रैफिक। विदिशा में जान जोखिम में डालकर नदी पार करे स्कूल जाते बच्चे, वीडियो हुआ वायरल। कौशाम्बी में लूटपाट करने वाले बदमाश से मुठभेड़, पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बागपत में हरिद्वार से कांवड़ विसर्जित कर लौट रहे कांवड़ियों का ऑटो पलटा, हादसे में महिलाओं समेत 6 लोग घायल। बांदा में शराब पार्टी के बाद स्ट्रीट शीटर दोस्त की हत्या, दोस्त पर ही कत्ल का आरोप, इलाके में हड़कंप। अमेठी में प्रेम विवाह के बाद युवक की हत्या का आरोप, घर बुलाकर धारदार हथियार से वार। अंतर्देशीय गोदावरी नदी में उफान पर पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर। मुंबई के साकीनाका में चलती बाइक में लगी आग, ट्रैफिक पुलिस ने टाला बड़ा हादसा। असम के कछार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 28 करोड़ की हीरोइन जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में खड़ी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मुंबई हाईवे पर गड्ढे में जा गिरी बाइक, टीडीआरएस जवान की गई जान, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। इंदौर में वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए की शराब से भरा आयशर वाहन जब्त, चालक गिरफ्तार। देहरादून में मां ने अपने नाबालिग पुत्री को बेचा, सौदे के बाद रची अपहरण की झूठी साजिश, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरदोई में दर्दनाक हादसे का लाइव वीडियो, वाहन में बिजली का तार फंसने से गिरा पोल, सड़क से गुजर रही 9वीं की छात्रा की मौत। कानपुर में फेसबुक पर महिला से दोस्ती पड़ी भारी, बुजुर्ग ने ऑनलाइन गवाए 1,25,00,000 रूपये, मामले के संज्ञान लेते हुए पुलिस ने फ्रीज कराए 22,00,000 रूपये। छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ निवेश मामले में धोखाधड़ी के आरोप, कोर्ट ने आदेश पर 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई की। गुजरात के अंबाजी में सीएनजी पंप पर बेकाबू कार ने चारपाई पर बैठे शख्स को जोरदार टक्कर मारी, मौके पर मौत।

0: के पुराने गढ़ में सेंधमारी की है, उस किले को ढा दिया है। प्रशांत किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे। 30 साल तक जो किला रहा बीजेपी का, उसको 30 दिन में कैसे प्रशांत किशोर ने ढा दिया? क्या आपको मालूम था कि ऐसा करना संभव है, क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ है बिहार में बीजेपी का बांकीपुर?
1: वो तो है, लेकिन गढ़ तो जनता ही बनाती है और बिगाड़ती है। मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा को इसलिए हराया है क्योंकि जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार को दिया है चुनाव जीतने के बाद, नवंबर 2025 में इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार पर थोपा है एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है। एक सातवीं फेल व्यक्ति 7 लोगों की हत्या में जो जेल में रहा हो, उस व्यक्ति को सिर्फ आप भाजपा का चोला पहनाकर अगर बैठा देंगे तो जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरा, जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार रहा है, जहां ये चर्चा घर घर चली, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी जनता यहीं पर हम्मी को वोट देगी, उस अहंकार के खिलाफ वोट पड़ा है। और तीसरा, भाजपा के जो विधायक और सांसद हैं, कहीं ना कहीं वो सब इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, वो जानते हैं कि जब चुनाव होगा काम करें न करें हर हालत में जनता जाति धर्म के नाम पर वोट हमी को देगी, नहीं देगी तो मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगा जाएगा, और कुछ नहीं चलेगा तो लालू के जंगल राज का डर दिखाकर वोट लिया जाएगा। तो इन तीनों चीज का जो कंबाइंड असर रहा है, उसकी वजह से लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया।
0: क्योंकि इस चुनाव के पहले भी हमने आपसे बात की थी, आपने इसमें एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की वो था जनमत संग्रह, और आप ये कह रहे थे कि भाई ये एक रेफरेंडम हो सकता है इसमें मौजूदा सरकार पर, सम्राट चौधरी पर, और आप ये भी कह रहे थे कि भाई एक वोट या एक विधायक जीत जाएगा तो सरकार में कुछ नहीं होने वाला है, एक विपक्ष भी जीत जाएगा तो कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको, ये नैरेटिव जो है लोगों के घर कर गया, दिल में भाया?
1: नहीं, देखिए, लोकतंत्र है और जिन लोगों ने भाजपा को एनडीए को वोट दिया उसमें एक प्रमुख मुद्दा प्रधानमंत्री ने आकर खुद बनाया कि जंगल राज नहीं लौटना चाहिए, लेकिन उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को आपने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और लोकतंत्र में यह संभव है कि जो पार्टी जीतकर आए उसका नेता जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनाएगा तो जनता के पास भी यह अवसर है अपना मत देने का। तो पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री यहां बना है और लोगों ने जब वोट दिया तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट मोदी जी को मैसेज दिया है ये लोगों ने, क्योंकि ये भाजपा के विरोधी लोग नहीं है, ये भाजपा के समर्थक हैं। गौर करने वाली बात है कि बांकीपुर में जिन लोगों ने वोट दिया है जनसुराज को, ये ज्यादातर लोग भाजपा के समर्थक लोग हैं। इन्होंने क्यों वोट दिया? इसलिए वोट दिया क्योंकि उनको भाजपा का अहंकार स्वीकार्य नहीं है, उनको भाजपा का ये वक्तव्य नहीं स्वीकार्य है कि कुत्ता बिल्ली को भी हम देंगे तो भी तुमको वोट देना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर उनको ये बात नहीं स्वीकार्य है कि जिस बिहार को जंगल राज से मुक्त करने के नाम पर आपने वोट लिया, उसी जंगल राज के किसी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों के पास मोदी जी को फोन करने का अवसर तो है नहीं, लोग मोदी जी से मिलकर तो बात नहीं कर सकते हैं। लोगों के पास क्या अवसर है? वोट का अवसर है। तो हमने लोगों को बताया कि भाई अगर आप मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व आपको स्वीकार्य नहीं है तो यही मौका है आपके पास, आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, मोदी जी को खबर होगी। और आज मैं समझता हूं कि मोदी जी को खबर हुई है कि 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, सारे समीकरण ध्वस्त है। जब ये वो भाजपा है जो कहती हम बूथ जीतते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, शक्ति केंद्र बनाते हैं, कहां गया सब?
0: ये बात आप मानते हैं कि आप

0: के इस कार्यशैली से नाराज है जहां विधायक मंत्री बस बैठा रहता है और 5 वर्ष के बाद मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है, लालू जी का डर दिखाकर वोट मांगता है। संभव है कि बीजेपी के दल से नाराज ना हो लेकिन बीजेपी के कार्यशैली से नाराज है।
1: सम्राट चौधरी साहब की समस्या क्या है, क्योंकि पिछले 2025 के चुनाव से जो सवाल पूरा कर लीजिए, उससे पहले से आप उनके खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, बातें रख रहे हैं, अभी भी कह रहे हो कि पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं कि भाई सम्राट चौधरी अगर हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको स्वीकार है?
0: ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बात आप ये समझिए कि सम्राट चौधरी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, वो तो हमको कैमरे पर भाई बोलते हैं, कल भी बधाई दिया है। बात सम्राट चौधरी व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। क्या ऐसा आदमी करेगा जो अपने डिग्री के बारे में गलत बताता है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो सातवीं फेल है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है? क्या भाजपा में और कोई पढ़ा लिखा समझदार काबिल चरित्रवान व्यक्ति नहीं बचा है? कुछ लोग कह रहे भाई सामाजिक समीकरण के तहत बनाया गया, कुशवाहा समाज को बनाया गया। भाई मैं तो कैमरे पर कह रहा हूं कुशवाहा समाज के आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन उस समाज में भी तो एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक काबिल, एक से एक चरित्रवान लोग हैं। उस जंगल राज वाले आदमी को क्यों बना रहे हो? और अगर जंगल राज वाले आदमी को बना रहे हो तो फिर जनता को ये क्यों कह रहे हैं कि आप जंगल राज के विरोध में हैं? आप जिस जंगल राज के खिलाफ लोगों ने आपको वोट दिया है उसी के एक आदमी को अगर आप भगवा झंडा पहनाकर भगवा ओढ़नी ओढ़ाकर बैठा दीजिएगा तो जनता को स्वीकार्य नहीं।
1: मतलब आपको लगता है सम्राट चौधरी आज बीजेपी में भले हैं लेकिन जंगल राज के प्रतीक हैं?
0: प्रतीक भाई, वो जब बने तो सबसे पहले उनके पक्ष में कौन बोला? साधु यादव बोले। पटना में जो लोग पत्रकारिता करते हो जरा पूछ ले कि बोरिंग रोड इलाके में सम्राट चौधरी क्या करते थे लालू जी जब मुख्यमंत्री थे? तो भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात की इतनी चिंता और बिहार के लोगों के लिए 5 किलो अनाज, ये तो परिपाटी टूटनी चाहिए ना भाई। गुजरात के 25 MP जीत कर गए हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने भी तो 35 MP जिताकर भेजा है, तो बिहार के बच्चों के लिए भी तो पढ़ाई की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी तो रोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो। यहां पर आप सिर्फ 5 किलो अनाज की बात क्यों करते हैं? तो ये तो दोहरापन है ना। आप बिहार में भी सबसे काबिल आदमी को भेजिए, पूरे देश में जो सबसे काबिल व्यक्ति हो बिहार का हो उसको आप बनाइए बिहार में मुख्यमंत्री, हम लोग का कोई विरोध नहीं है। तो बिहार में तरक्की होनी चाहिए भाई, मुख्यमंत्री तो बिहार भाजपा का ही होगा, मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर तो बन नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा। तो हम लोग तो आपसे हाथ जोड़कर इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि किसी अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी तरक्की हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पढ़ाई हो, हम लोग के बच्चों के लिए भी रोजगार हो, पलायन बंद हो, बस मेरा इतना ही एजेंडा है।
1: सम्राट चौधरी के नेतृत्व से आपको समस्या है कि उनको बदलना चाहिए?
0: आप भाई इससे ज्यादा क्या समस्या होगी? आप बताइए कि जो आदमी सम्राट चौधरी के पिछले 3 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, उन्होंने क्या बात कही है? अपराध, अपराधी, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, गमछा देख कर मारो, गोली देख कर मारो, जात पूछ कर मारो, ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या उन्होंने पढ़ाई की बात की? क्या उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कैसे सुधारना है बात की? क्या पलायन कैसे रुकेगा इस पर बात की? तो हम लोग तो मोदी जी को बस इतना ही कह रहे हैं कि सर आपको 2-2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, थोड़ा तो तरस खाइए बिहार के लोगों पर। हम लोग सबसे गरीब है, सबसे पिछड़े हैं, बिहार के लोगों पर थोड़ा तो तरस खाइए। कितना दिन तक हम लोग के बच्चे वंदे भारत में बैठ के जानवरों की तरह जाकर गुजरात में नौकरी करते रहेंगे? 1-2 फैक्ट्री बिहार में भी तो लगवाइए भाई
1: प्रशांत जी। लेकिन आपको लगता है
0: और अगर नहीं लगवाइएगा तो जिस तरह से बाकीपुर में रिवोल्ट हुआ है अगले लोकसभा में रिवोल्ट आपको दिखेगा।
1: आपको लगता नहीं है कि ये जो सिचुएशन, ये टाइमिंग जो आपके चुनाव का रहा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज रहा? क्योंकि आपने, अगर ये चुनाव नहीं होता तो पहले तो आप 2030 तक आपको मेहनत करनी पड़ती, लेकिन ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये हुआ। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे 3-4 महीने में बिहार में ऐसे हुए, शहीद छात्रा की हत्या, भोजपुर एनकाउंटर, ब्राह्मण समाज का लड़का भरत तिवारी मारा गया, उसको आपने लपका, वहां पे आप गए भी वहां पे, साथ ही साथ ये जो युवाओं का प्रोटेस्ट अभी हुआ है, तो 3-4 ऐसे मुद्दे हुए जो बीजेपी को खिलाफ जा रहे थे।
0: वक्तव्य पहले कभी सुने हो राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैंने हमेशा कहा है कि जिस देश में 60% लोग दिन में $2 नहीं कमाते हैं वहां पर विपक्ष कभी सरकार के खिलाफ कमजोर नहीं हो सकता, विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। हर आदमी सरकार का भक्त नहीं है, मोदी जी जब जीत कर भी आते हैं तो 34-35% वोट मिलता है, मतलब 65% आदमी सत्ता के विपक्ष में है। तो आप लोग ये बताते हैं कि पूरा देश एकदम मोदीमय हो गया, ठीक है 35% वोट मिला है इसलिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग खुश है, सब आदमी को कोई परेशानी नहीं है। तो आज मुद्दे आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। भरत तिवारी का आपने मामला उठाया, ये यहाँ का बीजेपी का एक
2: दो

0: मतलब ठग टाइप का एक एमपी है, क्या नाम है जो गाना गाते हैं,
1: मनोज तिवारी।
0: अभी चुनाव के दौरान भरत तिवारी के लोगों को लाकर सम्राट चौधरी से मिलाया, 50 लाख रुपए का परिवार को लालच दिया। आप जरा अंदाजा लगाइए न्याय का मतलब क्या है। कैमरे पर हम लोगों ने कहा है कि न्याय का मतलब है गृह विभाग की भूमिका की जांच। न्याय का मतलब यह है कि एसटीएफ के जिन लोगों ने गोली चलाई उनसे यह पूछा जाए कि आपको गोली चलाने का आदेश किसने दिया है। चुनाव के दौरान दिल्ली का सांसद आता है, उस परिवार को जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त स्थिति में है उनको लाकर सम्राट चौधरी से मिलाता है वोट के लिए। अब मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं मनोज तिवारी आओ और उस परिवार को न्याय दिलवाओ, और अगर नहीं दिलवाओगे तो ये ढोंग करना, गाना गाना और बिहार में आकर वोट मांगना बंद करो। बिहार दिल्ली नहीं है, यहाँ जनता दौड़ा कर मारेगी, अगली बार वोट मांगना छोड़ दो, घुस नहीं पाओगे बिहार में।
1: सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग आप क्यों कर रहे हैं?
0: मैं इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा के नेतृत्व को आग्रह कर रहा हूँ कि सर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया है, बड़े आशा से वोट दिया है, लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं, सर आप प्लीज ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए जो बिहार में शिक्षा और रोजगार ला दे, कम से कम पलायन बंद हो, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो। बिहार बहुत हो गया अनाज की राजनीति, बहुत हो गया धर्म और जात की राजनीति, बिहार की चिंता कीजिए। सम्राट चौधरी दिल्ली बैठे बैठ कर बिहार के लिए ले आए पैकेज, ये घोषणा करें कि हर प्रखंड में, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हर प्रखंड में एक फैक्ट्री लगेगी, अमित शाह जी ने कहा है, कहां लग रही है फैक्ट्री, 8-9 महीने बीत गए। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सम्राट चौधरी से किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए।
1: आपके अकेले कहने से तो हटा नहीं देगी बीजेपी,
0: हटाए। मान लीजिए कि परीक्षा में आप टर्मिनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आप कहिएगा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर फाइनल में भी फेल हो जाइएगा। ये अंतिम चुनाव नहीं है ना बिहार में,
1: फाइनल के
0: आगे और चुनाव होगा,
1: लोकसभा
0: चुनाव से पहले भी चुनाव होगा, और बाई इलेक्शन होंगे और आगे चुनाव होंगे। तो अगर मोदी जी या भाजपा का नेतृत्व ये रिस्क लेना चाहता है तो ले रिस्क, सम्राट चौधरी के नाम पर रह जाए।
1: इस चुनाव में ये भी देखा गया प्रशांत जी की जो सवर्ण जाति है, फॉरवर्ड कास्ट है, उसने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से वोट दिया है। महागठबंधन से जो मुस्लिम मतदाता है उनका वो भी आपके तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ है।
0: मत फैलाइए, जब मैं कह रहा हूँ कि 400 बूथ पर जनसुराज जीता है तो क्या 400 बूथ पर सवर्ण रहते हैं, क्या 400 बूथ पर मुसलमान रहते हैं? 3 बरस से जो बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई जाति धर्म दल और नेता का अंधभक्ति छोड़ो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, 3 बरस में मैं लोगों को नहीं समझा पाया, बाकीपुर के लोग समझे, उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि पूरा बिहार बाकीपुर नहीं है, लेकिन बाकीपुर से शुरुआत हुई है। अब अगर यहां पर 1-2 साल में लोगों को उनके जीवन में परिवर्तन दिखेगा तो निश्चित तौर पर बिहार के अन्य हिस्सों में भी इसका असर आपको दिखेगा।
1: जेंजी मूवमेंट आपको लगता है एक ऐसा फैक्टर था जो आपके पक्ष में गया, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले 22 और 25 तारीख
0: मूवमेंट का वोट पर कोई असर नहीं है, परसेप्शन का असर हो सकता है, लेकिन बिहार में जेंजी मूवमेंट बाकीपुर में ऐसा नहीं दिखा कि बहुत यंग लड़के निकलकर वोट किए हों। जिन लोगों ने वोट किया है वो ट्रेडिशनल भाजपा के राजद के वोटर रहे हैं, जो अपने दलों से नाराज थे, अपने दलों के कार्य शैली से खुश नहीं थे, उन्होंने अलग हटके वोट किया है।
1: इधर प्रधानमंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इधर आपने उनका किला ढा दिया।
0: नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो बिहार के होने के नाते मेरे लिए गौरव की बात है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए कि हम, मैंने आपको पहले कहा, हम लोग इतने पिछड़े हैं, बिहार का आदमी बाहर जाता है चाहे अच्छा हो खराब हो, उसको बिहारी का गाली दिया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उस नजरिए से बिहार का आदमी बीजेपी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो गौरव की बात है। मैं उस बात का कभी, आपने कभी मेरे मुंह से उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना होगा, और ये सिर्फ राजनेता के तौर पे नहीं कह रहा हूं, कोई अभिनेता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, बिहार का झंडा अगर कोई ऊपर कर रहा है मेरा समर्थन उसको है। लेकिन नितिन नवीन जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप मजबूत अध्यक्ष बनिए, रबर स्टैंप बन के मत रहिए, बिहार के लिए कुछ कीजिए, बिहार भाजपा के लिए भी कुछ कीजिए, बिहार में भाजपा में अच्छे लोग।
1: रबर स्टैंप है नितिन नवीन,
0: अभी तो यही दिख रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि रबर स्टैंप है, मैंने कहा रबर स्टैंप मत बनिए, मजबूत भाजपा के अध्यक्ष बन के दिखाइए।
1: अच्छा देखिए, आपकी जीत बीजेपी को जो सदमा लगे या सेटबैक लगा वो तो लगा है, लेकिन जो एक परसेप्शन ये भी है कि ज्यादा बड़ा झटका तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि आप अब देखिए वो अपोजिशन का जो स्पेस इकलौता सिर्फ तेजस्वी यादव के पास था उसमें आप अपने सेंधमारी कर दी है। अब बिहार में आपका नाम भी विपक्ष का बड़ा चेहरे के रूप में देखा जाएगा, मुसलमानों का वोट भी अब क्या लगता है आरजेडी से छिटक कर जनसुराज में आएगा?
0: इस तरह से नहीं देखता हूँ, विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा का है, विपक्ष तेजस्वी यादव हैं, हम सड़क पर हैं, जनता तीनों
1: सदन में जा रहे हैं,
0: सदन में जा रहे हैं, लेकिन जनसुराज तो सड़क पे ही है, हम लोग तो विपक्ष में नहीं है। जनता तीनों के काम को देखेगी। अब विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं ये उनका काम है, जनता उनको देख रही है। हमने तो उनको यूरोप नहीं भेजा था एक महीने के लिए, वो तो खुद गए थे। सीबीआई ईडी या बीजेपी ने भेजा हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमने तो नहीं भेजा है। बिहार की जनता ने तो नहीं कहा था कि आप यूरोप चले जाइए। तो अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपको काम करने से कोई रोक नहीं रहा है, और मेरा उस पद के लिए कोई दावा नहीं है। हम तो अपने जो काम कर रहे हैं वही काम आगे भी करेंगे। हम समाज में हैं, लोगों की आवाज उठाने के लिए अपनी जो ताकत है उससे खड़े।
1: तेजस्वी यादव को आप एक तरीके से नॉन
2: वक्त शो से ब्रेक का उछला बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
5: A burst pipe. A dead water heater. The AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price void in Florida.
6: The world keeps moving, changing, and jobs are changing along with it. That's why you need an education that keeps up. WGU prepares you for where work is going and fits the life you're living now. You don't just earn a degree. You build skills that help you move your career forward and adapt as your field evolves. Your turn starts now. Learn more at wgu.edu.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven.
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
10: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
11: सवारी सोकुडो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
5: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
6: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
7: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
8: Kuch to baat hai is dil mein.
9: In association with
10: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
9: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade aaram se.
11: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Wait, lifestyle ke liye 10 alag pages kyun follow karna? Health, fitness, yoga, mental wellness, sab kuch ek hi jagah. FitTak. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade karo easy way. Watch only on FitTak YouTube.

अमराज चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर ने खोला मोर्चा, कहा बीजेपी को बदलना चाहिए। सीएम बाकीपुर विजय के बाद आज तक पर पीके का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बाकीपुर में बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात, संसद भवन में हुई मुलाकात। जेडीयू के अंदर से आवाज, नीतीश होते तो ना हारते। उपचुनाव नतीजों के बाद एनडीए के मंगल मिलन में साथ साथ मुस्कुराते दिखे प्रधानमंत्री नितिन नवीन। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस करती है सिलेक्टिव राजनीति। चुनाव से पहले योगी सरकार ने खोला खजाना, विधानसभा में पेश किया 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, विपक्ष का लगातार हंगामा। तमिलनाडु की राजनीति में भयंकर उबाल, सीएम विजय की दोस्त त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, पुलिस और समर्थकों में झड़प।

नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात फरीदाबाद में हुई सनसनीखेज वारदात की करेंगे, जहां पर एक स्कूल टीचर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना फरीदाबाद के सिकरौना इलाके की है, जहां आरोपी ने 27 बार चाकू मारकर स्कूल टीचर को मौत के घाट उतार दिया।

0: एक ऐसी वारदात जिसकी तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, किसी का भी दिल खौफ से भर जाए, क्योंकि इतनी बेरहमी से एक महिला टीचर का कत्ल हुआ है, वो भी स्कूल के भीतर जहां वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी। वहीं आरोपित ने लगातार 27 बार चाकू मारकर उसकी जान ले ली। महिला टीचर चिल्लाती रही, जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही। एक शख्स ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपित के सिर पर ऐसा खून सवार था कि वो रुका ही नहीं। चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोलता रहा और आखिरकार महिला टीचर की जान ले ली। स्कूल में टीचर के मर्डर की यह सनसनीखेज वारदात दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद के सिकरौना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक अमित नाम का आरोपित महिला टीचर को बीते कई दिनों से परेशान कर रहा था और जब महिला ने इसका विरोध किया तो वो जान लेने पर उतारू हो गया।
1: जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगातार अमित को पुलिस ट्रैक कर रही थी, उसके पीछे कई टीमें लगाई गई थी और अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल अमित जब पहुंचा था तो उसने देखिए दो चीजों का फायदा उठाया, एक तो संध्या के पति लंच लेके जाते थे दोपहर में, दूसरा ठीक स्कूल के सामने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सड़क वड़क बन रही है तो इसलिए धूल रहती है, तो धूल की वजह से वहां पर चेहरा ढक लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल उस इलाके में कुछ लोग अपने को धूल से बचाने के लिए चेहरा ढक लेते हैं। तो जब पहुंचा वहां पर अमित तो उसने पहुंच करके जो बाहर जो शख्स मौजूद था उसने विकी का मैसेज भिजवाया, यानी विकी संध्या का जो हस्बैंड है उसके नाम से मैसेज भिजवाया और संध्या आई, लेकिन आप देखिए सीसीटीवी में क्लियर है कि वो दरवाजे के पहले रुक गई, उसे शायद शक हुआ और उसने हाथ से बकायदा पकड़ के संध्या को बाहर की तरफ खींचा और उसके बाद उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। कोई बातचीत नहीं, किसी तरीके की कोई उसके पहले कोई आर्गुमेंट नहीं, सीधे उसने चाकू निकाला और अटैक कर दिया।
0: हत्याकांड की इन तस्वीरों को देखिए, वीडियो में एक नकाबपोश शख्स दिख रहा है, वो स्कूल परिसर में पीड़िता का इंतजार करता दिख रहा है। जैसे ही टीचर बाहर आती है आरोपित उसे दबोच लेता है और एक के बाद एक कई बार उस पर चाकू से हमला बोल देता है। वीडियो में महिला की चीख पुकार भी सुनाई दे रही है, जिसे सुनकर एक शख्स मदद के लिए आता है, लेकिन आरोपित उसे भी चाकू दिखाकर पीछे कर देता है। और फिर से महिला पर वार करना शुरू कर देता है। आरोपित पीड़िता पर तब तक हमला करता है जब तक वो मर नहीं जाती।
2: ये संध्या नाम की टीचर थी, हमारे स्कूल में पढ़ाती थी लगभग एक साल से, और सुबह लगभग 9:30 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज आई बाहर गैलरी से, तो मैं वहां भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा उसको बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करने जा रहा था। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, क्या कर रहा रुक जा, तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूं, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था।
0: सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की, कई जगहों पर छापे मारे और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद में हुई वारदात बेहद जघन्य है और इसकी तस्वीर बेहद खौफनाक। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ हिमांशु मिश्रा आज तक।
3: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, फुकेट से दिल्ली आ रहे विमान में एयर टर्बुलेंस से कई यात्री घायल हुए हैं। दिल्ली विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये प्राथमिक जानकारी मिल रही है, दिल्ली लैंडिंग होनी थी इस विमान की, फुकेट से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का ये विमान बताया जा रहा है, जिसमें अब सुरक्षित लैंडिंग हुई है। एयर टर्बुलेंस में कई यात्री घायल हुए हैं ये बताया जा रहा है। अस्पताल में भी इन्हें अब भर्ती करा दिया गया है। घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, चोटें गंभीर हैं, यही वजह है कि इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। विमान में एयर टर्बुलेंस से कई यात्री घायल हुए हैं। खराब मौसम के चलते एयर टर्बुलेंस और उसके बाद फुकेट से दिल्ली आ रहे इस एयर इंडिया के विमान की लैंडिंग तो हुई लेकिन इस एयर टर्बुलेंस में कई यात्री घायल हो गए। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी अमित, क्या डिटेल्स मिल रही है?
4: नेहा देखिए, ये एयर इंडिया की AI-237 फ्लाइट है जो फुकेट से दिल्ली आ रही थी और इसमें ब्रीफ टर्बुलेंस की बात एयर इंडिया ने कंफर्म की है और इससे थोड़ा जो एल्टीट्यूड होता है उसमें चेंज आया था टर्बुलेंस की वजह से। हालांकि बात कही जा रही है एयर इंडिया द्वारा कि फ्लाइट सेफली लैंड कर गई थी दिल्ली में और सभी पैसेंजर्स और क्रू सेफली डिसएम्बार्क कर गए थे यानी कि फ्लाइट से निकल गए थे। किसी को कोई सीरियस इंजरी की बात नहीं आई है सामने, ये एयर इंडिया का दावा है। इसमें जरूर कहा गया है कि कुछ पैसेंजर्स को माइनर इंजरी हुई है इस पूरे मामले में और मेडिकल असिस्मेंट दिया जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी एयरपोर्ट पे आमतौर पर होती है, एसओपी के तहत वो खुद ब खुद ट्रिगर हो जाता है जब इस तरह की कोई भी घटनाक्रम होती है, तो इस वक्त उन्हें मेडिकल अटेंशन दिया जा रहा है और फिलहाल इसमें क्लैरिटी अवेटेड है कि क्या माइनर इंजरी जो है वो एयरपोर्ट के मेडिकल फैसिलिटी में ही उसको कर लिया जा रहा है टेकर या फिर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल भेजने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आमतौर पर थोड़ी देर में इस तरह की डिटेल्स क्लियर होती है। बट एयर इंडिया ने भी अब इस मामले में कंफर्म कर दिया टर्बुलेंस हुआ था।
3: ठीक है, बने रही है हमारे साथ। इस बीच कुछ यात्रियों ने प्रत्यक्ष दर्शी जो थे क्या बोल रहे हैं सुनिए।
5: सर फुकेट से दिल्ली आ रहे थे,
6: क्या हुआ फ्लाइट में, कितने फीट पे थे उसमें और क्या हुआ?
5: सर देखो फीट तो आई एम नॉट अ पायलट, हम आ रहे थे, एक डेढ़ घंटा हुआ था फ्लाइट को, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है आते हुए, ये प्लेन ऐसे घूम गया, दो ढाई तीन मिनट तक ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। हाँ जी, 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा।
6: कितने लोग थे उसमें फ्लाइट में?
5: सर मेरे को फ्लाइट लोड तो पता नहीं, 100 से तो ज्यादा ही लोग थे फ्लाइट में।
3: अमित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, अचानक से फ्लाइट टर्न हुई, उसका पूरा जो संतुलन था वो बिगड़ गया, यही वजह है शायद चोटों की, जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं?
4: नया बिल्कुल, देखिए दावा प्रत्यक्षदर्शी कर रहे हैं, इनफैक्ट जो पैसेंजर्स थे उनके लिए बहुत ही टर्बुलेंट समय रहा होगा क्राफ्ट के अंदर। ऐसे भी जब हम आमतौर पर भी देखते हैं कि हल्के फुल्के टर्बुलेंस में भी जब क्राफ्ट जाता है, कोई भी एयरक्राफ्ट जाता है, तो पैसेंजर्स के लिए मुश्किल होता है उस सिचुएशन को टैकल करना। और जब एयर इंडिया खुद कंफर्म कर रहा है कि इसमें माइनर इंजरीज हुई हैं पैसेंजर्स को, तो हम समझ सकते हैं कि फ्लाइट के अंदर के हालात क्या रहे होंगे। वैसे भी ये एयरबस A320 है यानी कि नैरो बॉडी फ्लाइट है ये, तो इसमें उस लिहाज से भी आप मान के चल सकते हैं कि जो चोट लगने की संभावना टर्बुलेंस की सिचुएशन में, क्योंकि स्पेस कम होता है, लोग ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन बनती है। लेकिन वही बात है कि क्या सबको एयरपोर्ट के ही मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट कर लिया गया है या कुछ पैसेंजर्स को हॉस्पिटल
3: माइनर इंजरीज है या मेजर इंजरीज है या हमें ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि उनके अपने भाई को गर्दन में, कान में, अलग अलग जगहों पर चोटें आई हैं।
4: नया देखिए, जब क्राफ्ट टर्बुलेंस के थ्रू जाता है तो ऐसे में डिसबैलेंस होना पैसेंजर्स का बहुत नेचुरल होता है और उसी समय में, उसी प्रोसेस में आपको चोट निश्चित रूप से इंटरनल इंजरीज भी होती हैं और डर और खतरा बना रहता है ऐसे में मेजर इंजरीज का भी। लेकिन पैसेंजर्स बता रहे हैं कि उनको चोटें आई हैं। एयर इंडिया का फिलहाल यही दावा है कि माइनर इंजरीज पैसेंजर्स को हुई है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि माइनर इंजरीज हुई है। लेकिन उनका यही कहना है कि टर्बुलेंस था जिसकी वजह से आल्टीट्यूड चेंज हुआ सडनली क्राफ्ट का और उस वक्त ये सब कुछ हुआ है। अब थोड़ी देर में मुझे लगता है कि एक और क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिरकार किस तरह से सारे पेशेंट्स को केयर किया जा रहा है, क्योंकि ये फ्लाइट तकरीबन 11 बजे लैंड कर गई थी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पे और एयरबस A320 ये एयरक्राफ्ट है जिसकी घटना हुई है और पैसेंजर्स खुद भी बता रहे हैं कि उनको किस तरह से इसमें माइनर इंजरीज या उनको इंटरनल इंजरीज हुई हैं, जिस तरह का आपकी वॉइसेस इस वक्त बाहर आ रही है।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर का रुख करेंगे। पीएम के साथ शिवराज सिंह चौहान की बैठक खत्म हो चुकी, करीब 45 मिनट ये बैठक चली और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि किसानों के मुद्दे पर इस पे चर्चा हुई। माना यह जा रहा है कि दतिया में हार पर भी इसमें बातचीत हुई है। 3 में से 2 सीटें बीजेपी हार गई, इसलिए अलग अलग जो मंत्रीगण हैं उनसे चर्चा की जा रही है, हार पर मंथन किया जा रहा है। सुबह नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी बांकीपुर सीट को लेकर और अन्य जगहों पर जिसमें दतिया शामिल है, वहां पर हार की चर्चा इस मीटिंग में संभव हो सकती है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, आप नीतीश कुमार पर जानकारी दे रहे थे, शिवराज सिंह चौहान से भी क्या दतिया मुख्य मुद्दा रहा या किसान?
7: देखिएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है किसानों से संबंधित मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसमें अल नीनो जैसे कई विषय थे। लेकिन क्योंकि कल दतिया में भारतीय जनता पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा और शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार 18 साल वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में जब दो बड़े नेता बैठते हैं और चुनावी हार हुई हो तो कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा जरूर हुई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिवराज सिंह चौहान की जो है बातचीत, दतिया में जो हार हुई है पार्टी की, उसको लेकर जरूर बात हुई है। लेकिन एक चीज जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो जो चुनाव में हार हुई है, अब इस पर क्या काम करना है, ग्राउंड पे किस तरीके से काम करना, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो मुलाकात है ये महत्वपूर्ण भी है। कृषि संबंधित मामलों में तो बातचीत हुई है, लेकिन दतिया के मामले में भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान की।
3: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात जम्मू कश्मीर की, जहां मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। तेज बारिश के बीच नदी नाले उफान पर हैं और जिंदगी मुसीबत में है।

0: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है उसे इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है। यहाँ पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। नदी नालों का पानी बढ़कर कई जगहों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। ऐसे में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लोगों को सैलाबी संकट का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बीच नाला पूरे उफान पर है। लहरें घरों के किनारों को छूती हुई तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर लोग बेहद डरे हुए हैं। दिलों में खौफ है कि कहीं सैलाब का प्रहार उनके मकान को ही नुकसान न पहुंचा दे।
1: कश्मीर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जहाँ पर भी कहीं क्लाउड बस्ट होता है तो पानी मिनटों में बस्तियों में पहुंच जाता है। वही स्थिति हमने पिछले 24 घंटों के दौरान देखी। एक दर्जन से भी ज्यादा जो है बादल फटे हैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों में और कई सारे सड़कें जो है वो इन फ्लैश फ्लड्स में ढह गई, खेत ढह गए, यहाँ तक कि दो लोगों की मौत भी हो गई है फ्लैश फ्लड्स के कारण जो है गुरेज के इलाके में। तो जाहिर है कि अभी भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है इस मौसम की मार से। जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में जितने भी मुख्य राजमार्ग हैं वो स्थायी तौर पर बंद होते हैं, फिर उनको खोला जाता है, फिर फ्लश आ जाता है और फिर रोड जो है ढह जाते हैं। चाहे वो जम्मू श्रीनगर की बात हो, मुगल रोड की बात हो, श्रीनगर करगिल हाईवे की बात हो या फिर छोटे छोटे रास्ते जो कश्मीर और जम्मू के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में हैं। तो जाहिर है कि मौसम विभाग ने कहा है कि ये सिलसिला जो है एक हफ्ता और जारी रहेगा क्योंकि क्लाउड बस्ट को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती है कहां पर ये फटेगा, कहां फ्लश फ्लड आएगा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही इसका जो इलाज है कि लोग सतर्क रहे।
0: अब बांदीपोरा की ही एक और तस्वीर को देखिए। लहरें किस तरह उफनाई हुई हैं और हाहाकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। कई इलाके भी इन लहरों के जद में आ रहे हैं। राजौरी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। फ्लैश फ्लड से यहाँ भी खतरा बढ़ा हुआ है। तमाम जगहों पर घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों के घर तबाह हो गए हैं। कई इलाकों में रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बादल फटने की घटनाएं भारी तबाही मचा रही हैं। गुरेज के कोरकबल इलाके में बादल फटने के बाद कुछ लोग लहरों के बीच फंस गए और कई मवेशी बह गए। वहीं पहलगाम में अचानक आई बाढ़ ने सड़क के कई हिस्सों को बहा दिया है जिससे पहलगाम का संपर्क प्रभावित हो गया है। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन बारिश के बीच इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं।
2: पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिन से मौसम की मार लोग झेल रहे हैं, कभी धूप और कभी बारिश, लेकिन उसके साथ साथ खास तौर से जिस अंदाज से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और उनसे फ्लश फ्लड कश्मीर के कई इलाकों में देखे जा रहे हैं उसने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में ही एक दर्जन से भी ज्यादा बादल फटे और उनके कारण कई सारी सड़कें जो हैं वो फ्लैश फ्लड्स में बह गई और कई सारे खेतों और घरों को भी नुकसान पहुंचा।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है जिससे यहां संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
3: उधर उत्तराखंड के चमोली में भी कुदरत का कहर जारी है। कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। इस घटना का वीडियो जब सामने आया तो उसमें साफ देखा जा सकता है किस तरह चट्टानें तेजी से नीचे गिर रही हैं। गनीमत यह रही कि जिस समय पहाड़ दरका उस वक्त सड़क पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ब्रेक का हौसला टिकते रहिए आज तक।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: With Instacart's preference picker, it's easy to select the ripeness of your bananas. Maybe you want them green today so they're perfectly yellow later. Or maybe you're committed to finally making that banana bread recipe and you need some that are already spotty and sweet. And sure, you could leave it to chance. Maybe getting into staring contests with bananas is your favorite hobby. But in case it's not, maybe just count on Instacart's preference picker instead. Want to get groceries just how you like? Download Instacart today and use the preference picker. Available at most retailers.
7: Summer hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
8: मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
9: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
10: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
11: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: एमपी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत तो होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष, विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना यह समाजवादी पार्टी का शोक और सगल है। इन्होंने हमेशा से, इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं, ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, ये सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है। मित्रों, हम सब जानते हैं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक SIT बनाकर के जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या मान्य न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बना करके इस एसआईटी को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए कह सकें। 15 जून से कार्य प्रारंभ किया। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 23 जून की अपनी रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट एसआईटी ने उपलब्ध करवाई, उस रिपोर्ट के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए, उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। 1100 से अधिक कर्मचारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उस पूरे प्रांगण में इतने कार्मिक कार्य करते हैं और 1100 से अधिक लोगों के बीच में कुल 8 लोग इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भूमिका उस मामले में उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण थे, उस आधार पर पाई गई। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन 1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये आक्षेप कौन लगा रहा है? यह आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था, कैसे उसको कोई पांच छह में राम सेतु प्रकरण के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना एफिडेविट दाखिल किया था और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके उन्हें मिथक घोषित किया था। वह कांग्रेस और यूपीए से जुड़े हुए वे दल किस मुंह से अयोध्या में आस्था की आज चर्चा करते हैं। अयोध्या के जिस चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए प्रकरण की बात आई थी, सरकार ने गंभीरता से लिया था क्योंकि आस्था का विषय अयोध्या है, कोटि कोटि सनातनियों की आस्था का मुद्दा था और सरकार ने उस समय भी स्पष्ट कर दिया था कि यद्यपि सरकार सीधे किसी ट्रस्ट में हाथ नहीं डालती क्योंकि वह ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित नहीं किया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वह ट्रस्ट गठित है, इसलिए इस मामले में तो ट्रस्ट अपील करेगा या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय कोई निर्देश देगा तो हम उस कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन उस सब के बावजूद इनके द्वारा राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है, भारत के सनातन मूल्यों आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। और मुझे आश्चर्य होता है कि इन दलों के द्वारा जब भाजपा से लड़ने में विफल हैं, मैंने पहले भी कहा इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं, उस सबके बावजूद पूज्य संतों पर, उस सबके बावजूद सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पर अनावश्यक कटघरे में खड़ा करके लांछन लगाना, ये पूरे सनातन के साथ साथ सत्य को दबाने, सत्य को झुठलाने का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है और इसीलिए ये लोग बहुत से भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। आज सदन में इनका यह आचरण आप सबने भी देखा है, किस तरीके से अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा किया गया। वे चर्चा से भागना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ऐसे मुद्दे पे उठा करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं जिन मुद्दों का सदन से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसको लेकर के जब अध्यक्ष पीठ ने अपनी व्यवस्था दी तो उसको मानने को तैयार भी नहीं। वह सदन चर्चा का विषय होता है, एक संवाद होता है, समीक्षा होती है, एक परिणाम पे हम लोग पहुंचते हैं। ये लोग उन मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, केवल माहौल खराब करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को डायल्यूट करना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का प्रयास किया, अध्यक्ष पीठ की भी अवमानना करके पूरे माहौल को तनावपूर्ण बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा आज विधानसभा के अंदर किया गया है। मित्रों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन धर्मावलंबियों का अपमान भी है, 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात भी है। पिछले 9 वर्ष में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिस परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब पलायन नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान अब आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के गरीबों को शासन की सुविधा का लाभ मिल पा रहा है, और उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाली और प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है, उस उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को खराब करने की कुछ सी चेष्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। ये लोग लगातार, जिन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिनकी किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, जिनके कारण यहां पर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम चौपट हो चुके थे, जिनके गलत नीतियों और भ्रष्ट आचरण के कारण, गुंडागर्दी के कारण उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक पर डकैती डाली थी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनकी नौकरी से वंचित किया था, वह समाजवादी पार्टी आज प्रदेश के परसेप्शन को एक बार फिर से खराब करने की कुत्सित चेष्टा कर रही है, और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि को फिर से बदरंग करने का प्रयास कर रही है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस आचरण की निंदा करते हैं। अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, मार्शलों के साथ मारपीट करने का और उन्हें धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत शर्मनाक है। सदन के अंदर हर सदस्य के लिए आवश्यक होता है कि वह अध्यक्ष पीठ का सम्मान करे और अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन करे, और कोई भी मुद्दा है वह अध्यक्ष पीठ की अनुमति से वह सदन के फ्लोर में रख सकता है, अपनी बात को वहां रख सकता है, लेकिन इन्होंने पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने वाला है, और विकास के मुद्दे पर, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, आम जन से जुड़े हुए मुद्दे पर स्वस्थ चर्चा को आगे बढ़ाने की बजाय इस मुद्दे को डाइल्यूट करके उत्तर प्रदेश की पहचान को फिर से धूमिल करने, उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ने के जो अवसर प्राप्त हुए हैं उन्हें खराब करने और उत्तर प्रदेश को फिर से बदनाम

0: की, और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया क्या आपने? फोर्स देखा वैसे कुंदनकी जैसा फोर्स देखा आपने? तो समझ लो आप, तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है, जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे बातचीत हुई और हमारी पार्टी का जो भी संगठन है मध्य प्रदेश का और झांसी का, क्योंकि रिश्तेदारियां हैं आपस में विधानसभा में, इधर उधर दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, तो जो मदद और सहयोग कर सकते थे हम लोगों ने किया।
1: सर, किरण रिजिजू ने कहा है कि
2: यहाँ पे जो प्रोटेस्ट देखा हमने जेन जी, तो वो आक्रोश जनता पार्टी के साथ दिखी, बाकीपुर में एक थर्ड फोर्स प्रशांत किशोर के साथ, आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज है सपा कांग्रेस अपोजिशन
0: को भी चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि मेन स्ट्रीट मीडिया आपसे आगे चला गया। मेन स्ट्रीम मीडिया को चिंता करना चाहिए कि मेन स्ट्रीट मीडिया आगे चला गया, जो लोग सड़क पे थे, जो बीच में थे जनता के, आप पहुंच नहीं पाए, वो कारण मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आपको भी जाना चाहिए था। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने बहुत फेयर इलेक्शन कराया है। अगर फेयर इलेक्शन जैसे कुंदरकी में हुआ था, बंगाल में हुआ है या अन्य बाई इलेक्शन हुए, वो फुटेज है आपके पास आर्काइव में चीजें, अगर वो आप देख लें तो आप खुद समझ जाएंगे कि बीजेपी ने अपने आप को चेक करने के लिए। और फिर सुनना तो ये मैंने है कि मिठाइयां जीत की तरफ तो बटी बटी हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर भी मिठाई लड्डू बटे हैं, ये क्या कारण है?
1: सदन में रिजिजू साहब ने बोला कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, जिन्होंने गोलियां चलवाई, वो उनका कोई हक नहीं है राम मंदिर पर चर्चा करने की।
0: ये बहुत सामान्य ज्ञान की बात है, इस बात को इसलिए नहीं छेड़ना चाहिए कि आप भी कानून को समझते हैं, आप भी चीजों को समझते हैं। FIR किस पे दर्ज हुई? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा आखिरी में? यही कहा कि जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनके केस खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। तो केस किसके ऊपर हुआ, केस किसके ऊपर हुए, आप सोचिए ना, केस किसके ऊपर हुए? बीजेपी के नेताओं के ऊपर केस हुए कि उन्होंने संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम किया।
3: अब तो चुनाव का दंगल यूपी में होगा
4: सर, क्या पप्पू यादव?
0: अगर दंगल होगा तो दंगल में तो समाजवादी ही लोग जीतेंगे।
3: पप्पू यादव का जो उस दिन जो नाटक था राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के, राम गोपाल जी ने कहा कि वो उचित नहीं था।
0: देखिए चाचा, ऑलरेडी राम गोपाल चाचा क्या कह रहे हैं वो बात नहीं है। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहाँ नाच रहे थे? आपका क्यों ये मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ चला जाता है? मुझे याद नहीं है कौन सा चैनल है आपका, लगता आपने हनुमान जी को नाचते हुए नहीं देखा। बड़ा खराब है, रेटिंग खराब है आपकी, आपके व्यू ज्यादा नहीं आ रहे हैं।
1: E20
0: E20 में इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप गाड़ियां बेचने के लिए इतने बड़े बड़े एड देते हैं, इतना कुछ माइलेज के बारे में बताते हैं, E20 पेट्रोल जिन जिन गाड़ियों में पड़ रहा है, सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां एड दें कि इससे माइलेज बढ़ गया है, मेंटेनेंस फ्री हो गई है और इससे कीमत भी कम हो गई है, चलने में भी आराम है। तो ये ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड क्यों नहीं दे रही हैं? और अगर ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड नहीं दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार के साथ साथ मुनाफा वो भी कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेयर पार्ट में मुनाफा कमा रहे हैं, या किसी और तरीके से ऑटोमोबाइल कंपनी भी अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दान पात्र देखा, तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है।
1: यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ना?
0: बहुत।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सवाल उठाए गए, अखिलेश यादव की तरफ से हर मुद्दे पर जवाब दिया गया, लेकिन संसद में भी यह मुद्दा उठा और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मुद्दा उठाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा तो जवाब किसकी तरफ से दिया गया? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से।
6: ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के विषय है, इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी के

0: भगवान ने बताई है, भगवान जी आपको ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है, ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी। कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं, दुनिया लोग आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है, शर्म आने से हर दिन भगवान राम को त्रास देता है। और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठा रहे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग
1: पक्ष विपक्ष जमकर वार पलटवार यहां पर होता हुआ दिखा, लेकिन उपचुनाव भी हुए अभी हाल ही में और दो राज्यों में बीजेपी को हार नसीब हुई। अब बीजेपी को हार नसीब हुई तो विपक्ष इससे अपनी ताकत बता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अब बीजेपी के आने वाले वक्त में भी यही हाल होगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ही पलटवार किया गया। प्रियंका गांधी और गिरिराज सिंह क्या कह रहे सुनते हैं।
2: तो इससे साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है,
3: परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाय इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश ना हो।
1: तो वार पलटवार यहां पर लगातार जा रही है, यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: In association with
6: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर...
1: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests.
3: Nobody expected that he would test within 3 months of taking over as Prime Minister.
4: The 2 more tests were conducted simultaneously on 13th May 1998.
3: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
5: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
6: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
5: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
7: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
5: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
8: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

विधानसभा में विपक्षी हंगामे पर आग बबूला योगी का समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं। अध्यक्ष के आसन का हुआ अपमान, साधु संतों को किया जा रहा है बदनाम। दतिया गंवाने के बाद शिवराज सिंह चौहान से मिले पीएम मोदी। बांकीपुर की हार के बाद नीतीश कुमार से भी मुलाकात। जेडीयू से आई आवाज, नीतीश होते तो ना हारते। ही प्रशांत किशोर ने खोला सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा, कहा बीजेपी को बदलना चाहिए। सीएम सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बिहार से है इसलिए खुश हूं। आज तक पर पीके का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। उपचुनाव नतीजों के बाद एनडीए के मंगल मिलन में साथ साथ मुस्कुराते दिखे पीएम मोदी और नितिन नवीन। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस करती है सेलेक्टिव राजनीति। एयर टर्बुलेंस में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंडिंग लेकिन कुछ यात्रियों कर्मचारियों को लगी चोट। फुकेट से दिल्ली आ रहा था प्लेन।

0: नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और आज तक पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बांकीपुर के नए विधायक जिन्होंने बीजेपी के 30 साल के पुराने गढ़ में सेंधमारी की है, उस किले को ढा दिया है। प्रशांत किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे। 30 साल तक जो किला रहा बीजेपी का, उसको 30 दिन में कैसे प्रशांत किशोर ने ढा दिया? क्या आपको मालूम था कि ऐसा करना संभव है, क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ है बिहार में बीजेपी का बांकीपुर?
1: वो तो है, लेकिन गढ़ तो जनता ही बनाती है और बिगाड़ती है। मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा को इसलिए हराया है क्योंकि जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार को दिया है चुनाव जीतने के बाद, नवंबर 2025 में इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार पर थोपा है एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है। एक सातवीं फेल व्यक्ति, 7 लोगों की हत्या में जो जेल में रहा हो, उस व्यक्ति को सिर्फ आप भाजपा का चोला पहनाकर अगर बैठा देंगे तो जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरा, जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार रहा है, जहां ये चर्चा घर घर चली, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी जनता यहीं पर हमी को वोट देगी, उस अहंकार के खिलाफ वोट पड़ा है। और तीसरा, भाजपा के जो विधायक और सांसद हैं, कहीं ना कहीं वो सब इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, वो जानते हैं कि जब चुनाव होगा काम करें न करें हर हालत में जनता जाति धर्म के नाम पर वोट हमी को देगी, नहीं देगी तो मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगा जाएगा, और कुछ नहीं चलेगा तो लालू के जंगल राज का डर दिखाकर वोट लिया जाएगा। तो इन तीनों चीज का जो कंबाइंड असर रहा है उसकी वजह से लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है।
0: क्योंकि इस चुनाव के पहले भी हमने आपसे बात की थी, आपने इसमें एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की वो था जनमत संग्रह, और आप ये कह रहे थे कि भाई ये एक रेफरेंडम हो सकता है इसमें मौजूदा सरकार पर, सम्राट चौधरी पर, और आप ये भी कह रहे थे कि भाई एक वोट या एक विधायक जीत जाएगा तो सरकार में कुछ नहीं होने वाला है, एक विपक्ष भी जीत जाएगा तो कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको ये नैरेटिव जो है लोगों के घर कर गया, दिल में भाया?
1: नहीं, देखिए, लोकतंत्र है और जिन लोगों ने भाजपा को एनडीए को वोट दिया उसमें एक प्रमुख मुद्दा प्रधानमंत्री ने आकर खुद बनाया कि जंगल राज नहीं लौटना चाहिए, लेकिन उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को आपने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और लोकतंत्र में यह संभव है कि जो पार्टी जीतकर आए उसका उसका नेता जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनाएगा तो जनता के पास भी ये अवसर है अपना मत देने का। तो पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री यहां बना है और लोगों ने जब वोट दिया तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट मोदी जी को मैसेज दिया है ये लोगों ने, क्योंकि ये भाजपा के विरोधी लोग नहीं है, ये भाजपा के समर्थक हैं। गौर करने वाली बात है कि बांकीपुर में जिन लोगों ने वोट दिया है जनसुराज को, ये ज्यादातर लोग भाजपा के समर्थक लोग हैं। इन्होंने क्यों वोट दिया? इसलिए वोट दिया क्योंकि उनको भाजपा का अहंकार स्वीकार्य नहीं है, उनको भाजपा का ये वक्तव्य नहीं स्वीकार्य है कि कुत्ता बिल्ली को भी हम देंगे तो भी तुमको वोट देना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर उनको ये बात नहीं स्वीकार्य है कि जिस बिहार को जंगल राज से मुक्त करने के नाम पर आपने वोट लिया उसी जंगल राज के किसी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों के पास मोदी जी को फोन करने का अवसर तो है नहीं, लोग मोदी जी से मिलकर तो बात नहीं कर सकते हैं, लोगों के पास क्या अवसर है? वोट का अवसर है। तो हमने लोगों को बताया कि भाई अगर आप मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व आपको स्वीकार्य नहीं है तो यही मौका है आपके पास, आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, मोदी जी को खबर होगी। और आज मैं समझता हूं कि मोदी जी को खबर हुई है कि 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, सारे समीकरण ध्वस्त है। जब ये वो भाजपा है जो कहती हम बूथ जीतते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, शक्ति केंद्र बनाते हैं, कहां गया सब?
0: ये बात आप मानते हैं कि आपका अपना वहां कोई वोट नहीं था, सारी वोट जो आपने बीजेपी का वोट है या फिर महागठबंधन का वोट था उसी में सेंधमारी आपने की है?
1: सेंधमारी की क्या बात है इसमें? कोई सेंधमारी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं उनका। 422 बूथ है और 17 या 18 बूथ को छोड़ दीजिए, 400 से ज्यादा बूथ पर जनसुराज जीती है, तो इसमें सेंधमारी क्या है? जनता ने तय किया भाई अब आपको नहीं देंगे वोट।
0: यानी आपको लगता है कि जो बांकीपुर की जनता है इस वक्त मौजूदा समय में बीजेपी से नाराज चल रही है?
1: बीजेपी के राजनीतिक अहंकार से नाराज चल रही है, बीजेपी के इस निर्णय से नाराज है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी के इस कार्यशैली से नाराज है जहां विधायक मंत्री बस बैठा रहता है और 5 वर्ष के बाद मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है, लालू जी का डर दिखाकर वोट मांगता है। संभव है कि बीजेपी के दल से नाराज ना हो लेकिन बीजेपी की कार्यशैली से नाराज है।
0: सम्राट चौधरी से आपकी समस्या क्या है? क्योंकि पिछले 2025 के चुनाव से जो सवाल पूरा करने दीजिए, उससे पहले से आप उनके खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, बातें रख रहे हैं, अभी भी कह रहे हो कि पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री है कि भाई सम्राट चौधरी अगर हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको स्वीकार?
1: सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहली बात आप ये समझिए कि सम्राट चौधरी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, वो तो हमको कैमरे पर भाई बोलते हैं, कल भी बधाई दिया है। बात सम्राट चौधरी व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। क्या ऐसा आदमी करेगा जो अपने डिग्री के बारे में गलत बताता है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो सातवीं फेल है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो सात लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है? क्या भाजपा में और कोई पढ़ा लिखा समझदार काबिल चरित्रवान व्यक्ति नहीं बचा है? कुछ लोग कह रहे भी सामाजिक समीकरण के तहत बनाया गया, कुशवाहा समाज को बनाया गया। भाई मैं तो कैमरे पर कह रहा हूं, कुशवाहा समाज के आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन उस समाज में भी तो एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक काबिल, एक से एक चरित्रवान लोग हैं। उस जंगल राज वाले आदमी को क्यों बना रहे हो? और अगर जंगल राज वाले आदमी को बना रहे हो तो फिर जनता को ये क्यों कह रहे हैं कि आप जंगल राज के विरोध में हैं? आप जिस जंगल राज के खिलाफ लोगों ने आपके आपको वोट दिया है, उसी के एक आदमी को अगर आप भगवा झंडा पहनाकर भगवा ओढ़नी ओढ़ाकर बैठा दीजिएगा तो जनता को स्वीकार्य नहीं।
0: मतलब आपको लगता है सम्राट चौधरी आज बीजेपी में भले हैं लेकिन जंगल राज के प्रतीक हैं?
1: प्रतीक भाई, वो जब बने तो सबसे पहले उनके पक्ष में कौन बोला? साधु यादव बोले। पटना में जो लोग पत्रकारिता करते हो जरा पूछ ले कि बोरिंग रोड इलाके में सम्राट चौधरी क्या करते थे लालू जी जब मुख्यमंत्री थे। तो भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात की इतनी चिंता और बिहार के लोगों के लिए 5 किलो अनाज, ये तो परिपाटी टूटनी चाहिए ना भाई। गुजरात के 25 एमपी जीत कर गए हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने भी तो 35 एमपी जिताकर भेजा है, तो बिहार के बच्चों के लिए भी तो पढ़ाई की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी तो रोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो। यहां पर आप सिर्फ 5 किलो अनाज की बात क्यों करते हैं? तो ये तो दोहरापन है ना। आप बिहार में भी सबसे काबिल आदमी को भेजिए, पूरे देश में जो सबसे काबिल व्यक्ति हो बिहार का हो उसको आप बनाइए बिहार में मुख्यमंत्री, हम लोग का कोई विरोध नहीं है। तो बिहार में तरक्की होनी चाहिए भाई, मुख्यमंत्री तो बिहार भाजपा का ही होगा, मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर तो बन नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा। तो हम लोग तो आपसे हाथ जोड़कर इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि किसी अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी तरक्की हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पढ़ाई हो, हम लोग के बच्चों के लिए भी रोजगार हो, पलायन बंद हो, बस मेरा इतना ही एजेंडा है।
0: सम्राट चौधरी के नेतृत्व से आपको समस्या है कि उनको बदलना चाहिए?
1: आप भाई इससे ज्यादा क्या समस्या होगी? आप बताइए कि जो आदमी सम्राट चौधरी के पिछले 3 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, उन्होंने क्या बात कही है? अपराध, अपराधी, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, गमछा देख कर मारो, गोली देख कर मारो, जात पूछ कर मारो, ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या उन्होंने पढ़ाई की बात की? क्या उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कैसे सुधारना है बात की? क्या पलायन कैसे रुकेगा इस पर बात की? तो हम लोग तो मोदी जी को बस इतना ही कह रहे हैं कि सर आपको 2-2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, थोड़ा तो तरस खाइए बिहार के लोगों पर। हम लोग सबसे गरीब है, सबसे पिछड़े हैं, बिहार के लोगों पर थोड़ा तो तरस खाइए। कितना दिन तक हम लोग के बच्चे वंदे भारत में बैठ के जानवरों की तरह जाकर गुजरात में नौकरी करते रहेंगे? 1-2 फैक्ट्री बिहार में भी तो लगवाइए भाई
0: प्रशांत जी। लेकिन आपको लगता है
1: और अगर नहीं लगवाइएगा तो जिस तरह से बाकीपुर में रिवोल्ट हुआ है, अगले लोकसभा में रिवोल्ट आपको दिखेगा।
0: आपको लगता नहीं है कि ये जो सिचुएशन, ये टाइमिंग जो आपके चुनाव का रहा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज रहा? क्योंकि आपने, अगर ये चुनाव नहीं होता तो पहले तो आप 2030 तक आपको मेहनत करनी पड़ती, लेकिन ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये हुआ। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे 3-4 महीने में बिहार में ऐसे हुए, शहीद छात्रा की हत्या, भोजपुर एनकाउंटर, ब्राह्मण समाज का लड़का भरत तिवारी मारा गया, उसको आपने लपका, वहां पे आप गए भी वहां पे, साथ ही साथ ये जो युवाओं का प्रोटेस्ट अभी हुआ है, तो 3-4 ऐसे मुद्दे हुए जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे।
1: वक्तव्य पहले कभी सुने हो राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैंने हमेशा कहा है कि जिस देश में 60% लोग दिन में $2 नहीं कमाते हैं, वहां पर विपक्ष कभी सरकार के खिलाफ कमजोर नहीं हो सकता, विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। हर आदमी सरकार का भक्त नहीं है। मोदी जी जब जीत कर भी आते हैं तो 34-35% वोट मिलता है, मतलब 65% आदमी सत्ता के विपक्ष में है। तो आप लोग ये बताते हैं कि पूरा देश एकदम मोदीमय हो गया, ठीक है 35% वोट मिला है इसलिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग खुश हैं, सब आदमी को कोई परेशानी नहीं है। तो आज मुद्दे आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। भरत तिवारी का आपने मामला उठाया, ये यहाँ का बीजेपी का एक दो मतलब ठग टाइप का एक एमपी है, क्या नाम है जो गाना गाते हैं,
0: मनोज तिवारी।
1: अभी चुनाव के दौरान भरत तिवारी के लोगों को लाकर सम्राट चौधरी से मिलाया, 50 लाख रुपए का परिवार को लालच दिया। आप जरा अंदाजा लगाइए न्याय का मतलब क्या है। कैमरे पर हम लोगों ने कहा है कि न्याय का मतलब है गृह विभाग की भूमिका की जांच। न्याय का मतलब यह है कि एसटीएफ के जिन लोगों ने गोली चलाई उनसे यह पूछा जाए कि आपको गोली चलाने का आदेश किसने दिया है। चुनाव के दौरान दिल्ली का सांसद आता है उस परिवार को जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त स्थिति में है उनको लाकर सम्राट चौधरी से मिलाता है वोट के लिए। अब मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं, मनोज तिवारी आओ और उस परिवार को न्याय दिलवाओ, और अगर नहीं दिलवाओगे तो ये ढोंग करना, गाना गाना और बिहार में आकर वोट मांगना बंद करो। बिहार दिल्ली नहीं है, यहाँ जनता दौड़ा कर मारेगी, अगली बार वोट मांगना छोड़ दो, घुस नहीं पाओगे बिहार में।
0: सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग आप क्यों कर रहे हैं?
1: मैं इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा के नेतृत्व को आग्रह कर रहा हूँ कि सर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया है, बड़े आशा से वोट दिया है, लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं, सर आप प्लीज ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए जो बिहार में शिक्षा और रोजगार ला दे, कम से कम पलायन बंद हो, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो, बहुत हो गया अनाज की राजनीति, बहुत हो गया धर्म और जात की राजनीति, बिहार की चिंता कीजिए। सम्राट चौधरी दिल्ली बैठे, बैठ कर बिहार के लिए ले आए पैकेज, ये घोषणा करें कि हर प्रखंड में, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हर प्रखंड में एक फैक्ट्री लगेगी, अमित शाह जी ने कहा है, कहां लग रही है फैक्ट्री, 8-9 महीने बीत गए, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सम्राट चौधरी से किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए।
0: आपके अकेले कहने से तो हटा नहीं देगी बीजेपी,
1: हटाए, मान लीजिए कि परीक्षा में आप टर्मिनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आप कहिएगा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर फाइनल में भी फेल हो जाइएगा, ये अंतिम चुनाव नहीं है ना बिहार में,
0: फाइनल के
1: आगे और चुनाव होगा,
0: लोकसभा,
1: फिर लोकसभा चुनाव से पहले भी चुनाव होगा, और बाई इलेक्शन होंगे और आगे चुनाव होंगे, तो अगर मोदी जी या भाजपा का नेतृत्व ये रिस्क लेना चाहता है तो ले रिस्क, सम्राट चौधरी के नाम पर रह जाए।
0: इस चुनाव में ये भी देखा गया प्रशांत जी की जो सवर्ण जाति है, फॉरवर्ड कास्ट है, उसने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से वोट दिया है, महागठबंधन से जो मुस्लिम मतदाता है उनका वो भी आपके तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ है।
1: मत फैलाइए, जब मैं कह रहा हूँ कि 400 बूथ पर जनसुराज जीता है तो क्या 400 बूथ पर सवर्ण रहते हैं, क्या 400 बूथ पर मुसलमान रहते हैं? 3 बरस से जो बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई जाति धर्म दल और नेता का अंधभक्ति छोड़ो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, 3 बरस में मैं लोगों को नहीं समझा पाया, बाकीपुर के लोग समझे, उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, और मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि पूरा बिहार बाकीपुर नहीं है लेकिन बाकीपुर से शुरुआत हुई है। अब अगर यहां पर 1-2 साल में लोगों को उनके जीवन में परिवर्तन दिखेगा तो निश्चित तौर पर बिहार के अन्य हिस्सों में भी इसका असर आपको दिखेगा।
0: जेंजी मूवमेंट आपको लगता है एक ऐसा फैक्टर था जो आपके पक्ष में गया, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले 22 और 25 तारीख
1: जेंजी मूवमेंट का वोट पर कोई असर नहीं है, परसेप्शन का असर हो सकता है, लेकिन बिहार में जेंजी मूवमेंट बाकीपुर में ऐसा नहीं दिखा कि बहुत यंग लड़के निकलकर वोट किए हों, जिन लोगों ने वोट किया है वो ट्रेडिशनल भाजपा के राजद के वोटर रहे हैं, जो अपने दलों से नाराज थे, अपने दलों के कार्य शैली से खुश नहीं थे, उन्होंने अलग हट के वोट किया है।
0: इधर प्रधानमंत्री या अमित शाह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इधर आपने उनका किला ढा दिया। नितिन नवीन जी
1: राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो बिहार के होने के नाते मेरे लिए गौरव की बात है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसलिए कि हम, मैंने आपको पहले कहा, हम लोग इतने पिछड़े हैं, बिहार का आदमी बाहर जाता है चाहे अच्छा हो खराब हो, उसको बिहारी का गाली दिया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उस नजरिए से बिहार का आदमी बीजेपी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो गौरव की बात है, मैं उस बात का कभी, आपने कभी मेरे मुंह से उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना होगा, और ये सिर्फ राजनेता के तौर पे नहीं कह रहा हूं, कोई अभिनेता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, बिहार का झंडा अगर कोई ऊपर कर रहा है मेरा समर्थन उसको है, लेकिन नितिन नवीन जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप मजबूत अध्यक्ष बनिए, रबर स्टैंप बनकर मत रहिए, बिहार के लिए कुछ कीजिए, बिहार भाजपा के लिए भी कुछ कीजिए, बिहार में भाजपा में अच्छे लोग,
0: रबर स्टैंप है नितिन नवीन,
1: अभी तो यही दिख रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि रबर स्टैंप है, मैंने कहा रबर स्टैंप मत बनिए, मजबूत भाजपा के अध्यक्ष बनके दिखाइए।
0: अच्छा देखिए, आपकी जीत बीजेपी को जो सदमा लगे या सेटबैक लगा वो तो लगा है, लेकिन जो एक परसेप्शन ये भी है कि ज्यादा बड़ा झटका तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि आप अब देखिए वो अपोजिशन का जो स्पेस इकलौता सिर्फ तेजस्वी यादव के पास था उसमें आप अपने सेंधमारी कर दी है, अब बिहार में आपका नाम भी विपक्ष का बड़ा चेहरे के रूप में देखा जाएगा, मुसलमानों का वोट भी अब क्या लगता है आरजेडी से छिटक कर जनसुराज में आएगा?
1: इस तरह से नहीं देखता हूँ, विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा का है, विपक्ष तेजस्वी यादव हैं, हम सड़क पर हैं, जनता तीनों
0: को सदन में जा रहे हैं,
1: सदन में जा रहे हैं, लेकिन जनसुराज तो सड़क पर ही है, हम लोग तो विपक्ष में नहीं है, जनता तीनों के काम को देखेगी, अब विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं ये उनका काम है, जनता उनको देख रही है, हमने तो उनको यूरोप नहीं भेजा था 1 महीने के लिए, वो तो खुद गए थे, सीबीआई ईडी या बीजेपी ने भेजा हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमने तो नहीं भेजा है, बिहार की जनता ने तो नहीं कहा था कि आप यूरोप चले जाइए, तो अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपको काम करने से कोई रोक नहीं रहा है, और मेरा उस पद के लिए कोई दावा नहीं है, हम तो अपने जो काम कर रहे हैं वही काम आगे भी करेंगे। हम समाज में हैं, लोगों की आवाज उठाने के लिए अपनी जो ताकत है उससे खड़े।
0: तेजस्वी यादव को आप एक तरीके से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं क्या?
1: भाई मैं क्यों बोलूं ये बात,
0: क्योंकि वो बिहार से कम है, बिहार में कम रहते हैं।
1: मैं उनका परिचय ये जानता हूं कि वो लालू यादव के लड़के हैं, राजद के नेता हैं और अभी बिहार में विपक्ष के नेता हैं। उनकी जो भूमिका जनता ने तय की है उसके आधार पर उनका मूल्यांकन जनता करेगी। हम कौन होते हैं उनका मूल्यांकन करने वाले?
0: आपको मीसा भारती लोमड़ी कह रही हैं बीजेपी।
1: अच्छी बात है, उनका संस्कार दिखाता है, ये उनके संस्कार को दिखाता है।
0: आपको लगता है कि मतलब आप बीजेपी के लिए काम कर रहे थे उनका इस तरीके के मतलब?
1: भाई जो आप किस शब्द का किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये तो आपके संस्कार को दिखाता है, आपकी पृष्ठभूमि को दिखाता है।
0: अच्छा, एक वीडियो बड़ा वायरल कल से हो रहा है कि आप चुनाव प्रचार प्रसार में कह रहे थे कि बांकीपुर को बैंगलोर बना देंगे और फिर कल आपने कह दिया कि भाई विधायक इतना ये नहीं कर सकता, बांकीपुर बैंगलोर नहीं बन सकता। आप मानते हैं?
1: आप लोग जैसे लोग जो आज तक में हैं इतने बड़े चैनल में, कम से कम वीडियो पूरा देखिए क्या कहा है। वीडियो में ये कहा है, हर भाषण में कहा है कि मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बैंगलोर नहीं बन सकता है, लेकिन एक वादा मैंने जरूर किया है कि बांकीपुर 20 वर्ष में बंगलोर से भी बेहतर कैसे दिखे इसका ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे। उस भाषण में यह भी कहा है कि उसकी ज्यादातर चीज विधायक के तौर पर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ब्लूप्रिंट जरूर जनता के मदद से बनाकर रखेंगे कि इस तरीके से बांकीपुर को बेहतर बनाया जा सकता है। जाके पूरा भाषण सुन लीजिए, जो चार बात कही है उसको एकदम ध्यान रख लीजिए, उससे एक कदम पीछे नहीं। एक, विधायक के तौर पर विधायक से जुड़े हुए किसी मामलों में एक रुपए की चोरी बांकीपुर में नहीं होगी। दूसरी बात मैंने कहा है कि मेरे आचार विचार व्यवहार से बांकीपुर की जनता को मुझे प्रतिनिधि के तौर पर देखकर कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। तीसरी बात मैंने एक जो एम्बिशियस बात कही है कि अगले एक साल में बांकीपुर के गरीब परिवारों के बच्चों के पढ़ाई के सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार आपको दिखेगा, नहीं होगा तो उनके बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का जिम्मेवारी प्रशांत किशोर का है। और चौथी बात कही है कि बांकीपुर के लिए अगले 20 वर्ष में बांकीपुर कितना बढ़िया बन सकता है उसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे, इससे ना ज्यादा ना इससे कम।
0: आरजेडी के लिए आपको लगता है जमीन बचा हुआ है जिस तरीके से आरजेडी
1: के लिए जमीन बचा है नहीं बचा है ये चिंता करने का काम आरजेडी का है, मेरा नहीं है। मेरी चिंता यह है कि बिहार कैसे बेहतर हो। वो अगर भाजपा के लोग करें तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, आरजेडी के लोग करें मैं उनके साथ खड़ा
0: हूँ। जिस तरीके से बढ़ रहे हैं
1: अगले चार वर्ष बिहार सुधरना चाहिए।
0: आप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं जाहिर सी बात है आप आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाएंगे।
1: नहीं बढ़ रहे हैं, बिहार के लोगों के पास एक विकल्प बढ़ रहा है। हमारे व्यक्ति के बढ़ने से क्या होगा? अगर हमको व्यक्ति के तौर पे बढ़ना हो तो किसी दल में शामिल हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे।
0: कांग्रेस में शामिल होंगे
1: कहीं? फिर वही बात, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मुझे व्यक्ति के तौर पर बड़ा नहीं बनना है, मुझे जो बनना था मैं बन गया। बिहार में विकल्प बढ़ना चाहिए, लोकतंत्र सही मामलों में जिंदा होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो परिपाटी है मजबूरी है वो खत्म होना चाहिए।
0: कांग्रेस से कोई अलायंस की बात हो रही है? चर्चा चल रही है
1: कोई अलायंस किसी से बात नहीं।
0: कांग्रेस में आप चले जाइए तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार
1: बनिए। अलायंस नहीं, हमको नहीं बनना है मुख्यमंत्री। हम उनमें से नहीं है जो विधायक बनकर ठेका पट्टा करने नहीं आए, मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आए। बहुत मुख्यमंत्रियों को देखा है, मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, बिहार सुधारने आए हैं।
0: और देखा है, बनाया भी है,
1: देखा भी है, काम भी किया है, रहने का अवसर भी मिला है। कोई अभिमान नहीं है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यह है सिर्फ बिहार में सुधार। 2 वर्ष लगे 10 वर्ष लगे। आज जीते हैं लोग ताली बजा रहे हैं, कल हारे थे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। लोकतंत्र है, चलता रहता है।
0: उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अगला जो होने वाला है, क्या लगता है यहाँ से जो एक मैसेज जा रहा है, खासकर जो मुस्लिम मतदाताओं ने आपके लिए भारी संख्या में वोट किया है बांकीपुर में, इसका मैसेज और खासकर फॉरवर्ड क्लास ने भी जो स्वर्णों ने आपके लिए वोट किया है, इसका इम्पैक्ट प्रशांत जी उत्तर प्रदेश में आपको लगता है होगा?
1: मुझे कोई आइडिया नहीं, बिहार से बाहर ना
0: आपको
1: मैं
0: तो
1: देख
0: देश का पूरा आइडिया रहता
1: नहीं,
0: है
1: ऐसा नहीं। बिहार से बाहर मैं न देखना चाहता हूँ न समझना चाहता हूँ, मैं बिहार में हूँ, बिहार में ही रहना चाहता हूँ।
0: मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है कभी?
1: कोई इच्छा नहीं, बस एक ही इच्छा है, बिहार एक ऐसा दिन आए जब बिहार में लोग बाहर से पढ़ाई रोजगार के लिए आए, वो बिहार देखना चाहते हैं अपने जीवन में।
0: 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे?
1: नहीं, चुनाव तो सब लड़ेंगे, चुनाव जब पार्टी है तो चुनाव सब लड़ेंगे। 2029 क्या, अभी पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं,
0: वो भी लड़ने जा रहे हैं,
1: बिल्कुल लड़ने जा रहे हैं।
0: बांकीपुर में अगले बार जब चुनाव होगा तो फिर प्रशांत किशोर मैदान में फिर उतरेंगे बांकीपुर से ही, क्योंकि अब तो आप मौजूदा विधायक हैं।
1: अब हैं, जब अगला चुनाव होगा तो जरूर लड़ेंगे, कहां जाएंगे,
0: यहीं पर रहेंगे, यहीं पर
1: हैं, जनता ने विश्वास जताया है, कहां छोड़कर जाएंगे, यहीं पर हैं।
0: अंत में एक चीज बताइए, नीतीश कुमार की आपको लगता है कमी कहीं ना कहीं एनडीए को खली या बीजेपी को खली, क्योंकि ये चुनाव बार बार कहते थे कि नीतीश कुमार के एग्जिट के बाद पहला, सम्राट चौधरी के आने के बाद पहला।
1: नीतीश कुमार के व्यक्ति से ज्यादा जिस तरह से वो सरकार चलाते थे, सबको साथ लेकर चलने वाली जो बात थी, कहीं ना कहीं उस चीज की कमी आपको सम्राट चौधरी के सरकार में दिखती है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन का आप मिसयूज कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को डरा रहे हैं, जातियों को मारने की बात कर रहे हैं, क्या 20 साल में नीतीश कुमार के राज में कभी आपने सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि किसी जाति को देखकर गोली मारो? क्या उस समय बिहार में अपराध नहीं था? आज से बहुत ज्यादा अपराध था। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि जाति पूछकर गोली मारो? क्या नीतीश कुमार ने कहा कि गमछा का रंग देखकर गोली मारो? मैं उस शैली की बात कर रहा हूं। बिहार में सत्ता का दुरुपयोग करके राजनीति करने की परिपाटी नहीं रही है, ये पहली बार इस सरकार में देख रहे हैं जहां अफसर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिहार के लिए घातक है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: इफ यू लव पॉडकास्ट्स यू नेवर वांट टू बी विदाउट योर फेवरेट शोस दैट्स वेयर ट्यून इन कम्स इन। हियर इज अ क्विक टिप, यू कैन लिसन एनीटाइम इवन विदाउट द इंटरनेट। Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
5: Sokudo.

0: भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं।
1: असल बात यह है कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश जी को जो करारी हार का सामना करना पड़ा, उस हार के बाद से अखिलेश यादव जी पूरी तरह से हाइबरनेशन में चले गए हैं। वे इस तरह के गलत बयानों को देकर के, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके आम जन को भ्रमित करने का और भड़काने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम किया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: हरियाणा के फरीदाबाद के एक स्कूल में महिला टीचर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात फरीदाबाद के सिकरौना इलाके की है। आरोपित ने एक दो नहीं बल्कि 27 बार चाकू से महिला टीचर को गोद दिया। पुलिस के मुताबिक अमित नाम का आरोपित महिला टीचर को कई दिनों से परेशान कर रहा था। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हमलावर काफी देर तक स्कूल परिसर में टहलता रहा और फिर जैसे ही टीचर बाहर निकली उसे चाकू से गोद डाला।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

विपक्ष के हंगामे पर आग, बबूला योगी, कहा समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं, अध्यक्ष के आसन का हुआ अपमान, साधु संतों को किया जा रहा है बदनाम। बीजेपी की दतिया हार के बाद शिवराज सिंह चौहान से मिले पीएम मोदी, बाकीपुर नतीजों पर नीतीश कुमार से भी मुलाकात, जेडीयू से आई आवाज, नीतीश होते तो ना हारते। जीते ही प्रशांत किशोर ने खोला सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा, कहा बीजेपी को बदलना चाहिए सीएम, सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बिहार से है इसलिए खुश हूं, आज तक पर पीके का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तमिलनाडु की राजनीति में भयंकर उबाल, सीएम विजय की दोस्त त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गिरफ्तार नेता विपक्ष उदय नीतीश स्टालिन को मिली जमानत। एयर टर्बुलेंस में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंडिंग, लेकिन कुछ यात्रियों और कर्मचारियों को लगी चोट, फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अब आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में भारी बारिश से तबाही, कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ से भिड़े हालात। पुंछ के बेतरदाली में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने 3 को सुरक्षित बचाया। भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां, तेज बहाव के भयानक नजारा सामने आया। राजौरी में भारी बारिश से मनावर नदी और कई नालों में जलस्तर बढ़ गया, तेज बहाव में बह रहे कई जानवरों को स्थानीय लोगों ने बचाया। फौजिलगा में बारिश से धसी सड़क में गिरे बाइक सवार दुकानदारों ने रेस्क्यू किया। गुरेज के कोर कबल में बादल फट गया, अचानक आई बाढ़ से खाना बदोशों का झुंड फंस गया। दक्षिण कश्मीर में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़, कई घर जलमग्न हो गए। लंगनई और अबूरा के पास फ्लैश फ्लड से सड़क बह गई, पहलगाम का संपर्क टूट गया, दोनों ओर पर्यटक फंसे हुए हैं। श्रीनगर में बारिश से गर्मी से मिली राहत, लाल चौक में सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे लोग। बांदीपोरा में फ्लैश फ्लड से सड़क बनी दरिया, कई गांवों का संपर्क टूट गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह। जोजिला रोड पर भारी बारिश से भूस्खलन, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी रूप से यातायात पर रोक। चमोली में कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग पर अचानक दरगाह पहाड़, खौफनाक मंजर सामने आया। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भू धसाद से जगह जगह पड़ी दरारें, घंटों ठप रहा आवागमन। विदिशा में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाते बच्चे, वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन अलर्ट। यूपी के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, विधानसभा परिसर के बाहर चढ़ावा चोरी, शिक्षक भर्ती और कृषि उत्पादों की महंगाई पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। यूपी अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के लिए 17,399,50,00,000 का प्रस्ताव, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट। यूपी अनुपूरक बजट पर सरकार का दावा, विकास और प्राथमिकता वाली योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, पेशी के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधानसभा में चढ़ावा चोरी मामले पर सपा का हंगामा, नेता विपक्ष मानता प्रसाद पांडे ने सरकार को घेरा, सदन में मौजूद एसपी विधायकों ने नारे लगाकर विरोध जताया। बिहार नतीजों पर सपा का बीजेपी पर हमला, एसपी ने कहा बिहार तो बस शुरुआत है, यूपी में बीजेपी साफ होगी, बीजेपी की हार तय। सपा विधायक अतुल प्रधान के मामले पर सियासी तंज, कहा ओटीटी देखना हो तो विधानसभा आ जाइए, विधानसभा में एक से एक प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मदरसा पर विवादित बयान, कहा मदरसा आतंकवाद को पैदा करने की फैक्ट्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे वाले बयान पर एसपी नेता शिवपाल यादव का पलटवार, आज तक से बातचीत में कहा बीजेपी के दफ्तरों से मिलते हैं आतंकी। नितिन नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला, बोले अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया, वोट चोरी से लेकर नौकरी आरक्षण चोरी का परिणाम बताया। लोकसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन, लोकसभा में हंगामे के साथ सदन की शुरुआत, कल तक स्थगित लोकसभा की कार्यवाही। सरकार पर हमलावर दिखा विपक्ष, नीट मामले और छात्र प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के साथ गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। गृहमंत्री के साथ पीएम की गैर मौजूदगी पर भी विपक्ष का विरोध, संसद के बाहर विपक्ष ने पोस्टर के साथ नारे लगाकर सरकार का विरोध जताया। खड़गे ने गिराई विपक्ष की मांगे, बोले पीएम मोदी और गृहमंत्री पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में जवाब दें। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक, मंगल मिलन, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में शामिल हुए। आज से 3 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, दोपहर बाद असम के डिब्रुगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। असम के बाद 5 अगस्त को नागालैंड पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा, बाढ़ प्रभावित परिवारों से संवाद करेंगे। नागालैंड के बाद 6 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। फ्लश फ्लड और बादल फटने से क्षतिग्रस्त सड़क पुल राहत शिविरों का निरीक्षण करेंगे। तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार, सीएम विजय की दोस्त त्रिषा पर किया था कमेंट। तमिलनाडु में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि जमानत भी मिल गई है उनको। 3 उपचुनावों में बीजेपी को झटका, बांकीपुर और दतिया में हार, गुजरात के बांजलपुर में बीजेपी के सिर सजा जीत का ताज। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कहा चुनाव नतीजों पर करेंगे आत्ममंथन। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में बड़ी उलटफेर, प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को करारी हार की। करीब 19,000 वोटों से जीते जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर का 30 साल पुराना गढ़ 30 दिनों में ढा दिया। बागीपुर लोकसभा चुनाव में कई दलों की जमानत जब्त, बागीपुर में आरजेडी उम्मीदवार भी नहीं बचा पाए जमानत। अयोध्या में इस्तीफे के बाद पहली बार कैमरे पर आए चंपत राय, संतों से मुलाकात कर साझा की मंदिर प्रकरण से अब तक की कार्रवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी, ट्रस्ट की संपत्ति और लॉकरों की होगी जांच। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एसआईटी करेगी एसबीआई लॉकरों में रखी संपत्तियों के सत्यापन, सोने चांदी के आभूषणों की जांच होगी। पंजाब विधानसभा में E20 पर प्रस्ताव पास, मंत्री हरपाल चीमा बोले उपभोक्ताओं पर जबरन न थोपा जाए ब्लेंडेड फ्यूल। E20 पेट्रोल पर पंजाब सीएम भगवंत मान के सवाल, बोले बिना विशेषज्ञों की सलाह के लागू किया गया, E20 को 2030 में लागू करना था। वाराणसी में एनडीआरएफ ने की 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग, गंगा नदी में बढ़ते हुए जलस्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सतर्कता। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्मदिन के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। रावण के पहले सोमवार पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह, बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालु ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में निकली नोटों वाली कावड़, कावड़ में लगाए गए हैं 10, 20, 50 और 100 के अनगिनत नोट, भोले के जलाभिषेक के लिए दिल्ली से जा रही है कावड़। हरिद्वार कावड़ मेले में दिखा नया रंग, अब पैदल कावड़ के साथ साथ अनोखी और विशाल कावड़ भी लोगों का ध्यान खींच रही है। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण, कावड़िये शिव, शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल ले जा रहे हैं। डीजे की धुन पर डांसते गाते बढ़ रहे कावड़िये हाईवे पर, बम बम बोले की जय गोर। हरिद्वार में कावड़ यात्रा का अनोखा रूप, शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियों वाली कावड़ लेकर निकले कावड़िये। मुजफ्फरनगर में ओवरसाइज डीजे कावड़ यात्रा पर पुलिस की सख्ती, तेज डीजे सेटअप को हरिद्वार से आगे जाने की अनुमति नहीं। रूस के ब्लैक सी हॉलीडे रिजॉर्ट में यूक्रेन का भीषण हमला, 3 बच्चों समेत 7 की मौत, 40 से ज्यादा घायल हुए। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर निशाना, कहा ईरानी नेतृत्व अपना रहा है दोहरा रवैया, पहले बैठक करने के लिए कहते हैं और फिर पलट जाते हैं, कहते हैं ओमान से बात कर रहे हैं। ट्रंप के दावे के बीच ईरान में अमेरिका से बातचीत से किया इनकार, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा जब तक अमेरिका उल्लंघन नहीं करता बंद तब तक जलडब्रू बंद बंद रहेगा। 5 साल बाद पहली बार दिखी म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की, इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस की प्रतिनिधि से की मुलाकात। जापान की पीएम सनाए तकाइची ने भूकंप प्रभावित कुमामोटो प्रांत का दौरा किया, भूकंप पीड़ितों से मुलाकात की। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इराक के कुर्दिश क्षेत्र में राष्ट्रपति बारजानी से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा। ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टी रिफॉर्म यूके में बड़ा ऐलान, कहा इंग्लिश चैनल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलाएंगे सबसे बड़ा सैन्य अभियान। स्पेन के सेविटो में फंसे प्रवासियों को छलका दर्द, कहा हमें स्पेन में नौकरी चाहिए इसीलिए जान जोखिम में डालकर घुसपैठ कर रहे हैं। रोमानिया में सूखे की वजह से गहराया संकट, डेब्यू नदी का रुख मोड़ने के लिए नौसेना ने कराया लाइव विस्फोट, जल स्तर कम होने की वजह से 4 नोवर्डा परमाणु ऊर्जा प्लांट को करना पड़ा बंद। अमेरिका में जंगल की आग से बड़ी तबाही, वाशिंगटन राज्य में घरों तक पहुंची जंगल की आग, 600 से ज्यादा इमारतें जल गईं, 60,000 लोगों को घर खाली करने के आदेश। कौशाम्बी में लूट छिनती करने वाले बदमाश से मुठभेड़, पैर में लगी गोली, तमंचा कारतूस, बाइक बरामद। बागपत में हरिद्वार से कावड़ जस्ता जीतकर लौट रहे कावड़ियों का ऑटो पलटा, हादसे में महिला और 6 बच्चे घायल। बांदा में शराब पार्टी के बाद हिस्ट्री शीटर दोस्त की हत्या, दोस्त पर ही कत्ल का आरोप, इलाके में हड़कंप। अमेठी में प्रेम विवाह के बाद युवक की हत्या का आरोप, घर बुलाकर धारदार हथियार से वार किया, गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम की। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर, पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात। मुंबई के सागीनाका में चलती बाइक में लगी आग, ट्रैफिक पुलिस ने हादसा टाल दिया बड़ा। असम के कछार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 28 करोड़ के हेरोइन जब्त, 3 गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में खड़ी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मुंबई हाईवे पर गड्ढे में जा गिरी कार, टीडीआरएफ जवान की मौत, जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। गुजरात के अंबाजी में सीएनजी पंप पर बेकाबू कार ने चारपाई पर बैठे शख्स को जोरदार टक्कर मारी, मौके पर मौत हो गई। आसनसोल में गौ चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की, हिरासत में लिया गया। सहारनपुर में गली से गुजर रहे 2 युवकों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया, 1 घायल। अकोला में पॉक्सो मामले में फरार पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, 20 दिन बाद नांदेड़ से गिरफ्तार किया गया। रामपुर में ड्रग्स और नशीले पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ के स्मैक पाउडर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। फिल्म गोकुल 1757 का पोस्टर जारी, 1757 में अहमद शाह अब्दाली की सेना के खिलाफ गोकुल के युद्ध की एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। फिल्म अलायस रुक्मिणी का वीडियो जारी हुआ, फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे नितिन। यश की फिल्म टॉक्सिक का 8 अगस्त को रिलीज होगा ट्रेलर, 26 अगस्त को फिल्म रिलीज होगी। फिल्म जम्मा 3 की शूटिंग शुरू, 1 जनवरी 2027 को रिलीज होगी। फिल्म सिंह वर्सेस गॉड 2 का टीजर जारी, 11 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी। ईएमआई पर बंधन करने के लिए सोमवार से शुरू हुई आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, अनुमान के मुताबिक महंगाई की जगह विकास पर फोकस रखने की वजह से फिलहाल नहीं बढ़ेगा रेपो रेट। शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच आईपीओ मार्केट की रफ्तार धीमी पड़ने का दावा, निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए कई कंपनियों ने अपने आईपीओ का साइज वैल्यूएशन घटाना शुरू किया। जुलाई में यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1 साल में 22% की तेजी के साथ डिजिटल पेमेंट्स ने रच दिया नया इतिहास। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की उम्मीदों से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई, ईरान के साथ बातचीत के संकेत मिलते ही ब्रेंट क्रूड 4% से ज्यादा लुढ़ककर $84 पर बैरल के नीचे। यूक्रेन युद्ध के बाद लगी पाबंदियों को दरकिनार करने रूस से भारत का तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जुलाई में कुल क्रूड इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 55% से भी ज्यादा। और आइए बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष लामबंद रहा, हंगामे के चलते दोनों सदन स्थगित रहे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर कैश, गहने और जमीन के गबन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, संसद में इसकी घोषणा खुद पीएम ने की थी, सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। इस पर किरण रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही। राम मंदिर बनने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था, आज वही लोग चंदा चोरी का नाटक कर रहे हैं। और ये भी कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली वासी उबाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते, पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगिए, उसके बाद सरकार से जवाब मांगिए।
2: ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए,
3: मानते नहीं है आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं। दुनिया लोग आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते, ये भगवान राम को मानते नहीं है। शर्म आने से हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठा रहे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे ये लोग।
0: अब पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात की बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट। उपचुनाव हुए, बीजेपी की करारी हार हुई और उसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दिल्ली में पीएम मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच संसद भवन में आज बहुत अहम मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के दौरान नीतीश के साथ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने देखिए। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में हार का असर एनडीए पर दिखने लगा। जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान सामने आया। अनंत सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रहते तो ये नतीजा नहीं आता। जनता ये समझ रही है कि नीतीश कुमार को हटाया गया और जनता इससे काफी नाराज भी है।
4: जैसे जनता ने हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजोबरी करके नीतीश जी के साथ ऐसा किया है। अब बात जो रहे लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन कुल जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे ककर नाम पर, अब ककरो कोयले ले कखड़ो को खोखड़ा बना दे, कखड़ो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है।
0: तीन राज्यों के उपचुनाव पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है और चलता भी रहेगा। दो राज्यों में बीजेपी की हार से विपक्ष का हौसला बहुत बुलंद है। विपक्ष से बीजेपी की हार की शुरुआत बता रहा है।
5: तो इससे साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये यहाँ मेरे ख्याल से ये शुरुआत है।
6: परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाय इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश।

0: ना हो।
1: बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। बिहार के बांकीपुर सीट पर बीजेपी को करारी हार मिली तो मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब उपचुनाव के नतीजे के मायने निकाले जा रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे को लेकर उत्तर प्रदेश में भी खलबली दिख रही है, जहां अगले साल होने वाले हैं चुनाव। अब सवाल यह कि क्या उपचुनाव के नतीजे यूपी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या ये महज 2 सीटों पर जीत हार का मसला भर रह गया है।
2: दो जीत का संदेश क्या है? बिहार के बांकीपुर में पीके की जीत, एमपी के दतिया में कांग्रेस की जीत, इन दो तस्वीरों का संदेश क्या है? उपचुनाव में बीजेपी की हार के मायने क्या है? क्या इन नतीजों की धमक आगे भी सुनाई पड़ेगी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले जरा बांकीपुर में पीके की जीत के मायने समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार गई। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी हार गई। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिली है।
3: बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं, उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हजार रुपए में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है।
2: बांकीपुर की हार बीजेपी को झकझोर देने वाली है, क्योंकि ये वो सीट है जिसे बीजेपी बेहद सुरक्षित मान रही थी। इसकी वजह भी साफ है। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में बीजेपी को 63% वोट मिला। 9 महीने बाद उसी बांकीपुर में बीजेपी को 49.19% वोट मिला। 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। 9 महीने के बाद बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। तो आखिर इन 9 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि बांकीपुर में बीजेपी को 19,000 वोट के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा? क्या ये हार इसलिए हुई कि बीजेपी से सवर्ण वोट इस बार छिटक गए? नीतीश कुमार की चुनाव में सक्रियता नहीं रही, सम्राट चौधरी के सीएम बनने का असर नहीं हुआ, पेपर लीक और अयोध्या में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे का असर बिहार के चुनावी माहौल पर भी पड़ा?
4: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
5: बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले भी हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा।
2: बीजेपी के लिए दतिया की हार भी बड़ा झटका है। बांकीपुर में तो पीके का बड़ा चेहरा भी फैक्टर रहा, लेकिन दतिया में तो ऐसी वजह भी नहीं दिख रही। इसलिए अब बड़ा सवाल ये है कि उपचुनाव के नतीजे का असर क्या यूपी तक जाएगा? क्या नतीजों पर यूपी में खलबली दिखेगी?
6: भारतीय जनता पार्टी की हार शुरू हो गई है और आते आते 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी।

0: रखिए। यूपी वो राज्य है जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बीजेपी बुरी तरह फंसी है, और ये वो राज्य भी है जहां सवर्ण वोटों को लेकर भी जबरदस्त खींचतान है। पटना से रोहित सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अप

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट बड़े आराम से।
4: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपी विधानसभा में भड़के सीएम योगी बोले समाजवादी पार्टी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, अध्यक्ष के आसन और साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं। बीजेपी की दतिया हार के बाद शिवराज सिंह चौहान से मिले प्रधानमंत्री मोदी, बांकीपुर नतीजों पर नीतीश कुमार से मुलाकात, जेडीयू से आई आवाज, नीतीश होते तो न हारते। जीतते ही प्रशांत किशोर ने खोला सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा, कहा बीजेपी को बदलना चाहिए, सीएम सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बिहार से है इसीलिए खुश हूं, आज तक पर पीके का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तमिलनाडु की राजनीति में भयंकर उबाल, सीएम विजय की दोस्त त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गिरफ्तार नेता विपक्ष उदय निधि स्टालिन को मिली जमानत। एयर टर्बुलेंस में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंडिंग लेकिन कुछ यात्रियों और कर्मचारियों को लगी चोट, फुकेट से दिल्ली आ रहा था प्लेन, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में मचे हंगामे की, राम मंदिर चढ़ावा मामले पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया, सीएम योगी विधानसभा में बोलने के लिए जैसे ही खड़े हुए विपक्ष ने हंगामा तेज कर दिया। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण न केवल असंवैधानिक बल्कि शर्मनाक है। सीएम ने आरोप लगाया कि कार्य मंत्रणा समिति में पहले से तय मुद्दों के बावजूद विपक्ष सदन का समय बर्बाद कर रहा है और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
2: समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण आज पूरे प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखा है।
3: आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी। सदन नियमों परिनियमों और परंपराओं से चलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 59 के तहत ये पहले से ही तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, यानी सब जूडिस हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर अध्यक्ष विधानसभा ये समझते हैं किस चर्चा के कारण संबंधित जांच की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है तो वे इस चर्चा को परमिशन दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्यमंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत तो होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष, विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था वह अत्यंत निंदनीय है।
0: उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। चार दिनों के सत्र में पहले दिन से ही विपक्षी दल सरकार पर चढ़ावा मामले को लेकर हमलावर हैं और आज भी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया।

0: यूपी विधानसभा में सरकार चाहे अनुपूरक बजट लाए या नौ अध्यादेश विधेयक, लेकिन विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ा सियासी मुद्दा चढ़ावा चोरी का बना हुआ है। दोनों सदनों में विपक्षी दल अंदर बाहर लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। विधान परिषद में तो सोमवार को इतना हंगामा बढ़ा कि दो दो बार सत्र को 15-15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।
1: जिस तरह से प्रभु राम के चरणों में कई सौ करोड़ की चढ़ावे की चोरी हुई, भाजपा के लिए विषय नहीं हो सकता, पर ये इस देश के और इस करोड़ों सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ, और मैं तो कहूंगी कि प्रभु राम के साथ विश्वासघात किया।
2: राम नाम कहने का दिवस कर दिया, आज भगवान श्री राम का नाम तो आप ले रहे हो, लेकिन आपका कल्याण भगवान श्री राम का नाम लेने से नहीं है। आप राधे कृष्ण का जाप करो और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण में भाजपा का साथ दो।
0: राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी बनाम बाबर की नातेदारी वाली सियासत विधान परिषद में देखी गई, जब विपक्ष की ओर से एक के बाद एक तेज सरकार पर छोड़े गए। विधान परिषद के वेल में आकर हंगामा कर रहे विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे कि चढ़ावा चोरी 1990 से हो रही है, बस भांडा अभी फूटा है। सरकार ने कहा कार्यवाही बाधित करके टैक्स के पैसे का भारी दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष ने कहा कि भगवान को दिए दान का हरण महापाप होता है। सरकार ने कहा कि बाबर से रिश्ता जोड़ने वाले आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट में संतों महात्माओं की जगह संघ वीएचपी के लोग रख दिए गए। सरकार ने कहा कि आपने तो निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। जाहिर तौर पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी नेताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन सरकार भी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट की सियासत कर रही है। सीएम योगी से लेकर तमाम बीजेपी समाजवादी पार्टी को मंदिर और सनातन विरोधी करार देकर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: जहां एक तरफ यूपी विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा हो रहा है, वहीं एक और विवाद मुद्दा बन गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि मदरसा चाहे कहीं का भी हो, वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री।
4: यूपी के विधानसभा सत्र के दौरान एक तरफ विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, उस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसे आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है।
5: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
6: ये मानसिक रोगी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी।
4: केशव मौर्य का यह बयान इसीलिए विपक्ष के निशाने पर आया है क्योंकि यूपी सरकार मदरसा शिक्षा से जुड़े संशोधनों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक की पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। खबर है कि यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
7: तो ये करें क्या, हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं, तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
4: दरअसल योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक की पढ़ाई ही करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें अब यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच केशव मौर्य के बयान ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका दे दिया।
8: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है, जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है, सरकार को चाहिए कि उन्हें आईटीआई की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और इन मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे।
4: विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर अली जौहर की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
3: अगले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में होना है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में आयोजित किए जाने वाले हैं और इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को मिलनी चाहिए, अहमदाबाद को नहीं, या फिर अहमदाबाद के साथ हरियाणा इसका सह मेजबान बनाया जाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के लिए खेल में सबसे ज्यादा योगदान हरियाणा के खिलाड़ी देते हैं और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा ने जीते हैं।
9: दीपेंद्र जी, आपका कहना है कि हरियाणा चूंकि सबसे ज्यादा मेडल लाता है देश के लिए, तो हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट होने चाहिए थे। आपका ये कहना है, आपने सवाल उठाया कि गुजरात को क्यों चुना गया, हरियाणा को क्यों नहीं, तो क्या आपको लगता है कि जो जो राज्य सबसे ज्यादा मेडल ला रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना मजबूत होगा कि वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स जैसा इवेंट होस्ट किया जा सके?
10: देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो मुझे गर्व है इस बात का कि भारत देश को ये मौका मिल रहा है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान देश के रूप में, हमें गर्व है। अब बात आती है कि अब पूरे देश में कहाँ, कौन से प्रदेश में इसकी मेजबानी की जाए, और इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, लगातार पिछले 15-20 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के देखेंगे, भारत के जितने मेडल आए पदक तालिका में, उनमें से 50% से ज्यादा मेडल, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाई खेल हो, 50% से ज्यादा भारत देश के मेडल हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लेके आए, जिन्होंने भारत माता की झोली को उन मेडलों से भरने का काम किया। ऐसे में जब ये प्रश्न आए कि कहाँ खेलों का आयोजन किया जाए, और आयोजन के लिए, केवल आयोजन नहीं है, आयोजन के लिए लाखों करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा वहां के खेल ढांचे को सुधारने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, स्टेडियम्स बनाने के लिए, रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो जब ये इतना बड़ा निवेश करने की बात देश फैसला कर रहा है, तो अगर ये निवेश हरियाणा में किया जाए तो भारत माता की झोली और ज्यादा हमारे खिलाड़ी मेडलों से भरने का कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे, और भारत, जब भारत देश के लिए ज्यादा मेडल आएंगे तो देशवासियों को गौरव होगा। केवल इस बात पे हमें गर्व नहीं होना चाहिए, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि खेल हम आयोजित कर रहे हैं, असली गर्व होना चाहिए जब 2030 कॉमनवेल्थ खेलों में हमारा देश पदक तालिका में नंबर एक पे आए
9: जी।
10: और उसका क्या रास्ता है उसके बारे में सोचना चाहिए। इस बार भी 13 गोल्ड मेडल आए, जिनमें से 7 हरियाणा से संबंधित खिलाड़ी, हरियाणा के हमारे खिलाड़ी लेके आए। और ये जो आज सरकार ने ये तर्क दिया है कि सरकार कह रही है कि जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां ज्यादा है यहाँ कम है, पहली बात मैं तरसे सहमत नहीं हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में भी अच्छा है, लेकिन अच्छा तुलनात्मक जरूर है, लेकिन अगर ये बात आप कह रहे हैं तो और ज्यादा जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर बिना पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ही हरियाणा खिलाड़ी इतने मेडल लेके आ रहे हैं तो इनको अच्छे से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप पूरा अपना निवेश आप करो यहाँ पर, ताकि भारत दुनिया में पदक तालिका में ऊपर पहुंचे।
3: अब मौसम का हाल आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। तेज बारिश के बीच नदी नाले उफान पर हैं। दिखाते हैं वहां की ये रिपोर्ट।
4: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है उसे इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है।
11: यहाँ पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। नदी नालों का पानी बढ़कर कई जगहों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया।
12: ऐसे में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लोगों को सैलाबी संकट का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बीच नाला पूरे उफान पर है। लहरें घरों के किनारों को छूती हुई तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर लोग बेहद डरे हुए हैं। दिलों में खौफ है कि कहीं सैलाब का प्रहार उनके मकान को ही नुकसान न पहुंचा दे।
13: कश्मीर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जहाँ पर भी कहीं क्लाउड बस्ट होता है तो पानी मिनटों में बस्तियों में पहुंच जाता है। वही स्थिति हमने पिछले 24 घंटों के दौरान देखी। एक दर्जन से भी ज्यादा जो है बादल फटे हैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों में और कई सारे सड़कें जो है वो इन फ्लैश फ्लड्स में ढह गई, खेत ढह गए, यहाँ तक कि दो लोगों की मौत भी हो गई है फ्लैश फ्लड्स के कारण जो है गुरेज के इलाके में। तो जाहिर है कि अभी भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है इस मौसम की मार से। जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में जितने भी मुख्य राजमार्ग हैं वो स्थायी तौर पर बंद होते हैं, फिर उनको खोला जाता है, फिर फ्लश आ जाता है और फिर रोड जो है ढह जाते हैं। चाहे वो जम्मू श्रीनगर की बात हो, मुगल रोड की बात हो, श्रीनगर करगिल हाईवे की बात हो या फिर छोटे छोटे रास्ते जो कश्मीर और जम्मू के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में हैं। तो जाहिर है कि मौसम विभाग ने कहा है कि ये सिलसिला जो है एक हफ्ता और जारी रहेगा क्योंकि क्लाउड बस्ट को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती है कहां पर ये फटेगा, कहां फ्लश फ्लड आएगा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही इसका जो इलाज है कि लोग सतर्क रहे।
12: अब बांदीपोरा की ही एक और तस्वीर को देखिए। लहरें किस तरह उफनाई हुई हैं और हाहाकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। कई इलाके भी इन लहरों के जद में आ रहे हैं। राजौरी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। फ्लैश फ्लड से यहाँ भी खतरा बढ़ा हुआ है। तमाम जगहों पर घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों के घर तबाह हो गए हैं। कई इलाकों में रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बादल फटने की घटनाएं भारी तबाही मचा रही हैं। गुरेज के कोरकबल इलाके में बादल फटने के बाद कुछ लोग लहरों के बीच फंस गए और कई मवेशी बह गए। वहीं पहलगाम में अचानक आई बाढ़ ने सड़क के कई हिस्सों को बहा दिया है जिससे पहलगाम का संपर्क प्रभावित हो गया है। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन बारिश के बीच इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं।
14: पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिन से मौसम की मार लोग झेल रहे हैं, कभी धूप और कभी बारिश, लेकिन उसके साथ साथ खास तौर से जिस अंदाज से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और उनसे फ्लश फ्लड कश्मीर के कई इलाकों में देखे जा रहे हैं, उसने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में ही एक दर्जन से भी ज्यादा बादल फटे और उनके कारण कई सारी सड़कें जो हैं वो फ्लैश फ्लड्स में बह गई और कई सारे खेतों और घरों को भी नुकसान पहुंचा।
12: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है जिससे यहां संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
17: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
18: कुछ तो बात है इस तेल में।
19: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
20: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
19: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए है? औरंगजेब जो था भैया डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
21: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
19: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
22: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ है और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नीतीश होते तो ना हारते। जीतते ही प्रशांत किशोर ने खोला सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा, कहा बीजेपी को बदलना चाहिए मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बिहार से हैं इसीलिए खुश हूं। आज तक पर पीके का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तमिलनाडु की राजनीति में भयंकर उबाल, मुख्यमंत्री विजय की दोस्त त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गिरफ्तार, विपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन मिली जमानत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की कर दी छुट्टी, ईरान युद्ध में मध्यस्थ की सूची से पाकिस्तान का नाम गायब, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की देश में बड़ी फजीहत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड।
3: मीटिंग हेडक्वार्टर ISI के अंदर हुई है।
4: पाकिस्तान में फिर होने वाला है तख्ता पलट, इस्लामाबाद में आखिर क्यों लगे कंटेनर, शहबाज जरदारी की होने वाली है छुट्टी, आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति। सिस्टम को फेल बताने वाले मोहसिन नकवी बनेंगे प्रधानमंत्री।
3: 7 घंटे की मीटिंग हेडक्वार्टर ISI के अंदर।
4: रावलपिंडी में चली 7 घंटे की बैठक का सच क्या है, मुनीर ने जरदारी को दिया सुरक्षित पाकिस्तान छोड़ने का ऑफर। क्यों पाकिस्तानी मीडिया ने मुनीर को याद दिलाई जिन्ना की वो बात। पाकिस्तान में आज तख्ता पलट की रात।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट फिर होने वाला है, क्योंकि आहट इस समय सुनाई दे रही है। इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो हालत है वो बेहद नाजुक है। पाकिस्तान में वैसे भी हमेशा से ही फौज की ही हुकूमत रहती है, लेकिन इस समय क्या पाकिस्तान में सीधे तौर पर आसिम मुनीर अपने आप को राष्ट्रपति बनाकर हुकूमत अपनी चलाना चाहते हैं। वैसे तो उनकी हुकूमत है, जो भी पाकिस्तान में सरकार बनती है वो पाकिस्तान की सेना के इशारे पर उनके हाथों में कठपुतली होती है, लेकिन इस समय शहबाज शरीफ की वो सरकार जो पहली बार 5 साल पूरे करने की ओर बढ़ रही थी, हालांकि उसे भी फॉर्म 47 की सरकार यानी पाकिस्तान की आर्मी द्वारा बनवाई सरकारी कहा जाता है, अचानक कहा जा रहा है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। खबर अभी आ रही है कि आसिम मुनीर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, यानी वो आर्मी चीफ भी रहेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे और प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं। और जो ट्रॉफी चोर है ना, कौन, मोहसिन नकवी, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो क्रिकेट बोर्ड में का भी चीफ है, वो इंटीरियर मिनिस्टर ट्रॉफी चोर वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मोहसिन नकवी रबर स्टैंप या बूट पॉलिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है। दरअसल दोनों के रिश्ते भी हैं। दरअसल आसिम मुनीर ने एक तीर से कई शिकार करने का प्लान बना लिया है। वो पाकिस्तान के लगभग हर सूबे में समय विद्रोह है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पाकिस्तान हर सूबा उसका इस समय भड़क रहा है, आग लगी हुई है वहां पर, उस आग को दबाने के लिए वो हर सूबे को और छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहता है। क्या कहा जा रहा है कि सब नेशनलिज्म को खत्म कर दो, यानी पश्तून पश्तून ना रहे, सिंध में सिंधी ना रहे, पंजाब में पंजाबी ना रहे, कश्मीर में कश्मीरी ना रहे, वो सब बट जाए। इतना ही नहीं, इसके जरिए वो पाकिस्तान में जो दो परिवार हैं जो शासन चलाते हैं, एक सिंध में भुट्टो परिवार और दूसरा पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब सूबे में शरीफ परिवार, दोनों के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है पाकिस्तान की सेना और आसिम मुनीर। दरअसल इस समय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लगता है कि सत्ता की मलाई केवल दो परिवार खाते हैं, एक भुट्टो परिवार और एक यहां पर शरीफ परिवार। लोगों के गुस्से का सामना इस समय फौज को करना पड़ रहा है। हालांकि ये बात भी सच है कि आवाम की मेहनत की सारी कमाई पाकिस्तान में फौज खा जाती है, जो बचता है वो नेता खा जाते हैं। इस बार पाकिस्तान में जो विद्रोह की आग है वो पाकिस्तान को भयंकर न केवल कंगाली की कगार पर ले आई है, बल्कि अब लोग पाकिस्तान की फौज को देखकर थूक रहे हैं, खुले में बोल रहे हैं हर दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है और वहां का जो पैसा है वो वर्दी खा जाती है। इस मौके को देखते हुए, क्योंकि अब आसिम मुनीर समझ गए हैं कि पाकिस्तान की सेना के अंदर भी उनके खिलाफ अब सुर उठने लगे हैं, आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ की ही पार्टी के मंत्री मोहसिन नकवी का इस्तेमाल किया है, ये बयान दिलाया कि 70 साल पुराना जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो फेल है और अब पाकिस्तान को एक नए सिस्टम की जरूरत है। हम आपको बता दें कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृहमंत्री हैं, भारत में वो ट्रॉफी चोर के नाम से जाने जाते हैं। आपको याद है भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। नकवी जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चीफ है, लेकिन भारत पहलगाम का वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला भूला नहीं था। ऐसे में कहा यह जा रहा है वही ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर अपनी ही सरकार यानी शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा उसने खोल दिया है। कहा यह जा रहा है कि इसके बदले उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ आसिम मुनीर की चालाकी को भांपते हुए देखिए, जो पाकिस्तान में दो परिवार हैं, एक जरदारी परिवार और दूसरा शरीफ परिवार, नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं को और मंत्रियों को कह दिया है कि वो मोहसिन नकवी के बयानों का कोई जवाब ना दें। लेकिन अब उनके मंत्री टीवी पर खुलकर मोहसिन नकवी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी को यह लग रहा है कि अगर उनके पिता ने बात मान ली और विदेश चल गए तो उनके तो प्रधानमंत्री बनने के चांस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बकायदा एक वीडियो जारी किया है और यह कहा है कि शाहबाज शरीफ सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम आपको वो भी सुनवाएंगे कि किस अंदाज में वो कह रहे टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू। लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे शाहबाज शरीफ सरकार में पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी और उन्हीं की पार्टी PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में खुली जंग छिड़ गई है। वैसे पाकिस्तान में हर मोर्चे पर इस समय खुली जंग से छिड़ी हुई है, लेकिन इस समय राजनीतिक खुली जंग क्या है सुनिए।
5: जिस चीज की जरूरत होगी, आपको आईपैड चाहिए आपको आईपैड मिलेगा, आपको लैपटॉप चाहिए आपको लैपटॉप मिलेगा।
6: हम अपने नौजवानों को 2000 रुपया महीना स्टाइपेंड लगा के या टैबलेट देंगे कुछ कर लेंगे। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है।
7: हमारे प्राइम मिनिस्टर वो इज नोन एज अ वर्कहोलिक, वो 19 घंटे काम करते, ना वो सोते ना किसी और को सोने देते।
6: आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाले वजीर आजम जो मर्जी करते, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, ये मुल्क किसी हालत में रहेगा।
0: पाकिस्तान में सिस्टम रीसेट की बात की जा रही है, क्या है ये इस वक्त एक और बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से समय आ रही है। इस्लामाबाद की सड़कें इस समय सील की जा रही हैं, जगह जगह कंटेनर लगाए जा रहे हैं, पूरे देश में आर्मी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन अलग अलग मोर्चों पर हो रहा है। क्या ये बड़े तख्ता पलट की आहट है? ये जो वीडियो है इसको जरा ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान की राजधानी है, ये इस्लामाबाद है। पिछले कई दिनों से यहां पर धीरे धीरे कंटेनर लाए जा रहे थे और इस तस्वीर को देखिए, कंटेनर सिटी एक बार फिर इस्लामाबाद बनता जा रहा है। क्यों कंटेनर क्यों लगाए जाते हैं? पाकिस्तान का इतिहास है कि कंटेनर लगा के लोगों को रोका जाता है कि कहीं वो इस्लामाबाद में ना आ जाए। पाकिस्तान की फौज में पूर्व मेजर और अब पत्रकार आदिल राजा ने ये दावा किया है कि उनकी पाकिस्तान में सेना में सूत्रों से बात हुई है, लोगों से बात हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अब वो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सिस्टम फेल होने की बात इसीलिए उनके जो रिश्तेदार हैं मोहसिन नकवी वो लगातार कर रहे हैं। ये जो हाइब्रिड सरकार है ना, कि शाबाज शरीफ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री हैं और असल में सत्ता चलाते आसिम मुनीर, अब वो उससे आगे बढ़ जाना चाहते हैं। अब वो सिविलियन सिस्टम फेल हो गया नैरेटिव को फैला रहे हैं। इसके तहत कहा जा रहा है कि वो संसद में अब एक कानून पास करवा के खुद को, जब तक वो जिंदा रहे तब तक के लिए राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, आर्मी चीफ भी रहेंगे और राष्ट्रपति भी रहेंगे। मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान से सेफ एग्जिट, सुरक्षित निकल जाने का ऑफर दे दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री शाबाज शरीफ की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसी बातें अब पाकिस्तान में की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुखिया हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा बयान दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत अब बस खत्म होने वाली है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शाबाज शरीफ के साथ वैसे तो गठबंधन में है, लेकिन अब वो बेहद नाराज हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में फर्जी चुनावों में पीएमएलएन को जिताया जा रहा है। यहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। बिलावल भुट्टो वहां धांधली के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि पीओके के फर्जी चुनावों में नवाज शरीफ की पार्टी यानी पीएमएलएन बहुमत हासिल कर चुकी है। और इन सब के बीच बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि अब शाबाज शरीफ की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बकायदा बड़े फिल्मी अंदाज में वो कह रहे हैं टिक टॉक उल्टी गिनती शुरू। सुनिए।
8: और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है मुसरे रखना, क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने, टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
0: बहुत ही फिल्मी अंदाज है, वो असल में चाह ये रहे हैं कि युवा उन्हें थोड़ा सीरियसली ले। इस बीच आसिम मुनीर के जो मोहरे हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया है। मोहसिन नकवी ने 21 साल पुराने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू घोटाले का मुद्दा उठाया है। सिस्टम फेल होने का दावा करने वाले मोहसिन नकवी ने कहा है कि यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें पाकिस्तान के अदालतों के जज, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह, पाकिस्तान के बड़ी पार्टियों के नेता और बैंकर सब शामिल हैं। 21 साल उन्हें लगातार पैसे मिलते रहे हैं। मोहसिन नकवी का दावा यह है कि इसके लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। नकवी के इस बयान के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि इसके जरिए क्या आसिम मुनीर अपने विरोधियों को निशाने पर लेना चाहते हैं? बंद दरवाजों के पीछे क्या तख्ता पलट की योजना, अब उस पर काम शुरू हो गया है? हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले मोहसिन नकवी का ये विवादास्पद बयान सुनिए।
9: देखें, बात यह है कि हर एक के लिए कानून होना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर। ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कुछ और अमीर के लिए कुछ और, इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। और इतना बड़ा स्कैम मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा, जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स, हर एक इन्वॉल्व है। और 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग पैसे खाते रहे। तो मेरा ख्याल है कि अभी सिर्फ बिल्डिंग तक नहीं हमें रहना चाहिए। मैं तो पूरी तजवीज़ दूंगा कि जो जो इसमें जिस जिसने वो उनको नुकसान पहुंचाया है, उन सब के पीछे जाना चाहिए।
10: लेकिन इस पर तो पॉलिटिकली भी कहा जाता है कि जिस पर पॉलिटिकल नंबर शेयरिंग है और इसका भी,
9: बस मैं वो ना ही बोलूं बेहतर है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो सीडीए का मौका है, मैं उसकी भरपूर हिमायत करता हूं और उनको सपोर्ट करूंगा।
0: अब सवाल यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए मोहसिन नकवी को ही क्यों चुना? आखिर मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए हम आपको आज इसके अंदर की कहानी बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वो 27वें संशोधन से तीनों सेनाओं की कमान तो ले चुके हैं पहले ही, यानी अब तक वो आर्मी चीफ थे, 27वें संशोधन के बाद वो बन गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आजीवन कानूनी सुरक्षा यानी इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एट ऑल टाइम्स, उनके खिलाफ कभी कोई कोर्ट केस नहीं आ सकता, कभी रिटायर होने के बाद भी कोर्ट केस नहीं हो सकता, जीवन भर राष्ट्रपति के बराबर दर्जा उन्हें मिलता रहेगा, ये वो कानून के तहत अपना परिवर्तन ला चुके हैं ताकि उनके खिलाफ कभी कोई केस ना हो। मोहसिन नकवी उनका सबसे भरोसेमंद मोहरा भी है, फ्रंटमैन भी है। आसिम मुनीर से नकवी का करीबी पारिवारिक संबंध है, उनकी पत्नी दरअसल आसिम मुनीर की एक तरह से बहन है, कजिन है, यह कहा जा रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है, अब अगर वो CDF है तो परमाणु हथियारों का पूर्ण नियंत्रण इनके कब्जे में है, इनके पास है। पश्चिमी देशों को क्या गोली देते हैं या क्या चूरन खिलाते हैं पाकिस्तान की भाषा में, ये कि अगर मैं हट गया तो ये हथियार आतंकवादियों के हाथ आ जाएंगे और पश्चिमी देश डर जाते हैं

0: 2022 में आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही मोहसिन नकवी की जो राजनीतिक किस्मत है वो रातों रात पलट गई, चमक गई। उन्हें विवादास्पद तरीके से पाकिस्तान के पंजाब सूबे का पहले केयरटेकर पीएम सीएम बनाया गया। इस दौरान उन्होंने फौज के इशारे पर इमरान खान और उनकी पार्टी पर बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन किया, कई बेगुनाह लोगों को सरेराह मार दिया गया। आसिम मुनीर का भरोसा और बढ़ गया, उन्होंने मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर होम मिनिस्टर बना के सुरक्षा और खुफिया तंत्र का रिमोट अपने ही हाथ में रखा। मुनीर की ही मेहरबानी से मोहसिन नकवी को खेल प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है, उसके बावजूद पीसीबी का उन्हें चीफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। मुनीर का ही वो वरद हस्त था कि पीसीबी में 6.5 करोड़ का घोटाला होने के बावजूद नकवी को कोई कुछ नहीं कहता। इसके अलावा जब ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता का मुद्दा आया तब भी आसिम मुनीर ने मोहसिन नकवी पर भरोसा किया। उन्होंने मोहसिन नकवी को न केवल वॉशिंगटन डीसी बल्कि तेहरान भी बार बार भेजा। ये सबको बताया कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के सबसे ताकतवर चेहरे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये है रिश्ता कि परिवार में ही शक्ति पूरी रखना चाहते हैं इस समय आसिम मुनीर। मोहसिन नकवी लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और अपनी ही पीएमएलएन सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन के प्रमुख नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को रायविंद में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक के बाद सख्त निर्देश दिए। बड़ी खबर यह आ रही है कि नवाज शरीफ ने कह दिया है कि वो गृहमंत्री मोहसिन नकवी के बयानों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी ना करे, कोई पलटवार ना करे, कोई बयानबाजी ना करे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों को खासतौर पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से मोहसिन नकवी पर किए गए तीखे हमलों के बाद पैदा हुए तनाव को शांत करने की हिदायत दी है। दरअसल मोहसिन नकवी के जरिए आसिम मुनीर के इरादों को भांपते हुए नवाज शरीफ ने लाहौर के पास जाती उमरा में जो उनका निजी निवास है वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता खुद नवाज शरीफ ने की। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री जो नवाज शरीफ की बेटी हैं मरियम नवाज वो भी मौजूद थे, हमजा शाहबाज भी मौजूद थे, पीएमएलएन के शीर्ष नेता वहां मौजूद थे। नवाज शरीफ ने मंत्रियों को साफ साफ कहा कि मोहसिन नकवी की ओर से सिस्टम क्रैश और नए प्रांतों के गठन के बयानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाए, कोई भी मंत्री इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से हवा न दे। बैठक में मंत्रियों से कहा गया कि खुद शहबाज शरीफ के सलाहकार और पूर्व गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने जियो न्यूज को क्या बताया, हम आपको वो भी सुनवाते हैं, सुनिए। इस समय पाकिस्तान में आंतरिक स्थिति बेहद बिगड़ी हुई है, राजनीतिक तौर पर आंतरिक कलह चल रही है। अगर आप सूबों की बात करें तो हर सूबा जल रहा है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर अलग अलग प्रांतों में समय आग लगी है, विद्रोह है। लेकिन क्या कहना है समय राणा सनाउल्ला का वो सुनिए।
1: क्या दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ ने आपको दीगर क्यादत को मना कर दिया है कि मोहसिन नकवी के बयान को नजरअंदाज करें, जवाब मत दें?
2: ये दुरुस्त है।
1: और क्यों मना किया, क्या कहकर मना किया?
2: नहीं देखें, मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं, और उन्होंने गुफ्तगू में जो अंदाज इख्तियार किया उसके ऊपर भी हमें सख्त एतराज़ है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से उन्होंने अपनी गुफ्तगू में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है वो मुखातब किया या रेफरेंस दिया।
1: वजीर आजम, बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये भी नहीं पूछ सकते मोहसिन नकवी साहब से कि भाई आपने बयान क्यों दिया था, किसके इमा पर दिया था, या फिर आप सिस्टम को की तबाहली का तो बात कर रहे हैं, पीसीबी में तो ना मैं मुदाखलत करता हूं ना कोई और करता है, आप करता धरता है, वहां पर आपने क्या बेहतर कर लिया है, एक सवाल भी नहीं पूछ सकते उनसे?
2: नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते? वज़ीर आज़म जो है वो अपने किसी भी कैबिनेट मेंबर से हर तरह की जो है वो पूछगिछ कर सकता है, और कल मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म को मिले भी हैं, और वहाँ पे कोई गुफ्तगू हुई होगी जिसका मैं प्रीवी तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद जब पार्टी लीडरशिप ने

0: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
3: सरसों आगे आगे करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
2: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
1: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
3: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
1: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
4: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

चुनावी झटकों के बाद दिल्ली में हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार से की मुलाकात। जेडीयू बोली, नीतीश होते मुख्यमंत्री तो ना हारते। बांकीपुर जीतते ही प्रशांत किशोर का बड़ा धमाका। सम्राट चौधरी के खिलाफ खोला मोर्चा। आज तक से बोले, बीजेपी को बिहार में बदलना चाहिए मुख्यमंत्री। मेटा पर सरकार का बड़ा एक्शन। कल टॉप अधिकारियों को किया तलब। एल्गोरिदम और प्रधानमंत्री की पोस्ट हटाने पर मांग।

ट्रंप से इंटरनेशनल बेइज्जती करा बैठा पाकिस्तान। शांति वार्ता कर रहे देशों की सूची से आउट पाकिस्तान। कूटनीति के मोर्चे पर फिर हार गया आतंकिस्तान। रुक गया युद्ध, दुनिया है हैरान। बरसाने वाले थे बम, मचने वाला था कोहराम। फिर क्यों कर दिया ट्रंप ने युद्ध विराम? बातों मुलाकातों से कब तक रुकेगा घमासान? पेंटागन को पराक्रम दिखाने से किसने रोका? क्या है सीज फायर की इनसाइड स्टोरी? क्या किसी की अपील काम आई, या फिर धमकी रंग लाई, या फिर किसी की चेतावनी ने कर दिया सबसे विनाशकारी प्रहार का बड्डा था?

0: होकर डोनाल्ड ट्रंप के कूचे से निकला पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव साहब। अचानक मिसाइलों का शोर तो थम गया है, बमबारी भी रुक गई है, खाड़ी में तबाही का तांडव एक सस्पेंस भरी शांति में बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान के बाद कि हम वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे विनाशकारी हमला ईरान के ऊपर करने ही जा रहे थे, इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इरादा बदलने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी, या फिर सैन्य मोर्चे पर अमेरिका की कोई मजबूरी, या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी इनपुट के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला बदला, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये युद्ध विराम की इनसाइड स्टोरी क्या है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। कहां तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में शांति दूत बना फिर रहा था, यह कह रहा था कि पाकिस्तानी जहां जाते हैं उनका बड़ा सम्मान होता है क्योंकि वो शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहां असलियत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब उन देशों में जो शांति के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा। अमेरिका और ईरान के बीच जो देश मध्यस्थता कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान का नाम सूची से हटा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली है कि उसके लिए यह आखिरी मौका है, या तो डील कर ले या फिर एक महाविनाश के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी को मजबूर नहीं करेंगे अगर हमारे लिए ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आती है, मैं आपको एक बड़ी खबर कर दूं, बता दूं, ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है, हॉर्मूज में तय रूट को बदलने की कोशिश की तो अमेरिका के वॉरशिप को ईरान उड़ा देगा। सीनियर सैन्य सलाहकार जनरल मोहसिन ने एक औपचारिक बयान में कहा है कि हॉर्मूज में किसी तरह की दखलंदाजी को ईरान सहन नहीं करेगा। जो रूट ईरान ने तय किया है जहाजों की आवाजाही उसी रूट से होगी। ईरान को अमेरिका की नाकेबंदी किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में स्वीकार्य नहीं है। यह ईरान ने साफ कर दिया है कि अब ईरान का हॉर्मूज पर वर्चस्व पूरी तरह से कायम है। सुनिए,
1: कॉरिडोर दोवम रो बिशिश वज मो इजाजे नमीदीम
2: दर तंगी हॉर्मूज
1: कॉरिडोर दोवम बाज बशे हतो अगर नाव हम बियारन नावशो मिजनीम।
0: जैसा हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही बेआबरू होकर डोनाल्ड ट्रंप के कूचे से निकला पाकिस्तान, जो हाल है, जो हालात है, उसमें आतंकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। ना जाने कितनी ही बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान इससे पहले बेइज्जत हुआ है, लेकिन बेशर्म देश है, बेशर्म नेता है, बेशर्म फौज है। बेशर्मी की हद देखिए, हर बार घमंड से सीना ताने वो खेमे दर खेमे घूमता रहता है। शाबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जो जोड़ी है, जिसको पाकिस्तान में ही अब जुल्मी जोड़ी कहा जा रहा है, इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कर दी। कैसे और कहां, ये आप खुद देख लीजिए कि कैसे जब सूची एक बनी कि कौन कौन से देश मध्यस्थता कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की बातचीत में, पाकिस्तान का नाम गायब है।
3: Talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many, many countries called, many, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yep.
4: सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा? गौर नहीं किया हो तो एक बार फिर सुन लीजिए कि उन्होंने किन-किन देशों का नाम लिया है।
3: Backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many, many countries called. Many, the leaders of many are friendly with a lot of them. Almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yep.
4: जी हाँ, पहला नाम लिया सऊदी अरब का, दूसरा नाम लिया यूएई का और तीसरा नाम लिया कतर का। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में शांति दूत बने घूम रहे पाकिस्तान का क्या हुआ? ट्रंप के बयान ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद शांति वार्ता में पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी पिछली शांति वार्ता में दी थी। ट्रंप ने ईरान को दिया आखिरी मौका, सबसे बड़ी तबाही से बचने का मौका। वैसे सीज फायर को लेकर ट्रंप को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन ट्रंप का साफ कहना है कि उन्होंने ईरान को भयंकर तबाही से बचाने के लिए हमला न करने का फैसला लिया।
3: Iran knew it. They knew what was coming. It was going to come last night, and it would have gone on for a long time, and there'd be essentially very little left. There'd be nothing left. And if I'm given a chance to let a lot of people live, I want to give that chance. So I'm under no time constraint. You know, I don't happen to be running.
4: लेकिन आखिर कब तक? मीडिया ने जब ये सवाल दागा तो जवाब आया कि ये ईरान के लिए आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई राहत नहीं।
3: Made up friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is the last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
5: Mr. President, New York City Mayor Zohran Mamdani.
4: अब देखना ये है कि बातों और मुलाकातों की ये ताकत मिसाइलों को कब तक रोक पाती है। आज तक ब्यूरो।
6: अच्छा, इस बीच प्रश्न ये भी उठ रहा है कि ये जो युद्ध विराम हो रहा है, इसके अंदर की कहानी क्या है? क्या किसी दूसरे देश के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया, या फिर पेंटागन की कोई खुफिया रिपोर्ट सामने आई जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो कुछ कदम पीछे ले ले? वजह तो जो भी हो, मिसाइलों का गरजना इस समय बंद है। हर किसी की नजर कल से शुरू हुई शांति वार्ता पर लगी हुई है। इस शांति वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का होने वाला है। फिलहाल इसकी कोई डेडलाइन का तो ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज पर ईरान जो रास्ता बताएगा उसी पर जहाज जाएंगे, वरना अगर किसी और देश का जहाज आया तो ईरान बमबारी करता।

0: मिसाइलों पर अब मुलाकात भारी। तबाही रोकने की तैयारी, नहीं होगी बमबारी। आमने सामने बात नहीं करेंगे अमेरिका और ईरान। ट्रंप ने किसके खौफ से किया हमला टालने का ऐलान। महातबाही की महातैयारी पूरी थी, वायुसेना भी तैयार थी, नौसेना भी, हथियार भी तैयार थे, वॉर रूम भी अलर्ट पर था। राष्ट्रपति ट्रंप वर्ल्ड वॉर टू के बाद का सबसे विनाशकारी हमला करने वाले बयान का बम फोड़ चुके थे। अब बस उनके आदेश की बारी थी, क्योंकि वो ईरान को झूठा और भरोसा न करने वाला घोषित कर चुके थे। तबाही के इस प्लान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, खून की घंटियां बजने लगी। एक देश से दूसरे देश के प्रमुखों, विदेश मंत्रियों और सेना प्रमुखों के बीच बातें हुई और फिर कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। आखिरकार सबसे भीषण हमला रोकने का ऐलान कर दिया गया।
1: Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran.
0: लेकिन अचानक ट्रंप ने ये फैसला क्यों किया? क्या कुछ देशों के अनुरोध के आधार पर उन्होंने ये किया, या फिर युद्ध से पीछे हटने की उनकी और भी कई मजबूरियां थी? अमेरिकी मीडिया तो टॉप सैन्य अफसरों के हवाले से दावा कर रहा है कि तेजी से खत्म होते हथियारों ने ट्रंप को सीज फायर करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि खाड़ी देशों में उनके मिलिट्री बेस पर मिसाइलों का भंडार और एंटी मिसाइल सिस्टम कम होता जा रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस महायुद्ध में ईरान ने तो काफी कुछ खोया ही है। आर्थिक तौर पर अमेरिका को भी अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिसका सीधा सीधा असर उसके नागरिकों पर हो रहा है। एक तरफ ट्रंप घर में ही विरोध का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर, बहरीन और जॉर्डन जैसे कई खाड़ी देशों का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। इस दबाव के बाद अब अमेरिका और ईरान में बातचीत का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। बमबारी रुकने के बाद अब दोनों की कोशिश हॉर्मुज़ को खोलने की होगी। यही वो इकलौता रास्ता है जहां से पूरी दुनिया को सीज फायर के लंबा खींचने की उम्मीद दिख रही है। पिछले महीने सीज फायर टूटने के बाद से हॉर्मुज़ में कई जहाजों पर हमले हुए। ईरान किसी भी हालत में अपने नियंत्रण पर ढील देने के मूड में नहीं है, तो अमेरिकी नाकेबंदी ने भी जहाजों की आवाजाही को मुश्किल बना रखा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई के लिए सिर्फ हॉर्मुज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसके बजाय दूसरे रास्ते भी तैयार करने होंगे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि अब इस इलाके के कई देशों को लगने लगा है कि ईरान हॉर्मुज़ पर खतरा पैदा कर रहा है, इसलिए दुनिया को ऐसे नए रास्ते बनाने चाहिए जिनसे तेल और गैस की सप्लाई बिना रुकावट जारी रह सके। खैर, रूबियो जो मर्जी कहें, लेकिन हॉर्मुज़ का विकल्प तैयार करना फिलहाल न तो व्यवहारिक है न ही सुरक्षित, इसीलिए ईरान और अमेरिका को एक एक कदम पीछे हटना ही पड़ेगा, वरना गरजती मिसाइलें तबाही मचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगी। आज तक ब्यूरो।
2: वैसे मिसाइलें ही नहीं, ईरान भी गरज रहा है और ईरान साफ तौर पर धमका रहा है अमेरिका को कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो ईरान अमेरिका के बेसिस जो पूरे मध्य पूर्व है उनमें जबरदस्त बमबारी करेगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे एक के बाद एक ये जो ईरान की अमेरिका को चेतावनी थी या धमकी थी वो फोन पर कैसे अमेरिका तक पहुंचाई गई और विनाश को रोका गया, युद्ध विराम के लिए ट्रंप को मजबूर किया गया, कैसे? सबसे पहले सैयद अब्बास अराग़ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने आसिम मुनीर से बात की। उसके अलावा उन्होंने प्रिंस फैजल बिन फरहान जो विदेश मंत्री है सऊदी अरब के, और फुआद हुसैन जो विदेश मंत्री है इराक के, उनसे बातचीत की, उनको एक संदेश दिया और कहा कि यह संदेश अमेरिका तक पहुंचना चाहिए। और फिर मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, सबसे ताकतवर व्यक्ति, उन्होंने वह संदेश अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंचाया और उन्होंने कहा कि शांति के लिए जरूरी है कि अभी हमला न किया जाए, बातचीत के लिए ईरान तैयार है, बातचीत की जाए। सऊदी अरब भी चुपचाप ईरान से बातचीत कर रहा है ताकि सऊदी अरब पर भी वार पलटवार न हो, और ईरान ये कह रहा है कि अगर हम डूबे तो हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। सरम वो खाड़ी के सभी देशों को कह रहा है कि अमेरिका के बेसेस हटे, न हटे तो हम बमबारी करेंगे, उसमें नुकसान तुम्हारा भी होगा। इसी तरह प्रयास किया गया कि शांति लाई जा सके। एक तरफ बातचीत का दौर शुरू हुआ, इस बीच ईरान ने अमेरिका के सैन्य बेसिस पर हमला भी कर दिया कि वो केवल बातचीत नहीं कर रहे हैं, केवल धमकी नहीं दे रहे हैं, वो करके दिखाएंगे। उत्तरी कुवैत में अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया गया, ड्रोन के जरिए हमला किया गया है और खबर यह आ रही है कि वहां भारी नुकसान हुआ है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक यह कार्रवाई संभावित हमले को रोकने के लिए की गई थी, यानी जिस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात की जाती है कि ईरान को खतरा इस बात का था कि कुवैत से उन पर बमबारी हो सकती है, तो उस बमबारी से पहले ही उन्होंने कुवैत पर अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया। संभावित हमले को रोकने की कार्रवाई, तस्नीम न्यूज ने इसे बताया है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये किया है। आप ये सोचिए कि जो अमेरिका ये दावा कर रहा था कि ईरान के हथियार खत्म, ईरान झुक गया, ईरान हार गया, ईरान शांति चाहता है, वो ईरान अमेरिकी बेसिस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है। ये आपको दिखाता है दरअसल कौन बैकफुट पर है और कौन फ्रंट फुट पर लड़ाई कर रहा है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल की बमबारी शुरू हुई, उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला था, लेकिन अब ईरान ने अपना वर्चस्व वहां स्थापित कर दिया है। अमेरिका अब चाहता है किसी भी तरह हॉर्मूज का मसला सुलझ जाए, बातचीत शुरू हो जाए और हॉर्मूज पर फ्री आवाजाही शुरू हो जाए जहाजों की। ईरान ने कहा है हम डिसाइड करेंगे, ईरान डिसाइड करेगा कौन सा जहाज कब वहां से निकलेगा। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। रणभूमि में आज इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं।
1: असल बात यह है कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश जी को जो करारी हार का सामना करना पड़ा, उस हार के बाद से अखिलेश यादव जी पूरी तरह से हाइबरनेशन में चले गए हैं। वे इस तरह के गलत बयानों को देकर के, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके आम जन को भ्रमित करने का और भड़काने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम किया है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राहुल गांधी ने पीएम मोदी से लेकर संघ को घेरा, कहा छात्रों को माफ करने वाले कौन होते हैं प्रधानमंत्री, आरएसएस की विचारधारा को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संत का अपमान बर्दाश्त नहीं। सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्तरंजित। बांकीपुर जीतते ही प्रशांत किशोर का बड़ा धमाका, सम्राट चौधरी के खिलाफ खुला मोर्चा, आज तक से बोले बीजेपी को बिहार में बदलना चाहिए सीएम। मेटा पर सरकार का बड़ा एक्शन, कल टॉप अधिकारियों को किया तलब, एल्गोरिदम और पीएम की पोस्ट हटाने पर मांगा लिखित जवाब। ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया झटका, ईरान युद्ध में मध्यस्थ की सूची से नाम हटाया, मुनीर शरीफ की भारी फजीहत, लिस्ट में सऊदी अरब, यूएई, कतर शामिल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश में जेन ज़ी के आंदोलनों की राजनीतिक व्याख्या पर है। पिछले दिनों संघ के बड़े पदाधिकारी अतुल लिमय ने जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन की चर्चा करते हुए उन्हें संविधान विरोधी और देश विरोधी बताया। अब खबर है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद जेन ज़ी से मुलाकात करना चाहते हैं। 6 अगस्त को मुंबई में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत की देश भर के 2000 जेन ज़ी से मुलाकात होने वाली है। तो अब यह बात कुछ ऐसी हो रही है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि दिल्ली वाले आंदोलन में संविधान विरोधी तत्व शामिल थे और झारखंड में जो आंदोलन कर रहे हैं वो जेन ज़ी वाजिब मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यानी सियासत ने अब जेन ज़ी के मुद्दों को एड्रेस करने के बजाय उन्हें गुड जेन ज़ी और बैड जेन ज़ी में कैटेगराइज करना शुरू कर दिया है। वैसे मुंबई में संघ प्रमुख की जिस संस्थान के कार्यक्रम में जाने वाले हैं उनसे मुलाकात होने वाली है जेन ज़ी से, उस IIMUN नाम के संस्थान का दावा है कि वो नई पीढ़ी में भारत और भारतीयता के विचार मजबूत कर ऐसी लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं जो दुनिया को एकजुट कर सके। उधर अभिजीत दिपके कहते हैं कि ऐसी मुलाकातें स्वागत योग्य तो है, लेकिन जेन ज़ी के मुद्दों से 70-80 साल के बुजुर्ग ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं तमाम चर्चाओं के बीच आज बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, राजनीतिक टुकड़ों में बांटा जा रहा है और राजनीतिक दृष्टि से ही उसे देखा जा रहा है। क्या जेन ज़ी को संविधान परस्त बनाम संविधान विरोधी करार दिया जा सकता है और क्या सत्ता के लिए जेन ज़ी के मुद्दों को नजरअंदाज करना अब संभव है? ऐसे तमाम सवाल है और उस पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन ने पांचवी इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जेन ज़ी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं। क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जेन ज़ी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है और क्या जेन ज़ी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जेन ज़ी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जेन ज़ी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब जेन ज़ी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अम्बानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जेन ज़ी और 13 साल की जेन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं।
2: हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका। हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा। अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे।
1: दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेन ज़ी दो तरह के थे, जिसमें एक वाजिब जेन ज़ी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेन ज़ी।
3: पंचर लगाने वाले वहाँ पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहाँ पर ज्यादा थे,
4: बोल रहे थे वहाँ पर अफजल तेरे काफिल जिंदा है हम शर्मिंदा है। ओखले से लेकर बल्ली मारान से लेकर शाहीनबाग से लेकर नगीना से लेकर कहाँ कहाँ से लोग लाए गए थे, वो भारत विरोधी विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग राजनीतिक दलों के द्वारा लाए गए थे। इसीलिए जो जेन्युइन जेन ज़ी है, जो जेन्युइन बच्चा है पढ़ने वाला, वो भी भटक रहा था
1: और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और राब्ता कायम करना चाहते हैं। जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है।
5: मेन प्रयास ये करते हैं कि 11 से लेके 19 साल के बच्चों को व्हाट इज भारत एंड व्हाट इज यूनाइटिंग द वर्ल्ड भारतीय वे वो समझाने को प्रयास करते हैं, अगली पीढ़ी को अच्छे लीडर बनाने की प्रयास करते हैं।
1: उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेंजी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं। और गौर करने की बात ये कि 6 अगस्त को संघ प्रमुख की जेंजी से मुलाकात के पहले 5 अगस्त को अभिजीत दीप की अपनी पार्टी की बैठक में संगठन के विस्तार, भविष्य की रणनीति और पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करने वाले हैं।
0: तो अब होड़ लगी हुई है कि जेंजी से बातचीत हो, उनसे मुलाकात हो और उन्हें अपने विचारों में ढाला जाए, लेकिन जेंजी है कि अपने मुद्दों को लेकर, मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। तो क्या उन्हें राजनीतिक आइडियोलॉजी के हिसाब से अलग अलग किया जा सकता है? इस पर हम चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक तरफ संघ कहता है कि ये जो सारी ताकतें जंतर मंतर पर जमा हुई थी वो देश विरोधी और संविधान विरोधी है, लेकिन झारखंड के आंदोलन को सपोर्ट जरूर करने की कोशिश हो रही है। तमाम चर्चा इन मुद्दों पर करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, रतन शारदा आरएसएस आइडियोलॉग वो भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। संघ की दो भूमिकाएं इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। एक तरफ अतुल लिमय कह रहे हैं और दूसरी तरफ मोहन भागवत जेंजी से मुलाकात भी करने वाले हैं। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मेरे पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या नौजवानों की आवाज को संविधान परस्त और संविधान विरोधी में बांटा जा सकता है? क्योंकि मांगे एक जैसी है, मांगे परीक्षा पद्धति में सुधार की है, मांगे रोजगार की है, लेकिन फिर भी क्या संविधान परस्त और संविधान विरोधी में बांटा जा सकता है या बांटा जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या देश में जेंजी के मुद्दों को सरकारें नजरअंदाज कर रही है और इसीलिए अलग अलग राज्यों में, देश में अलग अलग आंदोलन भी दिखाई दे रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या सीजेपी जैसे आंदोलन सत्ता और सियासत के तरीके में बदलाव के संकेत है? हर आंदोलन सियासत के तरीके में बदलाव के संकेत लेकर आता है, क्या सीजेपी का आंदोलन भी इस बदलाव का संकेत लेकर आया हुआ है? सवालों से शुरुआत करेंगे। रतन शारदा जी, आज पहला मौका आप ही को मिलना चाहिए क्योंकि दो बयान हमारे सामने आए हुए हैं। पहला बयान अतुल लिमय जी, जो सह कार्यवाह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी है, वो कहते हैं कि जो जंतर मंतर पे आंदोलन किया गया वो आंदोलन को राजनीतिक दृष्टि से सिर्फ देखना नहीं चाहिए, एंटी बीजेपी की तरह नहीं देखना चाहिए, संविधान के खिलाफ और देश के खिलाफ इस तरीके से भी देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जेंजी से बात करने की कोशिश भी हो रही है, क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इन्हें अपने राजनीतिक विचारों में आकार देने की कोशिश कर रहे हैं या सचमुच में जेंजी के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों को समझने की कोशिश होगी संघ की तरफ से?
6: साहिल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जेंजी जो शब्द है वो केवल दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, जेंजी सारे देश में है, छोटे शहरों में है, गाँव में है, और उस सभी को एड्रेस करना ज़रूरी है। सीजेपी के आंदोलन, सीजेपी के साथ में बैठे हुए लोग और युवा, ये दोनों को अलग करके देखना चाहिए। इसके लिए जो मोहन जी ने कहा वही अतुल लिमय जी ने भी कहा कि हमें केवल उनकी उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमें उनके साथ सकारात्मक संवाद करने हैं, पहली बात। तो ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात ये कि संघ के अंदर जितने तरुण हैं, मुझे लगता है शायद ही किस संगठन के अंदर हैं, हर साल 1,00,000 तरुण संघ की ट्रेनिंग कैंप से निकलते हैं, जो छोटा 3 दिन से 7 दिन का होता है, मतलब इतने नए तरुण हर साल जुड़ते हैं, जो किसी भी संगठन के लिए बहुत एक विशेष बात है। और उनके साथ बातचीत संघ लगातार करता भी है, क्योंकि हाई प्रोफाइल हो गया इसके आप, इसलिए आपको लगता है कि मोहन जी स्पेशली जेंजी से बात करने हैं, ऐसा नहीं है। कार्यक्रम 6-6 महीने पहले निश्चित होते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसको क्यों कहा संविधान के विरुद्ध, क्यों कहा? अगर आप क्रोनोलॉजी देखें, एक बंदा यूएसए में बैठा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एक मीम बनाता है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, बेकार वकीलों के लिए कहा था, उसने तो किसी और के लिए कहा नहीं था, उसको उठाता है, रातों रातों हीरो बन जाता है, सारा उसको बूस्ट मिलता है। वो बूस्ट कौन देता है? आप तो मीडिया में, आपको पता है कितना वायरल मुफ्त में नहीं होता, उसके पैसे लगते हैं। फिर वो यहाँ पर आ जाता है अपनी पढ़ाई छोड़ के, यहाँ पर आने के बाद वो कोशिश करता है, शहरों में जाता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अचानक 20 तारीख के बाद में सारे लेफ्टिस्ट वहाँ कूद पड़ते हैं, जिहादी कूद पड़ते हैं, नक्सल कूद पड़ते हैं, हर तरह का लोग वहाँ कूद पड़ते हैं, जिसके बाद नेटवर्क जो है पूरा लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट होने समस्या नहीं, समस्या क्या है, नक्सल जो मारा गया डिलमा वहाँ हीरो बन जाता है, शर्जी में जो कहते हैं कि चिकन नेक है वो हीरो बन जाता है, जो कहते हैं कि हिंदुओं को गाली देते हैं वहाँ आगे प्लेटफॉर्म पे है, इन सबको स्टूडेंट मुद्दे छोड़ के राजनीति में कौन लेकर गया, इसकी बात अतुल्य में कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी को यूज करके डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाना, ये तो सबसे बड़ा शस्त्र है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि आप अब जो है
0: रतन शारदा जी आप इस आंदोलन के कारण उद्देश्य रतन शारदा जी आप इस आंदोलन के कारण उद्देश्य और लक्ष्य तीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं
6: ना,
0: कारण उद्देश्य और लक्ष्य तीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
6: मैं आंदोलन के विषय पे बिल्कुल नहीं कर रहा, वी वर द अर्लीस्ट वन, हम लोग थे जिन्होंने बार बार कहा मिनिस्टर क्यों नहीं इसको बोलता, मिनिस्टर क्यों एक्शन लेता है तो बताता क्यों नहीं। आप चेक करिए, सारे जो जो बीजेपी के सपोर्टर भी यही कह रहे थे आंदोलन का शुरुआत अच्छी थी, आज में आंदोलन का बताइए कि कहां रह गया एग्जाम की बात, कहां रह गया एजुकेशन की बात, रिजाइन करो जैसे रिजाइन किया अपने व्रत तोड़ के सब चले गए, अगर सोनम मांगचुक ने व्रत तोड़ दिया उसको गालियां देने लगे, ये कौन सी राजनीति थी मुझे ये बताइए, और अगर ये राजनीति नहीं थी तो कैसा है।
0: थोड़ा इलैबोरेट करिएगा, मैं आपको स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। इस आंदोलन के तीन नेता यहां पर नजर आए, एक अभिजीत दिपके, दूसरे जो सौरभ दास वहां पर थे, और आशुतोष रांका, ये तीन लोग वहां पर नजर आए थे, और बाकी जो स्टेज पर वहां पर सीजेपी के नेता थे, उनमें से किसने संविधान के खिलाफ बातचीत की और कौन सी बात की, क्योंकि सरकार से उनकी बातचीत हुई, सरकार के सामने बाकायदा उन्होंने अपनी मांगे रखी है, कौन सी संविधान विरोधी बात वहां पर रखी।
6: मैंने आपको क्या कहा, जो प्लेटफॉर्म आगे उन्होंने दे दिया ऐसे लोगों को जिनकी खूब प्रचार चला, जो मैंने पहले आपको बयान कर दिया, चाहे देश विरोधी हो, चाहे वो हिंदू विरोधी हो, चाहे वो संविधान विरोधी हो, उनका जो गुरु है योगेंद्र यादव वो कहता है कि सड़कों पर अब लोकतंत्र डिसाइड होगा, ये करने वाले लोग उनको स्थान किसने दिया, इन्हीं लोगों ने दिया ना, जो दुनिया भर की अब्यूज कर रहे थे, जो हमें चाहिए आजादी के बिना मतलब के नारे लगा रहे थे, ब्राह्मणवाद की बातें कर रहे थे, इनको स्टेज किसने दिया, इन्होंने दिया ना। तो आप स्टेज पे बैठे हैं, बगल में बैठे लोग समाज को तोड़ने की बातें कर, आपको की जिम्मेदारी नहीं, आप मानते इस बात को
0: नहीं, सरकार के तरफ से तो ऐसी बातें नहीं कही गई है।
6: देखिए अरविंद केजरीवाल
0: संघ की तरफ से ये बातें क्यों आ रही है,
6: 75 का आंदोलन किया
0: है, स्टेज के ऊपर क्या इस तरीके की कोई भी बात कही गई थी, आप स्पेसिफिक कह सकते हैं, स्टेज के ऊपर क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक बात कही गई, क्या आप कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक बात आप लोगों के सामने रख सकते
6: हैं। नहीं सुना आपने, वो
0: कौन सी बात, संविधान के आपने संविधान और देश के खिलाफ कौन सी बात रखी,
6: नारे नहीं सुने आपने, आपने नहीं सुने नारे, आप मीडिया से आपने नहीं सुना, ये
0: सर स्टेज के ऊपर मुझे दिखा दीजिएगा, स्टेज के ऊपर से नारे लगे
6: तो बनाए थे,
0: और अगर देश विरोधी आंदोलन था तो सरकार ने उनसे बातचीत क्यों की,
6: बातचीत
0: रतन शारदा जी अगर
6: गलती,
0: अगर देश के खिलाफ ये आंदोलन था,
6: रतन
0: शारदा जी अगर देश के खिलाफ ये आंदोलन था तो सरकार ने उनसे बात क्यों की, सरकार ने उनकी बातें क्यों मानी,
6: क्यों मानी उनकी बातें, मैंने
0: सरकार देश विरोधी आंदोलन करने वालों की बातें मान लेती है,
6: ये तो ये सोचना चाहिए कि आप चाहते हैं कि डंडे या गोलियां चले, वहां पर लोग कह रहे थे कि गोली चलनी चाहिए, आपने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन देखे हैं, गोली चलनी चाहिए तो मर जाए तो अच्छा है, ये सारी बातें करने वाले अर्बन नक्सली तो कौन है, अगर बात करनी पड़े समाज के अंदर शांति रहे, तरुणों में शांति रहे, तो बात तो करनी पड़ेगी, आप चाहते थे कि गोलियां चलती, आप चाहते थे कि लोकसभा में जाके दंगे हो, आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, हमने 1975 के अंदर इमरजेंसी में बहुत सत्याग्रह किए, हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध बात नहीं की, हमने किसी नेता को गाली नहीं दी, किसी को शराब नहीं दी है, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हुआ कभी कोई नेगेटिव, कभी हिंसा की बातें नहीं, यहां ये साबित है कैसे हुई, कोई ना कोई या तो हैंडल कर रहा था, ये उस हैंडल के बाहर थे, जो भी था इसके ऊपर तहकीकात तो होगी ना, प्रश्न तो उठेंगे ना,
0: अरविंद केजरीवाल का आंदोलन साफ सुथरा था, और यहाँ का आंदोलन आप जो कह रहे हैं वो देश विरोधी था। आशुतोष,
6: मैंने सबको नहीं कहा, बिल्कुल साहिल गलत बोली, मैंने नहीं, साहिल गलत
0: साफ सुथरा आंदोलन,
6: मैंने पहले कहा कि सीजेपी और तरुणों को अलग करिए, उसके अंदर जो विरोधी लोग थे जैसे 2800 क्रिमिनल वहां मिले पुलिस को, ये सब अलग थे, आप सभी को एक झुंड
0: तो
6: बना के सबको मेरी परिभाषा में
0: क्रिमिनल वहां पर कैसे पहुंचे, पहले 18 दिन वहां पर जब युवा बैठे हुए थे, सीजेपी के आंदोलनकारी वहां पर बैठे हुए थे, सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की, जब 20 तारीख को वहां पर मोर्चा निकला उसके बाद वहां पर
6: पहले ही क्या गलत हुआ,
0: ये फेलियर किसका होगा,
6: पहले साहिल जी मैंने पहले ही कहा कि वो गलती हुई है, हम तो खुद कहते रहे उसकी गलती, मतलब ये तो नहीं कि कोई देश विरोधी अपना समाज विरोधी तत्व पर आ जाए, वहां के दंगे करे, वहां गंदगी डाले, उसका तो ये तो नहीं है ना, अगर आप स्टेज देते हैं ऐसे लोगों को,
0: आशुतोष जी दो बातें यहाँ पर साफ निकल कर आती है, जो रतन शारदा जी कह रहे हैं उससे दो बातें निकल कर आती है, एक उनका कहना है कि आंदोलन संविधान विरोधी था, हालांकि सरकार के तरफ से इस आंदोलन को संविधान के खिलाफ नहीं बताया गया है, नंबर एक, नंबर दो ये बात भी इससे साफ निकल कर आती है कि सरकार की भूमिका इस पूरे आंदोलन को लेकर जो रही उस बात से हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक संतुष्ट नहीं है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, जो भूमिका संघ के तरफ से रखी गई है। आशुतोष जी,
7: देखिए साहिल, इतनी देर से मैं रतन सारदा जी को सुन रहा था, उनका मैं सम्मान करता हूं, काफी समझदार आदमी है, लेकिन आज वो गलत मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आजादी के बाद की नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे कमजोर सरकार है, जो देश विरोधी संविधान विरोधी ताकतों के सामने दंडवत हो जाती है, सरेंडर कर देती है। आप सोचिए, जो सरकार कहती है 12 साल में हम किसी के सामने नहीं झुकते, दबाव में नहीं आते, वो छात्रों के द्वारा किए गए आंदोलन के सामने वो अपने एक मंत्री को सेक्रीफाइस कर देती है। अगर ये एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, अगर ये संविधान विरोधी लोग थे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस बात का पूरा अंदाजा है कि छात्रों का जो यह आंदोलन है, यह दरअसल एक गुस्सा समाज के अंदर फैल गया है और इस गुस्से को रोकना बहुत जरूरी है। वो इसकी ताकत का एहसास करते हैं, लेकिन संघ परिवार की दिक्कत क्या है कि इस देश के अंदर उनकी सहमति के बगैर आंदोलन खड़ा कैसे हो रहा है, तो अब वो उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल लिमय के बयान को मैं बहुत गंभीरता के साथ लेता हूं, क्योंकि क्योंकि अतुल लिमय जो आरएसएस के सर सहकारवाह है, जैसे सुदर्शन जी सह सरकारवाह थे और बाद में वो सर संचालक हुए, तो अतुल लिमय में संघ अपना भविष्य देखता है। और वो जब कहते हैं कि आंदोलन जो एंटी नेशनल है, उसका मतलब ये कि संघ के का एनालिसिस है पूरे आंदोलन को लेके, कि अगर इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट नहीं किया गया तो संघ की विचारधारा डिस्क्रेडिट होगी, नरेंद्र मोदी की का
0: वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आशुतोष
7: और
0: जी।
7: भारतीय जनता
0: मैं अगर
7: पार्टी
0: इसको डिकोड
7: डिस्क्रेडिट
0: करूं,
7: जी
0: ठीक है, मैं इसको अगर डिकोड करूं, जो बात मुझे रतन शारदा जी कह रहे थे उससे जो समझ में आई है, रतन शारदा जी आपको इसका जवाब देना है, लेकिन पहले मैं अगर इसको डिकोड कर पाऊं तो उनका यह कहना है कि आंदोलन की शुरुआत हुई थी नीट के एग्जाम के पेपर लीक को लेकर और एक मांग को लेकर कि नीट के पेपर एग्जाम के लीक के लिए जो जिम्मेदार है उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उस मंच पर उनके मुताबिक शारजिल इमाम के नारे क्यों लग रहे थे, नंबर एक। दूसरा, उनका यह कहना था कि जिससे उस पूरे आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था, ये नारे वहां कैसे पहुंचे, वो जो जघन्य अपराधी वहां पर इस आंदोलन के भीतर शामिल हुए, जिन्होंने पथराव किया होगा या पुलिस को पुलिस कर्मियों को जख्मी किया होगा, वो वहां पर कैसे पहुंचे। और इसी के वजह से उनका कहना है कि कई लोग इस आंदोलन में ऐसे घुस गए थे जो इस आंदोलन में नहीं होने चाहिए थे, जिनका स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इन मांगों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का आंदोलन साफ सुथरा था, उस तरीके से आंदोलन नहीं हुआ है। ये मैं डिकोड करके आप ये इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये संविधान विरोधी था, जो मुझे समझ
7: देखिए देखिए देखिए साहिल, मैं आपके माध्यम से रतन शारदा जी को खुली चुनौती देता हूं कि मंच से दिए गए ऐसे किसी भी नारे का एक वीडियो वो सामने लाके दे दे। ये दरअसल ये संघ की टिपिकल स्टाइल है, वो डिस्क्रेडिट करके एक झूठ को 100 बार बोलेंगे। मैं तो चुनौती देता हूं रतन शारदा जी को, आप टेलीविजन मौजूद हैं, अगर आपके पास एक वीडियो जहां इस तरीके के नारे लगे तो मुझे दीजिए।
0: रतन शारदा जी
7: क्या है, साहिल एक मिनट, 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। साहिल, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उस आंदोलन के अंदर डकैत थे, अगर उस आंदोलन के अंदर अगर कत्ली लोग थे, तो अभी तक दिल्ली की पुलिस कर क्या रही है? 10 दिन हो चुके इस आंदोलन को खत्म हुए, अभी तक क्या किसी को गिरफ्तार किया? क्या किसी का चेहरा सामने आया? सिर्फ नैरेटिव। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस आरएसएस को पायलट गन के द्वारा से अंधे हो रहे बच्चे हैं, उनके साथ होना चाहिए, वो उनके साथ ना होके वो पुलिस प्रशासन के साथ है, जिसने बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया है।

0: कोई मीडिया हाउस नहीं है, मेरे पास कोई मीडिया हाउस नहीं है, मैं तो वो कह रहा हूँ जो मैंने देखा। अरे आपने नहीं देखा क्या? आप कैसी बातें करते हैं? आप कैसे जर्नलिस्ट हैं?
1: चुनौती दे रहा हूँ
0: आप क्या मुझे क्यों चुनौती देते हैं? मैं आपको दिखा दूंगा जितने मर्जी बाद में विवाद छोड़ के मैं पर बोल लेके बैठो क्या? मैं आपको वीडियो निकाल निकाल के दिखाऊं क्या? मैं आपको मीडिया को चैलेंज करिए, मीडिया को चैलेंज करिए। क्या आपने नहीं देखा क्या वीडियो? क्या आपने वैसे वीडियो नहीं देखा जहां कहा गया कि शर्जील इमाम ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है? शर्जील इमाम को छोड़िए, आपने नहीं देखा हिंदुओं को गाली दी? आपने नहीं देखा उन्होंने कहा कि धर्मा हमारा हीरो है? ये किसने किया? योगेंद्र यादव को आप करते हैं, डिसोन करते हैं? योगेंद्र यादव कौन था? उसने योगेंद्र यादव ने उसका करते हैं,
1: उसको है आपके पास वीडियो तो दीजिए ना।
0: आप क्या आंखें बंद करके बैठे?
1: प्रोड्यूस करिए वीडियो।
0: मीडिया वाले हैं क्या? मुझे तो
1: आपको चुनौती देता हूँ, प्रोड्यूस करिए एक वीडियो।
0: जो 20 दिन लोगों ने वीडियो दिखाया मुझसे,
1: मैं आपको चुनौती देता हूँ।
0: मैं मुझे क्या चुनौती देते? मीडिया को दीजिए ना,
1: दीजिए।
0: मैं तो कह रहा हूँ मुझे मैं आपको बताता हूँ,
1: आप झूठ फैला रहे हैं।
0: झूठ कैसे फैला रहे? हर मीडिया हाउस ने लगातार ऐसे वीडियो दिखाए जो आप देखने को नकार रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं बनता हूं, इसको जरा कंट्रोल करिए। मुझे बात करने दीजिए।
1: वीडियो फैलाया गया
0: नहीं, मैं इसमें आने की आवश्यकता नहीं। सर सामने देखिए,
2: सामने चौधरी जी एक सवाल मेरे
0: यहाँ पे सामने कोर्ट में कोर्ट सामने करने आ रहा है। अब जानने के मुद्दे का भट्टा एक एक मिनट एक एक मिनट
1: साहिल गलत बात नहीं निकल सकते।
2: आशुतोषी एक मिनट
0: नहीं, ये कोई तरीका नहीं है।
2: मैं कोई बात नहीं, एक मिनट
0: चले आप,
2: ठीक है? एक मिनट एक एक मुझे एक सवाल रखना है। रतन शारदा जी एक मिनट नहीं, एक मिनट, ठीक है ठीक है। रतन शारदा जी एक बात मुझे आपसे पूछनी है। ये रियलाइजेशन मुझे आरएसएस के भीतर लग रहा है, क्योंकि मोहन भागवत अचानक कह रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है उन्हें डिक्टेशन की नहीं डिस्कशन की जरूरत है, डिक्टेशन की नहीं डिस्कशन की जरूरत है। खुद मोहन भागवत कह चुके हैं, अभी हाल ही में कह चुके।
0: मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं
2: डिस्कशन नहीं हुआ, इसीलिए 20 तारीख का आंदोलन करना पड़ा। इतनी सिंपल बात है रतन शारदा जी, खुद रियलाइजेशन है।
0: भागवत जी ने, मैं आगे बोलूं, मोहन भागवत जी ने भी कहा
2: जी,
0: अतुल लिमे जी ने भी कहा, हम भी कहते रहे हैं, और संघ तो तरुणों से बातचीत करता ही है ना। हर पीढ़ी के तरुण से संघ बात करता है। मैंने पहले ही बताया संघ के अंदर जितने तरुण है कहीं नहीं है। दूसरी बात, अगर संघ को किसी और आंदोलन से परेशानी होती, जिनके ये बड़े आशुतोष जी उनके ग्राहक थे, किसी समय उनके मेंबर थे, तो अब अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में संघ खड़ा नहीं रहता जब तक भारत माता की मूर्ति हटाई नहीं गई। और उसके बाद भी संघ ने कभी अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई देशद्रोही वाली बात नहीं की, कुछ नहीं की। जहां सपोर्ट था दिया, उसके अलावा कई आंदोलन जगह जगह चले जाए, संघ लोगों के साथ खड़ा रहा। इसके लिए ये बात करना केवल आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। सोनम वांगचुक ने जब तोड़ा अपना उपवास, उसके बाद उसको दुनिया भर के किसने उसको गालियां दी, क्यों दी? अगर आपका वो फेस था आंदोलन का, उसने अपना उपवास वापस लिया, उसके बाद भी कहता रहा कि शांति रखें, तो उसके विरुद्ध खड़े हो गए? क्या ये सोच है आपकी? उसका मतलब आपका मकसद
2: वही था, था, था ना? कह रहे ना, जिस आंदोलन को आपका सपोर्ट होता है, जिस आंदोलन में आपकी भूमिका होती है, वो आंदोलन साफ सुथरा। लेकिन जहां पर
0: आप, हमने
2: इसीलिए तो एबीवीपी को अतुल में कह रहे थे ना कि क्या चूक हुई आपसे, आपको क्यों नहीं? रतन शारदा जी, अतुल लिमे जी का भाषण मैंने भी सुना है, उनके भाषण में वो कहते हैं कि एबीवीपी को स्टूडेंट्स के भीतर ये जो गुस्सा पनप रहा था वो समझ में आना चाहिए था, उन्हें काम करना पड़ेगा उस पर।
0: बिल्कुल, तो क्या गलत है?
2: इसका मतलब ये कि आपकी भूमिका उसमें नहीं थी, अन्ना के आंदोलन में आपकी भूमिका थी?
0: किसकी कहां भूमिका, कहा भूमिका?
2: अन्ना के, अन्ना आंदोलन में, अन्ना हजारे के आंदोलन में,
0: अन्ना के आंदोलन में भूमिका
2: समर्थन था आपका?
0: इतने लोग अच्छे लोग वहां पर जमा है, हम भी उनको सपोर्ट करें, इतना ही था। हमारा कोई लीडरशिप नहीं था, हमारा कोई सहभाग नहीं था। लेकिन जब उन्होंने भारत माता की प्रतिमा हटा दी तो हमारे जैसे लोग पीछे हट गए, लेकिन उसको कभी निगेट नहीं किया, उसको
2: जवाब दीजिए। उसके बाद जरा मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के पास भेजा, क्या इस भूमिका से वो इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते?
0: उसको
1: बढ़ावा
0: देना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ छुपा के तो नहीं भागा? राहुल गांधी की छुट्टी तो मनाने नहीं गया ना संघ?
1: साहिल, साहिल देखिए, रतन शारदा जी फिर एक तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: आप रहे लगातार वीडियो वीडियो की डिमांड करके, जो सारे मीडिया आप मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, आप शारदा जी चाहते हैं, आप उनको शील करना चाहते हैं, आप मुद्दे का बहस होने नहीं देना चाहते।
1: अगर
0: लगातार मेरे से प्रूफ मांग रहे हैं, आपने नहीं देखा क्या चल रहा था?
1: आपने अगर
0: आपने देखा,
1: अगर आप वाकई में,
0: आप कहां थे उस समय? आप कहां थे उस समय?
1: रतन शारदा जी, आप एक वीडियो नहीं प्रोड्यूस कर पाए। मैं आपको चुनौती दी, मैंने एक चुनौती दी, मैं आपको लगातार चुनौती दे रहा हूं,
0: वीडियो मैं दो
1: लगातार आपको चुनौती दे रहा हूं, भ्रमित करने की कोशिश कर

0: हैं,
1: भ्रमित आप
0: लगातार
1: कर रहे
0: भ्रमित
1: हैं,
0: करने की
1: आप
0: कोशिश कर
1: बार
0: रहे हैं,
1: बार
0: गुमराह
1: बहस
0: करने की
1: भटकाने की
0: कोशिश कर रहे
1: कोशिश
0: हैं,
1: करते हैं,
0: गुमराह
1: सारे
0: करने की
1: दुनिया
0: कोशिश
1: मर
0: कर
1: रहे
0: रहे हैं
1: हैं,
0: ठीक है।
1: जो सारे
0: आतंक
1: दुनिया
0: चंदा जी, उनका
1: गुमराह करने
0: जवाब
1: की
0: हो जाने
1: कोशिश कर
0: दीजिए,
1: रहे हैं।
0: उसके बाद
1: हम
0: चर्चा
1: लोग
0: आगे
1: उनका
0: बढ़ाएंगे हम।
1: उनका
0: जरा
1: करा
0: उनको
1: रहे हैं,
0: जवाब हो
1: देखिए
0: जाने दीजिए, आशुतोष जी आपका जवाब
1: देखिए
0: दीजिएगा, आपका जवाब दीजिए प्लीज।
1: रतन शारदा जी फिर गलत बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल कहा था, अभी अभी अभी
2: संघ ने
1: अचानक अरविंद
2: कहा,
1: केजरीवाल को लेके
2: संघ ने
1: प्रेम उमड़ रहा
2: कहा
1: है इनका,
2: जब आंदोलन
1: अभी
2: चला था
1: अरविंद
2: तब कहा
1: केजरीवाल को
2: किसी ने
1: लेके,
2: कुछ।
1: लेकिन
2: ना
1: वो
2: ना
1: प्रेम उमड़
2: ना
1: रहा, जिन अरविंद
2: आशुतोष,
1: केजरीवाल को
2: कभी
1: लेके न
2: भी
1: जाने कौन कौन सी
2: अरविंद
1: गालियां
2: केजरीवाल
1: दी
2: आज
1: दी
2: भी
1: गई।
2: हम
1: नहीं
2: क्रिटिसाइज करते हैं, पर जब
1: नहीं
2: उस
1: रतन
2: समय
1: शारदा
2: आंदोलन
1: जी,
2: चला किसी ने अर्बन नक्सल नहीं रोका
1: आप अपना
2: उसको,
1: बयान बदल रहे
2: किसी
1: हैं,
2: संघ
1: अपना
2: ने
1: गोल
2: नहीं किया।
1: पोस्ट बदल
2: आप
1: रहे हैं,
2: चेक करिए, मुझे मोदी
1: आप
2: के लिए क्या,
1: अपना
2: मैं अपने
1: बयान
2: बात कर रहा हूं,
1: लगातार
2: मैं
1: बदल
2: संघ
1: रहे
2: की बात
1: हैं,
2: करता हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं
1: लगातार
2: क्या?
1: गलत बात
2: आप
1: पर
2: मुझे
1: गलत बात
2: बताइए
1: कर रहे
2: अर्बन
1: हैं
2: नक्सल किसने कहा संघ के
1: आप,
2: अंदर, जब तक वो बीजेपी पॉलिटिक्स
1: लगातार
2: में नहीं आया,
1: लगातार गलत
2: जब
1: बात आप
2: उसने
1: कर रहे
2: इतना
1: हैं, ठीक है,
2: गुमराह मारी,
1: लगातार
2: उसके
1: लोगों
2: बाद
1: को
2: में
1: गुमराह
2: जिसने
1: करने
2: कहा
1: की,
2: आप
1: जरा
2: भी
1: प्रेम
2: निकले
1: शुक्ला
2: बाहर,
1: जी के पास
2: आप
1: चलेंगे,
2: क्या निकले बाहर?
0: इनको देखिए
1: आप
0: इस
1: साइलेंट
0: डिबेट
1: में
0: में,
1: बात
0: इस पूरे
1: साइलेंट मिनट
0: आंदोलन के
1: मुझे बोलने
0: भीतर
1: दीजिए,
0: सरकार की
1: साइलेंट मिनट मुझे बोलने दीजिए, साइलेंट
0: दस
1: एक
0: सेकंड
1: मिनट मुझे,
0: 10 सेकंड आशुतोष जी,
1: हाँ
0: प्रेम शुक्ला जी के पास
1: देखिए
0: जाना है मुझे जी।
1: देखिए हकीकत क्या है कि इन बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनकी आंख गई। आरएसएस के ना तो अतुल लिमय के पास वक्त है, ना मोहन भागवत के पास वक्त है कि उन बच्चों के साथ सहानुभूति रखे। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, उनके कपड़ों पर हाथ लगाया गया। क्या आपने मोहन भागवत का एक भी बयान सुना? क्या
2: आपने
1: आपने अतुल
2: पुलिस
1: लिमय का
2: कमिश्नर
1: एक भी
2: को
1: बयान
2: बयान
1: सुना?
2: दिया,
1: आरएसएस,
2: आपने बयान दिया
1: आरएसएस के
2: पुलिस को किस
1: लोग
2: पर तंग
1: पूरी
2: किया गया,
1: तरीके
2: आपने
1: से
2: बयान
1: घबराए
2: दिया
1: हुए हैं,
2: 118 पुलिस
1: आरएसएस
2: वाले
1: के लोग
2: झूठ बोल
1: डर
2: रहे
1: गए
2: हैं,
1: हैं,
2: आपने बयान
1: और
2: दिया
1: इस
2: पुलिस
1: आंदोलन
2: को
1: को
2: किस पर
1: डिस्क्रेडिट करना
2: प्रताड़ित
1: चाहते
2: किया
1: हैं।
2: गया, आपने जवाब
1: ये
2: दिया किस
1: छात्र
2: तरह से
1: जो
2: तुम
1: ये
2: गिराया गया,
1: छात्र
2: मारा गया,
1: आरएसएस के
0: जो
1: आरएसएस
0: बात
1: की विचारधारा
0: सहकार्य
1: मुझे
0: वह कह रहे
1: बताइए,
0: हैं,
1: एक
0: प्लीज
1: बात मत
0: एक
1: करिए,
0: ब्रेक
1: जर्नलिस्ट हैं,
0: ब्रेक,
1: दोनों तरफ
0: मुझे
1: बात
0: जरा
1: करिए।
0: बीजेपी और कांग्रेस को भी लाने दीजिए, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल रिपरकेशंस भी यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब झारखंड के भीतर आंदोलन शुरू हुआ है, सवाल पूछना शुरू हुआ है कि जो लोग जंतर मंतर पहुंच रहे थे वो झारखंड के आंदोलन की क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो लोग जंतर मंतर और दूसरी तरफ से जो लोग जंतर मंतर के आंदोलन को असंवैधानिक बता रहे हैं वो झारखंड के भीतर होने वाले आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, यह भी बड़ी दिलचस्प बात है, यानी गुड जेंजी बैड जेंजी दोनों तरफ से काम चल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, क्या जंतर मंतर का आंदोलन, सरकार की यह भूमिका है कि यह आंदोलन असंवैधानिक था, सरकार की यह भूमिका है कि क्या यह आंदोलन देश के खिलाफ था, या सचमुच में छात्रों की मांग को लेकर था इसीलिए सरकार को यह सुनना पड़ा? प्रेम शुक्ला जी,
3: देखिए जंतर मंतर का आंदोलन जब तक शांतिपूर्ण था तो निश्चित तौर पर संविधान के तहत ही हो रहा था, लेकिन इस सत्य को मेरे मेरी बात को जाने दीजिए, सोनम वांगचुक जो उस आंदोलन के लंबे समय तक चेहरे थे, उन सोनम वांगचुक ने ये स्वयं कहा है कि जंतर मंतर के आंदोलन में असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे। तो सोनम वांगचुक झूठ बोल रहे हैं, या सोनम वांगचुक जंतर मंतर के आंदोलन को समझ ही नहीं रहे हैं, या सोनम वांगचुक गलत बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक ने के अलावा सौरभ दास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य को स्वीकार किया था कि जंतर मंतर के आंदोलन में असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे। तो सौरभ दास झूठ बोल रहे हैं, सौरभ दास तो उस आंदोलन के जो तीन चेहरे थे,
0: आपने शायद
3: उन
0: सुना नहीं, प्रेम
3: में से
0: शुक्ला
3: एक
0: जी
3: चेहरे हैं।
0: मैं रिपीट करता
3: अगर सौरभ दास ये स्वीकार
0: नहीं, जरा अतुल लिमय जी का स्टेटमेंट चला दीजिएगा एक बार,
3: जी
0: अगर चाहिए तो मैं आपको अतुल लिमय जी का स्टेटमेंट सुना देता हूं, अभी रतन शारदा जी भी
3: नहीं,
0: बात
3: तो
0: कर
3: मेरी,
0: सके।
3: मेरी मेरी मेरी बात तो
0: उनका
3: पूरी
0: ये
3: हो
0: कह
3: जाने
0: रहा है कि
3: दीजिए,
0: अन्ना
3: साहिल
0: हजारे
3: जी
0: का आंदोलन
3: संकट है कि
0: साफ
3: आपको भारतीय
0: सुन
3: जनता
0: लीजिए,
3: पार्टी की बात ही नहीं सुननी है,
0: नहीं सुनिए ना प्रेम
3: नहीं,
0: शुक्ला
3: वो
0: जी,
3: आपको
0: प्लीज
3: भारतीय जनता पार्टी
0: मैं,
3: की बात ही
0: आप
3: नहीं
0: जो कह
3: सुननी
0: रहे हैं वो अलग
3: ये
0: कह रहे
3: अच्छा
0: हैं,
3: साहिल जी
0: मेरा
3: आपका
0: सवाल
3: अच्छा
0: कुछ और था,
3: है
0: मैं आपको
3: कि
0: दोबारा
3: भारतीय जनता, अरे मेरी बात
0: सर मैं
3: पूरी
0: आपको
3: आने
0: रिपीट
3: दीजिए
0: कर रहा
3: ना,
0: हूं सवाल,
3: मेरी मैं उसी
0: अरे
3: का
0: तो
3: उत्तर दे रहा हूं,
0: आप सब
3: मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आपने 10 सेकंड मुझे बोलने दिया,
0: क्या
3: आप 10 सेकंड
0: क्या,
3: की बात चाहते हैं,
0: क्या
3: 10 सेकंड
0: जंतर मंतर के आंदोलन
3: आप
0: के
3: जो
0: स्टेज
3: चाहते
0: से
3: हैं आप कह दीजिए,
0: देश
3: ये बोल
0: विरोधी
3: दीजिए,
0: घोषणाएं
3: वही
0: दी
3: बोल
0: गई
3: दे
0: थी कि नहीं दी गई,
3: साहिल जोशी ये
0: जो
3: तो
0: आंदोलन
3: मैं
0: पर
3: बता रहा हूं ना,
0: आरोप लगाया गया है वो हुआ था कि नहीं हुआ था,
3: उसी पर
0: सरकार
3: मैं
0: की भूमिका क्या है? प्रेम शुक्ला जी ये सवाल है, ठीक है
3: निश्चित, देखिए मेरा देखिए उसमें जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो शांतिपूर्ण उद्देश्य प्रारंभ हुआ था, सोनम वांगचुक उस आंदोलन के चेहरे थे, लेकिन सोनम वांगचुक को भी लग रहा असामाजिक तत्व तो घुस गए, तो इसका मतलब वहां गलत लोग घुस गए थे, ये सत्य है, और वहां पर देश विरोधी नारे मंच के नीचे से तो लगे हैं, जनता के बीच से उमर खालिद के बीच जो वहां भीड़ जमा हुई थी वो उमर खालिद के समर्थन में नारे लगा रही थी, नहीं नारे नहीं लगा रही थी, उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाना ये जो है सबसे बड़ा जैन जी का समर्थन है, नीट के लिए सबसे आवश्यक है उमर खालिद का जेल से छूट जाना, उसे नीट की परीक्षाएं ठीक हो जाएंगी, उमर खालिद बाहर आ जाएगा, तो नेपाल भारत को बनाने की बात ये तो आज तक ही दिखा रहा था, आज तक चैनल पर ही मैंने ये देखा है, और उसकी वीडियो आप आशुतोष जी को दे सकते हैं, आज तक के पास मुझे लगता है लाइब्रेरी भी होगी, उस लाइब्रेरी से कृपा करके
0: आज तक ने क्या दिखाया मुझे पता है।
3: आज तक
0: ने कहीं भी नहीं आया, आज तक ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये आंदोलन नेपाल बनाने की कोशिश हो रही है। आप हमें गलत कोट मत करिएगा, अगर आपके पास वीडियो है तो दिखाइएगा, गलत कोट मत करिएगा, है वीडियो तो दिखाइएगा।
3: नहीं मैं क्या,
0: मेरे ही चैनल पे मुझे कोट मत करिएगा।
3: भारत को नेपाल बना देंगे ये आज तक ने दिखाया है, आज तक ने ये दिखाया है कि वहाँ ये नारे लगे थे।
0: बताइए ना कि आज तक ने कब दिखाया, आप जो कह रहे हैं वो जरा बता दीजिएगा। और अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हुआ है। रतन शारदा ये आरोप लगा रहे हैं कि उस आंदोलन के मंच से,
3: मैं आज तक का वीडियो
0: नहीं, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आप इस डिबेट को आगे इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ,
3: तो तुम्हें लेके आता,
0: आपको क्या 5-10 मिनट अकेले बात करनी है तो बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ।
3: कि आज तक का वीडियो,
0: अरे आप भेजिए तो, हमने ये कहीं नहीं कहा।
3: मैं आज तक
0: अभिजीत दीपके खुद कह चुके हैं कि हमें नेपाल जैसा आंदोलन नहीं करना है। अभिजीत दीपके ये खुद कह चुके हैं कि हमको बांग्लादेश जैसा आंदोलन नहीं करना है।
3: अभिजीत दीपके की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा अभिजीत दीपके ने कहा, मैंने ये कब कहा
0: कि आंदोलन खड़ा किसने किया था।
3: मैं तो सीजेपी
0: की बात कर रहा हूँ, और जो जो बात रतन शारदा कहने की कोशिश कर रहे हैं उसमें रतन शारदा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि उस स्टेज से देश विरोधी नारे दिए गए थे। आप इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि नहीं रखते, ये सवाल है प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल है।
3: आप भाषण दे लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। मैं तो सवाल का
0: सवाल पूछ रहे हैं, आपको भाषण लगेगा क्योंकि सवाल सुनने की आपको आदत नहीं रह गई है प्रेम शुक्ला जी। सवाल सुनने की आपको आदत खत्म हो गई।
3: देना चाहता हूँ,
0: मोहन भागवत खुद कह रहे हैं डिस्कशन करिए, डिस्कशन मत करिएगा प्लीज।
3: हर प्रश्न का सटीक उत्तर देना,
0: चलिए
3: हर प्रश्न का सटीक और विस्तार से उत्तर देना, ये मैं अपना दायित्व समझता हूं।
0: जवाब दीजिए,
3: इसलिए कृपा करके
0: दीजिए।
3: मैं ये नहीं कह रहा हूं अभिजीत दीप के नारा लगाया, मैंने ये नहीं कहा कि सौरभ दास ने नारा लगाया, मैंने ये नहीं कहा कि जो है रंका ने नारा लगाया। मैं ये कह रहा हूँ
1: कि
3: वहां पर जो जमा लोग थे 2873 ऐसे लोग भी जमा थे जो आपराधिक तत्व थे, और ये मेरा आरोप नहीं है, ये पुलिस कह रही है। तो इन आपराधिक तत्वों के बीच में मौजूद लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए और देश विरोधी नारे वहां लगे, ये सत्य है। और ये तमाम आज तक समेत तमाम चैनलों ने दिखाया। अब आशुतोष जी अंधे
0: नहीं दिखाया, गिरफ्तार करिए उनको,
3: उनके अंधत्व को।
0: आंदोलन खराब नहीं था, उसका फायदा कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं।
3: आप अतुल लोन ने छह बजे आप फिर से करिए इसी बहस। मैं 20 मिनट के जो गैप में मैं 200 वीडियो लाके देता हूं।
0: अतुल लोंडे
3: 200 वीडियो देने को तैयार हूं,
0: ठीक है, उनको 200 वीडियो
3: बहस कीजिए, मेरी चुनौती।
0: किसी ने ये नहीं कहा प्रेम शुक्ला जी, किसी ने ये नहीं कहा कि उस दिन आंदोलन के बाहर कुछ तत्व इस तरीके से जुड़े हुए थे,
3: नहीं, उस आंदोलन के आयोजक
0: ये इस बात को कह रहे हैं। सवाल ये है कि ये आंदोलन देश विरोधी था कि नहीं था, सवाल इतना सिंपल था।
3: आयोजक कह रहे थे कि सामाजिक तत्व घुस गए,
0: अतुल लोंडे
3: आयोजक ही कह रहे थे,
0: अतुल लोंडे
3: आप उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपका क्या इरादा मेरी समझ में नहीं है।
0: कौन छिपाने का प्रयास कर रहा है, कौन छिपाने का प्रयास कर रहा है, क्या छिपाने का प्रयास किया प्रेम शुक्ला जी?
3: साहिल जोशी कर रहे हैं, साहिल जोशी
0: कर रहे हैं का प्रयास किया
3: साहिल जोशी? मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कब कहा कि सौरभ दास को नारा लगाया, मैंने कब कहा कि अभिजीत दीपके नारा लगाया?
0: चलो ठीक है,
3: वहां पर जमा हुए आपराधिक तत्वों ने नारा लगाया, वहां पर जमा हुए
0: आपराधिक तत्वों ने नारा लगाया, उनका यह कहना है कि आपराधिक तत्वों पर कार्यवाही होगी। आशुतोष ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही थी जब आपराधिक तत्व वहां पर घूम रहे थे। अतुल लोंडे जवाब दीजिए।
4: साहिल जी, ऐसा है कि आरोप करना, गलत नैरेटिव गढ़ना, अर्बन नक्सल कह देना, देश विरोधी कह देना, पाकिस्तान परस्त कह देना, चीन परस्त कह देना, यह आरएसएस का और बीजेपी का धंधा है। किसान आंदोलन को भी इसी तरह से बदनाम किया था, आज तक क्या सबूत है? किसानों को जो वायदा किया था उसकी ना कमेटी बनी, आज तक क्या किसानों को एमएसपी के बारे में कुछ दिया है? इस सरकार ने कुछ दिया नहीं, बदनाम करने की कोशिश की। चाइना परस्त कहा गया, पाकिस्तान परस्त कहा गया, खलिस्तानी कहा गया, और सारे के सारे इनके मंत्री थे कहने वाले। आज जब ये कहते हैं कि 2873 लोग इनको मालूम है, पिन पॉइंट किए हैं, तो आज 10 दिन से तो ज्यादा ऊपर हो गए, और 10 दिन के ऊपर होने के बावजूद किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया? वो 20 तारीख को ही सुबह जब मार्च करने वाले थे संसद के तरफ बच्चे छात्र, उस दिन वो पत्थर का ट्रक किसने लाया था? वो पुलिस ही वहां खड़ी थी ना, और पत्थर के ट्रक के बाजू में पुलिस ही वहां ब्रेक कर रही थी ना गाड़ी के कांच वगैरह, और दिखा रहे बाद में दिखाने की कोशिश थी कि आंदोलन में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है इसके वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। क्यों पुलिस और क्यों आ रहे रैपिड एक्शन फोर्स के पुलिस के वहां बैजेस पे नाम नहीं लिखा था? क्यों नाम नहीं लिखा था? और कई ऐसे लोगों के हाथे में लाठी थी और हेलमेट पहने थे जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं था, स्लीपर पे और चप्पल पे थे। कौन से पुलिस के पास ऐसा डंडा है पूरे देश में जिसमें कील लगे हुए होते हैं? कौन से आंदोलन में जो एंटी टेरर वेपन है, एंटी टेररिस्ट वेपन, वो AK-47 चला है? यानी पूरे देश में जो छात्र है वो छात्र पूरे अर्बन नक्सल है, और ऊपर कहेंगे कि नक्सलिज्म खत्म कर दिया है, और मोदी कहेंगे फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स जो है वो देश विरोधी है, और अतुल लिमय जी कहते हैं कि देश विरोधी है। अरे जिनका नाम गांधी हत्या में और देश के स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थे, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? और यहां बैठकर कह रहे कि ऐसे वीडियो है वैसे वीडियो है, तभी के तभी गिरफ्तार करना चाहिए था ना कौन जो देश के खिलाफ में है,
0: रतन शर्मा जी उसके खिलाफ, उसके खिलाफ दिखाना चाह रहे हैं, जरा जवाब दीजिए उनको।
2: मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्री उमर
4: मनुवाद का विरोध किया, मनुस्मृति का विरोध किया, किसी ने
2: संविधान का विरोध किया, पे
4: लोगों के हाथ में गांधी जी की और अम्बेडकर जी की तस्वीर थी, इसका मतलब यह नहीं होता उन्होंने मनुस्मृति का जरूर विरोध किया, हम भी करते और करते रहेंगे। संविधान का किसी ने विरोध नहीं किया, संविधान की प्रत लेके आंदोलन हुआ है, संविधान के तहत अंदर आंदोलन हुआ है। जब आपने ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ उसका जवाब ना तो सरकार ने दिया है आज तक, ना RSS ने दिया है, बल्कि बदनाम करने की कोशिश जो है वो कोशिश हो रही है, अपनी साख बचाने की कोशिश हो रही है,
0: बहुत गलत
2: है ये। मैं कभी डिबेट में
0: बदनाम करने की कोशिश
2: है, मैं कभी डिबेट में गूगल खोल के नहीं बैठता हूँ, फिर भी आप लगातार ये आशुतोष जी बड़ा चिल्ला रहे हैं, सारी डिबेट को हाईजेक करना चाहते हैं। ये गूगल ने निकाला है स्लोगन सपोर्टिंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, स्टूडेंट एक्टिविस्ट जस्ट लुक एट दिस, उसको बेल नहीं मिल रही है, डिमांड्स फॉर रिलीज जस्टिस मोस्ट नोटेबली फ्री उमर खालिद, रिलीज उमर खालिद, दीज चैंट्स आर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय स्टूडेंट ग्रुप्स एंड सिविलाइज्ड प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन वी स्टैंड विद उमर खालिद, ये एक हो गया। दूसरा, आप कह रहे हैं कि नेपाल के नारे, ये लीजिए नेपाल के नारे, ये टीवी चैनल दिखा रही है कि नेपाल बना देंगे, नारे मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, इल्जाम लगा रहा हूँ, ये टीवी चैनल दिखा रही है, वीडियो दिखा रही है साथ में, तो इसलिए इस तरह से बहस को मत भटकाएं, जो हो गया हो गया, जो केस चल रहे गवर्नमेंट कर रही है केस,
1: साहिल
2: जिस तरह के केस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अपराधियों पे केस चलने चाहिए, स्टूडेंट पर नहीं होने चाहिए, सिरे लाके क्या होगा भाई साहब, आपने प्रूफ मांगा ने प्रूफ दे दिया, मैं
0: क्या
2: लाइब्रेरी लेके बैठूंगा क्या मैं?
0: झारखंड के भीतर 11 दिन से वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर महतो अनशन पर बैठे हुए, क्या उससे आप सहमत हैं? झारखंड के भीतर आंदोलन हो रहा है,
2: झारखंड का, इसलिए आप देखिए झारखंड के आंदोलन के, अरे शांत रहिए लोंडे जी, आपका कहीं कोई लेने देना नहीं है, राहुल गांधी छुट्टी बैठे, आप क्या चिल्ला रहे हैं?
0: एक मिनट
2: राहुल गांधी,
0: लोंडे जी एक मिनट, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ आपके पास।
2: कांग्रेस वाले केवल क्रेडिट खाने की बात करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, लोंडे जी शांति रखिए,
4: तुम्हें
2: सबका क्रेडिट लिया था, राहुल गांधी छुट्टी ला जाना आणि तुथे तो
4: ये कौन खाने वाला
2: वो राहुल करो ना तुम,
0: अरे प्लीज प्लीज
2: मेरी बात,
0: एक मिनट दूसरी, एक मिनट अतुल लोंडे जी, एक मिनट
2: फर्क देखिए,
0: ठीक है जरा शांत करिए उनको, रतन शारदा जी एक सवाल का जवाब, झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या भूमिका है?
2: करके नीचे से निकल के आए हैं, क्या बात करते हैं? गांधी का निकाल लिया है
0: झारखंड में,
2: गांधी का तो मैं नाप करते दिन रात,
0: झारखंड
2: झारखंड की बात कर रहे हैं ना, झारखंड के आंदोलन का इसलिए किसने कवरेज दिया? कोई नेता वहां पहुंचा नहीं, कोई लेफ्टिस्ट कांग्रेसी कोई वहां पहुंचा नहीं, क्योंकि संविधान के अनुसार शांति के साथ में बिना कोई कानून तोड़े वो सत्याग्रह कर रहे हैं। आप लोगों ने 8 दिन बाद दिखाना शुरू किया, कोई मीडिया ने 8 दिन तक दिखाया नहीं, क्योंकि लोगों को शायद शांति वाले आंदोलन पसंद नहीं आते, लोगों को ऐसे कोई टेढ़े मेढ़े नारे लगाना, कुछ गड़बड़ होना, पत्थरबाजी होना, अश्लील काम करना तो लोग देखने आते हैं, तब वहां लोग पहुंचेंगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं, शांति से चल रहा है और उनकी अपनी गवर्नमेंट के विरुद्ध चल रहा है। कर्नाटक वाले बात करते हैं शांति रखो, राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने वाले तीन को जेल में डाल देते हैं, झारखंड में कुछ बोलते नहीं, पंजाब में इनका मुंह नहीं खुलता, केरल में इनका मुंह नहीं खुलता, और यहाँ आके सारे वो
0: एक राहुल गांधी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश का माहौल बड़ा अजीब चल रहा है, जरा उनकी एक रिएक्शन सुना देते हैं राहुल गांधी की, उसके बाद अतुल लोंडे आपसे प्रतिक्रिया लेनी है राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर, क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी जरा सुना देते हैं।
5: We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do.
0: ठीक है, सबसे पहले अतुल लोंडे पाटिल कह रहे हैं कि छात्र जगह जगह पर सड़क पर उतर रहे हैं, झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है, झारखंड में भी छात्रों की वही डिमांड है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी सरकार सीबीआई को जांच सौंपने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से एनटीए के इस पेपर लीक में भी जांच पूरी हुई थी, उस पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, फिर भी आंदोलन हुआ था, क्या झारखंड के आंदोलन में भी कांग्रेस की यही भूमिका रहेगी?
4: झारखंड के आंदोलन में हम बिल्कुल छात्रों के साथ हैं। शायद शारदा जी को पता नहीं है, झूठ बोलने की आदत है। वहां पर कांग्रेस के नेता गए, कांग्रेस के नेता ने वहां पर मुलाकात की, जिस तरह से यहाँ पर गए थे जंतर मंतर में, और एक ज्ञापन लेकर हमारे पूरे ज्येष्ठ नेता जो है वो सीएम से मिले। वहां पर जेपीएससी जैसा एमपीएससी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एनटीए जैसी एनजीओ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके चेयरमैन का हमने इस्तीफा लिया है, उसके बाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो मैडम है उसका भी इस्तीफा लिया है। 11 लोग जो है वो जेल में है और कंटिन्यू इंक्वायरी चल रही है। और अभिजीत दिपके के मुताबिक, अभिजीत दिपके के मुताबिक और वहां के जो नेता थे सीजेपी के, उनके नेता के मुताबिक, जिस तरह से जंतर मंतर को जालियांवाला बाग बनाया गया, वहां बीजेपी और आरएसएस के गुंडे घुसे थे, ये उनका कहना है। उस तरह से आग उसने नहीं दिए गए है, क्योंकि हमारी सरकार है वहां पर। तो बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में है, सीआईडी की इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई की इंक्वायरी वो मांगेंगे तो जरूर सीबीआई की इंक्वायरी भी देंगे, लेकिन हम छात्रों के साथ छात्रों की तरह बर्ताव करेंगे। जिस तरह का नंगा नाच वहां पर किया गया, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाले उसकी बात नहीं करेंगे, ये पत्थर पुलिस लेकर आई उसकी बात नहीं करेंगे, कील के डंडे से मारे उसकी बात नहीं करेंगे।
0: अतुल लोंडे जी, मांग ये भी हो रही है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम वहां पर हुआ है, मेंस तो आपने रद्द कर दिया, प्रिलिमिनरी एग्जाम से भी रद्द कर दीजिएगा, वो भी मांग चल रही है।
4: दिखाई है उसकी जांच चल रही है, वो जांच अगर पाई जाती है तो प्रीलिम कैंसिल वो भी हो जाएगी। इनके यहाँ इनकी सरकार थी बाबूलाल मरांडी की और रघुवर दास की, तब पता नहीं सुनो तब इतने फ्रॉड हुए और सिर्फ 2 बार जेपीएससी की एग्जाम हुई। हम 18 साल इनकी सरकार रही, हमारी 6 साल हो गए सरकार में, हमने 8 जेपीएससी की एग्जाम दी ली और जितने खाली पद थे वो भरने की पूरी कोशिश की, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन दिपके का सवाल पूछिए, दिपके ने जो जवाब देना चाहा,
2: बीजेपी आरएसएस के कह रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी है, अब तक अतुल लोंडे जी कह रहे हैं कि अतुल लोंडे जी कह रहे हैं कि सीबीआई का डिमांड छात्र करेंगे, हम देंगे। सीबीआई के डिमांड छात्र कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, इनको शायद सुनता नहीं, कान इनके बंद है, क्योंकि सुनता नहीं कांग्रेस को, सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। हाँ तो बोल रहे हैं ना, आप तो बोल रहे हैं बोलेंगे हम करेंगे। दूसरी बात, आप नेशनल टीवी टेलीविजन के ऊपर इस तरह के भद्दे बयानों को कैसे सुनाने देते हैं कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसाए गए, इसका क्या इनका एविडेंस है, कौन सी, किसने ये भाषा की है, किसने इस तरह के बयान दिए हैं? आपको इस तरह की बातें करने के पहले सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। ये शोभा नहीं देता आपको, केवल इल्जाम लगा के नहीं चलता आपका, इसलिए आप वहां ध्यान दीजिए जहां आपकी सरकारें चली है। पंजाब में देखिए, जहां वहां पर सरकारी नौकरियों पर लाठियां बरस रही हैं, वहां कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे, वहां पर हाईकोर्ट कहता है कि पहले तनख्वाह दो बाद में एडवर्टाइजमेंट करो। कर्नाटक में आपके लोग वहां पर राहुल गांधी के क्रिटिक को आज जेल में डाल रहे हैं, यहां आके भाषण पेल रहे हैं। तो कृपया हिपोक्रेसी बंद करिए, अगर आपको सॉल्व करना है विद्यार्थियों का प्रॉब्लम तो जैसे हम बात करते हैं आप बात करना सीखिए। जैसे हम मानते हैं कि विद्यार्थियों ने जो सही संदेश नहीं गया, आप भी सीखिए। वो केवल वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में काम नहीं चलता, आपको बात करनी चाहिए। आपके आपका युवक है ही नहीं, आपका जीएनई का झोला छाप लोग हैं और कोई है नहीं आपके पास।
4: गुंडे वहां घुसे थे, ये जो आरोप है
2: ये कहां से है आपके गुंडे, आपके पास कोई सबूत है उसका? मैंने उसके लिए भी कुछ नहीं बोला, आपको भी तरह इल्जाम लगा रहे महिलाओं के बारे में जो बात की, इसके मैंने ऑब्जेक्शन लिया। साहिल, दिस टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन शुड नॉट बी अलाउड। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट,
0: जो अव्यवस्था यहाँ पर खड़ी हुई वो अव्यवस्था झारखंड के भीतर नहीं नजर आ रही है, इसका भी तो कारण ढूंढना पड़ेगा ना अतुल लोंडे जी। जो व्यवस्था अव्यवस्था यहाँ पर
4: छात्रों के साथ में है
0: वो झारखंड के भीतर नहीं दिखाई दे रही है।
4: हमने कार्रवाई की छह।
2: अरे छात्रों के साथ 10 दिन से सड़क पर क्या बैठे हैं?
4: हमने इनके जैसा नहीं है,
2: 10 दिन से क्या
4: महिला एक अपने बच्चों के साथ भूखे बैठे, बच्चों के साथ
2: दबाव
4: में ऊपर किया उसका समर्थन करने वाले
2: हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर?
4: वैसे भी इनके लिए महिला भोग की वस्तु है, जो फिलोसॉफी है वो महिलाओं को सम्मान देती ही नहीं है। ये मनुस्मृति के समर्थक है, ये क्या बात करेंगे? ये क्या लोगों के साथ, ये क्या संविधान की बात करेंगे?
2: की पूजा संविधान को स्थान पर संविधान को इन्होंने कालाधीन कहा था, मनु ने कहा था,
4: संविधान को नकारा
2: गया, समझ के आया
4: संविधान की बात करें।
0: मुद्दे नहीं भटकेंगे आखिर में प्रेम शुक्ला जी चलिए ठीक है आखिर में ठीक है प्रेम शुक्ला जी आखिर में मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि डिक्टेशन का नहीं डिस्कशन का दौर आ चुका है और वो खुद एंगेज करना चाहते हैं छात्रों के साथ में खुद एंगेज करना चाहते हैं जेंजी के साथ में क्या सरकार की भूमिका आप उस तरीके से रहेंगे सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में ये है झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है हर जगह आंदोलन
3: पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखा दे रहा हूँ जो वीडियो मांग रहे थे आज तो जी ये नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा कहा जा रहा है उसी आंदोलन में ये आशुतोष जी देख लें जरा कृपा करके और अब मैं कहता हूँ कि अतुल लोंडे पाटिल महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसाने वाला वीडियो ले आए अब इनसे मेरा मेरी मांग है कि मैंने वीडियो दे दिया अब ये वीडियो ला के दिखाए कि किस महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा दिखाया एक वीडियो ला के दिखाओ अगर आप अपनी अगर आप जो है सच्चे हैं आप सत्य का जरा सब स्पष्ट हुआ
0: है कि गुड जेंजी बैड जेंजी के इस डिबेट के भीतर छात्रों की जो असली मांगे हैं उसको नजरअंदाज कोई सरकार ना करे क्योंकि अब छात्र सड़क पर उतर रहा है और छात्र ये कह रहा है कि मेरी आवाज आपको सुननी होगी मेरे साथ डिस्कशन करना होगा मेरे सवालों के जवाब भी देने होंगे हमारे साथ एंगेज करना होगा इसी का इंतजार होगा फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबा केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
4: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
5: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
6: They created this Frankenstein called Bhindranwala.

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
4: Kuch to baat hai is dil mein.
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.

जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन ने पांचवी इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जेन जी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं, क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जेन जी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है? और क्या जेन जी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जेन जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जेन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब जेन जी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अम्बानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जेन जी और 13 साल की जेन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेन जी दो तरह के थे, जिसमें एक वाजिब जेन जी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेन जी। और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और रابطہ कायम करना चाहते हैं। जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है। उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेन जी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं। और गौर करने की बात ये कि 6 अगस्त को संघ प्रमुख की जेन जी से मुलाकात के पहले 5 अगस्त को अभिजीत दीप की अपनी पार्टी की बैठक में संगठन के विस्तार, भविष्य की रणनीति और पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करने वाले हैं।

0: जंतर मंतर पर जेंजी के जिस आंदोलन ने सरकार को खबरदार किया, जिस आंदोलन की वजह से सड़क से संसद पर सरकार को घेरने की कोशिश अब भी हो रही है, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसे लेकर आरएसएस की तरफ से जो बयान आया है उससे इस मुद्दे पर नए सिरे से सियासी टकराव होना तय माना जा रहा है।
1: हे आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातला एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेला आंदोलन आहे।
0: या तो लिमे आरएसएस के सर सह कार्यवाह पद के हिसाब से आरएसएस में तीसरे बड़े पद पर बैठे नेता, इतने बड़े पद पर बैठे आरएसएस के नेता अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन देश विरोधी और संविधान विरोधी कहेंगे तो विवाद तय है।
1: हे आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातला एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेला आंदोलन आहे, या अर्थाने बघा। अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन, या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे, या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे।
0: महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के सर सह कार्यवाह ने ये बातें कही और हिदायत दी कि इसे सिर्फ राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए।
1: कि विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे, पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका।
0: छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर, लेकिन आरएसएस की तरफ से आए इस ताजा बयान विपक्ष को हमले का नया मौका दे दिया।
2: छात्रों को एंटी नेशनल कहते हुए शर्म नहीं आती? बच्चों को, नौजवानों को, इस देश के भविष्य को एंटी नेशनल बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है?
3: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे, यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी है आरएसएस की? संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है, सरकार आने दो हमारी, बता देंगे इनको।
0: आरएसएस की तरह ही बीजेपी के पूर्व सांसद जो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे, रमेश विधुड़ी, इन्होंने भी अब जेंजी के आंदोलन को लेकर नया विवादित बयान दिया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, बने रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर संघ को घेरा, कहा छात्रों को माफ करने वाले कौन होते हैं प्रधानमंत्री, आरएसएस की विचारधारा को बताया खतरनाक। मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, कालिम फाजिल की नहीं मिलेगी डिग्री, अब होगी सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। बाकीपुर जीतते ही प्रशांत किशोर का बड़ा धमाका, सम्राट चौधरी के खिलाफ खुला मोर्चा, आज तक से बोले बीजेपी को बिहार में बदलना चाहिए सीएम।

0: ने पाकिस्तान को दिया झटका, ईरान युद्ध में मध्यस्थ की सूची से नाम हटाया, मुनीर शरीफ की भारी फजीहत, लिस्ट में सऊदी अरब, यूएई, कतार शामिल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge. And then I will resign. Just like how they did for this thing.
3: Mallikarjun Khadge ji, Rajya Sabha mein khade hokar, unhone ghanto bhashan diya. Jab unke suputr Karnatak mein is prakar ka bayan dete, us par Mallikarjun Khadge ji aur Congress party, Rahul ji, puri tarah se chup hai.
4: दस तारीख का हम लोग कॉल है विधानसभा घेराव का, हमें उम्मीद है लेकिन झारखंड सरकार की नींद उड़ने वाली है।
5: ये सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे।
6: ये जो वॉशिंग मशीन झारखंड में पूरी वॉशिंग मशीन जो है वो कांग्रेस और जेएमएम के पास है, करप्शन करके आई है, चोरी करके आई है, चोरी करना है, डकैती करना है, इस तरह का घोटाला करना है, आप सदस्य बन जाइए और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश ने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश की संसद तक नीट की पेपर लीक का मुद्दा किस तरह से उठा, और ये बहुत अच्छा संकेत भी था इस देश के लिए, क्योंकि पेपर लीक एक ऐसी मुश्किल थी जिस पर सियासत होती थी, लेकिन हर बार किसी को दिक्कत होती थी, कोई खामियाजा भुगतता था तो वो छात्र थे, और इसीलिए वो अपने लिए निकले। लेकिन क्या दिल्ली में छात्रों के आक्रोश पर हंगामा करने वाले लोग झारखंड में छात्रों के आक्रोश को नजरअंदाज कर रहे हैं? दूर बैठे बैठे बस कह रहे हैं कि हाँ, हमारा समर्थन है। झारखंड लोक सेवा यानी जेपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा का नतीजा आने के बाद धांधली की शिकायतों पर रांची में 11 दिन से ये धरना चल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हालांकि अगर आप देखिए तो उन्होंने शिबू सोरेन की तस्वीर पकड़ी हुई है, और जिस तरह से वो हमेशा छात्रों के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा उठाते रहे हैं, बहुत ज्यादा फीस जो कॉलेजेस में चलता है उसका मुद्दा उठाते रहे, और वही देवेंद्र नाथ महतो नाम के छात्र नेता जो है वो 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता झारखंड में छात्रों के आक्रोश पर चुप्पी साधे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को कांग्रेस का समर्थन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद झारखंड के शिक्षा मंत्री भी हैं। ऐसे में सवाल ये होगा कि अगर वहां पर इस्तीफा माना जाता है तो क्या सीधे जाकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए कोई भी वहां पर तैयार होगा? उधर 2 अगस्त को कर्नाटक में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप पर छात्रों का गुस्सा फूटा था, लेकिन खुद के इस्तीफे की मांग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खड़गे का बयान वायरल हुआ, जिसे बीजेपी संवेदनहीन कह रही है। वो पूरा बयान क्या है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या परीक्षा धांधलियों पर सिलेक्टिव सियासत हो रही है? सिलेक्टिव गुस्सा, यहां पर गुस्सा करना है, वहां पर गुस्सा नहीं करना है, यहां पर कितनी नाराजगी दिखानी है, वहां पर नहीं दिखानी, आखिर संसद में क्यों नहीं उठता राज्यों के पेपर लीक का मसला? क्या झारखंड में छात्रों के जंतर मंतर पर चुप्पी है? आज इसी पर हम हल्ला बोल करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नीलम मिश्रा प्रवक्ता जेएमएम की, धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट।
1: I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge. And then I will resign. Just like how they did for this thing.
0: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। दो अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के OMR शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूटा था। इसे लेकर बीजेपी और JDS ने प्रियंक खड़गे को घेरने की कोशिश की, उनसे इस्तीफे की मांग हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रियंक खड़गे ने जो कहा उसके बाद बीजेपी ने छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठा दिया है।
2: कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया, जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी राहुल जी पूरी तरह से चुप है।
0: प्रियंक खड़गे का दावा है कि भर्ती परीक्षा के सवालों का नंबर और OMR शीट में नंबर बेमेल होने का आरोप सिर्फ कुछ छात्रों की गलतफहमी थी, इसलिए जो लोग OMR शीट के साथ एग्जाम हॉल के साथ बाहर गए वो अपनी जिम्मेदारी पर गए। सरकार की जिम्मेदारी उन छात्रों के लिए थी जो एग्जाम दे रहे थे। इन्हीं दलीलों के साथ प्रियंक खड़गे कर्नाटक में पेपर लीक या भर्ती घोटालों के आरोपों पर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आए।
1: पीपल हु आर सीकिंग माय रेजिग्नेशन शुड आंसर व्हाई डिडंट मिस्टर बोम्मई रिजाइन व्हेन द PSI स्कैम हैपेंड, व्हाई डिडंट मिस्टर अर्गज्ञानेंद्र रिजाइन व्हेन द PSI स्कैम हैपेंड। यस्टरडे लैक्स ऑफ पीपल रोट एग्जाम्स And there's a problem only with close to around 120 people.
0: प्रियंक खड़गे का ये जवाब ऐसे समय में है जब नीट पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा हो चुका है, देश के शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटालों के आरोपों पर झारखंड में छात्रों का 11 दिनों से धरना जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 अलग अलग टेंट्स में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच जैसी मांगों के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: अब इनको समर्थन जो है हर कॉर्नर से मिल रहा है,

0: के ने भी जो सीजेपी के संस्थापक है उन्होंने भी इन लोगों से बात किया, कहा है कि हर तरह का सपोर्ट इनको देंगे।
1: 10 तारीख का हम लोग कॉल है विधानसभा घेराव का, हमें उम्मीद है उस दिन झारखंड सरकार की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि झारखंड के रांची शहर में वो जनसैलाब उभरेगा जो आज तक कभी हुआ नहीं था, तो हमें उम्मीद है उस दिन सरकार की नींद उड़ने वाली है।
2: ये सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है, और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है, और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे।
3: शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मशाल मार्च निकाल रहे छात्रों को खाने पीने जैसी मदद के साथ कुछ वॉलंटियर, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए हैं, लेकिन आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
4: आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में है, वो आंदोलन कर रहे हैं, एक तख्ती आपने देखा कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा।
3: पेपर लीक या परीक्षा में धांधली कहीं हो, देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी है, लेकिन कर्नाटक, झारखंड साथ ही साथ पंजाब में पेपर लीक के मसले पर विपक्ष की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी सांसद बीजेपी के, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के, नीलम मिश्रा प्रवक्ता जेएमएम, धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के। सुधांशु जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये राहुल गांधी हो, विपक्ष के नेता हो, ये वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो राहुल गांधी तो जंतर मंतर पर भी नहीं गए थे, उन्होंने नैतिक समर्थन दिया था और फिर इस मुद्दे पर वो सरकार को घेरते रहे। हाँ, खुद उन्होंने जरूर

0: प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक मार्च किया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसको वॉटअबाउटरी भी तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में ये हुआ तो वहां पर भी ये करो। सुधांशु जी,
1: अंजना जी, वाटर बाउटरी उसे कहते हैं जो कांग्रेस कर रही है। यहां पर तो वो जंतर मंतर तो नहीं गए, क्योंकि उनको अपना पर्सनल फुटेज खींचना था, मीडिया में अपना पर्सनल फोकस लेना था, इसलिए जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहले लोटपोट हुए, उसके बाद गांधी स्मृति पे गए, फिर इंदिरा भवन में प्रेस की, फिर जैसे वो कहते हैं कि भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, हाइड्रोजन बम फटेगा, वैसे भी एक एज यूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अनेक प्रकार के चित्र विचित्र प्रकार के स्वांग और निरंतर संसद को चलने में अवरोध उत्पन्न कांग्रेस के लोगों ने किया। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इनके मन में छात्रों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी परीक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था का कोई विषय नहीं है। इनके मन में राजनीति की कुटिलता और देश में अराजकता पैदा करने का विषय है। और उसका प्रमाण देखिए, प्रियांक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे भी हैं, कैसा असंवेदनशील बयान दे रहे हैं, कैसा निंदनीय बयान दे रहे हैं। हाँ हाँ, पहले 25 दिन भूख हड़ताल में बैठे, लाठी चार्ज खाए, उसके बाद हम देखेंगे। इसको आप राहुल गांधी के उस बयान से कनेक्ट कर सकते हैं जो आज राहुल गांधी कह रहे थे कि माफी देने वाले पीएम होते कौन है। सही में आपकी तो वो खानदानी स्टाइल है ना, जो खड़गे बोले, खड़गे जी के बेटे बोले हैं, प्रियांक खड़गे, वही बात है। आप तो उसी परंपरा के हैं ना जिसमें राजीव गांधी ने कहा था माफी अभी थोड़ी मांगते हैं, बड़ा पेड़ गिरता है जो धरती हिल जाती है, 3-4-5 हजार सिख मर गए थे, क्या फर्क पड़ता है। आप तो उस परंपरा के ना, माफी अभी थोड़ी मांगते हैं, इंदिरा जी का चुनाव रद्द होगा तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी। आप तो उस परंपरा के हैं कि अगर कोई भूख हड़ताल पे बैठता है तो स्वतंत्र भारत के बाद पहली भूख हड़ताल, मैं पूरा एक वाक्य पूरा कर लूं, पोट्टा भी श्री रामलु ने की थी 19 अक्टूबर 1952 से, और 15 दिसंबर 1952 को उनकी डेथ हो गई भूख हड़ताल पे। कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं गया, गांधी के स्वयंभू अलंबरदार स्वतंत्र भारत की पहली भूख हड़ताल में व्यक्ति को मरने दिया। इसलिए अब यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है, छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं
0: सुधांशु
1: है।
0: जी, सिर्फ सुधांशु जी, ठीक है, आपको मैंने सेंटेंस पूरा करने दिया, लेकिन सुनिए ना सुधांशु जी, लेकिन वो लाइन जो उसकी है उनकी है, वो कह रहे हैं कि 25 दिन करने दो आंदोलन, फिर लाठीचार्ज करेंगे, जस्ट लाइक दे डिड, जैसा उन्होंने किया ये सब करके तब इस्तीफा दूंगा, तो वो तो आप पर टिप्पणी कर रहे थे।
1: तो अगर उन्होंने ये वाक्य बोला है तो जितने भी व्याकरण के आचार्य हों, लाखों दर्शक देख रहे हों, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि वो उसी परिस्थिति में है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान थे। बहुत स्पष्ट हो गया, इसका मतलब तो अब ये विषय ही खत्म हो गया, मतलब कांग्रेस पार्टी का उन्होंने खुद हिट विकेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये मान रहे हैं कि वो उसी परिस्थिति में खड़े हुए हैं जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान जी पर आरोप लगाते थे, और इसके बावजूद वो इतने असंवेदनशील हैं कि वो ये कह रहे हैं पहले ये करो उसके बाद हम ये करेंगे। और एक और बात मैं कह दूं, ये जो स्टेटमेंट दिखाया गया, जरा उसकी भाव भंगिमा और तेवर देखिए, सब कुछ शब्द ही नहीं होते हैं, वो जो टोन एंड टेनर होता है, जो आपका एक्सप्रेशन होता है, जिसे कहावत होती ना, एक कही बैनन अनेक कही नैनन, तो जो बैनन यानी जो शब्द कह रहे थे इसके साथ जो उनके नयन कह रहे थे वो दिखाई पड़ रहा था, अहंकार और असंवेदनशीलता का प्रमाण। इसीलिए मैं छात्रों से कहूंगा बहुत सजग रहने की आपको आवश्यकता है, यह अवसरवादी अराजकतावादी तत्व सिर्फ आपको मोहरा बनाकर प्रयोग कर रहे हैं, झारखंड और कर्नाटक इसके प्रमाण।
0: ठीक है, अब आलोक शर्मा जी, फोकस आप पर है, क्योंकि दो ऐसे राज्य जहां पर आज छात्र जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसमें एक कर्नाटक है, तो वहां पर प्रियांक खड़गे जी ये कहते हैं कि जैसा इनके साथ हुआ वही सब कुछ यहां पर हो तब इस्तीफा दूंगा, ये कहां से ये दलील सही टिक सकती है, और क्या झारखंड में सरकार में शामिल होने की मजबूरी इतनी बड़ी है कि आप लोग नैतिक समर्थन इन बच्चों को देने को तैयार नहीं है? एक भी पोस्ट, एक ट्वीट नहीं आया है झारखंड पर।
2: देखिए, दो सवाल अंजना जी, दो सवाल के हिस्से आए। सबसे पहला आपने प्रियांक खड़गे जी के लिए सवाल पूछा कर्नाटक वाला, उन्होंने बिल्कुल वो तेवर कड़े करके भाव भंगिमा की जो बात सुधांशु भाई ने कही वो बिल्कुल उसी भाव भंगिमा में तंज कसा गया है। क्या हमारे यहां पर वैसी हालत नहीं है? तुलना मत कीजिए, हर चीज को तुलना करना ही वाटर अबाउटरी होती है, हम उस चीज की तुलना नहीं कर सकते हैं। बहुत दिन तक ये कहते रहे केरल में पेपर आउट हो गया, केरल में भी पेपर आउट नहीं था। कर्नाटक में जवाबदेही तय होगी कि किस तरह से पेपर में डुप्लीकेसी हुई है, एमए हिस्ट्री के पेपर में और

0: पीसीएस के जो पेपर हुआ है सेकंड पेपर में उसका क्वेश्चंस की रिपीटिशन है, जवाबदेही तय होगी। जहां तक बात दूसरा हिस्सा आपका है झारखंड का, झारखंड में हम केवल ट्वीट तक नहीं है, हमने झारखंड के जो पीएससी के जो चेयरमैन थे उनको अरेस्ट कराया है। क्या नीट के पेपर में एनटीए के चेयरमैन को, आज तक चेयरमैन तो छोड़ दीजिए, क्या क्लर्क को भी अरेस्ट कराया गया? क्या सीबीआई की जांच ने क्या इनोवेटिव व्यू कंपनी के जाकर दरवाजे पर दस्तखत दी? दो चीजों में फर्क है, एक तरफ नियत और नीति दोनों में खोट नजर आता है। 2024 में भी पेपर आउट हुआ, 48 लोगों को 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। जिस दिन कानून पास होता है संसद के अंदर उसी दिन दो डबल इंजन की सरकारों में पेपर आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। दोनों चीजों में फर्क है। अगर वहां पर झारखंड में एक्शन नहीं हुआ होता तो हम पूरी तरह से झारखंड की सरकार, चाहे वो हमारी कोएलिशन की सरकार है, हम सवालिया निशान लगाते, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते। दूसरी चीज, वहां पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस बच्चों के साथ बैठी हुई है, हमारे महानगर के अध्यक्ष रांची के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, हम बच्चों से दूर नहीं है। भाव भंगिमा और तमाम चीजें तो मोदी जी की देखनी चाहिए, स्वांग तो मोदी जी रच रहे हैं, राहुल जी नहीं रच रहे हैं, स्वांग तो मोदी जी 11:30 बजे आकर कभी रील इस तरह की कभी उधर की, लेकिन बच्चों ने रील बनाना भी सिखा दिया उनको। मुझे लगता है कि परीक्षा व्यवस्था की बात अभी सुधांशु भाई ने कही, अगर नीट के पेपर में आउट होने पे 2 साल पहले अगर पेपर लीक कैसे रोका जाए इस पर काम सीरियसली किया गया होता तो मैं समझता हूं कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाता।
1: ठीक है आलोक जी, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है,
0: आरएसएस और बीजेपी जी
1: पूरा कर लीजिए, पूरा कर
0: जी। मैं कहता हूं कि पूरी तरह से परीक्षा व्यवस्था को रोकने में, परीक्षा व्यवस्था को सुधारने में इन लोगों ने एक कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई, अगर वहां पर हाई कोर्ट फटकार लगाएगा हम सरकार के बिल्कुल मुखर होकर हम उसके विरोध में रहेंगे, चाहे मंत्री हमारा ही क्यों ना हो।
1: ठीक है, लेकिन लेकिन लेकिन क्या राज्यों में आलोक जी, ठीक है, अब काउंटर क्वेश्चन सुनिए सर, अब काउंटर क्वेश्चन सुनिए ना, क्या आलोक जी कर्नाटक में, झारखंड में शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? यहां पर तो इस्तीफा लेने के बाद ऐसा लगा जैसे कि अब तो भाई पेपर लीक ही रुक जाएगा। एक तो अकाउंटेबिलिटी क्या यहां पर नहीं है, और वहां पर छात्रों से जाकर संवाद सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप लोग यही तो शिकायत कर रहे थे ना कि सरकार जाए जंतर मंतर पर बात करे, आखिरकार उन्होंने जिस भी तरीके से हो अपना बात किया, घर पे बुलाया, वहां गए, यहां गए, जो भी हुआ, आपकी तरफ से सेंसिटिविटी क्यों नहीं दिखाई जा रही? वो जो देवेंद्र महतो जी हैं वो भी भूख हड़ताल पर है आलोक जी।
0: देखिए, भूख हड़ताल से शुरू कर लेते हैं। एक गंगा सफाई के लिए जीडी अग्रवाल जी थे, ऋषिकेश में 113वें दिन उनकी मृत्यु हुई थी, और बीजेपी के तमाम लीडर्स, वो आरएसएस से भी और बीजेपी से भी जुड़े रहे, प्रोफेसर साहब से मिलने कोई भी नहीं गया। हमारे यहां पर अगर कोई इस तरह से बैठा हो तो जरूर जाना चाहिए, और हम जाएंगे भी, सरकार भी जाएगी। सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे तुरंत उठाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संवेदनशीलता के आधार पर नहीं हुआ, सरकार ने पूरी तरह से कसम खा रखी थी। एक दिन पहले इंडिया टुडे ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि इस्तीफा नहीं होगा, सरकार नहीं चाहती थी, सरकार ने तो मजबूरी में इस्तीफा लिया है जब देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। जब सरकार को यह लगने लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, हमारी हालत खराब है, तब जाकर इन्होंने उनका इस्तीफा लिया है। वो इस्तीफा संवेदनशीलता के आधार पर नहीं था, जनता ने उनको बर्खास्त किया था। अब इन्होंने कहा साहब छात्रों को सतर्क रहना चाहिए, मैं बिल्कुल कहूंगा छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। जो खुद की अपनी डिग्रियां जिस व्यक्ति के नहीं पता हो, वो परीक्षा पे चर्चा करता हो, तो जनता को सतर्क रहना चाहिए, छात्रों को तो खास तौर पर। 2 करोड़ रोजगार देंगे और पता नहीं कौन कौन से वायदे युवाओं के लिए हुए थे, तो युवा अब समझ चुके हैं।
1: सुधांशु जी जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं नीलम जी के पास जाऊंगी,
0: भाषा के प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं
1: जी जी आलोक जी।
0: लेकिन हम केवल ये कहना चाहेंगे कि राजीव गांधी जी ने किसी भी रूप में माफी मांगने से मना नहीं किया था। उनका बयान जो था वो बड़े पेड़ वाला, उसको भी तमाम तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है, और हमने तो 84 में जो हुआ उसके लिए संसद में भी माफी मांगी और संसद के बाहर भी माफी मांगी, हमने इमरजेंसी के लिए भी माफी मांगी। आज प्रधानमंत्री महोदय एक 15 साल की बच्ची को माफी मंगवाने के लिए कहते हैं, लेकिन अपनी सांसद जो पूरे के पूरे युवा पीढ़ी को गटर जनरेशन कहती है, उस पर किसी की हिम्मत नहीं है कि 2 शब्द बोल दें।
1: ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर मैं नीलम जी आपके पास आ रही हूं।
2: बस इस

स्पेसिफिक में तीन पॉइंट। स्वांग रचना किसे कहते हैं बहुत स्पष्ट है, झारखंड की सरकार में भागीदार है, गठबंधन में बड़े भाई हैं और कह रहे हैं हम तो समर्थन दे रहे हैं, हम तो वहां बैठे हुए। अरे भैया समर्थन जरूरत नहीं, आप सत्ता में एक फोन करिए और उनकी मांग पूरी करवा दीजिए। आप क्या जवाब दे रहे हैं? अगर हाई कोर्ट फटकार लगाएगा तो हम इस पे करेंगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूं भाई साहब, ये पंजाब में आप तो पूरा आंदोलन कर रहे हैं आम आदमी।

0: आंदोलन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, हम भी विरोध कर रहे हैं, आप भी, तब तो आप नहीं कह रहे हैं पंजाब में हाईकोर्ट फटकार लगाएगा तब हम इस्तीफा मांगेंगे। ये होता है, पंजाब में सीधे मांगेंगे, दिल्ली में हल्ला मचाएंगे, वहां कहेंगे सत्ता में रहकर भी हम साथ में हैं, हम विरोध में नहीं है। यही जो आपकी जो सोच है ये बच्चों के सामने बहुत साफ साफ उजागर हो जाती है कि आपकी वास्तविक सोच क्या है और आप किस प्रकार का दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर वास्तविक संवेदनशीलता है तो वो राज्य दर राज्य और वह परिस्थिति दर परिस्थिति और वो मंत्री दर मंत्री बदल नहीं सकती, वो एक ही रहना चाहिए। जैसे आप लोग चुनाव में भी कहते थे, झारखंड में तो चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया था, कर्नाटक में अच्छा काम किया था, बाकी जगह गड़बड़ किया था, वैसे ही झारखंड में संवेदना अलग है, कर्नाटक में संवेदना अलग है, पंजाब में संवेदना अलग है, दिल्ली में संवेदना अलग है।
1: चलिए अब जवाब इसका आप दें, उससे पहले एक बार नीलम मिश्रा जी के पास चलते हैं। नीलम जी, आपकी सरकार हेमंत सोरेन जी खुद शिक्षा मंत्री भी हैं, क्यों नहीं बात करने की कोई पहल हो रही है वहां पर छात्रों से? और आलोक जी कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन छात्र तो नहीं हट रहे हैं वहां से। भाई छात्र तो लगातार लगे, और मतलब उनकी बातें आप सुनिए तो बहुत पीड़ा में वो भी है, लगातार इतने दिनों से छात्र बैठे हैं। नीलम जी
2: देखिए अंजना जी, छात्र कहीं के भी हो, झारखंड के हो, जंतर मंतर के हो, या देश के किसी भी कोने के हो, छात्र छात्र होते हैं, उनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से छात्रों के मुद्दों को लेकर के राजनीतिकरण किया जाता है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बातें हैं। और जहां तक मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी डे वन से किस तरह से संवेदनशीलता के साथ छात्रों के साथ हैं, यही कारण है उनकी गंभीरता को देखिए, रातों रात उन्होंने CID का जांच बिठाया, JPSC कार्यालय में रेड पड़ता है, वहां के सारे दस्तावेज मतलब कब्जे में लिए जाते हैं, रातों रात JPSC के अध्यक्ष को इस्तीफा देना होता है, और अभी सभी JPSC के सदस्य जो हैं वो पूछताछ में लगे हुए हैं, पूछताछ उनसे चल रही है, 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको मैं बता देती हूँ कि जो मुख्य आरोपी है सुमन सौरभ, आंसू का नेता का बेटा है, यही भाजपा के गठबंधन। और आपको मैं बता दूं, अभी छोटी छोटी मछलियां अभी पकड़ाने दीजिए, बड़ी बड़ी मछलियां जब पकड़ाएगी ना तो भाजपा का असली चेहरा और एक बार सामने आने वाला है। यही उपद्रव मचाने वाले हैं झारखंड में, और देश में जहां भी उपद्रव मचता है उसके सब करता धरता यही लोग होता है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि झारखंड के अंदर JPSC को मतलब पीछे धकेलने वाले यही बाबूलाल मरांडी जी हैं। जब ये पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बनते हैं, पहला JPSC आंदोलन, पहला JPSC का जब एग्जाम होता है तो यही बाबूलाल मरांडी जी, इतना भ्रष्टाचार उसमें होता है कि अभी तक दिलीप प्रसाद सहित जितने भी लोग हैं उनके उनके साथ जेल के अंदर है, और उनके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो यह तो इन लोगों की हालत है। और इतने 16 सालों तक भारतीय जनता पार्टी झारखंड में शासन में रहने के बावजूद भी हार्डली हमको लगता है 4 से 5 JPSC एग्जाम करवा पाए। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने 6 साल के कार्यकाल में 5 बार 5 JPSC बैकलॉग JPSC एग्जाम दिलवा रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ये है इनकी गंभीरता और संवेदनशीलता, आपको ये समझना पड़ेगा। और किस प्रकार से CID का जांच चल रहा है, ताबड़तोड़ दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं, डिजिटल जांच हो रहा है, सारा चीज, आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। और मैं भाजपा के प्रवक्ता को यहाँ सुधांशु जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बड़ा यहाँ पर व्याकरण और गणित का ज्ञान दे रहे थे कि ये व्याकरण और गणित, बताइए ना ये कौन सा गणित है जो सोनम बांगचुक को आप लोगों ने चीन का एजेंट बताया, उसी सोनम बांगचुक को हॉस्पिटल में जाकर के आप भूख हड़ताल भंग करवाते हैं। तो आज तक किसी भी केंद्र सरकार को देखे हैं क्या कि चीन का एजेंट और पाकिस्तान का एजेंट देशद्रोही को जाकर के भूख हड़ताल तोड़वाता है? तो किस प्रकार का नैतिकता है, मतलब छात्रों के विषय में कोई नैतिक अधिकार भाजपा को है ही नहीं कि छात्रों के विषय में ये बात करें, सिर्फ नाटक नौटंकी करके पूरे देश में कैओस फैलाने का काम करते हैं। जंतर मंतर में क्या हुआ छात्रों के साथ, 23-23 दिन तक छात्रों पे लाठियां चलती है, वाटर कैनन, पैलेट गन, क्या व्यवहार हुआ, 2-3 लड़की वहां भी मरती है, 23-24 बच्चियां मर गई, उसके बाद भी कोई गंभीरता नहीं, और जंतर मंतर से झारखंड का तुलना किया जा रहा है।
1: नीलम जी एक सेकंड नीलम जी सुनिए, थोड़ा सा बीच में सुन भी लीजिए, काउंटर क्वेश्चन जब हो तो सुन लेना चाहिए। देखिए दो बातें हैं, एक तो छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर जब वो बैठे उनकी बात मानी गई, फिर वो आंदोलन कॉल ऑफ किया उन्होंने। आपके झारखंड में रांची में जो आंदोलन हो रहा है वो आपके गए उठाए कदम, उठाए गए कदम

0: अभी छात्र नहीं माने हैं, वो तो 10 तारीख को कह रहे हैं कि हम विधानसभा के लिए मार्च करेंगे। तो आपको जो बीजेपी पर हमला करना है उस पर आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं बता रही हैं कि आप लोग क्या करेंगे और आप लोग देवेंद्र महतो से बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो भूख हड़ताल पर है। या अगर सीएम साहब की बात हो गई है तो मुझे बता दीजिएगा, हो सकता है जानकारी ना हो।
1: सीएम साहब के साथ उनके नेतृत्व में सारी प्रक्रियाएं चल रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, छात्रों के साथ गलत नहीं होगा, हम लोग बिल्कुल छात्र के साथ है, पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ है, रिजल्ट देखने लायक होगा। और जो एक्शन लिया जा रहा है अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा वो ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक पूरे देश में ऐसा एक्शन लेने वाला मुख्यमंत्री नहीं मिला, जो रातों रात जेपीएससी में छापा मारते हैं, सीआईडी से छापा मरवाया जाता है, पूरे प्रशासन का इस्तेमाल कर
0: गिरफ्तारी। वही बात है ना नीलम जी, वही बात है कि देखिए यहाँ पर इतने दिनों तक ये लोग भी पेपर लीक पर आंख बंद करके बैठे रहे और फिर हालत ये हुआ कि बच्चों को सड़कों पर आना पड़ा। भाई आंखें बंद करके ही बैठे थे तभी तो ये हुआ स्थिति। आप लोग भी वैसे ही बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए नीलम जी, एक सेकेंड, ये कोई पहली बार तो वहां पर हो नहीं रहा है, आप भी जानती हैं रांची में कितने इस तरह के मामले होते हैं, हैं? हम लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है रांची की। आप मुझे बताइए कि अभय तिवारी कौन है मैम? अभय तिवारी जो कि कोई और नहीं, सीआईडी जिस अभय तिवारी का इशारा कर रही है, ये अभय तिवारी कौन है?
1: जी बिल्कुल, टीडीपीएल जो कंपनी थी उनको इन्हीं के देखरेख में वो टीडीपीएल कंपनी थी,
0: सोचिए।
1: और ये मुख्य आरोपी हैं
0: और ये गोड्डा जिले में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात है, सरकारी अधिकारी है मैम। और हैरानी की बात यह है कि यही सरकारी अधिकारी उस टीडीपीएल जिसका आप नाम ले रही हैं उसकी कंपनी से भी मिला हुआ था जो इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करा रही है। इसने बड़ी बड़ी परीक्षाएं निकाली हुई हैं सिर्फ पेपर लीक से, और ये सरकारी अफसर बना हुआ था। और ये सब तब हुआ जब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, फिर भी उसी कंपनी को काम। और यही से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई कंपनी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी तो फिर उसे दोबारा इतनी बड़ी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कैसे मिल गई। लेकिन धीरेंद्र जी अब आपके पास जल्दी आ रहे हैं, एक बार एक बोल ले वो, उसके बाद से सुधांशु जी आप और आलोक जी जवाब दीजिएगा। बड़ा सवाल यह है कि यहां पे ये हुआ इसलिए वहां पर होना रहे। भाई ये ऐसा मुद्दा है ना जिस पर हर सरकार को जवाबदेह बनना होगा, क्योंकि ये मतलब ये बहुत सालों का गुस्सा है छात्रों का जो निकल रहा है। धीरेंद्र जी,
2: अंजना जी देखिए, जंतर मंतर पे हुआ तब भी लोक जनशक्ति पार्टी ने चिंता करी और समाधान निकला। यहां पर भी हमारे विधायक गए हैं, देवेंद्र महतो जी के पास ही अभी वो होंगे, और उनका मत छोटी सी मांग है, सीआईडी पर उनको भरोसा नहीं, सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। तो कहां, वो तो बेचारे इतने अच्छे से मांग कर रहे हैं, क्या सत्ता के शीर्ष तक उसके कनेक्शन है, इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? महज आप किसी जो आरोप आप लगा रहे थे यहां पे, क्या इनके सत्ता में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री तक इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उनकी मांग अगर है कि सीबीआई से जांच हो, और ये भी देना चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, तो इसमें सरकार को सीबीआई जांच मांगने में क्या परहेज है? किसको बचाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी या वहां पे
0: इसका जवाब हम लेंगे। लेकिन उससे पहले खबर आ रही है जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं सीआईडी जांच रिपोर्ट पर फुल प्रूफ कार्रवाई करेंगे। पहले सुन लीजिए फिर सुधांशु जी आ रही है।
3: हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ वो है और किया है।
0: जो आवश्यकता होगा वो किया जाएगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, धीरेंद्र जी आप ही का सवाल पूछ रही हूँ आलोक जी से, ठीक है एक लाइन में पूरी कीजिए बात, पूरी कीजिए धीरेंद्र जी।
2: आज देवेंद्र महतो जी जिस विभूति का फोटो लेकर के बैठे हुए हैं चित्र, आज उनका पुण्यतिथि है, हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। क्या इतने छात्र आंदोलन से लेकर के हर एक आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं, आज आंदोलन के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, सेलेक्टिव होते हैं? तो सेलेक्टिव कहीं ना कहीं साजिश को जन्म देता है कि क्यों अगर एनडीए की शासित राज्यों में अगर परीक्षा लीक होती है या कोई इस तरह की बातें होती है तो ये लोग आंदोलन करने चले आते हैं। और रांची में ही तो आंदोलन हो रहा है, कोई कराची में तो आंदोलन हो नहीं रहा है कि उस पर कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी चुप बैठे रहे। सवाल मेरा ये है,
0: आलोक जी जवाब दीजिए इसका, और आलोक जी इस बात का भी कि छात्र अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं उनकी मांग माननी? भाई दिल्ली में भी मांग तो मानी गई ना उनकी, शब्दशः
4: देखिए, मैं समझता हूं कि छात्रों ने तो नीट के पेपर के बाद खुद ही थाने जाकर FIR कराई थी, वहां तो सरकार खुद कार्रवाई कर रही है। आपने जिस कंपनी का नाम TDPL का लिया और अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी का नाम लिया, वो भी अरेस्ट है, उसके 8 साथी भी अरेस्ट हैं, वहां पर JPSC के चेयरमैन भी अरेस्ट हैं, एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता भी अरेस्ट हैं। मैं समझता हूं अगर इस तरह की कार्रवाई नीट में NTA के ऊपर की गई होती तो बच्चों का इस तरह से गुस्सा नहीं फूटता। मैं कहता हूं वहां पर आप कह रहे हैं कि TDPL को के अधिकारी कोई थे, उसका कनेक्शन था वहां पर। मैं तो साफ कह रहा हूं विनीत जोशी की क्या भूमिका थी, जिनको HRD सेक्रेटरी से हटाया गया, इनोवेटिव व्यू कंपनी से उनका क्या लेना देना है, क्या CBI ने जांच की? तेलंगाना और झारखंड में नीट की परीक्षा वाली कंपनी इनोवेटिव व्यू 2 साल भी काम नहीं कर पाई, 1 साल में वहां से तेलंगाना और झारखंड से भगा दी गई, क्या ये सच नहीं है? मैं फिर कहूंगा कि आजसू का जो नेता है, जिसका बेटा, जिसकी OMR शीट लीक हुई है, जांच इस एंगल से भी हो रही है कि भाजपा ने कहीं जानबूझकर अपने नेता के बेटे से इस तरह का कांड तो नहीं करवाया है कि वहां की सरकार को हम बदनाम कर सकें। AK-47 तो नहीं चली कहीं पर भी, पैलेट गन तो नहीं चली वहां पर, 22 बच्चों ने सुसाइड तो नहीं किया। मैं समझता हूं दोनों को कंपेयर करना गलत है। वहां पर अगर एक्शन नहीं होगा तो हम भी आवाज उठाएंगे, हम छात्रों के साथ खड़े।
0: आलोक जी, छात्र आंदोलन खत्म नहीं कर रहे ना,
4: सरकार के खिलाफ बोलूंगा,
0: छात्र तो बैठे हुए ना आलोक जी, अगर आपका ये एक्शन काफी मानते छात्र तो वो आंदोलन खत्म कर देते।
4: मैं फिर कहूंगा कि अगर बच्चों के मन में अभी भी कोई चीज है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, और हमारे NSUI और यूथ कांग्रेस के लोग वहां पर उनके साथ बैठे, उनके भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताइए BJP के कौन से लीडर्स थे जो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने व्यवस्था की? किसने कहा कि ये बच्चे नहीं है वहां पर? यहां पर तो BJP के तमाम लीडर्स ने कहा बच्चे नहीं है, कोई कह रहा आतंकी है, कोई कह रहा पाकिस्तान फंडिंग है, कोई चाइना फंडिंग है, कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा था। आपके आज तक चैनल पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला जिनके प्रमाण नहीं थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लग गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जंतर मंतर पर। तो BJP वालों ने हर तरह से उनको बदनाम करने का प्रयास किया। हम छात्रों के साथ खड़े।
0: क्या, जी मैं वादा क्या आंदोलन
4: जो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बोलूंगा,
0: कब
4: अगर एक्शन नहीं होगा तो?
0: अच्छा,
4: अगर एक्शन नहीं होगा तो सबसे पहला व्यक्ति होगा। 21 जून का पेपर हुआ, नीट का पेपर, उसमें फिर धांधली हुई
0: एक्शन के नाम पे। आपको क्या चाहिए आलोक जी?
4: उसके
0: एक्शन किसको माना जाएगा? आपने कहा कि एक्शन नहीं होगा तो मैं बोलूंगा हेमंत सोरेन के खिलाफ, एक्शन किसको माना जाएगा?
4: मैं देखिए अगर ऐसा होगा कि इनमें से जितने लोग अरेस्ट हुए हैं अगर इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होगी जैसे BJP के शासनकाल में यहां पर CBI ने किया, जरूर बोलेंगे। इनको सजा नहीं होगी, जरूर बोलेंगे। अगर मुखिया को, संजीव मुखिया को जिस तरह से बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दी, अगर वहां पर किसी को मिलेगी तो हम जरूर बोलेंगे।
0: ठीक है, और संसद में भी बोलेंगे, संसद में भी मुद्दा उठाएंगे।
4: किया है ना,
0: संसद में भी उठाएंगे,
4: हो चाहे कोई भी हो,
0: संसद में भी
4: बिल्कुल संसद में ही मुद्दा उठाएंगे।
0: सुधांशु जी,
4: सबसे पहले मैं आज तक उठाऊंगा अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो।
0: ठीक है सर, अच्छी बात है सुधांशु जी। और ये आरोप BJP पर लगातार लगता है, क्योंकि देखिए अब तो जिस तरह का भी आंदोलन हम देखते हैं वो सोशल मीडिया पर एक पूरी जंग छिड़ती है, अपना अपना नैरेटिव चलता है, लेकिन उसमें आपके जो क्रेडिबल लीडर्स हैं, जो आपकी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं या फिर सांसद भी हैं, वो मतलब आरोप ये लगता है कि आप लोग डिसक्रेडिट करना शुरू कर देते हैं कोई भी आंदोलन हो, कि भाई ये गलत लोग हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं है, इस पर ज्यादा फोकस चला जाता है, इस पर जवाब दीजिए।
5: अब बिल्कुल हम इस बात को सप्रमाण बोल रहे हैं। देखिए, संवेदनशीलता के साथ संवाद क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने क्या किया, JP नड्डा जी जो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक है, राज्यसभा में नेता सदन है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जितेंद्र सिंह जी जो PMO में राज्य मंत्री है, इन दोनों ने जाके बात की। मैं चैलेंज करता हूं, कौन गया है भाई बात करने के लिए? उस स्तर का कोई व्यक्ति गया है जो JMM में अध्यक्ष रहा हो अथवा वो मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि मंत्री बन के गया हो? और एक नहीं, दो नहीं, 3 राउंड बात किया। इवन उन्होंने ये कहा कि वो सरकारी स्थान पे नहीं आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन तब में जाके बात किया। ऐसा कोई संवाद दिखाई पड़ा है? नहीं दिखाई पड़ा है। अब मैं बताना चाहता हूं, सर आपने रिटर्न पे बोलिए, स्वांग किसे कहते हैं जो गठबंधन में शामिल हैं, उन्हें विरोध करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो गठबंधन से वापस बाहर आना चाहिए। तीसरा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, अभी देखिए आलोक जी बोल रहे थे गटर जनरेशन और ये सब वाक्यों पे, जिस पे कि हम लोग बिल्कुल उसको उचित नहीं मानते हैं, मगर अभी जेएमएम की प्रवक्ता ने और खुद आलोक जी ने उनको राजनीतिक भी कह दिया, उनको उपद्रवी वर्ड कहा गया, उनको कहा गया कि वो बवाल कर रहे हैं, वो बीजेपी के टूल हैं, फलाना ढिमाका, सब कुछ कह दिया गया, मगर मुंह पे शटर लगा के गटर के अंदर चले गए, कुछ नहीं बोला। अब जो नैरेटिव की बात कही गई, अंजना जी तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ वीडियो दिखाई पड़े, इतने घनघोर अश्लील वीडियो, उसके बाद क्या किसी को कुछ कहने की जरूरत क्या थी? और अब तो उसमें बातें सामने आ रही हैं, उसमें तो कोई छात्र था ही नहीं, जो अंट शंट भद्र अभद्र कितनी गंदी भाषा का प्रयोग सबके लिए कर रहे थे, अब जो जो चीजें सामने आ रही हैं तो वो तो थे नहीं। और एंटी नेशनल कौन कहता है? आलोक जी जरा कान खोलिए और सुनिए, और मैं जेएमएम की प्रवक्ता से भी कहना चाहता हूं, सोनम वांगचुक पे हमने आरोप नहीं लगाया था, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ ले उसने लिखा है यूपीए सरकार में 28 फरवरी 2007 सोनम वांगचुक को लेटर लिखा है। पॉइंट नंबर 4 कहता है You have been anti-national connections in China and other places which have been or may be exploited for anti-national activities. आलोक जी कान खोल के सुनिए, आपकी सरकार ने लिखत पढ़त में लिख के दिया है 28 फरवरी 2007 पुलिस का लेटर सोनम वांगचुक का, उसका पॉइंट नंबर 4। अब बताइए, हमसे कहते नैरेटिव बनाते, वाह भैया खुद तो लिखत पढ़त में किसी को भी एंटी नेशनल कह देते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं। अब यही देखिए गठबंधन में शामिल होकर कहते हैं हम विरोध करेंगे, इसे कहते नूरा कुश्ती, इसे कहते नूरा कुश्ती कि गठबंधन में रहकर हम सरकार में भी शामिल रहेंगे और दिखाने के लिए विरोध करेंगे। इसी दोहरे चेहरे की वजह से कांग्रेस की निरंतर दुर्गति हो रही है।
4: देखिए दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब पैलेट गन चल गई, दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब संसद का घेराव दिखाई दिया, दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब पूरी तरह से सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में चले गए, जो केंद्रीय मंत्री जब गए जब दर्जनों पुलिस वाले भाई भी हमारे जख्मी हो गए, दो केंद्रीय मंत्री जब जागे जब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल एम्स चला गया, जब जागे वो जब पूरी तरह से अव्यवस्था फैल चुकी थी। इसलिए क्रेडिट लेने का प्रयास मत कीजिए, इसी को स्वांग कहते हैं। और स्वांग ये होता है कि मन की बात करो और 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, स्वांग की बात ये होती है कि एक दुकान बनाओ जबरदस्ती झालमुड़ी की और 5 दिन तक झालमुड़ी के ऊपर बातचीत करते रहो, स्वांग ये होता है कि विदेशों में जाकर मेलोडी पे बात करो और यहां पर अपने बच्चों के लिए कहो कि माफी मांगो, इसको स्वांग कहते हैं। अराजक हमने पहले का भी शब्द कहा इस्तेमाल, आपके लोगों ने अराजक कहा, आपने अभी कहा उसमें बच्चे नहीं थे, मैंने एक बार भी उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अभद्र भाषा का जो प्रचलन है, जो ये वायरस है, ये बीजेपी की फेक फैक्ट्री से आया है। अभद्र भाषा का उपयोग मोदी जी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर किया है। अभद्र भाषा किसको कहते हैं वो जरा सुन लीजिए। अभी आपके जो पूर्व सांसद हैं, 2 दिन पहले पंचर बनाने वाले बच्चे थे, आपने सारे के सारे बच्चों को पंचर बनाने वाला बच्चा बता दिया, इसको अभद्र भाषा कहते हैं और किसी के मुंह से शब्द नहीं निकला। सोनम वांगचुक के अधिकारी ने क्या लिखा, क्या वो न्यायालय में सिद्ध हो गया? आपने तो उसको जोधपुर जेल में डाला था, क्या कोई दो अधिकारी उनसे जोधपुर जेल में मिलने गए थे? मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, क्या कोई दो अधिकारी सोनम वांगचुक में, एक मिनट, क्या सोनम वांगचुक से मिलने के लिए केंद्र सरकार के दो अधिकारी गए थे? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या उनको किस शर्तों पर छोड़ा गया, क्या कोई डील हुई थी जोधपुर जेल में, क्या कोई गया था कि नहीं गया था, क्या उनकी पत्नी गीतांजलि साथ थी कि नहीं साथ थी? मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन ये बता दीजिए कि चीन का एजेंट किसने कहा था, बीजेपी के आपके लीडर ने कहा था? एंटी नेशनल अगर किसी अधिकारी ने कहा तो उससे पूछिए, आपने एंटी नेशनल कहा था एक व्यक्ति को, उसको जमानत दे दी हमने, आपने किस आधार पर एंटी नेशनल कहा था? और अगर एंटी नेशनल थे वो, आपके अधिकारी ने लिखा था पेज नंबर फला और पॉइंट नंबर फला पे, तो प्रूव क्यों नहीं कर पाई आपकी सरकार? क्यों? क्योंकि आप लोग स्वांग रखते हैं।
5: अरे भैया सुनाई नहीं पड़ता, 2007 का लेटर
4: आप लोग
5: कर रहा हूं भाई।
4: इसको पहले डिनाई करो, फिर डाइवर्ट कर दो, फिर इसको तमाम चीजों को बदल दो, यही आप लोगों का धंधा रहा है। आपका कोई जो आंदोलन हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, एनआरसी का हो, सीएए का हो, सबको कालसपोत दो, बस भाजपा बहुत अच्छी है बाकी पूरा देश खराब है, इस धारणा पे मत चलो। जैन जी ने आपको आईना दिखाया है, अब बात बात तुलना करना, और अभी भी आपने सुधांशु भाई ये कहा कि जो भी बच्चे थे वहां पर वो विद्यार्थी नहीं थे, या आप फिर दोबारा से विद्यार्थियों का अपमान कर रहे हैं। मैं बेहतर समझता हूं कि आप अपने वाक्य को वापस लें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो 10 एक्शन गिनवा दिए कि हमने क्या क्या एक्शन लिया, हमने एग्जाम कंट्रोलर तक को नाम बता रहा हूं जेल में भेज दिया। आपने एनटीए के एक चिड़िया के बच्चे को नहीं पकड़ा, कारण क्या था, एनटीए में सारा बीजेपी और आरएसएस भरी पड़ी है।
0: ठीक है, जवाब दीजिए इसका। सुधांशु जी
4: करके सुधांशु जी, एनजीओ एनटीए नाम की बनाई,
0: एनटीए को इतना सुरक्षित, इतनी सुरक्षा कवच आप लोगों ने क्यों दी, जो एनटीए का फेलियर था ना सुधांशु जी, क्लियर फेलियर था या नहीं एनटीए का, आप ही मेरी बात का जवाब दीजिए।
5: नहीं नहीं सुनिए, पहली बात, आलोक शर्मा को इतना सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई। मैंने 28 फरवरी 2007 का लेटर कोट किया है और यहां भी हमसे कह रहा है कि आप अधिकारी से पूछिए। अरे शर्मा नहीं चाहिए इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। 20 फरवरी 2007 को किसकी सरकार थी?
4: अरे भाई आपने तो जेल में डाला था उनको,
5: कुछ भी आकर अनशन बोला।
4: कौन कौन सी धाराएं लगाई थी हमारे समय में? तो केवल चिट्ठी
5: हद होती है यार।
4: मैं फिर कहूं,
5: दूसरा मैं कहूं,
0: आलोक जी उन्होंने धाराएं लगाई थी, एक सेकंड, सोनम वांगचुक पर उन्होंने धाराएं लगाई थी, इसलिए आप लोग देवेंद्रनाथ महतो से बात नहीं करेंगे। ये यहाँ फिर आप भी व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं, देवेंद्रनाथ महतो से जाके बात क्यों नहीं करते? वो भूख हड़ताल पर है, उनकी जिंदगी की कीमत है या नहीं है?
4: अंजना जी मैंने नहीं कहा 2007 शब्द मैंने नहीं सुना था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन
0: ठीक,
4: क्या उनके ऊपर क्या एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे हुए कि नहीं हुए यूपीए की सरकार में? क्या उनको जोधपुर जेल भेजा गया कि नहीं भेजा गया? क्या उनके ऊपर तमाम संगीन से संगीन धाराएं लगाई गई कि नहीं लगाई गई? क्या 3 महीने तक उनकी पत्नी घूमती नहीं रही कि मुझे मिलवा दो किसी तरह से? क्या उनकी पत्नी जब दिल्ली आती थी उसके पीछे सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घूमते थे कि नहीं घूमते थे? तमाम अखबारों ने और तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया है, क्या यह सच है कि नहीं है? और उसके बाद सोनम वांगचुक चीन के एजेंट हो गए, और जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया तो सोनम वांगचुक जी हो गए, और फिर जब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो गया तो श्री सोनम वांगचुक जी हो गए। वो दुर्भाग्य यह है कि आप बच्चों की मूल समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। एक बुक है 7 Spiritual Laws of Success, उसमें लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस है कि पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि वास्तव में पेपर आउट हुआ है, एनटीए इन्वॉल्व है, एनटीए में हमने गलत लोगों को भर्ती किया है, उनको बाहर करते आप 2024 में। एक व्यक्ति जो जोशी साहब महाराज, वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़
0: में कांड करके आया है,
4: उनको आपने यहां बैठा दिया।
0: लेकिन आज जवाब नहीं दे रहा
4: है, पेटिशनर था।
0: अरे महतो जी से बात क्यों नहीं कर रहे सर?
4: बच्चों के साथ सरेआम घपला अप्रूव हुआ,
0: महतो जी से बात क्यों नहीं कर रहे?
4: बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पहले एक्शन तो ले लें, पहले एक्शन तो ले लें।
0: अच्छा, मैं सुधांशु जी जवाब
4: दिए जा रहे हैं,
5: देखिए मैं सिर्फ फैक्ट से बात करता हूँ। पहली बात ये आलोक शर्मा को पता नहीं आज क्या हो गया, झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। मैंने कब कहा कि छात्र लोग नहीं थे? मैंने कहा जो गाली बकने वाले छात्रों के वीडियो आए उसमें से तमाम के बारे में अब ये जानकारी आ रही है कि वो छात्र नहीं थे। और आलोक शर्मा जी कान खोल के सुनो, 23 जुलाई को 9:30 का सोनम वांगचुक का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा आई एम फीलिंग पेन बिकॉज एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव एंटर्ड इन दिस। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहे थे। अब बताओ भाई साहब, आपके मन में तो बड़ी संवेदना थी, ये क्या जाएंगे? अरे राहुल गांधी जंतर मंतर पे नहीं गए,
4: बहुत अच्छे हो,
5: वहां पे क्या जाएंगे? केवल छात्रों को मोहरा बना के राजनीति करनी है। और
4: अच्छा,
5: संवेदना क्या जबरदस्त है। 22 दिन से अनशन चल रहा था मगर राहुल गांधी अज्ञात धरती के अज्ञात कोने में कहीं विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, अचानक 3 दिन पहले अवतरित होते हैं, धरना स्थल पे नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास के सामने लोटपोट होते हैं, फिर गांधी स्मृति के पास जाकर एक नाटक करते हैं, फिर इंदिरा भवन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो भाई 20 दिन कहां थे भाई, ना एक ट्वीट, ना जवाब, ना कुछ, अचानक सारी संवेदना संसद के सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले आ जाती है और उसमें भी छात्रों से कोई संवाद नहीं होता।
0: ठीक है, छोटा सा जवाब उसके दोनों को दिखा दीजिए, धीरेन जी को।
4: देखिए मुझे लगता है, बिल्कुल मैं समझता हूं बिल्कुल पूरी तरह से, अगर उन्होंने एंटी सोशल कहा, एंटी सोशल लोग घुस गए हैं, तो पहले वाला जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जिसको रातों रात आपने हटा दिया, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उसको रातों रात हटा दिया, दूसरे को ले आए और उससे टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लिए होंगे कि कल बच्चों को पीटना है, और उसने अगले दिन आके 2 दिन बाद आके अपना कांड करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी तो छात्रों की गूंज कर रहे थे, राहुल गांधी तो उन पीड़ित बच्चों के परिवारों से मिल रहे थे, राहुल गांधी तो जिन बच्चों के ने सुसाइड किया उनके मां बाप की आवाज को जनता तक पहुंचा रहे थे। आप लोग क्या कर रहे थे? आप में से कोई 22 बच्चों ने सुसाइड किया, क्या बीजेपी का एक लीडर की हिम्मत नहीं हुई? क्या स्टेट का, सेंटर का कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सांसद, कोई मंत्री, क्या कोई उनके यहां पर घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपके मन में चोर था, आप अहंकारी थे, आपके मन में आज भी अहंकार है। अहंकार नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन जिस तरह से क्रश किया आप लोगों ने, ऐसा नहीं होता। मजबूरी में आप लोगों ने जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, अगर अहंकार नहीं होता तो मोदी जी को रील बनाकर 12-12 बजे नहीं डालनी पड़ती। आज आरएसएस और बीजेपी चाह रही है कि युवा पीढ़ी हमारे साथ आ जाए, नहीं आएगी। वो समझ चुकी है आपको, वो देख चुकी है आपको कि पैलेट गन जिस बच्चे को लगी क्या वो भी छात्र नहीं था, क्या वो भी एंटी सोशल एलिमेंट था? ये नैरेटिव चलाना बंद कर दीजिए आप लोग। पुलिस और प्रशासन से मिलकर जो आप लोग नैरेटिव चलाते हैं,
0: सुधांशु जी,
4: एंटी सोशल था, इसलिए था, वैसा था, ऐसा था, ये बंद कर दीजिए। यही गुजरात मॉडल है आप लोगों का। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम क्या आपके राज्यों में?
5: अहंकार खड़गे जी के बयान के बावजूद इन्हें अहंकार नजर नहीं आ रहा। मैं सीधे आपको फैक्ट बता देता हूं, कोई नैरेटिव नहीं। अंजना जी, हकीकत क्या है? जब 2016 से पहले नीट नहीं होता था तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेजों में सीटें नीलाम होती थी, अंडर ग्रेजुएट की एमबीबीएस की 25 लाख से 50 लाख में, और पोस्ट ग्रेजुएट की 50 लाख से 1 करोड़ में, जिसमें ज्यादातर इन्हीं के संरक्षित सांसदों के और नेताओं के कॉलेज थे, सैकड़ों करोड़ हर साल कमाते थे। अब ऐसे ऐसे बच्चों को मिलने लगा है एडमिशन जो उस समय कल्पना नहीं कर सकते थे कि 25 लाख 50 लाख दे के करेंगे। ये मूल कारण है जिसकी वजह से सैकड़ों करोड़ हर साल की जो कीमत कम हुई, जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था तन बदन में आग लगना शुरू होगा, यहाँ तन बदन और धन में आग लगी हुई है।
0: अरे पर एनटीए इसलिए थोड़ी बनाया गया था सुधांशु जी, सुधांशु जी, अगर सीट्स की, सुधांशु जी,
5: ये उस जमाने में नहीं संभव था। असली कारण ये है, असली कारण धन है।
0: सुधांशु जी, सीट्स की नीलामी रोकने के लिए
5: जुड़ा हुआ मन नहीं है केवल
0: अपना। सुधांशु जी एक सेकंड सर, सीट्स की नीलामी रोकने के लिए आपने एनटीए बनाया, ठीक है? आप ही कह रहे हैं कि हमको व्यवस्थित करना था, पूरा एक टेस्टिंग एजेंसी बनानी थी, लेकिन उस एनटीए की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय की गई? जो एनटीए फेल हुआ, नीट की परीक्षा बार बार हर साल लीक हुई, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी सेट की गई? एक सिंपल सवाल है सर मेरा।
5: बहुत साफ आपने पूछा, आपने कहा नीट की परीक्षा बार बार लीक हुई, 2024 में लीक हुई, इस बार क्या हुआ? टेक्निकली लीक नहीं हुआ, लीक वहां होता है कि जहां क्वेश्चन पेपर सेट हुआ वहां से जहां प्रिंट होने गया, प्रिंट होने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर गया, बीच में लीक होता है। यहां तो सेटिंग करने वाले ने लीक कर दिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, जो कल्पना से परे था। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज जजमेंट प्रोनाउंस करता है तो यह माना जाता है कि जजमेंट जिस दिन ऑफिशियल अनाउंस होगा उससे पहले वह गोपनीय रहेगा। अब जज ही लीक कर दे तो खैर, अब सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है कि ऐसा ना होने पाए, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं।
0: आलोक जी,
5: आज जो दिख रहा है उसके प्रति संवेदनशीलता ना होकर कौन राजनीति कर रहा है, कर्नाटक से लेके पंजाब से लेके झारखंड तक, अब साफ दिखाई पड़ रहा है।
0: ठीक, चलिए वक्त इतने की इजाजत देता है। हेलो, एक बार दिखा दीजिए भाई 10 सेकंड, वो कुछ कहना चाहे, सिर्फ एक लाइन आलोक जी, टाइम खत्म हो चुका है मेरा एकदम। आलोक जी,
4: मैं सीबीएसई, बिल्कुल एक लाइन, मैं कहता हूं कि 2016 से पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती थी, मैनेजमेंट सीट थी, 14.5 लाख फीस थी, आज 1 करोड़ के करीब फीस है, मैनेजमेंट सीट आज भी है। और 2013 में हमने कहा था
0: ये बहस अनंत है, लेकिन झारखंड के बच्चों की भी सुध लेनी चाहिए, और वहां पर भी अगर देवेंद्र महतो बैठे हुए अनशन पर तो उनसे भी बात होनी चाहिए। छात्र कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, ये उनकी मांगे, जो भी है उनसे बातचीत करके निकाला जा सकता है। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि बार बार विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन कैसे इस बार एक महिला के अपमान पर गिरफ्तार हो गए, और इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर रांची के जंतर मंतर में दिल्ली वाले आंदोलनकारी गायब क्यों है। देखते रहिए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: आगे आगे,
9: अरे उधर
8: उधर, करेक्ट करेक्ट, मिल गया।
9: आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
11: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
10: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक, the mustard specialist since 1933.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुमा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। दो अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के ओएमआर शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूटा था। इसे लेकर बीजेपी और जेडीएस ने प्रियंक खड़गे को घेरने की कोशिश की, उनसे इस्तीफे की मांग हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रियंक खड़गे ने जो कहा उसके बाद बीजेपी ने छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठा दिया है। प्रियंक खड़गे का दावा है कि भर्ती परीक्षा के सवालों का नंबर और ओएमआर शीट में नंबर बेमेल होने का आरोप सिर्फ कुछ छात्रों की गलतफहमी थी, इसलिए जो लोग ओएमआर शीट के साथ एग्जाम हॉल के साथ बाहर गए वो अपनी जिम्मेदारी पर गए। सरकार की जिम्मेदारी उन छात्रों के लिए थी जो एग्जाम दे रहे थे। इन्हीं दलीलों के साथ प्रियंक खड़गे कर्नाटक में पेपर लीक या भर्ती घोटालों के आरोपों पर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आए। प्रियंक खड़गे का ये जवाब ऐसे समय में है जब नीट पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा हो चुका है। देश के शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटालों के आरोपों पर झारखंड में छात्रों का 11 दिनों से धरना जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 अलग अलग टेंट्स में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच जैसी मांगों के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मशाल मार्च निकाल रहे छात्रों को खाने पीने जैसी मदद के साथ कुछ वॉलंटियर, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए हैं। लेकिन आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। पेपर लीक या परीक्षा में धांधली कहीं हो, देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी है। लेकिन कर्नाटक, झारखंड साथ ही साथ पंजाब में पेपर लीक के मसले पर विपक्ष की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: झारखंड के आंदोलन में आखिर क्यों वो आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं जो जंतर मंतर पर सबसे प्रखर थी, इसी पर आज आप हल्ला बोल में बहस देख रहे थे। अब हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, देखिए 7 तक नेहा के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राहुल गांधी ने पीएम मोदी से लेकर संघ को घेरा, कहा छात्रों को माफ करने वाले कौन होते हैं प्रधानमंत्री, आरएसएस की विचारधारा को बताया खतरनाक। मदरसों को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, कालिम फाजिल की नहीं मिलेगी डिग्री, अब होगी सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को कांग्रेस ने कहा गूंगी गुड़िया, भड़की एनसीपी, फडणवीस शिंदे ने महिलाओं के अपमान से जोड़कर साधा निशाना। देश से भागे अपराधियों पर सख्त हुई सरकार, 7 साल में 36 देशों से लाए गए 274 भगोड़े, गृहमंत्री बोले ये वैश्विक कूटनीति और खुफिया तालमेल की सफलता है। भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया। शो की शुरुआत यूपी विधानसभा के साथ करेंगे, जहां पर जबरदस्त हंगामे के बीच विधानसभा में दूसरे दिन भी यही स्थिति रही। विपक्षी विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पहले विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और फिर सदन के भीतर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए, जिसके बाद स्पीकर भड़क गए।
1: यूपी विधानसभा के बाहर हंगामा बरपा है, समाजवादी पार्टी के विधायकों के हाथ में तख्तियां हैं, किसी के हाथ में चढ़ावा चोरी के आरोपों की तख्तियां हैं, किसी के हाथ में पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश। लेकिन हंगामा तब ज्यादा बढ़ गया जब सदन के भीतर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सीएम योगी का ये पोस्टर लहराया। इस पोस्टर पर जबरदस्त बवाल हुआ।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। नृपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है।
1: समाजवादी पार्टी के आरोपों पर सीएम योगी ने पलटवार किया कि एसआईटी की रिपोर्ट में किसी भी संत महंत का नाम चढ़ावा चोरी से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें और अयोध्या को बदनाम न करें।
3: इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया।
1: मगर हंगामा शांत नहीं हुआ, सदन के भीतर एसपी के एक और विधायक ने योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए तो स्पीकर भड़क गए, उन्हें पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया गया।
4: आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, देखिए उसको नीचे, यू कैन डू दैट। मैं इंगित करता हूँ सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया, ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर, इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है, चलिए।
1: स्पीकर सतीश महाना इतने क्रोध में थे कि उन्होंने एसपी विधायक की सदस्यता भी रद्द करा देने की बात कही।
4: सचिन आप बाहर चलिए, मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आप चलिए यहाँ से बाहर।
1: इन तमाम हंगामों के बीच यूपी सरकार ने 2026-27 के लिए खजाना खोला है, सरकार ने 59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के भीतर चढ़ावा चोरी को लेकर नारे लगाने लगे, इस दौरान जब विपक्षी विधायकों ने चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए तो स्पीकर ने विधायकों से पूछ लिया कि आपने राम मंदिर में कितना चंदा दिया है, और अगर चंदा दिया है तो उसकी रसीद दिखाइए।
4: मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे, मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रशीद देकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रशीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है, जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए।

0: प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तब।
1: तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान एक और सरकारी बयान विवाद की जड़ बन गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि मदरसा चाहे कहीं का भी हो वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है। केशव का बयान ऐसे वक्त आया जब समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव ने पलटवार किया है।
2: मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
3: यूपी चुनाव से पहले मदरसे पर केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने यूपी की सियासत में एक बार फिर धर्म का तड़का लगा दिया है।
4: भारतीय जनता पार्टी पालती है और उन्हीं के दफ्तरों में मिलते हैं ये आतंकवादी सब। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को ट्रेनिंग देती है, उन्हीं के दफ्तरों में, उन्हीं के घरों में मिलती है।
5: ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है के बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी।
6: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें आईटीआई की परमिशन दें, लेकिन सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है।
3: केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान इसलिए विपक्ष के निशाने पर आया है क्योंकि यूपी सरकार मदरसा शिक्षा से जुड़े संशोधनों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक की पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। खबर है कि यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
7: हवा खराब हो चुकी है, आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
3: पहले अली जौहर यूनिवर्सिटी और अब मदरसे की डिग्री, चुनाव से पहले शिक्षा पर धर्म के तड़के ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: वहीं संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर रावा चोरी मामले को लेकर आज भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। लोकसभा के बाहर विपक्षी सांसदों ने दान पात्र रखकर चढ़ावा चढ़ाया तो राज्यसभा में चढ़ावा चोरी के मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू पर जोरदार तकरार देखने को मिली।
8: संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों का जमावड़ा है, सबके हाथ में अलग अलग तरह की तख्तियां हैं, मगर सबका सवाल एक कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब कब देंगे। विपक्ष के सांसदों ने आज भी राम मंदिर दान पात्र का प्रतीकात्मक पात्र रखा हुआ था। विपक्ष के सांसद इसमें चढ़ावा चढ़ा रहे थे और संदेश दे रहे थे कि कैसे राम धन चोरी हुआ।
9: इस समय मकर द्वार यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर सारी विपक्षी पार्टियाँ एकजुट होके गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं इस तरीके के नारे लगा रही हैं और पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। पीछे दान पात्र जो आपको नजर आ रहा है वो दान पात्र है जिसमें रोज पैसा इकट्ठा होता है। लगातार एक हफ्ते से समाजवादी पार्टी और सारी विपक्षी पार्टियां इस तरीके का दान पात्र लाती हैं, यहीं पर बैठ के गिनती की जाती है और ये कहा जाता है कि ये जो पैसा है ये अयोध्या मंदिर में जाके दिया जाएगा।
8: इधर लोकसभा में संसद के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उधर राज्यसभा में भी चढ़ावा चोरी को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेर रहे थे तो किरेन रिजिजू उन पर पलटवार कर रहे थे।
10: ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के विषय है, इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का सेवा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए,
11: मानते नहीं है आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है, ये भगवान राम का विरोधी है।
12: भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दुनिया में आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते।
8: जिस दिन से मानसून सत्र शुरू हुआ है उसी दिन से चहाबा चोरी को लेकर बवाल मचा हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे लगता नहीं कि ये मुद्दा फिलहाल थमने वाला है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात उपचुनाव के नतीजों की, जिसे लेकर अब सियासत तेज है। बांदीपुर और दतिया में बीजेपी की हार को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अब हार पर मंथन कर रही है।
13: बांकीपुर और दतिया के चुनावी नतीजों ने जहां विपक्ष को नई ऊर्जा दी है, तो वहीं बीजेपी को अब आगे की रणनीति पर मंथन के लिए मजबूर कर दिया है।
14: साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में, और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है।
15: परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है।
13: आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पी के बीजेपी का वोट बैंक शिफ्ट होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह सम्राट चौधरी को सीएम बनाना बता रहे हैं।
16: राजनीतिक अहंकार से नाराज चल रही है बीजेपी के इस निर्णय से नाराज है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के इस कार्यशैली से नाराज है जहां विधायक मंत्री बस बैठा रहता है और 5 वर्ष के बाद मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है, लालू जी का डर दिखाकर वोट मांगता है। अगर आप मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व तो आपको स्वीकार्य नहीं है, तो यही मौका है आपके पास, आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, मोदी जी को खबर होगी। और आज मैं समझता हूं कि मोदी जी को खबर हुई है कि 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है।
17: और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा दो बड़े चुनाव हारती है, एक MLC का एक MLA का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं।
13: निशांत जी का जन्मदिन। उधर नतीजों को लेकर विधायक अनंत सिंह नीतीश कुमार वाली थ्योरी दे रहे हैं।
18: नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, बिल्कुल जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छाई चीज नहीं लगा क्या हम वोट देंगे ककर नाम पर, अब ककरो कोई ले ले, ककरो बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया।
13: इस चुनाव में RJD के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई और मीसा भारती इसे बीजेपी की बी टीम की जीत बता रही है।
19: आप देखिए ना, जो हम लोगों ने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के असली उम्मीदवार यही है, तो बीजेपी की वहाँ हार कहाँ हुई है? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है और हमने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है एक तीर चला के कई जगह निशाने साध रही है।
13: उधर बांकीपुर और दतिया में बीजेपी का हार के बाद मंथन का दौर जारी है। पीएम मोदी ने बांकीपुर हार के बाद नीतीश कुमार और संजय झा से मुलाकात की, वहीं दतिया में हार के बाद पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, वहीं दतिया में हार की समीक्षा को लेकर बीजेपी ने 2 सदस्यों की समिति का गठन किया है।
20: फिर सुनना तो ये मैंने है कि मिठाइयां जीत की तरफ तो बटी बटी हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर भी मिठाई लड्डू बटे हैं, ये क्या कारण है?
13: बहरहाल विपक्ष इन नतीजों को आगे वाले चुनाव में उम्मीद के तौर पर देख रहा है, तो वहीं बीजेपी अपनी खामियों को दुरुस्त करने में लग गई है। आज तक ब्यूरो।
1: तमिलनाडु की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष और DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो हंगामा मच गया। उदयनिधि को गिरफ्तार कर लिया गया, अब जमकर बवाल हो रहा है।
13: एक्ट्रेस त्रिशा के खिलाफ उदयनिधि के बोल ने ऐसा बवंडर मचाया कि तमिलनाडु की सियासत में हड़कंप मच गया। ये सारा तमाशा सुबह करीब 8 बजे शुरू हुआ, जब उदयनिधि के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके तुरंत बाद पुलिस अधिकारी अरेस्ट वारंट लेकर आए और घर में दाखिल हुए। इससे पहले कि वो उदयनिधि तक पहुंच पाते, उनकी पत्नी ने पुलिस वालों को थोड़ी देर के लिए रोका। सुबह करीब 11 बजे उदयनिधि को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद भी उदयनिधि अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही विरोध और जवाबी विरोध भी शुरू हो गए।

0: कई शहरों में डीएमके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री विजय के पुतले जलाए।
1: It is totally wrong. He has not mentioned any word about the particular woman. No, it is all false. It is false.
0: AIADMK प्रमुख पलानीसामी ने भी विधानसभा सत्र से पहले उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की आलोचना की और तमिलनाडु सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना का आरोप लगाया। अब डीएमके ने उदयनिधि की जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पूछताछ के बाद उदयनिधि को रिहा कर दिया जाए। चेन्नई से प्रमोद माधव और अनघा केशव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: रबात मौसम की, जहां पहाड़ों पर मॉनसूनी तबाही मची हुई है, सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है इस वक्त, जहां कई जगहों से फ्लैश फ्लड की तस्वीरें आ रही हैं।
3: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, उसे इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बीच नाला पूरे उफान पर है, लहरें घरों के किनारों को छूती हुई तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर लोग बेहद डरे हुए हैं। दिलों में खौफ है कि कहीं सैलाब का प्रहार उनके मकान को ही नुकसान न पहुंचा दे।
4: मौसम विभाग ने कहा है कि ये सिलसिला जो है एक हफ्ता और जारी रहेगा, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती है। कहां पर ये फटेगा, कहां फ्लश फ्लड आएगा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही इसका जो इलाज है कि लोग सतर्क रहे।
3: अब बांदीपुरा की ही एक और तस्वीर को देखिए। लहरें किस तरह उफनाई हुई हैं और हाहाकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। कई इलाके भी इन लहरों के जद में आ रहे हैं। राजौरी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, फ्लैश फ्लड से यहाँ भी खतरा बढ़ा हुआ है। तमाम जगहों पर घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। गुरेज के कोरकबल इलाके में बादल फटने के बाद कुछ लोग लहरों के बीच फंस गए और कई मवेशी बह गए। वहीं पहलगाम में अचानक आई बाढ़ ने सड़क के कई हिस्सों को बहा दिया, जिससे पहलगाम का संपर्क प्रभावित हो गया है। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन बारिश के बीच इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: रबात शेयर बाजार की चार दिनों की लगातार बढ़त के बाद घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 210 अंक टूटकर 78,429 और निफ्टी 159 अंक की गिरावट के साथ 24,615 के स्तर पर बंद हुआ। FNO के लिए लागू किए गए नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा। इसके साथ ही मुनाफा वसूली और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव से निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। शेयर बाजार की कमजोरी के बीच रुपए पर भी दबाव बना रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.40 के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, घरेलू शेयर बाजार की कमजोरी और डॉलर में मजबूती के चलते रुपए पर दबाव रहा। हालांकि विदेशी निवेशकों की खरीदारी से इसकी गिरावट सीमित रही। वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा। सोना 381 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,42,938 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2,130 रुपए बढ़कर 2,19,417 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने और डॉलर में उतार चढ़ाव के बीच घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। और अब बात दुनिया भर की खबरों की, जहां शांति दूत का ड्रामा कर रहे पाकिस्तान की अब कलाई खुल गई है। ईरान के साथ शांति वार्ता में अब अमेरिका ने पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
5: बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया, बैक्ड बाय यूएई एंड बैक्ड बाय कतार इन पर्टिकुलर, बट अदर्स आल्सो, मेनी कंट्रीज कॉल्ड, मेनी द लीडर्स ऑफ मेनी आर फ्रेंडली विद अ लॉट ऑफ देम. Almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah.
6: जी हाँ, पहला नाम लिया सऊदी अरब का, दूसरा नाम लिया UAE का और तीसरा नाम लिया कतर का। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में शांति दूत बने घूम रहे पाकिस्तान का क्या हुआ? ट्रंप के बयान ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद शांति वार्ता में पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी पिछली शांति वार्ता में दी थी। वैसे सीज फायर को लेकर ट्रंप को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन ट्रंप का साफ कहना है कि उन्होंने ईरान को भयंकर तबाही से बचाने के लिए हमला न करने का फैसला लिया।
5: If I'm given a chance to...

0: I'm under no time constraint. You know, I don't happen to be running.
1: लेकिन आखिर कब तक? मीडिया ने जब ये सवाल दागा तो जवाब आया कि ये ईरान के लिए आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई राहत नहीं। अब देखना ये है कि बातों और मुलाकातों की ये ताकत मिसाइलों को कब तक रोक पाती है। आज तक ब्यूरो।
2: रबात चैंपियंस की घर वापसी, कॉमनवेल्थ गेम पे शानदार खेल दिखाने वाले दिग्गजों को अब जोरदार स्वागत से वेलकम किया जा रहा है अपनी घर वापसी पर।

0: वतन वापसी पर चैंपियंस का स्वागत जोरदार। कॉमनवेल्थ गेम्स में जुड़ोकाओं ने दिलाई कामयाबी अपार। ढोल नगाड़ा नाचना गाना और फूलों की बारिश। ग्लासगो में तिरंगे का मान बढ़ाने वाले भारतीय खिलाड़ी जब वतन लौटे तो उनका इस तरह भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के चाहने वाले भारी तादाद में मौजूद थे। अपने अपने मेडल के साथ निकले भारतीय खिलाड़ी स्वागत को देख कर भावुक हो गए। हर्ष सिंह के अलावा अस्मिता डे ने भी जूडो में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। उनका भी एयरपोर्ट पर धूम धड़ाके के साथ स्वागत किया गया। चैंपियन अस्मिता के संघर्ष की कहानी उन युवाओं के लिए मोटिवेशन के किसी टॉनिक से कम नहीं है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप भी सुनिए ग्लासगो में मेडल जीतते ही उन्होंने क्या कहा था।
1: देश के झंडा सब देशों के सामने ऊपर जा रहे थे और नेशनल एंथम बज रहे थे तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। मुझे बहुत गर्व फील हुआ था।
0: इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडोकाओं ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीते और इतिहास रच दिया। ये तो अभी आगाज है। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होने हैं। उम्मीद है कि ग्लासगो से शुरू हुआ स्वर्णिम सफर अहमदाबाद में कामयाबी के नए कीर्तिमान रचेगा। आज तक ब्यूरो।
2: तकतीक ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
7: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: at Sharda University. Where are you?
1: Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests.
2: Nobody expected that he would test within 3 months of taking over as Prime Minister.
3: Two more tests were conducted simultaneously on 13th May 1998.
2: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
4: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
5: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
4: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
6: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
4: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
7: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर।

0: दीपेंद्र जी, आपका कहना है कि हरियाणा चूंकि सबसे ज्यादा मेडल लाता है देश के लिए, तो हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट होने चाहिए थे। आपका ये कहना है, आपने सवाल उठाया कि गुजरात को क्यों चुना गया, हरियाणा को क्यों नहीं। तो
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल
0: आपको लगता है कि जो जो राज्य सबसे ज्यादा मेडल ला रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना मजबूत होगा कि वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स जैसा इवेंट होस्ट किया जा सके?
1: देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो मुझे गर्व है इस बात का कि भारत देश को ये मौका मिल रहा है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान देश के रूप में, हमें गर्व है। अब बात आती है कि अब पूरे देश में कहाँ, कौन से प्रदेश में इसकी मेजबानी की जाए। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, लगातार पिछले 15-20 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के देखेंगे, भारत के जितने मेडल आए पदक तालिका में, उनमें से 50% से ज्यादा मेडल, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाई खेल हो, 50% से ज्यादा भारत देश के मेडल हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लेके आए, जिन्होंने भारत माता की झोली को उन मेडलों से भरने का काम किया। ऐसे में जब ये प्रश्न आए कि कहाँ खेलों का आयोजन किया जाए, और आयोजन के लिए, केवल आयोजन नहीं है, आयोजन के लिए लाखों करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, वहां के खेल ढांचे को सुधारने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, स्टेडियम्स बनाने के लिए, रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो जब ये इतना बड़ा निवेश करने की बात देश फैसला कर रहा है, तो अगर ये निवेश हरियाणा में किया जाए, तो भारत माता की झोली और ज्यादा हमारे खिलाड़ी मेडलों से भरने का कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे। और भारत, जब भारत देश के लिए ज्यादा मेडल आएंगे, तो देशवासियों को गौरव होगा। केवल इस बात पे हमें गर्व नहीं होना चाहिए, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि खेल हम आयोजित कर रहे हैं। असली गर्व होना चाहिए जब 2030 कॉमनवेल्थ खेलों में हमारा देश पदक तालिका में नंबर एक पे आए, और
0: जी
1: उसका उसका क्या रास्ता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। इस बार भी 13 में से 7 गोल्ड मेडल, 13 गोल्ड मेडल आए, जिनमें से 7 हरियाणा से संबंधित खिलाड़ी, हरियाणा के हमारे खिलाड़ी खिलाड़ी लेके आए। और ये
0: जी
1: जो आज सरकार ने ये तर्क दिया है कि सरकार कह रही है कि जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां ज्यादा है, यहाँ कम है, पहली बात मैं तरसे सहमत नहीं हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में भी अच्छा है, लेकिन अच्छा तुलनात्मक जरूर है, लेकिन अगर ये बात आप कह रहे हैं, तो और ज्यादा जो हम मेरा आर्ग्यूमेंट है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर बिना पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ही हरियाणा खिलाड़ी इतने मेडल लेके आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप पूरा अपना निवेश आप करो यहाँ पर, ताकि भारत दुनिया में पदक तालिका में ऊपर पहुंचे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राहुल गांधी ने पीएम मोदी से लेकर संघ को घेरा, कहा छात्रों को माफ करने वाले कौन होते हैं प्रधानमंत्री, आरएसएस की विचारधारा को बताया खतरनाक। मदरसों को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, कालिम फाजिल की नहीं मिलेगी डिग्री, अब होगी सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को कांग्रेस ने कहा गूंगी गुड़िया, भड़की एनसीपी, फडणवीस शिंदे ने महिलाओं के अपमान से जोड़कर साधा निशाना। E20 विवाद के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले किसान, इथेनॉल के समर्थन में आवाज बुलंद की अन्नदाताओं ने कहा गलतफहमी दूर करना जरूरी। भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज विशेष में बात करेंगे फरीदाबाद के एक स्कूल में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड की। एक बार फिर एक महिला को सनकी आशिक की वजह से जान गंवानी पड़ी। इस बार शिकार हुई है फरीदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल की टीचर, जिसे एक तरफा इश्क में एक सनकी ने मार डाला, और मारा भी ऐसा कि सिर्फ 30 सेकंड में चाकुओं से ताबड़तोड़ 27 बार किए, और ये पूरी वारदात स्कूल के सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरी रिपोर्ट देखिए।
3: फरीदाबाद में एक 26 साल के स्कूल टीचर एक आशिक की सनक का शिकार हो गई। सनक ऐसी कि 30 सेकंड में उसने चाकू से 27 बार किए और कत्ल कर दिया। घटना फरीदाबाद के इस स्कूल की है, जिसका नाम है सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्कूल में फरीदाबाद की संध्या टीचर थी, सोमवार को संध्या स्कूल में मौजूद थी। तभी उसके स्कूल के बाहर मेन गेट पर एक शख्स मुंह पर कपड़ा बांधे हुए आता है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि जो यह शख्स खड़ा है उसने अपने मुंह पर गमछा बांधा हुआ है, ताकि कहीं से भी उसकी पहचान उजागर न हो। स्कूल के गेट से अंदर आने के बाद उसने गार्ड से कहा कि संध्या को बुला दो और कहना कि विक्की आया है। उसकी ये आवाज बाकायदा स्कूल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई।
4: विक्की आया।
3: यहाँ आपको बता दें कि विक्की उर्फ विकास संध्या के पति का नाम है, लेकिन ये संध्या का पति नहीं था। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है। स्कूल में माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा है, बच्चे भी स्कूल के गेट पर दिख रहे हैं, इस बात से अनजान कि सामने जो मुंह पर कपड़ा बांधे शख्स खड़ा है उसके हाथ में चाकू है, और वो हत्या के इरादे से स्कूल आया हुआ है। तभी स्कूल के गेट के अंदर से एक महिला बाहर आई, यही संध्या है जिसकी तलाश में यह शख्स स्कूल पहुंचा है। जैसे ही संध्या आई, इस शख्स ने उसे बाहर खींच दिया और तुरंत ताबड़तोड़ चाकू मारने लगे। पहले तो संध्या को भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो चिल्लाई, लेकिन चाकू मारने वाला रुका नहीं, वो और तेज वार करने लगा। संध्या के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर से एक और शख्स दौड़ कर आया, लेकिन जैसे ही इस आदमी ने संध्या को बचाने की कोशिश की, चाकू मारने वाला चाकू लेकर उसकी तरफ भी दौड़ा। बगल में पानी की बोतलें पड़ी थी, उस शख्स ने पानी से भरी बोतलें उठाकर मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा तो अंदर चला गया। इतनी देर में हत्यारे ने संध्या को चाकुओं से गोद कर मार दिया। संध्या जमीन पर निढाल पड़ी थी और हत्यारा तब भी उस पर वार कर रहा था, और ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। संध्या की हत्या के बाद हत्यारा तुरंत फरार हो गया। इसके बाद स्कूल का बाकी स्टाफ आया, कुछ और महिलाएं भी आई, भगदड़ मची। संध्या को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में पता चला कि जो शख्स संध्या को बचाने के लिए आए थे वो स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक तेजपाल शर्मा थे। वो खुद बता रहे हैं कि क्या हुआ था।
5: सर, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, यहाँ पे केबिन में, तो यहाँ से मुझे बाहर से चीखने की आवाज आई एकदम से, लेडीज की आवाज थी, तो ऐसे लगा कोई बच्चे की चीखने की आवाज है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बरसात का मौसम है, कहीं किसी बच्चे को बिजली वगैरह का शॉक वगैरह नहीं लग गया हो, उस वजह से मैं भाग के यहाँ पे बाहर आया था। तो वो बल्कि लेडीज पड़ी हुई थी, वो मुझे दिखाई भी नहीं थी, वो बहुत पतली सी दुबली सी लड़की थी वो, और वो यहाँ पे मुझे जब दिखाई दिया कोई चाकुओं से उसे मार रहा था, मैंने उसे डांटने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी, उसको रोकने की कोशिश करी, तो वो दो बार तीन बार मेरी तरफ भी चला चाकू लेके। तो यहाँ पानी की बोतल्स भरी हुई रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो वजन था, फिर मैं वापस अंदर डंडा वगैरह लेने गया, तब तक वो यहाँ से चला गया, भाग गया।
6: वो आदमी पहले कभी यहाँ आया था?
5: नहीं, मैंने उसे नहीं देखा।
3: घटना फरीदाबाद के सिकरोना गांव के एक प्राइवेट स्कूल की है। पता चला है कि संध्या और आरोपी अमित एक दूसरे को जानते थे। संध्या पहले फरीदाबाद के कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहीं पर अमित उसे परेशान करता था, जिसकी वजह से उसने अपना स्कूल बदला था। बताया जा रहा है कि अमित की हरकतों से तंग आकर संध्या ने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अमित ने बदला लेने के लिए संध्या के स्कूल पहुंचकर उसकी हत्या कर दी।
7: फरीदाबाद के सिकरोना इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर एक महिला टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वक्त हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे इसी गेट से एक शख्स दाखिल होता था। उसने अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके रखा था। यहां पर ये चीज कुछ अलग नहीं है, चेहरा अक्सर लोग कवर करके चलते हैं, क्योंकि कुछ सड़कें बन रही हैं और गर्मी का वक्त है, तो बाइक पर लोग चेहरा कवर कर लेते हैं। वो अंदर आया, यहां पर आके उसने मैसेज भिजवाया कि उसे संध्या टीचर से मिलना है, उसका नाम विकी है, हस्बैंड है वो। संध्या के हस्बैंड कभी कभार आते थे, कभी चाबी देने, कभी टिफिन देने, तो इसलिए बहुत नॉर्मल लगा। संध्या को बुलाया गया, संध्या इस दरवाजे से आती है, यहां पर विकी मौजूद था। जैसे ही संध्या आई, सीसीटीवी में ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस कैमरे में पूरा वाक्या कैद हो गया। एकदम से उस शख्स ने हाथ पकड़ा, शायद संध्या पहचान गई, वो पीछे हटने की कोशिश की होगी, लेकिन उस शख्स ने एकदम से हाथ पकड़ा और खींच लिया, और यहीं पर उसने जो चाकू पहले से तैयार रखा था अपने पास, उस चाकू से लगातार वार करता रहा, और यहां पर संध्या गिर गई।
3: बताया जा रहा है कि अमित ने यह कत्ल अचानक नहीं किया, बल्कि उसने पूरी साजिश रची। अमित ने संध्या की हत्या से पहले इलाके की रेकी की, चाकू का इंतजाम किया, पूरा बहाना सोचा कि क्या कहकर संध्या को बाहर बुलाना है। अमित को यह जानकारी थी कि संध्या का पति विक्की अक्सर टिफिन या घर की चाबी देने के लिए आते हैं, तो उसने स्कूल पहुंचकर संध्या को बुलाने के लिए उसके पति के नाम का ही इस्तेमाल किया। और इसके बाद उसने संध्या की हत्या कर दी।
7: जब वो गिर गई, तो इसी दौरान जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने एकदम आगे आकर के बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में चाकू था, वो पीछे की तरफ हटते हैं। यहाँ आप जो पानी की बॉटल्स देख रहे हैं, ये बॉटल उठा करके वो सोचते हैं कि वो बचाव करें, लेकिन इतनी देर में ही उसने तकरीबन 30 से ज्यादा वार जो है संध्या के ऊपर चाकू से की, और फिर वो फरार हो गया। इसके तुरंत बाद लोगों ने संध्या को उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी संध्या की। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमित कई समय से संध्या को परेशान कर रखा था, संध्या ने पुलिस कंप्लेन की थी, और सरेआम माफी भी अमित के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन अमित इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था।
3: अमित इस बात का भी इंतजाम करके आया था कि जब वो चेहरे पर कपड़ा बांध कर आए तो अजीब न लगे, क्योंकि स्कूल के बगल में सड़क बन रही थी, इसीलिए धूल की वजह से इस इलाके में लोग चेहरे पर मास्क बांध कर आते हैं, तो उसने गमछे से चेहरा ढका और स्कूल पहुंच गए।
7: तो जो महिला थी, टीचर थी संध्या, वो आपके यहाँ कब से काम कर रही थी, और क्या कोई हस्बैंड या उनके परिवार से कोई आता था?
5: वो यहाँ पे लगभग एक साल उसको हो चुकी है, अभी 6 तारीख को 1 साल हो जाएगी उसको। और बीच बीच में उसके हस्बैंड आते थे यहाँ पे, तो गेट पे से एक बार चाबी या उसका लंच बॉक्स पकड़ा के और चले जाया करते थे।
7: तो चेहरा बंद उसने बांध रखा था?
5: जी सर, एक्चुअल क्या है, एक तो नेचुरली कल बल्कि मुझे, क्योंकि मैंने, मेरी कभी उसके हस्बैंड से मुलाकात नहीं हुई, तो कल बल्कि इन लोगों ने भी मुझे यही बताया था, क्योंकि 2-4 बार जब भी बेचारा आया है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन की वजह से आजकल सिस्टम चल गया है, बाइक से मोस्टली लोग, और फिर यहाँ अभी फिलहाल रोड भी बन रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से लोग कई बार मास्क टाइप का, इस टाइप का लगा लेते हैं, देहाती आदमी तो स्वापी से ढक लेते हैं। ये है
7: मतलब कोई अनयूजुअल नहीं है चेहरा
5: सर। हाँ, 36 ईयर्स हो गए हमें स्कूल चलाते हुए सर, आज तक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल हमें दुख है कि हमारे परिवार का सदस्य ऐसे इंसिडेंट में चला गया।
7: और वो गार्ड भी था यहाँ पे?
5: हाँ, लेडीज थी यहाँ पे, वहाँ पे तो उसने एक्चुअली उसने ना बिल्कुल उसी जिस तरीके से मैं बता रहा था, उसका हस्बैंड भी कई बार आया गमछा वगैरह लेके, तो उसी तरीके से वो भी आया था, उसने नाम भी उसका अपने उसके हस्बैंड का लिया था कि उससे बोलो विक्की आया।
3: सचिन गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, फरीदाबाद आज तक।
0: पुलिस की जांच में बहुत से खुलासे हो रहे हैं। पता चल रहा है कि मृतका संध्या और आरोपी अमित एक दूसरे को पहले से जानते थे। अमित की हरकतों और छेड़खानियों से तंग आकर संध्या ने पुलिस से शिकायत भी की थी। फिर बीच में गांव की पंचायत भी आ गई, जिसने दोनों में समझौता करा दिया। अमित ने तब माफी मांग ली थी, लेकिन अब दिन दहाड़े स्कूल में घुसकर संध्या की हत्या कर दी।
3: संध्या के पति विकास जो अपनी पत्नी के हत्यारे से बदला चाहते हैं। संध्या और विकास की गृहस्थी ठीक चल रही थी, 2 बच्चे थे, पत्नी स्कूल में टीचर थी, लेकिन एक सनकी के एकतरफा इश्क में संध्या मारी गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी अमित और संध्या की पहचान करीब 2 साल पुरानी थी। आरोपी पहले भी उन्हें लगातार परेशान करता था। मामला इतना बढ़ गया कि गांव में 2 बार पंचायत तक बुलाई गई और आरोपी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। इसके बावजूद उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और आखिरकार स्कूल परिसर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।
8: जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उसे जानता था, और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था, वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
9: कहां से गिरफ्तार इसको किया गया?
8: जो आरोपी है उसको सिकरोना के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वारदात से मात्र 2 घंटे
9: के अंदर आरोपी
8: जो है ये 21 वर्ष का है, इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के इलाके के अंदर भी दूध बेचता
9: है।
8: जो इन्होंने अगर कोई पहले कोई भी शिकायत दी थी, तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था, और अगर कोई इस तरीके की शिकायत दी जाती है डेफिनेटली उसको कार्रवाई की।
3: संध्या करीब 1 साल पहले पास के गांव कोट में एक स्कूल में पढ़ाती थी। ये स्कूल एक किराए के घर में संचालित होता था। जिस व्यक्ति की इमारत में स्कूल चल रहा था, आरोपी अमित उसका भतीजा बताया गया है। इसी दौरान संध्या और अमित की पहचान हुई। शुरुआत में सामान्य परिचय था, लेकिन कुछ समय बाद अमित ने संध्या को परेशान करना शुरू कर दिया। लगातार हो रही इस हरकत से परेशान होकर संध्या ने अपने परिवार और ससुराल वालों को पूरी बात बताई। मामला बढ़ने पर गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान आरोपी अमित ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी।
10: तो कल जब उसकी हत्या हुई तो कब मालूम चला आपको ये?
11: मेरे को 11 बजे पता।
10: 11 बजे पता चला, तो ये पता चल पाया कि क्यों हुई है उसकी हत्या?
11: नहीं,
10: ये पता नहीं चल पाया। किसने की है ये पता चल गया?
11: ये पता है।
10: कहाँ का है ये आरोपी?
11: कोट का है।
10: कोट गांव का
11: है। उसके घर भी गए थे हम पहले। पहले उसने तंग भी करी थी वहाँ पे। पेरेंट्स की मीटिंग थी कोई स्कूल में, तो पढ़ाती थी जैसे स्कूल में, तो उसने बच्चे को दिक्कत करी, पढ़ाई वढ़ाई में कमजोर था, उसने मना कर दिया। तो उसने उसको धमकाया अमित को भी। अमित को धमकाने से उसने बदला के चक्कर में फिर मेरे से बोली, संध्या अब मैं स्कूल छोड़ रही हूँ, मन व्यस्त करता हूँ, वहाँ से ट्रांसफर करके वहाँ जा सरस्वती में, वहाँ से छुड़वा के सरस्वती में आई। फिर यहाँ पे दिक्कत करने लग गया वो। फिर मैं 3-4 बंदे लेके उसके घर वालों के पास गए थे। घर वालों को हाथ विनती जोड़ दो, उन्होंने मान गए भाई अब नहीं आएगा, अब नहीं करेगा कोई दिक्कत। फिर मैंने रिपोर्ट भी करी है पहले, फिर उन्होंने घर वालों ने बोला भाई हाथ जोड़ने की बात है, अब कर लो फैसला, आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। गांव का सरपंच खुद कह के गया, पाम पकड़ के गया है, और अब फैसला कर ले लास्ट बार। मैंने कहा ठीक है जी, और कल की ये नहीं पता लगी क्या हुआ।
3: इसके बाद कुछ समय तक मामला शांत रहा, हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि इसके बावजूद संध्या ने एहतियातन कोट गांव का स्कूल छोड़ दिया और सिकरौना में दूसरे स्कूल में नौकरी शुरू कर दी।
8: वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी, वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती से बात करने का प्रयास कर रहा
9: था।
8: जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ, और दूध बेचने का काम करता है, 21 वर्ष का है। जो मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले कोट स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, अब सरस्वती स्कूल सिकरौना के अंदर पढ़ाती
9: है। चाकू बरामद कर लिया गया।
8: जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है, मल्टीपल वुंड्स है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर ये चीजें आई
12: है। बातचीत हुई इन लोग की, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया ऐसा लग रहा है कि रंजिश पाल के बैठा था, तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की थी।
8: मैंने आपको बताया कि वो दो साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, क्योंकि वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था, जिस बात से वो आहत था अपने, जिसने बताया कि वो इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने इस तरीके।
3: आरोपी अमित फरीदाबाद के कोट गांव का ही रहने वाला है, जबकि संध्या डबुआ बल्लभगढ़ की रहने वाली थी। मौजूदा समय में संध्या पति विक्की के साथ फिरोजपुर कला गांव में रह रही थी और गांव सिकरौना में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर थी। आरोपी संध्या से लगातार रंजिश रख रहा था क्योंकि उसने उसकी छेड़खानी की शिकायत की थी। संध्या और विकास की दुनिया उजड़ चुकी है, संध्या के 2 बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, जिन्हें शायद ये एहसास ही नहीं होगा कि उनकी माँ एक सनकी के एक तरफा इश्क में मारी गई, जिसकी कोई गलती नहीं थी। सचिन गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, फरीदाबाद आज तक।
0: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जाओ.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन ने पांचवी इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जेन जी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं, क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जेन जी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है? और क्या जेन जी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जेन जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जेन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब जेन जी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जेन जी और 13 साल की जेन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेन जी दो तरह के थे, जिसमें एक वाजिब जेन जी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेन जी। और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और राबता कायम करना चाहते हैं। जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है। उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेन जी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं। और गौर करने की बात ये कि 6 अगस्त को संघ प्रमुख की जेन जी से मुलाकात के पहले 5 अगस्त को अभिजीत दीप की अपनी पार्टी की बैठक में संगठन के विस्तार, भविष्य की रणनीति और पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करने वाले हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: वक्त ब्रेक का हो चला है, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को कांग्रेस ने कहा गूंगी गुड़िया, भड़की एनसीपी, फडणवीस शिंदे ने महिलाओं के अपमान से जोड़कर साधा निशाना। E20 पेट्रोल विवाद के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले किसान, एथेनॉल के समर्थन में आवाज बुलंद की, अन्नदाताओं ने कहा गलतफहमी दूर करना जरूरी। भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। राजनीति में सफलता की हवाई उड़ान और विमान की हवाई उड़ान में कुछ समानता होती है। जहां कभी कभी विपरीत हवा चलने पर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। क्या सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष की सीट बांकीपुर पर बीजेपी को मिली हार इसी तरह का एक टर्बुलेंस है? इस खबर को बताएं। उससे पहले आज की हैरान करने वाली और चिंताजनक खबर से खबरदार करते हैं, जहां थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट AI-2379 टर्बुलेंस यानी तेज हवा के झटकों में फंस गई। फ्लाइट अचानक कई फीट तक नीचे आ गई। हालांकि पायलट ने स्थिति संभाली और फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया। यात्रियों ने क्या बताया, अब वो सुनिए।
1: कहां से कहां आप लोग आ रहे थे फ्लाइट?
2: सर, फुकेट से दिल्ली आ रहे थे।
1: क्या हुआ फ्लाइट में, कितने फीट पे थे उस समय और क्या हुआ?
2: सर देखो, फीट तो आई एम नॉट अ पायलट। हम आ रहे थे, एक डेढ़ घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है आते हुए, ये प्लेन ऐसे घूम गया। दो ढाई तीन मिनट तक ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। हाँ जी, 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा।
1: कितने लोग थे उसमें फ्लाइट में?
2: सर मेरे को फ्लाइट लोड तो पता नहीं, 100 से तो ज्यादा ही लोग थे फ्लाइट में।
1: सभी को चोटें आई
2: है? 70-80% लोगों को चोटें आई हैं। जिनको नहीं आई उनकी माइनर कंकशंस और ये सब तो है ही।
0: टर्बुलेंस का मतलब है हवा का बहाव अचानक बदल जाना, जिससे विमान को झटके लगने लगते हैं। इस दौरान विमान कुछ समय के लिए ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिल सकता है और कभी कभी कुछ फीट नीचे भी आ जाता है। इसी वजह से यात्रियों को लगता है कि विमान गिर रहा है। हालांकि ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसा ही इस वक्त राजनीति के आसमान में भी चल रहा है, जहां 3 महीने पहले 4 मई को पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी ने नई सियासी उड़ान हासिल की, जब बंगाल में पहली बार बीजेपी का कमल खिला। इसके बाद विपक्ष बहुत दबाव में आ गया था, लेकिन 12 मई को पहला सियासी टर्बुलेंस आता है, जब नीट पेपर लीक की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ता है। देश भर में सवाल उठता है। दूसरा सियासी टर्बुलेंस फिर 20 जुलाई को आता है, जब प्रदर्शन करते छात्र और युवा संसद मार्च को निकल पड़ते हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। तीसरा सियासी टर्बुलेंस 25 जुलाई को आता है, जब आंदोलन की वजह से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ता है। चौथा सियासी टर्बुलेंस इसके बाद 3 अगस्त को आया, जब बांकीपुर और दतिया में बीजेपी को उपचुनाव में हार मिलती है। बांकीपुर में बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर ही बीजेपी हार जाती है। ऐसे ही टर्बुलेंस की वजह से अब विपक्ष को लगता है कि वो बीजेपी के सामने उड़ान भर सकती है।
3: सोमवार को बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद 3 खबरें आती हैं। पहली, मंगलवार वाले NDA के मंगल मिलन में प्रधानमंत्री बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते हैं। कुछ देर बाद नीतीश कुमार और संजय झा से मुलाकात होती है और तीसरी मुलाकात प्रधानमंत्री के शिवराज सिंह चौहान से होती है। क्या बात हुई ये सामने नहीं आता। ये जरूर पता चलता है कि मुलाकात का वक्त बांकीपुर और दतिया में बीजेपी की हार के बाद का है।
4: नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य के रूप में आए हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कर्टसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे।
3: इन्हीं मुलाकात के बीच इस वक्त बांकीपुर के नतीजों से विपक्ष में बूस्टर डोज टाइप लहर चल पड़ी। जहां जीते पीके हैं, जमानत जब्त खुद कांग्रेस की साथी पार्टी RJD की हुई है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर बीजेपी की हार से कांग्रेस नई शुरुआत देखने लगी है।
5: साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये मेरे ख्याल से ये शुरुआत
6: देश ने संदेश दे दिया भाजपा को, पहला संदेश भाजपा को दिया कि साहब अब आपके जाने के दिन आ गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले।
3: बांकीपुर में बीजेपी की हार से UP चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी उत्साहित हो गई।
7: ये तो मैं समझती हूँ दर्शाता है कि लोगों में कितना आक्रोश है और कितना लोग पस्त हैं सरकार से, डबल इंजन की सरकार है, जहाँ जहाँ चल रही है मैं समझती हूँ देश को घंटे में जाने का काम किया गया।
3: अखिलेश यादव बीजेपी की हार में नया एंगल निकाल रहा है, बोले कि फ्री और फेयर इलेक्शन का ट्रायल बीजेपी ने बांकीपुर में किया है ताकि जनता के मिजाज का सही पता चल सके।
8: 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को,

0: बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती बीजेपी, फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए, देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी, तो समझ लो आप। तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है, जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे।
1: हनुमान जी की गदा लगी है बीजेपी को, और ये एहसास कराया है कि मर्यादित रहना चाहिए, सत्ता के नशे में घमंड में नहीं आना चाहिए।
2: विपक्ष जब प्रशांत किशोर की जीत में बीजेपी की हार की शुरुआत सोचने लगा, तो विपक्ष की साथी आरजेडी को लगता है बीजेपी हारी कहां है, बीजेपी तो जीती।
3: हम लोगों ने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के असली उम्मीदवार यही है, तो बीजेपी की वहाँ हार कहाँ हुई है? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है, और हमने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है एक तीर चला के कई जगह निशाने साध रही है। और आपको, आप देखिए ना, अभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का या किसी का भी कोई इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ संदेश तो दे रहा है।
2: मतलब बाकीपुर के नतीजे में विपक्ष ने अपने अपने हिसाब से चश्मा लगाया। किसी को बीजेपी की हार दिखती है, किसी को आगे अपने लिए मौका, किसी को जंतर मंतर का असर, किसी को बीजेपी की ही टीम बी की जीत नजर आती है।
4: परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाय इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे।
2: बीजेपी और विपक्ष में हार जीत के इस विश्लेषण के बीच प्रशांत किशोर केवल सम्राट चौधरी की हार देखते हैं, जिनके सीएम बनने के बाद ये पहला चुनाव हुआ।
5: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
6: बिल्कुल, वो तो है।
5: बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
6: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
2: बीजेपी कहती है कि वो हार की समीक्षा में जुटी, शायद यही समीक्षा और संदेश की कोशिश बांकीपुर के नतीजे के बाद प्रधानमंत्री ने भी की, जब वो नीतीश कुमार और संजय झा से मुलाकात करते।
7: थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है, वहाँ की जनता का जो निर्णय हुआ हम सब लोगों के सर आंखों पर है, लेकिन समीक्षा की जरूरत है कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति हुई, इस बात की समीक्षा की जरूरत है।
2: पहले से ही जब पेपर लीक, आंदोलन, इस्तीफा, लाठीचार्ज, चढ़ावा चोरी जैसे मसलों पर संसद में विपक्ष ने घेरा बना रखा है, तब बांकीपुर की हार के नए टर्बुलेंस ने बीजेपी के सामने नई चुनौती पेश की। इसमें समीक्षा के साथ क्या समीक्षा से निकले प्रश्नों पर भीतर ही भीतर नई परीक्षा भी होगी, नजर आगे इसी पर रहने वाली है।
8: प्रशांत किशोर ने आखिर कैसे बांकीपुर में बीजेपी का किला ढा दिया, इस बारे में आज तक से प्रशांत किशोर की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए।
9: 30 साल तक जो किला रहा बीजेपी का, उसको 30 दिन में कैसे प्रशांत किशोर ने ढा दिया? क्या आपको मालूम था कि ऐसा करना संभव है, क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ है बिहार में बीजेपी का बांकीपुर?
10: वो तो है, लेकिन गढ़ तो जनता ही बनाती है और बिगाड़ती है। मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा को इसलिए हराया है क्योंकि जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार को दिया है चुनाव जीतने के बाद, नवंबर 2025 में इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार पर थोपा है एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है। एक सातवीं फेल व्यक्ति, 7 लोगों की हत्या में जो जेल में रहा हो, उस व्यक्ति को सिर्फ आप भाजपा का चोला पहनाकर अगर बैठा देंगे तो जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरा, जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार रहा है, जहां ये चर्चा घर घर चली, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी जनता यहीं पर हमी को वोट देगी, उस अहंकार के खिलाफ वोट पड़ा है। और तीसरा, भाजपा के जो विधायक और सांसद हैं, कहीं ना कहीं वो सब इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, वो जानते हैं कि जब चुनाव होगा काम करें न करें हर हालत में जनता जाति धर्म के नाम पर वोट हम ही को देगी, नहीं देगी तो मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगा जाएगा, और कुछ नहीं चलेगा तो लालू के जंगल राज का डर दिखाकर वोट लिया जाएगा। तो इन तीनों चीज का जो कंबाइंड असर रहा है उसकी वजह से लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है।
9: सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग आप क्यों कर रहे हैं?
10: मैं इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा के नेतृत्व को आग्रह कर रहा हूं कि सर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया है, बड़े आशा से वोट दिया है, लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं, सर आप प्लीज ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए जो बिहार में शिक्षा और रोजगार ला दे, कम से कम पलायन बंद हो, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो, बिहार बहुत हो गया अनाज की राजनीति, बहुत हो गया धर्म और जात की राजनीति, बिहार की चिंता कीजिए। सम्राट चौधरी दिल्ली बैठे बैठ के बिहार के लिए ले आए पैकेज, ये घोषणा करें कि हर प्रखंड में, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हर प्रखंड में एक फैक्ट्री लगेगी, अमित शाह जी ने कहा है, कहां लग रही है फैक्ट्री, 8-9 महीने बीत गए, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सम्राट चौधरी से किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए।
9: आपके अकेले कहने से तो हटा नहीं देगी बीजेपी,
10: हटाए, मान लीजिए कि परीक्षा में आप टर्मिनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आप कहिएगा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर फाइनल में भी फेल हो जाइएगा।
9: जेंजी मूवमेंट आपको लगता है एक ऐसा फैक्टर था जो आपके पक्ष में गया, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले 22 और 25 तारीख
10: को मूवमेंट का वोट पर कोई असर नहीं है, परसेप्शन का असर हो सकता है, लेकिन बिहार में जेंजी मूवमेंट बाकीपुर में ऐसा नहीं दिखा कि बहुत यंग लड़के निकलकर वोट किए हों, जिन लोगों ने वोट किया है वो ट्रेडिशनल भाजपा के राजद के वोटर रहे हैं, जो अपने दलों से नाराज थे, अपने दलों की कार्य शैली से खुश नहीं थे, उन्होंने अलग हटके वोट किया।
9: इधर प्रधानमंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इधर आपने उनका किला ढा दिया। नितिन नवीन
10: जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो बिहार के होने के नाते मेरे लिए गौरव की बात है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसलिए कि हम, मैंने आपको पहले कहा, हम लोग इतने पिछड़े हैं, बिहार का आदमी बाहर जाता है चाहे अच्छा हो खराब हो, उसको बिहारी का गाली दिया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उस नजरिए से बिहार का आदमी बीजेपी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो गौरव की बात है, मैं उस बात का कभी, आपने कभी मेरे मुंह से उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना होगा, और ये सिर्फ राजनेता के तौर पे नहीं कह रहा हूं, कोई अभिनेता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, बिहार का झंडा अगर कोई ऊपर कर रहा है मेरा समर्थन उसको है, लेकिन नितिन नवीन जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप मजबूत अध्यक्ष बनिए, रबर स्टैंप बनकर मत रहिए, बिहार के लिए कुछ कीजिए, बिहार भाजपा के लिए भी कुछ कीजिए, बिहार में भाजपा में अच्छे लोग,
9: रबर स्टैंप है नितिन नवीन,
10: अभी तो यही दिख रहा है। चार बात कही है उसको एकदम ध्यान रख लीजिए, उससे एक कदम पीछे नहीं, एक विधायक के तौर पर विधायक से जुड़े हुए किसी मामलों में 1 रुपए की चोरी बाकीपुर में नहीं होगी, दूसरी बात मैंने कहा है कि मेरे आचार विचार व्यवहार से बाकीपुर की जनता को मुझे प्रतिनिधि के तौर पर देखकर कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, तीसरी बात मैंने एक जो एम्बिशस बात कही है कि अगले 1 साल में बाकीपुर के गरीब परिवारों के बच्चों के पढ़ाई के सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार आपको दिखेगा, नहीं होगा तो उनके बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का जिम्मेवारी प्रशांत किशोर का है, और चौथी बात कही है कि बाकीपुर के लिए अगले 20 वर्ष में बाकीपुर कितना बढ़िया बन सकता है उसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे, इससे ना ज्यादा ना इससे कम।
8: बांकीपुर में 12% यादव और 8-9% मुस्लिम वोट है, जो विपक्ष का मजबूत वोट का हिस्सा रहा है, यानी करीब 20%। बाकी यहां 80% गैर यादव हिंदू बहुसंख्यक वोट रहा है, यानी इसे 80-20 कहा जा सकता है, जैसे यूपी में 80-20 का नारा दिया जाता है, जहां 80% बहुसंख्यक और 20% अल्पसंख्यक है। बांकीपुर और यूपी दोनों के 80-20 में थोड़ा सा ही फर्क है, पर यह समानता है कि बहुसंख्यक हिंदू जब साथ रहता है तो बीजेपी यूपी भी जीतती है, बांकीपुर भी। लेकिन यही 80% वोट जब बटता है तो 2024 की तरह यूपी में बीजेपी को झटका लगता है और बांकीपुर में 3 दशक बाद हार मिलती है। क्या इसीलिए आज यूपी में दोनों डिप्टी सीएम एक छाते के नीचे चलते हुए सवर्ण और पिछड़े वोट को बीजेपी के छाते तले मजबूत करने वाला संदेश देते हैं? जहां बांकीपुर के लोग बताते हैं कि हार की वजह क्या रही,
11: यहां का जो है मतदाता जो है इस बार इनको सबक सिखाने का काम किया, और जो अभी बेरोजगारी भ्रष्टाचारी और जिस तरह से जो है इस बार छात्र जो आंदोलन जो हुआ, पेपर जो लीक जो हुआ, जो बेरोजगारी जो बढ़ा हुआ है, इसका भी इसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के लोगों को जो यहां देखने को मिला, और प्रशांत किशोर जो इशू जो उठा रहे थे वो सही इशू उठा रहे थे, कोई गलत इशू तो इनका था नहीं, छात्र की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार

0: जो हो रहा था इसके खिलाफ बोल रहे थे।
1: प्रशांत किशोर के जीतने का एक महज एक बड़ा सिंपल सा कारण है कि युवाओं को उनका बहुत बेहतरीन साथ मिला, जिसके कारण एक तरफा मुकाबला ये रहा।
2: लोग ऐसा क्या लगा लोगों
1: में? बहुत से प्रमुख बिंदु हैं उनमें, शिक्षित हैं और मतलब ग्राउंड स्टेट पे काम करते हैं, जड़ से लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत मेहनत भी रहा। ये रिजल्ट मतलब ऐसी एक रात में नहीं आया है, काफी सालों से उनका निरंतर प्रयास रहा तभी ये रिजल्ट मिला।
3: जो हमारे छात्र हैं, छात्र भविष्य होते हैं, वो भविष्य गत में पहुंचा दिया ये इन बीजेपी वालों ने। और जहां तक की बात है आप लोगों का मैंडेट प्रशांत किशोर को मिलना, ये क्योंकि वो जमीनी स्तर पे उन्होंने काम किया है, लोगों आम जन की बात कही है, छात्र की बात की है, जो भविष्य है हमारा, युवाओं की बात की है।
4: उत्तर प्रदेश में भले ही फरवरी में चुनाव होना हो, लेकिन दिल्ली से लखनऊ तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा गर्म है। संसद में सदन के भीतर से लेकर बाहर तक अब विपक्ष सरकार को घेरता है, तो बीजेपी विपक्ष को सनातन के अपमान के पुराने बयान याद कराती है।
5: मैम, वहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप लोग चंदा चोरी का नाटक कर रहे हैं। रिजिजू ने बोला हाउस में अंदर कि आप लोग भगवान राम के विरोधी है।
6: धातु भी निकला है
7: नाटक का फल मिल रहा है, चुनाव हार रहे हैं, विदाई हो रही है।
8: बांकीपुर के उपचुनाव ने विपक्ष की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। बीजेपी की हार को अयोध्या चंदा चोरी से जोड़कर विपक्ष सामने ला रहा है, ताकि बांकीपुर की तरह बीजेपी का हिंदू वोट उत्तर प्रदेश में भी छिटक जाए। इसीलिए समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले को गरमाने में लगातार लगा है। इसी के लिए संसद भवन के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसद रोज दान पात्र लेकर बैठते हैं। फिर अखिलेश यादव की तरह विपक्ष के सांसद पात्र में दान देकर चढ़ावा चोरी के मामले को उठाते हैं।
9: चंदा चोर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में।
8: अखिलेश यादव चंदा डाल रहे हैं, डिंपल यादव संसद में बैठकर चंदे की गिनती करती दिखती हैं।
5: देखिए कि लगातार उस वक्त जब किरण रिजिजू संसद के भीतर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चंदा चोरी का नाटक कर रही है, लगातार समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्ष यहाँ पे इस तरीके से चंदा जो है इकट्ठा कर रहे हैं। दान पात्र यहाँ बनाया गया और कहा गया कि इस चंदे की अकाउंटेबिलिटी होगी। एक तरीके से कुल मिला के जबरदस्त हंगामा बरपा है संसद के भीतर, जहाँ पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भगवान राम का विरोधी बताया है।
6: धातु भी निकला है
7: मतदान में,
6: आज धातु भी निकला है, वही धातु की भी चोरी करी गई है कहीं ना कहीं। तो अगर लोग चाह रहे हैं कि जवाब मांगे, तो इसमें क्या हर्ज है?
8: संसद हो या फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा, दोनों तरफ सदनों में अंदर और बाहर आजकल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष विरोध करता है, नए नए नारे लगाता है, सरकार को घेरने की कोशिश दोनों सदनों में चल रही है। संसद के मानसून सत्र में 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और इसी दौरान खड़गे और किरण रिजिजू में बहस हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगा।
10: ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के विषय है, इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए।
8: इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम पर घड़ियाली आंसू बहाए।
11: भगवान राम को ये मानते नहीं है, आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी। हार करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। भगवान राम को मानते नहीं है, शर्म आ जाती है हर दिन है।
8: पेपर लीक के बाद विपक्ष लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सरकार से सवाल पूछता आ रहा है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तब तक समाजवादी पार्टी इस मामले को गर्मा कर रखना चाहती है, इसीलिए संसद के बाहर चढ़ा

0: के बाहर चढ़ा चोरी पर प्रदर्शन नए नारों के साथ होता है। इसमें कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का साथ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। इस तरह सरकार और विपक्ष के बीच रोज रोज तीखी होती जुबानी जंग संसद के बार बार स्थगित होने की वजह बन रही है। फिर भी न तो पक्ष और न ही विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार है। मानो दोनों मान चुके हैं कि राम और सनातन 2027 में सत्ता की सबसे मजबूत सीढ़ी है।
1: उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सदन से लेकर बाहर तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भारी हंगामा आज हुआ है। विपक्षी विधायकों ने पहले विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और फिर सदन के भीतर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए, जिसके बाद स्पीकर भड़क गए।
2: सचिन आप उस मंत्री जी के फोटो को नीचे
3: हमारी ये सरकार
2: प्लीज आप आई विल नॉट मैं आपको बाहर निकाल दूंगा
3: के साथ
2: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं।
0: उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना का ये गुस्सा समाजवादी पार्टी के विधायक पर फूटता है, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसे देखकर महाना इतना बिगड़े कि समाजवादी पार्टी के विधायक को पूरे सत्र से निकाल देने की चेतावनी दी।
2: यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दूंगा। चलिए बाहर इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर नजर दे करेंगे आप। चलिए बाहर।
0: अब सवाल है कि उस पोस्टर में ऐसा क्या था? तो जवाब है राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सबसे बड़ा सियासी रण का मुद्दा बनी
4: है। मैंने चढ़ावा चोरी पर मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान था कि दूध का दूध पानी का पानी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पे हो जाएगा, चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। मैंने पूछा उस रिपोर्ट का क्या हुआ, दूध का दूध पानी का पानी क्या हुआ, दूध कहाँ गया, पानी कहाँ गया, चढ़ावा चोरी करने वाले कहाँ गए, बीजेपी के दफ्तर में उन्हें क्यों छुपा के बैठा। जब ये सवाल किए गए तो मुख्यमंत्री जी जनता के इस मुद्दे से नाराज हो गए और तानाशाही रवैया अपना कर हम लोगों को मेरा निष्कासन करने का काम।
0: विधानसभा के अंदर से बाहर तक समाजवादी पार्टी इसे लेकर रोज नारेबाजी करती है, तो सरकार राम मंदिर आंदोलन का इतिहास बताकर पूछती है कि अगर चंदा दिया तो रसीद दिखा।
5: मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहां जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे।
0: लेकिन समाजवादी पार्टी इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं दिखती और यूपी विधानसभा के बाहर उसके विधायक हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हैं, जिसमें चढ़ावा चोरी सबसे प्रमुख है।
6: राम के नाम पर लूट का मुद्दा है, आप लोगों ने कल भी अयोध्या प्रकरण उठाया था, आज भी उठा रहे हैं।
7: राम मंदिर का जो प्रकरण है वो हम बराबर उठाते रहेंगे, क्योंकि राम मंदिर पे जो घोटाला हुआ, खून पसीने की कमाई लोगों की, और भाजपा पार्टी ने उसमें घोटाला किया।
0: ऐसा ही पोस्टर लेकर जब समाजवादी पार्टी के विधायक सदन के अंदर चले गए तो हंगामा बढ़ गया। पोस्टर लहराने वालों में समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान शामिल थे, जिनके पोस्टर लहराने पर जबरदस्त बवाल हुआ।
8: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। नृपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी के इल्जामों पर सफाई देने मुख्यमंत्री सामने आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि SIT की रिपोर्ट में किसी भी संत और महंत का नाम चढ़ावा चोरी से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी अयोध्या और संतों को बदनाम करने की कोशिश हुई।
9: इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में SIT

0: प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया।
1: शुक्रवार को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर संसद पहुंचे। उन्हें राहुल गांधी ने चंदा भी दिया, लेकिन बीजेपी समेत साधु संतों को विपक्षी सांसदों का ये स्वांग बुरा लगा और उनकी तरफ से विपक्ष पर संत और सनातन दोनों के अपमान का आरोप लगा। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर 1990 का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरा।
0: ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था?
1: योगी सरकार का कहना है कि उसने चढ़ावा चोरी पर कड़ी कार्रवाई की, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जानबूझकर इसका इस्तेमाल मंदिर को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।
0: संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये समाजवादी पार्टी का शोक और सगल है। इन्होंने हमेशा से, इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है।
1: उत्तर प्रदेश की राजनीति कमंडल और मंडल के बीच झूलती रही। बीजेपी जहां कमंडल के पिच पर अपनी फील्डिंग सजाती है, तो समाजवादी पार्टी मंडल के इर्द गिर्द फार्मूला बनाकर वोट बैंक साधती है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि राम मंदिर पर ही बीजेपी को घेरा जा सके। योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता इसी का नतीजा है।
2: अयोध्या के साथ छात्रों का मुद्दा पेपर लीक और रोजगार भी सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में शामिल है, इसीलिए सरकार की तरफ से नौजवानों से लगातार बातचीत की जा रही है। भरोसा दिलाया जा रहा है कि सरकार उन्हें लेकर संवेदनशील है। एनडीए मंगल मिलन में आज रोजगार पर प्रेजेंटेशन दिया गया। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि मोदी सरकार के 12 सालों के कार्यकाल में 17 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित हुए, जो यूपीए के कार्यकाल से लगभग 6 गुना ज्यादा है। रोजगार को लेकर मोदी सरकार का जोर स्किल डेवलपमेंट पर भी है। इसे लेकर साल 2014 में मोदी सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 16 तरह के स्किल देने का कार्यक्रम शुरू किया, जिससे बच्चे अपनी रुचि के मुताबिक काम सीखें और एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बन सकें। लेकिन बीजेपी शासित राजस्थान के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बंद है क्योंकि सरकार टेंडर नहीं करवा पाई। जिन टीचरों के कंधों पर बच्चों को हुनर देने की जिम्मेदारी है, वो टीचर जयपुर में पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ टीचर भूख हड़ताल पर हैं। अपनी इस हालत के लिए वोकेशनल टीचर प्लेसमेंट एजेंसियों को दोषी मानते हैं। दावा करते हैं कि 3-3 लाख घूस लेकर ये कंपनियां नौकरी देती हैं, मतलब नौकरी के लिए घूस देनी पड़ती है। केंद्र से 25,000 एक टीचर की सैलरी मिलती है, लेकिन एजेंसियां 15,000 से लेकर 22,000 तक देती हैं, वो भी 10 से 15 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है और जब चाहे नौकरी से निकाल देती है। दावा है कि इस अंधेर गर्दी पर राजस्थान सरकार चुप है, इसीलिए हमारा खबरदार करना जरूरी है।
1: केंद्र सरकार ने कौशल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया ताकि नौजवान हुनर सीखें, खुद कमाएं, दूसरों को भी नौकरी दें।
3: हम यह भी चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी देने वाला भी बने, तो उसके लिए भी हम युवा नीति लेकर के आए हैं।
1: लेकिन राजस्थान में जिन टीचर्स के कंधों पर छात्रों को हुनर सिखाने की जिम्मेदारी थी, जो सरकार की नजर में हुनरमंद है, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो दूसरों को रोजगार देने वाला बनाने लायक तो दूर, खुद ही बेरोजगार होकर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर कर दिए गए।
4: अभी ये भी हमको घर पे बिठा दिया 31 जुलाई के बाद, हम बेरोजगार हो गए, कौन जिम्मेदार है हमारा? और बार बार यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो भाई, हम काम करने के लिए तो विद्यालय जाते हैं और सैलरी लेने के लिए हम समसा ऑफिस जाएं, यहाँ पे शिक्षा संकुल आए और कंपनियों के पास जाएं, कंपनी कहते हैं आप हमारे नहीं हो, ये कहते हैं आप हमारे नहीं हो, और समसा ऑफिस वाले वो बोलते हैं आप हमारे हो, तो किनके हैं हम?
5: कंपनी वालों को फोन करते हैं तो हमसे सैलरी मत मांगा करो, हमारी फाइलें क्लियर कराओ। बताओ, हम कौन होते हैं उनकी फाइलें क्लियर करवाने वाले? जब उन्होंने हमें हायर किया था तब ये बोला था क्या कि हम आपकी फाइलें, आप हमारी फाइलें क्लियर करा के दोगे?
6: हम हमारा हक मांगते, किसी से भी मांगते।
3: मांगते।
1: राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार से अपना हक मांगते ये वो वोकेशनल टीचर हैं जिनकी नौकरी 11 साल पढ़ाने के बाद चली गई। बाड़मेर के सुरेंद्र कुमार से आज आप मिलिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद धरना देने के लिए मजबूर है। जिस वोकेशनल टीचर को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल में होना चाहिए उन्हें प्लेसमेंट एजेंसियों ने सड़क पर लाकर बैठा दिया।
6: सर हमें राजकीय विद्यालयों में बच्चों को कौशल शिक्षा दे रहे हैं और 2014-15 से हम टेंडर परीक्षा पे लगे, ठेका प्रताप लगे हैं।
7: ठेका प्रताप
6: जी सर, और उसमें वर्तमान में राजस्थान में 21 से ज्यादा कंपनियां हैं और कोई भी कंपनी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है और सारा काम सरकार के अधीन होता है, लेकिन सरकार ने अपने हाथ खड़े करके कंपनियों को दे रखा है और कंपनियां आज 11 वर्षों से योग्य लोगों का, स्किल और वेल एजुकेटेड शिक्षकों का लगातार शोषण कर रही है। आज हम राज्य के 41 जिलों से वो एक मांग लेके आए हैं कि हमें स्थायी जॉब पॉलिसी दे और हम वेल एजुकेटेड स्किल लोगों को स्किल के आधार पर उन्हें स्थायी पॉलिसी दे।
8: भारत सरकार ने बोल रखा है कि राज्य सरकार इनको डायरेक्टली प्लेसमेंट की जगह पर डायरेक्टली इनको विभाग के जरिए कौशल शिक्षा के जरिए इन व्यावसायिक शिक्षकों को लगा सकती है, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है वो ठेका प्रथा से लगा रखा है।
1: कई दिनों के धरना प्रदर्शन के बाद अब धनराज और सुमन जयपुर के शिक्षा संकुल में धरने पर बैठने को मजबूर हो गए, जबकि धनराज के पास बीटेक तो सुमन के पास एमए करके कॉस्मोलॉजी की डिग्री।
4: हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि कम ये जो शिक्षा विभाग है वो कंपनी को देर का है शिक्षा का और कंपनी अपनी मनमानी करती है।
5: हम तो हरियाणा मॉडल मांग रहे हैं ना, वहाँ भी तो लोगों को 37,500 पे फिक्स कर रखा है ना, वहाँ पे 10%
7: भूख हड़ताल बैठोगे
5: सर? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तक भूख हड़ताल पे।
1: 2014-15 में नरेंद्र मोदी सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 16 तरह के स्किल देने का कार्यक्रम शुरू किया, जिससे बच्चे अपनी रुचि के अनुसार काम कर सकें, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बन सकें। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए राजस्थान के 4,155 स्कूलों में 5,500 टीचर 21 प्लेसमेंट एजेंसियों के तहत नियुक्त किए गए। केंद्र सरकार के स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से राजस्थान में इसके लिए 3,945 करोड़ का बजट आता है, लेकिन टीचर्स का आरोप है कि प्लेसमेंट एजेंसियां मनमानी करती हैं। 3-3 लाख रुपए घूस लेकर नौकरी देने का आरोप है। 25,000 की जगह 15 से 22,000 केवल सैलरी देते हैं, वो भी 10-10 से 15-15 महीने की देरी से। इन सभी टीचर को प्लेसमेंट एजेंसियां कॉन्ट्रैक्ट पर रखती हैं, जिन्हें जब चाहे नौकरी से धमकी देकर निकाल दिया जाता है। अब सवाल ये कि केंद्र सरकार की इतनी बड़ी और जरूरी योजना में हो रही इस मनमानी पर राजस्थान की सरकार कुछ करती क्यों नहीं, तो इसके जवाब में सरकार कहती है ये काम हमारा नहीं, प्लेसमेंट एजेंसी ही वोकेशनल टीचरों को नौकरी पर रखती है, इसलिए जब चाहे निकाल देती है। सरकार के मुताबिक इसमें वो कुछ नहीं कर सकते।
9: हम प्लेसमेंट एजेंसी के आधार पर लेते हैं, ये हटाना रखना प्लेसमेंट एजेंसी का काम है, हमको कितने लोग चाहिए वो देते हैं। ये परमानेंट नौकरी नहीं है, न सरकारी नौकरी है, ये प्लेसमेंट एजेंसी के आधार पर होता है और ये प्लेसमेंट एजेंसी के आधार पर सभी डिपार्टमेंट से हो रहा है, ये कोई शिक्षा विभाग में हो रहा है ऐसा नहीं है।
1: सवाल खबरदार करता ये है, क्या राजस्थान सरकार ये दलील देकर खुलेआम शिक्षकों के साथ हो रही नाइंसाफी को होते देख सकती है, जिसमें स्किल देने वाले कदम कदम पर शोषण का शिकार हो रहे हैं?
4: वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जयपुर में ये IISD प्लेसमेंट एजेंसी का ऑफिस है, जिसके अंदर हम सब बेटे सैलरी के लिए आए हैं। 11 महीनों की सैलरी अभी तक नहीं की गई है, जिसके अंदर समसा ऑफिस में 4 फाइलें पास हो चुकी है और कंपनी के पास सैलरी होने के बावजूद भी सैलरी नहीं की गई। हम सुबह से आके यहाँ परेशान हो रहे हैं, अभी तक हमारी कोई भी सूचना नहीं सुनी इन्होंने।
1: जिन शिक्षकों की सैलरी सम्मान के साथ उनके बैंक खातों में आनी चाहिए, तो उन्हें अपने ही हक के लिए प्लेसमेंट एजेंसियां तरसा कर रखती हैं, मानो ये नियम और कानून से ऊपर चल रही हो।
10: किसी का 8 महीने का बाकी है, किसी का 9 महीने का, किसी का 12 महीने का, किसी का 14 महीने का, और सभी अपने घरों से दूर लगे हुए हैं इस तरह से, और यहाँ पर इस मांग को लेकर आए हैं कि इन्हें परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये बच्चों को परमानेंट कैसे आमदनी हो सके उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मगर आज ये हालत है कि अपनी नौकरी के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए यहाँ पर ये संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर आज तक लगातार खबरदार करता है। रांची में प्रदर्शन करते युवाओं की आवाज सबसे पहले आज तक ने उठाई, जिनका धरना 12 दिन से जारी है। 3 दिन से भूख हड़ताल देवेंद्र महतो नाम के छात्र नेता कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या छात्रों के मुद्दे पर तभी सत्ता की आंख खुलती है जब वो छात्र दूसरी पार्टी के शासन वाले राज्य के हों। जैसे अब विपक्ष झारखंड के युवा के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठा है।
7: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री। स्टूडेंट्स आर ऑन द स्ट्रीट इन सिवियर पेन। दे डोंट हैव वर्क। दे आर आस्किंग फॉर फेयरनेस इन एग्जाम्स। दे आर आस्किंग फॉर एन एजुकेशन सिस्टम दैट वर्क्स।
1: छात्र बीजेपी शासन पर सवाल उठाकर सड़कों पर उतरे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घेरते, और छात्र अगर कांग्रेस गठबंधन शासित राज्य में सरकार की नीति पर सवाल करते हैं तो बीजेपी राहुल गांधी की चुप्पी पर प्रश्न करती है।
11: अब देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा।
1: राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में कांग्रेस के युवा और छात्रों से जुड़े कार्यक्रम गूंज में जाने वाले हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि रांची में 12 दिन से प्रदर्शन करते छात्रों की मांग वाली गूंज राहुल गांधी कब सुनेंगे?
11: कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही।
1: नीट पेपर लीक के पीड़ित छात्रों से राहुल गांधी मिलते हैं, अच्छी बात, लेकिन 2 अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की ओमार शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने, प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर जब छात्र गुस्सा करते हैं तो फिर बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे को घेरती है, इस्तीफा मांगती है। तो कर्नाटक के मंत्री खड़गे के जवाब पर क्या राहुल गांधी ध्यान देंगे?
11: कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया। जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी राहुल जी पूरी तरह से चुप हैं।
1: यानी कुल मिलाकर सियासत ये कि छात्रों को भी मेरा राज तेरा राज, मेरा शासन तेरा शासन दोनों तरफ बांट दिया गया, जहां रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ 12 दिन से प्रदर्शन जारी है, मांग अब तक इनकी नहीं सुनी गई।
12: जेपीएससी और जेएसएससी में जो लार्ज स्केल करप्शन है और इनका जो आरोप है कि सीटें भेज दी जाती है, आम बच्चे जो तैयारी करते हैं वो टकटकी लगाए बैठे रह जाते हैं, नौकरी कोई और ले जाता है, पैसे वाले को नौकरी मिल जाता है। अब यह आर पार की लड़ाई के मूड में है और दिन रात इसी तरह से स्टैंड के अंदर नारेबाजी होते रहती है।
13: जब तक तत्काल प्रभाव से हाल के दिनों में जेपीएससी और जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई है सरकार रद्द करे, और सरकार स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है स्टेट के लिए एक कानून बनाए कि जो भी व्यक्ति इस तरह के पेपर लीक में संलिप्तता पाई जाती है उसको 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रायल करके फांसी का सजा होगा, उससे नीचे नहीं होगा।
14: जेपीएससी की एग्जाम में जो गड़बड़ी पाई गई है ये पहली बार नहीं है। ये झारखंड राज्य में फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 14वीं जेपीएससी तक हर जेपीएससी गड़बड़ी में ही पाई गई है। लेकिन ये वर्तमान सरकार वही कह रही है जैसे पूर्व सरकार बच्चों को बुड़बक बनाई कि हम सीआईडी का जांच लगाते हैं।
1: 12 दिन से रांची में चलते प्रदर्शन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। मांग है कि 14वीं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा रद्द हो और सीआईडी की जगह सीबीआई से धांधली की जांच कराई जाए।
15: सीआईडी हो गया, उस पे विश्वास हो ही नहीं पा रहा, तो सरकार के ऊपर क्या ही विश्वास करके करेंगे। होगा तो ही विश्वास कर पाएंगे, क्या विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार तो सीआईडी को जाँच करने दे देता है। सीआईडी तो जाँच करके देता है, सरकार का तोता है, जो चाहेगा वही करवाएगा। हम लोग को एक ही उम्मीद है कि सीबीआई को सौंप दे ये चीज।
16: जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे।
17: सरकार के आंख भी है, कान भी है, संवेदनशीलता भी है। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है उसका उत्तर का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे।
18: वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हैं और इसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए झारखंड सरकार इसी पे काम कर रही है।
19: पिछले 15-20 दिन से लगातार झारखंड धूप गर्मी बरसात सबों में हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं जा रहा है। दूसरा जो सवाल है कि यदि जेपीएससी के चेयरमैन के ऊपर आपने रेड डाला, उसका इस्तीफा हो, तो जो उसके मेंबर्स हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं, उनकी पत्नी भी उसकी मेंबर है, इन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही
1: है? छात्रों के मुद्दे पर दो बातें अब तक की राजनीति में देखने को मिलती आ रही। छात्र अगर बीजेपी शासित राज्य के होंगे तो विपक्ष को बहुत जोर से छात्रों का मुद्दा याद आता है, सरकार चुप्पी साधती। छात्र अगर विपक्ष शासित राज्य के होंगे तो विपक्ष के मुंह में दही जम जाता है, बीजेपी कहती है अब तुम बोलो, मुद्दा राजनीति नहीं जवाबदेही होनी चाहिए। और विपक्ष को अगर बीजेपी शासित राज्य में जवाबदेही चाहिए तो जवाबदेही का वो मॉडल अपने शासन वाले राज्य में भी दिखाना होगा।
2: सियासत से लेकर संघ तक अब जैन जी की ताकत को समझने लगा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद भी जैन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। 6 अगस्त को मुंबई में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत की देश भर के 2000 जैन जी युवा से मुलाकात होने वाली है।
1: जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन ने 5वीं इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जैन जी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं, क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जैन जी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है? और क्या जैन जी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जैन जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जैन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब जैन जी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अम्बानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जैन जी और 13 साल की जैन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं।
20: हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका. हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा. अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे.
1: दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेंजी दो तरह के थे, जिसमें एक वाजिद जेंजी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेंजी. और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और राबता कायम करना चाहते हैं. जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है.
21: मेन प्रयास ये करते हैं कि 11 से लेके 19 साल के बच्चों को व्हाट इज भारत एंड व्हाट इज यूनाइटिंग द वर्ल्ड, भारतीय वे, वो समझाने को प्रयास करते हैं. अगली पीढ़ी को अच्छे लीडर बनाने की प्रयास करते हैं.
1: उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेंजी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं.
2: और अब उस एक्सप्रेसवे की खबर से आपको खबरदार करते हैं जिसको बनाने में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है. लेकिन 20 दिन पहले ही जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ वो बार बार अलग अलग जगह पर टूटने की वजह से सवालों के घेरे में है.
22: जिस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बेहतर कनेक्टिविटी और तेज रफ्तार सफर के लिए किया गया था, उद्घाटन के 20 दिन बाद आज 5वीं बार यहां पर रिपेयर वर्क कराने की नौबत आ गई है. इस वक्त मौजूद है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर और जो हालत आप अपने कैमरे के सामने देखेंगे वह सवाल खड़े करता है क्वालिटी वर्क पे उस कंपनी के जिसने यहाँ का काम किया है, उन अथॉरिटीज के उन अधिकारियों पर जिसने पूरा सुपरवाइज किया कि आखिरकार 20 दिन में 5वीं बार मरम्मत कराने की नौबत क्यों आ गई. विजुअल्स में अगर आप मेरे देखेंगे तो ये वही एरिया है, वही स्ट्रेच है 200-300 मीटर का जो डैमेज हो गया था, जिसका सरफेस एरिया डैमेज हो गया था, जिसके बाद इस पूरे हिस्से को काट कर एक बार फिर से इसकी मरम्मत की जा रही है. पीछे अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो तमाम मशीन्स यहाँ पर मौजूद हैं, जेसीबी मशीन्स, आगे टैंकर्स, पूरा ये जो काम है 2 दिन तक के लिए यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के इस पूरे स्ट्रेच को बंद किया गया है. हालत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कई मशीन्स जो हैं वो मौजूद हैं. पीछे अगर आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग पहले ही कर दी गई थी, 3 किलोमीटर तक जो है इस पूरे एक्सप्रेसवे को यहाँ पर बंद किया गया है और जो लोग कानपुर से लखनऊ जाते हैं या लखनऊ से कानपुर आते हैं वो मजबूर हैं इस सिंगल लेन पर ट्रैवल करने के लिए. ये सिंगल लेन जहां पर तमाम जो गाड़ियां हैं हाई स्पीड में आती है, यहां पर आप देखेंगे तो तमाम यहां पर एक लेन जो है टेम्प्रेरी वो बना दी गई है. 2 दिन के लिए पूरा जो एक्सप्रेसवे है इस पूरे स्ट्रेच को बंद किया गया है. यहां पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से हालत यहां पर ख़राब थी. ये सरफेस एरिया है एक्सप्रेसवे का जो यहाँ से जाता है और उसके साथ 6 से 7 इंच का गैप है कि जो नीचे तक इस पूरी रोड को खोदा गया है और उसके बाद यहाँ से इसके लेवल पर ये पूरी बनाई जा रही है.
2: खबरदार में आज के लिए इतना ही. देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
9: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
8: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
9: सुपर स्ट्रॉन्ग
8: और मॉइस्चर प्रूफ।
9: वारंटी
8: 15 साल की।
9: कदम
8: सर प्लीज
9: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
10: क्रॉसबॉन्ड HGMR मैक्स फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
11: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
12: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
13: कुछ तो बात है इस दिल में।
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। दो अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के OMR शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूटा था। इसे लेकर BJP और JDS ने प्रियंक खरगे को घेरने की कोशिश की, उनसे इस्तीफे की मांग हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रियंक खरगे ने जो कहा उसके बाद बीजेपी ने छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठा दिया है। प्रियंक खरगे का दावा है कि भर्ती परीक्षा के सवालों का नंबर और OMR शीट में नंबर बेमेल होने का आरोप सिर्फ कुछ छात्रों की गलतफहमी थी, इसलिए जो लोग OMR शीट के साथ एग्जाम हॉल के साथ बाहर गए वो अपनी जिम्मेदारी पर गए। सरकार की जिम्मेदारी उन छात्रों के लिए थी जो एग्जाम दे रहे थे। इन्हीं दलीलों के साथ प्रियंक खरगे कर्नाटक में पेपर लीक या भर्ती घोटालों के आरोपों पर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आए। प्रियंक खरगे का ये जवाब ऐसे समय में है जब नीट पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा हो चुका है, देश के शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती घोटालों के आरोपों पर झारखंड में छात्रों का 11 दिनों से धरना जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 अलग अलग टेंट्स में भर्ती घोटाले की CBI जांच जैसी मांगों के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मशाल मार्च निकाल रहे छात्रों को खाने पीने जैसी मदद के साथ कुछ वॉलंटियर, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आए हैं। लेकिन आरोप लग रहा है कि झारखंड के छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा। BJP इसे मुद्दा बना रही है। पेपर लीक या परीक्षा में धांधली कहीं हो, देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी है। लेकिन कर्नाटक, झारखंड साथ ही साथ पंजाब में पेपर लीक के मसले पर विपक्ष की चुप्पी पर BJP सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको तमिलनाडु के पूर्व डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बारे में बताएंगे। इस बार उन पर अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर बेहद भद्दी और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इसके बाद उनके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई और उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया हो, लेकिन जो विजय ने एक्शन लिया है बतौर मुख्यमंत्री उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जरूर पहली बार है जब स्टालिन के बयान को लेकर वो कानूनी शिकंजे में फंसे हो। आज आपको विस्तार से बताएंगे ये पूरा मामला क्या है। साथ ही ये भी बताएंगे कि विवादित बयानों को लेकर कुछ लोगों की राय चेहरा देखकर क्यों बदल जाती है। और इसके बाद आपको पेपर लीक और धांधी को लेकर रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बारे में बताएंगे और पूछेंगे कि जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ सबसे आगे खड़े थे वो आज रांची में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। जंतर मंतर में जो लोग दिखे वो झारखंड में क्यों छू मंतर हो गए। झारखंड के हजारों युवा परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। बारिश खराब मौसम के बीच फटे तिरपाल के नीचे बैठे इन छात्रों की मांग सिर्फ इंसाफ है। लेकिन हैरानी की बात है, जिन नेताओं, कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने दिल्ली के आंदोलन पर खूब आवाज बुलंद की थी और अच्छा किया था, आज वो इनके साथ खड़े क्यों नहीं दिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या न्याय की ये मांग सिर्फ राजनीतिक फायदे के तराजू पर तौली जाएगी। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के अगले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बनने वाले हैं। POK चुनाव में PMLN की विवादित जीत के बाद नवाज की शिक्षा पर चर्चा तेज हो गई है, लेकिन चर्चा ये भी है कि कानूनी पेच और बिलावल भुट्टो की बगावत के चलते नवाज की ये कुर्सी खतरे में भी पड़ सकती है। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें उदयनिधि स्टालिन का स्वागत एक हीरो की तरह आज हुआ है। ये उदयनिधि स्टालिन, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई, नारे लगाए गए, समर्थकों ने जश्न मनाया। और ये भी तब हुआ जब आज सुबह तक उदयनिधि स्टालिन की खूब आलोचना हो रही थी। लोग पूछ रहे थे कि वो एक महिला को लेकर इतनी निम्न स्तर की बात कैसे कह सकते हैं। ये वही मामला है जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को निशाना बनाने के लिए अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, क्योंकि दोनों की दोस्ती है और ऐसा लग रहा था कि लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा दिखेगा और उनकी आलोचना की जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों ने आज एक नई बहस छेड़ दी है और यहां से एक खतरनाक राजनीतिक ट्रेंड भी देखने को मिला है। कदम कदम पर जो खबरें आ रही हैं वो बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। एक ऐसा ट्रेंड जिसमें पहले एक नेता आपत्तिजनक बयान देता है, वो भी एक महिला के खिलाफ, फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसी होती है कि उसको अरेस्ट ही कर लिया जाता है और उसके बाद वही नेता खुद को पीड़ित बताने लगता है और आखिर में गिरफ्तारी को ऐसे पेश किया जाता है मानो उसने कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया। यानी असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और पूरी बहस गिरफ्तारी पर आकर टिक जाती है। यही लोकतंत्र के लिए सबसे हैरानी वाली बात है। गिरफ्तारी सही है गलत है ये तो कोर्ट तय करेगा। यहां यह भी सोचे कि अगर गिरफ्तारी किसी जनहित के आंदोलन, किसी बड़े सिद्धांत या जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए हुई हो तो उसे अलग नजर से देखा जा सकता है। लेकिन यहां पे मामला क्या था? मामला किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी का हो तो वहां सबसे पहले आत्ममंथन होना चाहिए, ना कि विजय जुलूस। और वो भी अभिनेत्री त्रिशा पर हमला क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री विजय की दोस्त है। जिस दिन राजनीतिक पार्टियां उनके समर्थक अश्लील भाषा पर शर्मिंदा होने के बजाय उसका राजनीतिक उत्सव और जश्न मनाने लगे, उस दिन लोकतंत्र में संवाद की जगह सिर्फ शोर पचता है। और ये तस्वीरें वही बता रही हैं, पहले देख लीजिए।

0: इसकी आशंका रहती है। अब इसको जीत और हार, पॉलिटिकल नफा नुकसान के तराजू पर तोला जाएगा कि क्या जो गिरफ्तारी मुख्यमंत्री विजय ने की उसकी वजह से उनको ही चोट पहुंचेगी राजनीतिक रूप से, और क्या स्टालिन को उसका फायदा हो रहा है क्योंकि उनके लिए हुजूम इस वक्त इकट्ठा है। लेकिन इन सब से दूर हुआ क्या है, यहां हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि जो सिर्फ एक नेता या एक घटना का नहीं बल्कि हमारे पूरे राजनीतिक रवैये और मानसिकता का सवाल है। कैसे? पिछले महीने जंतर मंतर आंदोलन के दौरान कुछ युवाओं ने, आपने देखा ही सोशल मीडिया पर दिन रात यही बवाल चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक और अशोभनीय, बहुत ही ऐसी भाषा जिसको न चलाया जा सकता है न दिखाया जा सकता है। पूरे देश में बहुत बहस छिड़ गई। कई विपक्षी दलों उनके नेताओं ने कहा कि ऐसी भाषा गलत हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में FIR दर्ज करना, गिरफ्तारी करना अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका तर्क था कि किसी की भाषा भले गलत हो लेकिन उसका जवाब जेल नहीं होना चाहिए, और ठीक है जो प्रावधान कानून में हो उसी के तहत काम होना भी चाहिए। लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक वीडियो संदेश जारी किया, युवाओं को गुमराह हुए बच्चे बताते हुए माफ करने की बात की और सही रास्ता दिखाने की बात कही। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग उन युवाओं के समर्थन में खड़े रहे। उनका कहना था कि सरकार को आलोचना, कठोर भाषा भी सहन करनी ही चाहिए। लेकिन अब आज की घटना देखिए। आज तमिलनाडु में पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक रैली में जो मुख्यमंत्री विजय की दोस्त है अभिनेत्री त्रिषा कृष्णन, उनको लेकर अश्लील टिप्पणी की। डबल मीनिंग में इतना भद्दा बयान दिया है कि वो बयान हम आपको बता भी नहीं सकते। यही नहीं, इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से जोड़कर देखा गया और बयान सामने आते ही पूरे तमिलनाडु में विवाद खड़ा हो गया। और आप तो जानते ही, किसी के खिलाफ एक बयान और उस बयान के बाद कैसे सोशल मीडिया पर तरह तरह से किसी को जलील करने के लिए उसका दोनों ही तरफ के नैरेटिव वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं, पार्टी टीवीके के कुछ नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ FIR दर्ज कराई और FIR दर्ज होने के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस उनके घर पहुंची, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये अभिनेत्री त्रिषा है जिन्हें आप देख रहे हैं। एक बात देखिए बिल्कुल साफ है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सार्वजनिक मंच से किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पूरी तरह जायज है। भाई अगर कोई कंप्लेंट करता है पुलिस उस हिसाब से एक्शन ले। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अचानक कर लेना क्या ये सही है, क्या ये बदले की भावना से पिछली सरकार पर हमला नहीं है जो मुख्यमंत्री विजय कर रहे हैं। तो दोनों तरह की बातें इसमें आ रही हैं और दोनों ही तरफ से अगर कोई महिला पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, कोई भी शिकायत दर्ज कराए, इसमें 1% भी मतभेद नहीं है। लेकिन आज सवाल जो है वो सिलेक्टिव आउटरीच का है, जो एक मामले में तो दिखाई देता है दूसरे मामले में अचानक गायब हो जाता है। आप खुद सोचिए कि जंतर मंतर पर तरह तरह की गालियां दी गई। अब उस वक्त ये कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क दिया गया, लेकिन आज वही लोग उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी का कई लोग स्वागत कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी नेता का विरोध करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना, उसके खिलाफ बोलना जायज है, लोकतंत्र की यही ताकत है। लेकिन अश्लील अपमानजनक अभद्र भाषा के खिलाफ अब उसका विरोध तो होना ही चाहिए। लेकिन यह विरोध हर मामले में समान क्यों नहीं होता? आज अगर उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को सही कहा जा रहा है तो वही कसौटी उस समय भी लागू होनी चाहिए जब इसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल जंतर मंतर पर हुआ। ये दोहरा मापदंड, ये जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, इस पर बड़ा सवाल उठता है। और यही वजह है कि हमें लगा कि आज सबसे पहले आपको ये अंतर दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब सही और गलत का फैसला सिद्धांत से नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा से होने लगे तब लोकतंत्र कमजोर होता है। इस पूरे विवाद के तीन किरदार हैं। पहले हैं उदयनिधि स्टालिन, दूसरे हैं मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, और तीसरी है अभिनेत्री त्रिषा कृष्णन। और ये पूरा मामला जो है वो 3 अगस्त से शुरू होता है। 3 अगस्त को अगर आप देखें, डीएमके के कावेरी जल विवाद को लेकर एक बड़ी रैली कर रही थी और यह तंजावुर में हो रहा था। उदयनिधि स्टालिन का आरोप था कि कर्नाटक तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय इस मुद्दे पर चुप है। कावेरी का मुद्दा तमिलनाडु के लाखों किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ। देखिए असल मुद्दा कैसे, जो गंभीर मुद्दा है वो कैसे पीछे रह जाता है, गाली गलौज किसने किसको अरेस्ट किया उस पर मुद्दा चला जाता है, मुद्दे को भटकाने की भी जो स्ट्रैटेजी होती है। इस मुद्दे के बीच उदयनिधि स्टालिन के भाषण के दौरान भीड़ के एक हिस्से ने अचानक त्रिशा त्रिशा के नारे लगाने शुरू किए। उस वक्त उदयनिधि स्टालिन चाहते तो भीड़ को तुरंत रोक सकते थे, कह सकते थे कि हम यहाँ किसानों कावेरी के मुद्दे पर बात करने आए हैं, किसी महिला पर टिप्पणी करनी सही नहीं है। वो ये भी कह सकते थे कि हमारी शिकायत मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ है, एक अभिनेत्री का यहाँ पर नाम नहीं लिया जाना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पहले मुस्कुराए उसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिस पर अफसोस जताने के लिए भी शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर डबल मीनिंग की सारी सीमाओं और मर्यादाओं को लांघकर कोई बयान दिया जा सकता है तो वो बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया, और इसी बयान के बाद विवाद भड़क गया और आज उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी हुई है। पहले ये बयान सुन।
1: ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரல. ஆனா இத பத்தி இருக்கக்கூடிய
2: முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன, திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்ன
0: ஜெஸ் எஃப்ஐஆர் के आधार पर உதயநிதி ஸ்டாலின் को गिरफ्तार किया गया। वो मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके की एक महिला नेता की शिकायत पर दर्ज हुई थी। टीवीके ने इस मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग से भी की है और पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएमके भी इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई

0: बता रही है। उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका यह भी दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। हालांकि वो इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि वहां पर त्रिशा के नाम के नारे लगाए गए और उसके बाद उन्होंने ये कमेंट किया। सुनिए।
1: You saw the speech. Did I say something wrong? Did I say something? Anybody's name? Except the same name? No. Why do you think this is happening? This is just revengeful. Sorry? Let the court decide. Let the court decide. I don't want to...
0: इस टिप्पणी के लिए उदयनिधि स्टालिन पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी अगर अदालत इन धाराओं में उदयनिधि स्टालिन को दोषी मान ले तो वो कम से कम 7 साल के लिए जेल में जा सकते हैं। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से ही उदयनिधि स्टालिन को आज जमानत दे दी गई और कल वो तमिलनाडु के विधानसभा सत्र में शामिल हो सकते हैं। यहां इस बात को भी याद रखिएगा कि उदयनिधि स्टालिन पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के पोते हैं, जिनकी सरकार पर आज से 37 साल पहले जयललिता को विधानसभा में अपमानित करने का आरोप लगा था। तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा यह चर्चा होती है कि प्रतिशोध में जो भी सत्ता में आता है वो अपने विरोधी को तुरंत ही किसी ना किसी बहाने जेल पहुंचाता है, टारगेट करता है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करता है जिससे एक मिसाल बने। अब देखिए, उस वक्त 25 मार्च 1989 को विधानसभा में मुख्यमंत्री करुणानिधि जो है वो बजट पेश कर रहे थे। विपक्ष ने पहले जयललिता के इस्तीफे और उससे जुड़े विवाद को लेकर हंगामा शुरू किया। बहस के दौरान जयललिता ने करुणानिधि पर तीखे आरोप लगाए और दोनों पक्षों के विधायक अपनी अपनी सीटों से उठकर आमने सामने आ गए और देखते ही देखते सदन में धक्का मुक्की, कागज फेंकना, माइक उखाड़ना, हाथापाई की स्थिति बन गई। इसी अफरा तफरी के दौरान जब जयललिता को सुरक्षा घेरे में लेकर सदन से बाहर निकाल रहे थे तब जयललिता ने आरोप लगाया कि तत्कालीन डीएमके मंत्री दुरई मुरुगन ने उनकी साड़ी पकड़कर खींची। उनका आरोप था कि उस वक्त उनकी साड़ी का पल्लू फट गया, सेफ्टी पिन निकल गई और उन्हें चोट भी लगी। बाद में उनकी फटी साड़ी वाली तस्वीरें पूरे देश में देखी गई जिसने इस घटना को ऐतिहासिक बना दिया था और हमेशा इसकी चर्चा होती है। जब भी राजनीतिक प्रतिशोध की बात होती है तो ये जरूर सुनाया जाता है। और आज जब उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनक और डबल मीनिंग बात कही है तो लोग इस घटना को फिर से याद कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या विजय भी उसी राह पर चल रहे हैं जहां प्रतिशोध की बात की जाती है, या फिर वो एक नए नेता के रूप में उभरे, एक ऐसा नेता जो पारंपरिक राजनीति से अपने आप को दूर करके एक नई मिसाल बनाना चाहता था, और उसी मिसाल में क्या वो जीरो टॉलरेंस करना चाहते हैं ऐसी घटनाओं के लिए? बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ एक सवाल और समझिए और वो ये है कि आखिर तमिलनाडु की राजनीति में जब भी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर हमला करना होता है तो बार बार अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का नाम ही क्यों सामने आता है? उदयनिधि स्टालिन ने से पहले इसी साल फरवरी महीने में बीजेपी नेता नयनार नागेंद्र, उन्होंने भी विजय पर तंज कसते हुए पूछा था कि वो त्रिशा कृष्णन के घर से बाहर कब निकलेंगे, और बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली थी। यानी अलग अलग पार्टियों के नेता लेकिन निशाना एक ही। अब जरा सोचिए कि अगर किसी नेता से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो उसमें एक महिला को बीच में घसीटना क्यों जरूरी हो जाता है? आखिर इन नेताओं की मानसिकता में दिक्कत क्या है, या फिर इनकी जो वैचारिक सोच है वो इतनी संकीर्ण, इतनी लघु कैसे है कि वो इससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं? और ये मानसिकता आपको राजनीति में हर जगह मिल जाएगी। यहां ये भी देखिए कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और त्रिशा कृष्णन आखिर दोस्त कैसे बने और इस रिश्ते पर इतनी राजनीतिक छींटाकशी आखिर क्यों होती है? इसकी शुरुआत साल 2004 में तब हुई जब घिल्ली नाम की फिल्म में थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन को एक साथ देखा गया था। दोनों उसमें एक्टिंग कर रहे थे। उस समय थलपति विजय तमिल फिल्मों के बड़े सुपरस्टार बन रहे थे, त्रिशा कृष्णन भी तेजी से अपनी पहचान बना रही थी। घिल्ली जब रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। ये सिर्फ सुपरहिट फिल्म नहीं हुई बल्कि तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने लगी। फिल्म में विजय और त्रिशा की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई।

इस फिल्म का गाना अप्पड़ी पोडू आज भी तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गानों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, 2024 में जब फिल्म के 20 साल पूरे हुए तो इसे दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया और दर्शकों ने एक बार फिर उसी उत्साह के साथ इस फिल्म को देखा। सोचिए 20 साल बाद गिल्ली की सफलता के बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की। 2005 में तिरुपाची, 2006 में आथी, 2008 में कुरुवी फिल्म आई। लगातार हिट फिल्मों के बाद विजय और तृष्णा तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ी में शामिल हो चुके थे, लेकिन फिर दोनों में करीब 14-15 साल तक कोई फिल्म साथ में नहीं की। दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके प्रशंसक हमेशा उनकी वापसी का इंतजार करते रहे। कहा जाता है कि इसी दौर में थलपति विजय ने ऐसी फिल्में ज्यादा की जिनमें वो सामाजिक मुद्दों के साथ अपनी एक एंग्री यंग मैन की छवि गढ़ रहे थे। इन्हीं तमाम फिल्मों के बाद साल 2023 में लियो फिल्म आई, जिसमें एक बार फिर थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन को साथ देखा गया और दोनों को लेकर फिर से कई अफवाहें उड़ने लगी। यह सिलसिला तब और बढ़ा जब नॉर्वे के ओस्लो में दोनों की साथ टहलते हुए तस्वीरें वायरल हुई, फिर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर दोनों साथ दिखे। तो कुल मिलाकर आप समझ रहे हैं कि इस तरह की एक फोटो और उसके बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां, बातें, और इन सब के जरिए कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि दोनों साथ हैं, और इस वजह से भी ये एक पॉलिटिकल हथियार बनता चला गया। मतलब विजय को टारगेट करना है तो त्रिशा पर हमला कीजिए। हालांकि विजय और त्रिशा ने इन खबरों को कभी सार्वजनिक रूप से खुद कभी नहीं स्वीकारा है। इसी दौरान त्रिशा के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लोगों का ध्यान जाने लगा, खींचने लगा उससे भी। जो लोग चाहते थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। थलपति विजय के जन्मदिन पर उन्होंने उन्हें द बेस्टेस्ट लिखकर शुभकामनाएं दी, जबकि 2024 में विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स गोट रिलीज हुई और इस फिल्म में त्रिशा का छोटा सा कैमियो था, लेकिन उन्होंने विजय के साथ वही मशहूर अप्पड़ी पोडू वाला डांस स्टेप दोहराया जिसने 20 साल पहले गिल्ली को यादगार बनाया था। फिल्मों के अलावा भी दोनों कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ दिखाई दिए हैं। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों की तस्वीरें काफी चर्चा में रही। 4 मई को जब विजय की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उसी दिन त्रिशा तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। कई लोगों ने इसे विजय की जीत से जोड़कर देखा, लेकिन इसकी भी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई है। ना त्रिशा ने कहा है कुछ, ना थलपति विजय ने, सीएम विजय। 10 मई को विजय के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी त्रिशा मौजूद थी, और 23 जुलाई 2026 को उन्हें चेन्नई के रोहिणी थिएटर में विजय की फिल्म जन नायकन देखते हुए भी देखा गया, जिसके कारण जो नेता मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की राजनीति के विरोध करते हैं वो नेता उनके समर्थक त्रिशा कृष्णन पर गंदी राजनीति और सोशल मीडिया पर गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये राजनीति आज भी जारी है। जबकि हमें हैरानी होती है कि हर बार राजनीति में महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों बन जाती हैं, या महिलाओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया जाता है। यहां ये भी सोचे कि जिस मंच पर तमिलनाडु के किसानों की बात होनी चाहिए थी, वहां उदयनिधि स्टालिन ने लाखों किसानों का नुकसान किया। आप इन तस्वीरों को देखिए जो तिरुचिरापल्ली से आई है, और वहां किसानों ने अपने शरीर को रेत में जिंदा गाड़कर विरोध प्रदर्शन किया है, और ऐसा उन्होंने किसी नाटक के लिए नहीं किया है या पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं किया है, बल्कि इसलिए किया ताकि सरकारों को ये बता सकें कि अगर उन्हें कावेरी का पानी नहीं मिला तो उनकी खेती भी जिंदा दफन हो जाएगी, उनके परिवारों का भविष्य भी दफन हो जाएगा। यानी ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ना ही ये किसी मुख्यमंत्री की दोस्त को लेकर टिप्पणी करने का है या हल्के अंदाज में हंसने का है और डबल मीनिंग जोक्स का है। ये लाखों किसानों की रोजी रोटी है, लेकिन अफसोस इस गंभीर मुद्दे पर बात होने के बजाय उदयनिधि स्टालिन इस चर्चा को त्रिशा कृष्णन पर लेकर चले गए। वहां पर नारे लगे, उन्होंने भीड़ को रोकने के बजाय उस पर एक ऐसी डबल मीनिंग की टिप्पणी की, फिर मामला बढ़ा, गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद से अब रिहाई हुई है और अब माला पहनाया जा रहा है। आज हम आपको इन किसानों की पीड़ा भी दिखाना चाहते हैं जिनका आंदोलन कभी हेडलाइन नहीं बन पाता। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लाखों लोगों किसानों की जिंदगी चलाती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी ये नदी कर्नाटक के कोडगु जिले के तलकावेरी से निकलती है और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका कुल क्षेत्र करीब 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और सबसे अहम बात यह है कि कावेरी नदी के पूरे बेसिन का लगभग 2/3 हिस्सा खेती के लिए
इस्तेमाल होता है। यानी दक्षिण भारत के लाखों किसानों के लिए यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उनकी जीवन रेखा है। लेकिन यही नदी कई दशकों से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद की वजह भी बनी हुई है। और यहां आप कारण भी समझिए, कावेरी नदी का जन्म कर्नाटक में होता है लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में बहता है और दोनों राज्यों की खेती इसी पानी पर निर्भर है। बारिश अच्छी होती है तब

अच्छी होती है तब विवाद कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश कम होती है दोनों राज्यों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। कई साल तक ये मामला अदालतों में चलता रहा, कई बार हिंसा हुई, कई लोगों ने इस हिंसा में अपनी जान तक गंवाई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया। कोर्ट ने कहा कि हर साल तय मात्रा में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना होगा। इसके लिए दोनों राज्यों की सीमा पर बिलिगुंडलू नाम की जगह तय की गई, जहां ये मापा जाता है कि वास्तव में कितना पानी छोड़ा गया है। अब आप पूछेंगे कि जब बंटवारे की व्यवस्था है तय है तो फिर विवाद क्या है? तो कारण है, वो भी समझिए। 28 जुलाई 2026 को दिल्ली में कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी यानी CWRC की बैठक हुई। कमेटी ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वो 29 जुलाई से लगातार 15 दिनों तक रोज इतना एक लिमिटेड जो क्यूसेक पानी है, रोजाना 3500 क्यूसेक पानी जो है वो तमिलनाडु के लिए छोड़े। अगर ऐसा होता तो तमिलनाडु के करीब 4500 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिल जाता, लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि ऐसा हुआ नहीं। उनका कहना है कि आदेश 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने का था, लेकिन सीमा पर सिर्फ 158 से 550 क्यूसेक पानी ही पहुंचा, यानी जितना पानी मिलना चाहिए था उसका एक छोटा सा हिस्सा मिला। इसी वजह से मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरकार की मांग है कि कर्नाटक को तय हिस्से का पानी छोड़ने का आदेश दिया जाए, कावेरी समझौते का पालन कराया जाए। यहां यह भी सवाल है कि क्या कर्नाटक जानबूझकर पानी रोकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इस साल पूरे दक्षिण भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। कर्नाटक में करीब 19%, तमिलनाडु में 13%, केरल में 23%, पुडुचेरी में 55% तक कम बारिश दर्ज की गई है। यानी सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, पूरा दक्षिण भारत पानी की कमी से जूझ रहा है। कर्नाटक का कहना है कि उसके बड़े बांध इस बार भर ही नहीं पाए। दावा है कि कावेरी में आने वाला पानी पिछले 30 साल से औसतन करीब 66% कम है, और यही वजह है कि पहले उसे अपने शहरों और गांवों के लिए पानी का को बचाना पड़ रहा है और तमिलनाडु के लिए कम पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन मुसीबत तो किसानों की है जो तमिलनाडु में इस पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, मिट्टी में अपने शरीर को गाड़कर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात है ना कि अगर कर्नाटक की मजबूरी है तो तमिलनाडु की भी उतनी ही बड़ी मजबूरी है। उनके किसानों की क्या हालत है आप देख रहे हैं। तमिलनाडु को कावेरी डेल्टा को, तमिलनाडु का जो एक पूरा कावेरी डेल्टा है उसको तमिलनाडु का राइस बोल यानी धान का सबसे बड़ा इलाका कहा जाता है। अब ऐसे में उनके सामने क्या स्थिति, अगर इसी समय कर्नाटक से पानी नहीं आया तो पूरी फसल समझ लीजिए कि खतरे में पड़ गई। पिछले साल समय पर पानी मिलने से करीब 7 लाख एकड़ में खेती हुई थी, लेकिन इस साल अब तक बहुत कम हुआ है। लाखों किसानों की आय, उनकी साल भर की मेहनत दांव पर लगी हुई है, और इसीलिए यह मुद्दा बहुत बड़ा है। ज्यादा से तंजापुर पूरे कावेरी डेल्टा पर पड़ा है, तमिलनाडु का अन्न भंडार कहा जाता है, और इस तंजापुर में जाकर उदयनिधि स्टालिन ने क्या किया वो आपने देख ही लिया। खैर, तमिलनाडु में किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, और ऐसा न जाने कितने विरोध प्रदर्शन हो रहे होंगे जो कभी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। इन्हीं में से एक है झारखंड का जेंजी आंदोलन। पेपर लीक परीक्षाओं में धांधली के उसी मुद्दे को लेकर शुरू हुआ जिस पर जंतर मंतर का आंदोलन हुआ था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आंदोलन को लेकर कई नेता, कई राजनीतिक पार्टियां, कई कलाकार, बहुत सारे लोग वैसी चिंता नहीं जता रहे जैसी चिंता उन्होंने जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर जताई थी, जबकि दोनों आंदोलन और आंदोलनों का मुद्दा एक जैसा है, छात्र बैठे हैं। झारखंड में तो जो जेंजी युवा आंदोलन पर बैठे हैं उनमें 90% ऐसे हैं जिन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए तैयारी की थी और अपने कई साल इन परीक्षाओं को उन्होंने दे दिए। लेकिन आज इन छात्रों की डीपी लगाने वाला, इनकी रील्स शेयर करने वाला, इनके मुद्दों पर इंस्टाग्राम की स्टोरी डालने वाला दिख नहीं रहा, ना नेता, ना कलाकार, ना बड़े इन्फ्लुएंसर्स। ये आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है और ये छात्र अपनी मांग रख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें बारिश के बीच भी ये छात्र ऐसे तिरपाल के नीचे ठिठुरते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं। इन छात्रों की नाराजगी विपक्ष के उन नेताओं से भी है जो जंतर

0: 1977 के आंदोलन को लेकर सक्रिय थे, लेकिन रांची के इस आंदोलन पर उन्होंने एक भी पोस्ट या बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी पोस्ट नहीं, जंतर मंतर पर आंदोलन जो हुआ उस पर वो लगातार आंदोलन करते रहे। वो खुद भी, हालांकि वो जंतर मंतर नहीं गए थे, लेकिन वो गांधी स्मृति गए, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने धरना दिया। झारखंड के इस आंदोलन पर उनकी तरफ से अब तक एक भी बयान नहीं आया है। ये भी तब हुआ है जब झारखंड की गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस के चार नेता हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बने हुए हैं और खुद हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जंतर मंतर का आंदोलन पूरे जोर शोर से उठाया। उनकी पार्टी के कई सांसद जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन झारखंड के छात्र आंदोलन पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इसके अलावा 10 से ज्यादा बार जंतर मंतर के आंदोलन में मंच पर दिखने वाले अरविंद केजरीवाल, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जंतर मंतर जाने वाले जो कई शिवसेना गुट के जैसे उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इस आंदोलन पर अभी कुछ भी बोलते हुए नहीं पाए गए हैं। ये सारे वो विपक्षी नेता हैं जो जंतर मंतर के आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि जंतर मंतर के आंदोलन में बोलना, उनको समर्थन देना वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि छात्र निकले थे और वो इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से थक हार कर निकले थे, जहां पर पेपर लीक के बाद पेपर लीक और उनके पूरे भविष्य पर, उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा था। आखिरकार जब उन्होंने देखा कि व्यवस्था पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, तब वो जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन ऐसा ही हो रहा है इस वक्त झारखंड। उन छात्रों के साथ खड़ा होना जरूरी था, वो पेपर लीक के खिलाफ थे, आज इन छात्रों के साथ खड़ा होना जरूरी है। झारखंड का यह आंदोलन भी परीक्षा में धांधली के खिलाफ है, लेकिन अगर इसके समर्थन में कोई नहीं आता है तो सवाल खड़े होते हैं। यहां बात सिर्फ विपक्षी नेताओं की नहीं है, बल्कि अगर आप देखिए तो इस पूरे सिस्टम में बहुत सारे कलाकार भी थे, बहुत सारे समाज से जुड़े हुए लोग थे जो जंतर मंतर पहुंचे थे, लेकिन वो भी यहां पर नहीं दिखाई दे रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें उन तमाम लोगों की है, इन्फ्लुएंसर्स की है, जो उस पर खूब बोल रहे थे, लेकिन इस वक्त वो नदारद है। और ये सोचिए कि ये छात्र कौन है। ये बीजेपी के छात्र नहीं है जो इनका समर्थन ना किया जाए। इनमें कई छात्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्होंने हेमंत सोरेन और कांग्रेस को जिताने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में वोट दिया था, लेकिन अब यही छात्र कहते हैं कि आज जब इन्हें इंसाफ की जरूरत है, इन्हें एक स्टेडियम में संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया है। सुनिए।
1: आज का संघर्ष नहीं है मैम, ये हर साल का ही संघर्ष होता है। हम लोगों को एग्जाम देने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एग्जाम लेने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट, रिजल्ट जारी हो गया तो कटअप के लिए प्रोटेस्ट।
2: केंद्र में जो नीट पेपर लीक हुआ, वहाँ छात्र जंतर मंतर में प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे, उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिली, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया। झारखंड में तो शिक्षा मंत्री भी नहीं है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधार होना चाहिए, यहाँ भी सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए।
3: ये रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो देखिए सूखा चावल को रात में डिनर मिला है, कैसे खा रहे हैं,
4: और फसल भी नहीं जुड़ रहा है।
3: देखिए कुछ नहीं मिला है, थोड़ा सा चावल मिला है और ये चावल खाकर, और आपको एक और दिखा दिए, देखिए इनको भी सिर्फ चावल मिला है और ये अपने अपने हक के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं।
5: हम क्या मांग रहे हैं आपसे? आपके मुख्यमंत्री का सीट मांग रहे हैं, गांडे विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, कुछ भी तो नहीं। हमारा मुद्दा है, हमारा मांग है कि जेएसएससी जेपीएससी में जो भी धंधाली हो रहा है उसको आप सही कीजिए।
6: पीसीएस का मुझे लगता है ना मेरा सपना टूट गया, वो दुख मेरा बहुत अंदर का दुख है, तो कहीं ना कहीं मेरा दुख ना इन लोगों का आवाज तो बनी गया। सोशल मीडिया में आके रोना अच्छी बात नहीं है। जब मैं समाज को सुधारने की बात करती हूँ तो मैं रो नहीं सकती हूँ। मेरे पापा हमेशा मुझे टाइमलाइन देते हैं, बेटा 2022 लास्ट है, हमको भी बहुत टाइम मिला ऐसे बोलकर कि 2022 लास्ट है, 2023 तुमको देख लिए, 2023 में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा हम लोग का भी जिम्मेदारी है, शादी दे देंगे। बात करना छोड़ दिए, घर नहीं बात करते हैं, अब घर जाना छोड़ दिए।
7: हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं, हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। हम लोग उसे क्या मांग रहे, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं, ना मैया योजना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो मेहनत किए सिर्फ उसका फल चाहिए, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा प्लान भी नहीं है, हमारा प्लान भी कहाँ है।
8: हम लोग को बताया दिया जाता है कि इस पार्टी से उस पार्टी से, ऐसा भी बात होता है। आपको लग रहा है सर इतना इतना रात हो गया और हम लोग जग रहे हैं किस पार्टी के लिए जग रहे हैं? यहाँ कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित है कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? हम लोग को चाहिए कि इस देश के सारे जो नेशनल न्यूज वाले हैं वो आए दिखाए झारखंड का क्या परिस्थिति है, क्या बना के रखे हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। जिस देश जिस राज्य ने सबको उजाला किया, आज उस राज्य में इतना अंधेरा है कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। यही हमारा व्यवस्था है।
9: हम छात्र काफी परेशान है, हमारी बातों को सुनिए। आज हमारी मांगे मान लीजिए, हम कल से लाइब्रेरी में होंगे। हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हम कोई आंदोलनकारी या क्रांतिकारी या हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम छात्र हैं और सिर्फ छात्र हैं।
0: बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं पहुंचे हैं। तो अभिजीत दीपके का कहना है कि उन्होंने रांची में धरने पर बैठे छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की है और ये कहा है कि वो जल्द वहां आने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्र ये कहते हुए सवाल उठा रहे हैं कि अभिजीत दीपके से लंबी बातचीत की थी उन्होंने, जिसमें हेमंत सोरेन की सरकार और उसमें शामिल कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाला गया है जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन या फिर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या मंत्री शामिल हैं उनको लेकर सवाल किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया वो वीडियो और ना ही उनकी पार्टी से अब तक कोई आया है। देखिए
10: मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं ईमान से मेरे भैया ने
11: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
10: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
12: देखिये अभिजीत दीपके जी समर्थन देने का जो बात बोले हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे नैतिक समर्थन चाहिए, ये नहीं कि पॉलिटिकल समर्थन नहीं चाहिए। किसी तरह का उनका झंडा बैनर पोस्टर नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य के भी विपक्ष के बहुत सारे पार्टियों का भी नैतिक समर्थन है, लेकिन हम लोग किसी को मंच नहीं दिए हैं। अभिजीत दीपके भी आते हैं तो उनका नैतिक समर्थन का स्वागत हम करते हैं।
0: कल यानी 5 अगस्त से महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए दिल्ली से कई नेता वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभिजीत दीपके खुद झारखंड के आंदोलन में शामिल होने जाएंगे या नहीं अभी यह स्पष्ट नहीं है। इस बीच झारखंड में पिछले 11 दिनों से चल रहा छात्रों का यह आंदोलन अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ऐलान किया है कि वो इसी 10 अगस्त को रांची में झारखंड विधानसभा तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और सरकार से झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में बड़े सुधार करने, परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने, पिछली परीक्षाओं में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच करने की मांग करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह भी कहना है कि वो सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से परीक्षाओं में धांधली की जांच कराना चाहते हैं और यही अभी पूरा पेच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। 2024 में जब लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब वो मामला भी ईडी ने दर्ज किया था। ऐसे में झारखंड सरकार को डर यही है कि अगर उसने सीबीआई को ये जांच सौंप दी तो केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड की परीक्षाओं में जांच करने का मौका मिलेगा और उससे आरोप है कि केंद्र सरकार का दखल झारखंड में बढ़ सकता है। तो दोनों पक्ष हमने आपको बता दिए और इसी मांग को लेकर यह पूरा आंदोलन फंसा हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च निकालने की ऐलान किया है। यहां यह भी देखिए कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों को झारखंड सरकार या सीआईडी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं, इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इसी साल 12 अप्रैल को जब एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई तब पुलिस को यह खबर मिली कि रांची के पास एक निर्माणाधीन इमारत में कई लड़के इकट्ठा हुए जिन्हें परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। जब जांच हुई तो इस इमारत के अंदर 166 लोग मिले, इनमें कई छात्र थे और बाकी सॉल्वर गैंग के लोग थे जो 10 लाख रुपए लेकर कई लोगों को परीक्षा में आने वाले सवाल बताने, जवाब याद कराने का दावा कर रहे थे। जब यह मामला खुला तो कई छात्रों ने बताया कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और इसमें बिहार का अतुल वत्स मास्टरमाइंड है, लेकिन सरकार और पुलिस ने छात्रों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये कह दिया है कि ये मामला छात्रों से ठगी का है, ना कि पेपर लीक, और इसी के बाद कई छात्रों ने पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा कि झारखंड के हर बार पेपर लीक होता है और हर बार इस मामले को पुलिस से दबा दिया जाता है और विवाद ज्यादा बढ़ता है तो उसकी जांच सीआईडी को सौंप दी जाती है, लेकिन अब इसे वो स्वीकार नहीं करेंगे और यही मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग, जो छात्र वहां पर हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कई लोग स्वेच्छा से अपनी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और छात्रों ने भी कहा है कि वो मरते दम तक संघर्ष करने के लिए तैयार है।
13: कार हमारी ऐसी नौबत कर दी है, अस्पताल लेके अभी
14: ये सरकार का जैसा रवैया उससे दुख भी बहुत है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे 10वां 11वां दिन हो गया है लेकिन अभी तक कोई किसी ने पहल नहीं लिया।
15: सीआईडी को जांच करने दे देता है, सीआईडी तो जांच करके देता है, सरकार का उतोता है, जो चाहेगा वही करवाएगा। हम लोग को एक ही उम्मीद है कि सीबीआई को सौंप दे ये चीज।
16: 10 तारीख का हम लोग कॉल है विधानसभा घेराव का, हमें उम्मीद है उस दिन झारखंड सरकार की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि झारखंड के रांची शहर में वो जनसैलाब उभरेगा जो आज तक कभी हुआ नहीं था।
17: सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे।
18: सरकार से ये कहना चाहूंगी कि हम आंदोलन में आंदोलन करना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है, आपने हमें मजबूर किया है तो हम घर छोड़ करके आज एक खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं।
13: का जो आरोप है कि सीटें बेच दी जाती है, आम बच्चे जो तैयारी करते हैं वो टकटकी लगाए बैठे रह जाते हैं, नौकरी कोई और ले जाता है, पैसे वाले को नौकरी मिल जाता है।
19: तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा? रहजनों से कोई गिला नहीं है, जेपीएससी अध्यक्ष, जेएसएससी सेक्रेटरी, दे ऑल आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर गवर्नमेंट, दे आर द बाय प्रोडक्ट। हम ये कहना चाहते हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा? मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं है, तेरी रहबरी पर सवाल है।
0: इस आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पहली बार कोई बयान दिया है और ये कहा है कि छात्रों को न्याय मिलकर रहेगा, वो प्रदर्शनकारी छात्रों से जल्द संवाद करेंगे। सुनिए,
20: छात्र लोग आपसे दो वोट की उम्मीद कर रहे हो लगातार।
21: आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितने गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है।
22: सर, कोई कमेटी बनाई जा रही है क्या?
23: कोई डेलीगेशन भी मिलेगा क्या सरकार के
22: स्तर पर? सरकार से कोई डेलीगेशन
23: जाएगा क्या संवाद के लिए?
21: हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय।
0: और अब हम कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ उपद्रव की कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं जो कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ है, मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और इसके लिए शिव भक्त जो है वो गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं। गंगा जल लाने के इस पूरे एक संघर्ष को भक्तिभाव से कांवड़ यात्रा कहा जाता है, लेकिन ये देखा गया है कि लगभग हर साल कांवड़ खंडित होने की वजह से कांवड़िए कई जगहों पर नाराज होते हैं और इस बार भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। सबसे बड़ी तस्वीर मेरठ से आई है जहां पर कांवड़ियों के दो गुटों में मारपीट हुई, जिसमें एक गुट ने पुलिस वैन में बैठे दूसरे कांवड़िए को खींचकर मारपीट का आरोप लगा है और दर्जनों कांवड़ियों की भीड़ ने फिर आरोप के मुताबिक पुलिस के सामने भी जो हंगामा किया है। कांवड़ियों द्वारा हो रही इस मारपीट और तोड़फोड़ को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि पिटने वाले व्यक्ति पुलिसकर्मी थे, लेकिन यह गलत है। पुलिस के मुताबिक कांवड़ यात्रा के लिए निकले दो गुटों की में ये मारपीट हुई थी, जिसमें एक गुट गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार जा रहा था, दूसरा गुट कांवड़ लेकर वापस लौट रहा था और पुलिस कह रही है कि इनकी आपस की लड़ाई है।
1: सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ कावड़ियों द्वारा मेरठ पुलिस कर्मियों के साथ में मारपीट की गई है एवं उनकी वर्दी फाड़ी गई है। ये कथन पूर्णतः असत्य है। हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे तभी विरुद्ध दिशा से आने वाले अन्य कावड़ी व्यक्ति के साथ में इनके साथ आपसी टकराव हुआ और मारपीट हुई। ऐसी स्थिति में थाना दोराला पुलिस के द्वार में सूझबूझ दिखाते हुए मौके पर पहुंच के दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया गया और जिसमें सोनू और उसका साथी गुड्डू इनको गाड़ी में बिठाया गया। दूसरा पक्ष उग्र होकर इन्हीं लोगों को गाड़ी से निकलते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है।
0: अभी दो दिन पहले रुड़की में भी कावड़ियों के उपद्रव का मामला सामने आया। यहां पर भी मामला कावड़ियों के बीच लड़ाई का था। कावड़ियों की गाड़ी की टक्कर सड़क पर कांवड़ लेकर जा रहे दूसरे कांवड़ियों से हो गई थी। इस बात से नाराज कांवड़ियों की भीड़ ने कार चालक को बुरी तरह पीटा, उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे लेकिन वो हंगामा करने वाले कांवड़ियों को रोक नहीं पाए। गाजियाबाद में कई जगह केस सामने आया है। यहां पर एक एम्बुलेंस ने कांवड़ को टक्कर लगाई जिसके बाद हंगामा हुआ। इस हादसे में कांवड़ को नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन कई कांवड़िए इस पर नाराज हुए और सड़क पर जाम लग गया। काफी देर बाद जाकर यह हंगामा शांत हुआ। बहुत बार लोग सोचते हैं कि आखिर कांवड़ लेकर आने वाले कांवड़िए छोटी सी टक्कर या विवाद पे क्यों, लेकिन दरअसल अगर आप देखिए तो इस तरह की घटनाएं कई सामने आ रही हैं और कांवड़ खंडित होने की बात जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं बवाल का कारण बन जाती है। दरअसल कांवड़ यात्रा में कांवड़ का खंडित होना संकल्प के टूटने जैसा होता है। कांवड़ यात्रा करने वाले शिव भक्त गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करने का प्रण लेते हैं। अगर किसी कारण से यात्रा के दौरान उनकी कांवड़ खंडित हो जाती है तो शिव का अभिषेक करने का उनका संकल्प टूटता है और इसी वजह से कई बार कांवड़िए भड़कते हैं। कांवड़ के खंडित होने से मतलब है किसी भी कारण से कांवड़ का टूटना, जमीन पर गिरना, कांवड़ में लाए जा रहे गंगा जल का जमीन पर गिर जाना, बह जाना और या फिर डाक कांवड़ लाने वाले कांवड़ियों का रास्ता रुक जाना। कई बार वाहनों की टक्कर, जाम, भीड़ की वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है और तब कांवड़ को खंडित मानकर जो कांवड़िए हैं वो नाराज हो जाते हैं। आमतौर पर कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आम लोग भी सड़कों पर जा रहे हैं और वहां से भी जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं वो कई बार रोड क्रॉस करते हैं या सामने से जाते हैं या बगल से जाते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक कॉरिडोर जैसा अगर बने तो शायद उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था ठीक हो पाए जिससे अन्य वाहनों की एंट्री बंद हो और उनके लिए एक रास्ता भी बन जाएगा और जो आम लोग हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ना होने की वजह से कई बार कांवड़ यात्रा वाहनों की चपेट में आ जाते हैं और इससे कांवड़ के खंडित होने का भी भय रहता है और इसके साथ कांवड़ यात्रियों की जान जाने का भी एक खतरा रहता है। हरिद्वार के पास ऐसा एक हादसा हुआ है। सड़क पर जा रहे कांवड़ियों को एक पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। टक्कर मारने के बाद आरोपी तो फरार हो गया लेकिन इस हादसे में कांवड़ियों को काफी चोटें आई हैं। कई कांवड़ियों ने यह भी माना है कि अगर यात्रा के लिए सड़क मार्ग पर अलग से कॉरिडोर की व्यवस्था हो तो फिर उनको दिक्कत नहीं आएगी। कांवड़ यात्रा साल में एक बार होता है और सावन के महीने में होती है और लाखों शिव भक्त इसमें शामिल भी होते हैं। हर शिव भक्त अलग तरह का संकल्प लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलता है। कांवड़ यात्रा के अलग रंगों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और अब आपको बताएंगे कि आखिर एक लड़की, एक महिला अपनी सुरक्षा के लिए आखिर क्या क्या करे, आखिर कहां जाए उसने स्कूल बदला, रास्ता बदला, पुलिस की चौखट पर गुहार लगाई और तो और समाज के दबाव में आकर पंचायत में समझौता भी कर लिया। लेकिन इसके बावजूद वो इस दरिंदे की नजरों से बच नहीं पाए। फरीदाबाद से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारी व्यवस्था के उन तमाम दावों पर बड़ा सवालिया निशान है जो महिलाओं की सुरक्षा का दम भरते हैं, लेकिन उनके साथ क्या करते हैं वो देखिए। फरीदाबाद का सिकरौना इलाका, एक प्राइवेट स्कूल में घुसकर महिला टीचर की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। ये आरोपी काफी दिनों से इस टीचर के पीछे पड़ा हुआ था। ये महिला इससे बिल्कुल भी मिलना या बात नहीं करना चाहती थी। आरोपी मुंह को ढक कर स्कूल पहुंचा, खुद को महिला टीचर के पति के रूप में पेश किया और बहाने से क्लास से बाहर बुलाया। जैसे ही महिला क्लासरूम से मेन गेट की तरफ पहुंची, आरोपी अमित ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ खींचा, ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। उसने महिला पर 34 बार चाकू से हमला किया। मौके पर पहुंचने के बाद भी स्कूल के प्रिंसिपल भी महिला को बचा नहीं पाए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर बैठकर फरार भी हो गया। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटों बाद उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये खूनी खेल अचानक नहीं खेला गया था, ये गहरी साजिश का नतीजा था। आरोपी 21 साल का अमित है जो सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है और दूध बेचने का काम करता है। वो संध्या से पिछले 2 साल से संध्या को जानता था। संध्या उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अमित एक तरफा सनक में उसका लगातार पीछा कर रहा था। यहीं से शुरू होती है एक महिला की, उसकी वो पूरी लड़ाई की कहानी जो उसने खुद को बचाने के लिए लड़ी। ये महिला पहले आरोपी के गांव के एक स्कूल में पढ़ाती थी। यहीं से वो संपर्क में आया और तंग करने लगा। परेशान होकर इस टीचर ने 1 साल पहले दूसरे गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपना रास्ता, अपनी टाइमिंग तक बदल ली ताकि उस दरिंदे का साया भी उस पर ना पड़े। इस कहानी का सबसे दर्दनाक और विचलित करने वाला पहलू जानते हैं क्या है? वो दौर है जब पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई थी। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Expectation से better placement मिली है तुझे? अब सब set है ना?
2: सब set है. बस अब चाहिए एक salary account जो match करे मेरी lifestyle से.
3: तो सोचना क्या है? मेरा अपना bank है ना?
1: मतलब?
3: मतलब पंजाब नेशनल बैंक जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर ओटीटी सब्सक्रिप्शन लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे.
1: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ.
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है. पीएनबी, मेरा अपना बैंक.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
2: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
3: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
2: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
3: सुपर स्ट्रॉन्ग
2: और मॉइस्चर प्रूफ।
4: वारंटी
2: 15 साल की।
3: कदम
2: सर प्लीज
3: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
5: क्रॉसबॉन्ड HDMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
6: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
7: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन ने पांचवी इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जेन जी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं, क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जेन जी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है? और क्या जेन जी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जेन जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जेन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब जेन जी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अम्बानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जेन जी और 13 साल की जेन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेन जी दो तरह के थे, जिसमें एक वाजिब जेन जी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेन जी। और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और राबता कायम करना चाहते हैं। जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है। उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेन जी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं। और गौर करने की बात ये कि 6 अगस्त को संघ प्रमुख की जेन जी से मुलाकात के पहले 5 अगस्त को अभिजीत दीप की अपनी पार्टी की बैठक में संगठन के विस्तार, भविष्य की रणनीति और पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करने वाले हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब हमारी अगली मुलाकात आपसे होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ज्यादा परेशान ना हो। स्वभाव चंदन जैसा रखोगे तो सांपों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी बोले, वो ऐसा करने वाले होते कौन है। आरएसएस की सोच को राहुल ने कहा खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं। सरयू की पावन धरा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को कांग्रेस ने कहा गूंगी गुड़िया। भड़की एनसीपी, फडणवीस शिंदे ने महिलाओं के अपमान से जोड़कर साधा निशाना। E20 पेट्रोल विवाद के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले किसान, एथेनॉल के समर्थन में आवाज बुलंद की। अन्नदाताओं ने कहा गलतफहमी दूर करना जरूरी। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा। एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक नीट पेपर लीक के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर धधकती राजनीति पर। संसद के मॉनसून सत्र के 12वें दिन श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही महज 19 मिनट चल पाई और बाहर आकर विपक्ष ने एकजुट होकर श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जबकि राज्यसभा में श्री राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच तगड़ी बहस हुई। तो आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है। तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दांत पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस।
2: चर्चा पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया। तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए दाई तरफ से लेकर बाई तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
4: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसे को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
5: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी, हाई कोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही सख्त से सख्त।
6: तो राम मंदिर में चोरी क्या हुई डकैती हुई वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
1: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा कहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
7: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से देखा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए ईडी CBI और अन्य केंद्रीय जांच
8: ये भाई ये लीडर भाई सप्लाई रही है। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर। आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
1: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
8: कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं।
1: खड़गे ने सवाल किया कि ईडी CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: श्री राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर आज संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार आपने देखी और अब हम आपको अयोध्या और लखनऊ लिए चलते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय साधु संतों से मिल रहे हैं। तो श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लखनऊ में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा में पार्टी के विधायक सचिन यादव को मुख्यमंत्री योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया।
9: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप उधर मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
10: हमारी ये सरकार
9: नॉट अलाउड टू डू दैट प्लीज आप सुनिए आई विल नॉट मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
1: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
11: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
1: मानसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रमण।

0: आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे।
1: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे। एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
2: आप उसको नीचे करिए, सचिन आप उस मंत्री जी के फोटो को नीचे
1: करिए।
2: प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा
1: के साथ।
2: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं। आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। रखिए उसको नीचे। यू कांट डू, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लड़ेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। इस बात में इजाजत नहीं देता हूँ।
0: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
1: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
3: पानी दोनों मिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। नृपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है, डाका डालने का काम हुआ है।
4: देखिए, ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य है नहीं, मुद्दे हैं नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो जब मुद्दे नहीं है तो अब आपको OTT पर जाने की जरूरत नहीं है। और काश ये गंभीर राजनीति करते, अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए।
0: चढ़ावा चोरी के मुद्दे से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और समाजवादी

0: की पार्टी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है तो विपक्ष के हंगामे के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी अयोध्या में एक बार फिर एक्टिव हैं। वो साधु संतों से मिल रहे हैं।
1: पिछले 3-4 दिनों में चंपत राय ने आधा दर्जन से ज्यादा मठों में अपनी हाजिरी लगाई है और संतों से बंद कमरे में मुलाकात की है। इसके मायने क्या हैं? क्या अब अयोध्या से उनके चला चली की बेला है? क्या वो अयोध्या छोड़कर अब यहाँ से जा रहे हैं या फिर अपनी सफाई उन संतों को पेश कर रहे हैं जो पहले के दौर में उन्हें कहीं ना कहीं उनसे नाराज रहते थे।
0: दूसरी तरफ बैंक लॉकर्स में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए गए गहनों की जांच भी एसआईटी ने शुरू कर दी है। एसआईटी अब लॉकरों में रखे सोने चांदी के गहनों का सत्यापन करेगी।
2: एसआईटी को ये भी शक है कि इन आभूषणों के जरिए भी हेराफेरी की गई है जो रामलला को चढ़ाए गए हैं। अब ऐसे में एसआईटी की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है जहां पर बैंक को भी दायरे में लिया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अब एसआईटी एक एक करके हर क्रम पर आगे बढ़ रही है और उनकी जांच बढ़ा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मदरसों की डिग्री पर हंटर चला दिया। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मदरसे चाहे कहीं के भी क्यों ना हो, वो आतंक पैदा करने की फैक्ट्री है। आइए आपको दिखाएं कैसे उत्तर प्रदेश में मदरसा पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई।
0: सीएम योगी ने यूपी के मदरसों पर नया हंटर चलाया है। जी हां, योगी सरकार अब मदरसों की ओर से दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर रोक लगाने जा रही है। जी हां, अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक ही पढ़ाई होगी। डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
4: तो ये करें क्या? हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
0: योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक ही पढ़ाई करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्हें यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा। लेकिन मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है।
5: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
6: मानसिक रोगी, ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये हिंदू मुसलमान अब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, ये जैन जी समझा चुके हैं इन्हें।
7: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें आईटीआई की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और ये
8: मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
0: ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दस्तक में एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी। आप देखते रहिए।

0: दस्तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
5: आगे आगे
6: अरे उधर
5: उधर क्या
6: करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
2: These two biggest blunders have defined Indian politics since. He responded to the Shah Bano judgment.
3: He didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shah Bano was a disastrous decision.
2: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.
4: छह हजार करोड़ रुपए का AUM था, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया।
5: ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़, यस। मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, निवेश करना 2006 में किया और सब पैसा इक्विटी में डाल दिया। एंड यू कैन इमेजिन 2008 में आधा हो गया। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दाल चावल पर। एवरीवन एस्पायर्स टू बी अ मैंगो मिलियनेयर। उसको वॉरेन बफेट नहीं बनना, उसको लेट राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना। सिर्फ महीने के 1.5 लाख की ऐसा ही 18 साल तक अगर आप करते हैं इक्विटी फंड में आपके 10 करोड़, क्योंकि आपने वो पैसा डाला मार्केट में, उसने रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाया, वो पावर।
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मूस

0: ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
1: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं, या फिर
0: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
2: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
0: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
3: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

जम्मू कश्मीर में संकट काल की ये पहली तस्वीर देखिए। पानी का रौद्र रूप ऐसा है मानो वो सब कुछ अपने में समेट कर ले जाने को बेताब हो। ये तस्वीरें शोपियां के हिरपुरा इलाके की हैं। रविवार को यहां अचानक बादल फटा। इस घटना के बाद वहां अचानक बाढ़ आ गई। इस घटना को अपनी आंखों से देखकर हर कोई हैरान रह गया। उधर जम्मू में कटरा के बालनी चेक पोस्ट के पास जोरदार लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ टूटकर तिनके की तरह बिखरे तो आने जाने वालों पर आफत टूटी। पहाड़ का मलबा कटरा रियासी नेशनल हाईवे 144 तक जा गिरा। इस घटना के बाद नेशनल हाईवे 144 को बंद कर दिया गया। गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। देर तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। उधर मिनमार जोजिला में भी तबाही हुई। शनिवार को वहां बादल फटे थे। घटना में कई कारें मलबे की चपेट में आईं। हालात ऐसे हो गए कि बचाव दल को जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। प्रशासन, पुलिस और प्रोजेक्ट विजयक टीम की संयुक्त टीम ने मिनमार जोजिला में बादल फटने की घटना में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए जोरदार बचाव अभियान चलाया। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आइए अब हम आपको दिखाएं कि कैसे पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ पाकिस्तान में पीओके के अंदर फर्जी चुनावों का नाटक चल रहा है, शहबाज नवाज की पार्टी खुद को पीओके में विजेता घोषित करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी का बड़ा खेल चल रहा है। पीओके में प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भूनने वाले मुनीर अब शहबाज सरकार को साइडलाइन करने की पूरी साजिश रच रहा है। अब मुनीर के इस गेम प्लान में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी। तो आइए दिखाएं आपको आखिर पाकिस्तान का अब क्या होने वाला है।

0: यूके में विद्रोह, इस्लामाबाद में तख्ता पलट की तैयारी। शरीफ खानदान खुद को पीओके का विजेता बनाने में जुटा। इस्लामाबाद में मुनीर और मोहसिन का गेम प्लान शुरू हो गया। इस्लामाबाद में लगे कंटेनर, शहबाज और जरदारी की छुट्टी होगी। आसिम मुनीर ने शुरू की तानाशाह राष्ट्रपति बनने की तैयारी। एक तरफ तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में दिखावटी चुनावों को लेकर विद्रोह का ज्वालामुखी फट चुका है, दूसरी ओर वहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही पीओके में दूसरे चरण के नतीजे सामने आ गए हैं और इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी शहबाज और नवाज शरीफ की पार्टी ने 18 में से 14 सीटें जीतने का दावा ठोका है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। हालांकि पीओके वाले दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव फर्जी है, जब वहां बहिष्कार हो रहा है तो वोट कौन डाल रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ने खुद दिखाया है कि कैसे पोलिंग बूथों पर सन्नाटा है, तो फिर वोट कौन डाल रहा है?
1: इलेक्शन आला तरीन इलेक्शन मछू के आला के देश में, यजीद वक्त के देश में, नंबर वन एजेंसी ने इलेक्शन करवाया है और डीजे वाला बाबू नाच नाच के कुहरू तोड़ बैठा है कि जनाब ये जे के गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाया है। चेक तो करे यार एक दफा फिर मनाजिर, मैं कहता हूं अशके हुई अशके। चेक करें आप, पुलिस वाले टेबलों के ऊपर सो रहे हैं, वोटर एक भी नहीं है और इतनी गहरी नींद सो रहे हैं कि कैमरामैन टीम आके बड़े कैमरों से फुल फ्लैश तस्वीरें बना के नशर कर रही है। सुनसान बयाबान ये हो रहा है इलेक्शन।
2: हमारे बहुत सारे भाई साहब।
0: और तो और पाकिस्तान सरकार ने पीओके में मीडिया पर पाबंदी लगा दी है ताकि कोई सच्चाई ना दिखा सके। अल जजीरा की वेबसाइट पर बैन लगाने की खबर है। आपको बता दें कि पीओके विधानसभा की 45 सीटों पर 3 चरणों में दिखावटी चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में पीएमएलएन ने 13 में से 9 सीटें जीती थी, अब दूसरे चरण के बाद उसके पास कुल 23 सीटें हो गई हैं, जो बहुमत के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण 10 अगस्त को होना बाकी है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ पीओके में मुजफ्फराबाद में ये भी कह चुके हैं कि वो शहबाज से कहेंगे कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बना दिया जाए।
3: दो अहम इस्लाहात, एक इस्लाहात ये कि वो आईन में तरमीम लेकर आए और आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला आजाद कश्मीर के आवाम नहीं करे, आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करे। और जब ये तरमीम लेकर आए, इसके साथ साथ एक और तरमीम हो कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम का कोई कंडीशन ना हो कि वो कश्मीर से ताल्लुक रखे, कि वो मीरपुर से ताल्लुक रखे, कि वो रावलाकोट से कूंट से ताल्लुक रखे या मुजफ्फराबाद। इनका तजवीज सुने, तजवीज है कि इस्लाहात लेकर आए, इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंत का शहरी जो 4-3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके।
0: और अब पीओके में नवाज शरीफ की पार्टी से पिछड़ रही बिलावल की पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि पीओके के अंदर चुनावों में बड़ी धांधली चल रही है। इतना ही नहीं, बिलावल ने कहा कि अब शहबाज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
4: और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है मुझसे लिखना, क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने, टिक टॉक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
0: जी हाँ, इस समय जब शहबाज शरीफ की सरकार जो पहली बार 5 साल पूरे करने की ओर बढ़ रही है, अचानक उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान में चर्चा ये है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी मिलकर बड़ा गेम कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने एक तीर से कई शिकार करने का प्लान बनाया है। वो पाकिस्तान के लगभग हर सूबे में भड़के विद्रोह को दबाने के लिए उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो इसके जरिए पाकिस्तान के दो परिवारों, भुट्टो परिवार और शरीफ परिवार के दबदबे को भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ की ही पार्टी के मंत्री मोहसिन नकवी का इस्तेमाल किया और ये बयान दिलवाया कि 70 साल पुराना पाकिस्तान का सिस्टम फेल हो गया है और नए सिस्टम की जरूरत है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि आसिम मुनीर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और मोहसिन नकवी को रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि कैसे शहबाज सरकार के मंत्री मोहसिन नकवी और उनकी पार्टी के बीच खुली जंग छिड़ गई है।
5: जिस चीज की जरूरत होगी, आपको आईपैड चाहिए, आपको आईपैड मिलेगा, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको लैपटॉप मिलेगा।
6: हम अपने नौजवानों को 2000-3000 रुपया मिला स्टाइपेंड लगा के या टैबलेट देंगे, खुश कर लेंगे? नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है।
7: हमारे प्राइम मिनिस्टर वो इज नोन एज अ वर्कहोलिक, वो 19-19 घंटे काम करते हैं, ना वो सोते हैं ना किसी और को सोने देते हैं।
6: आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाले वजीर आजम जो मर्जी करते हैं, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, ये मुल्क किसी हालत में रहेगा।
0: और इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कें सील कर दी गई हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच फिर से एक बहुत बड़े तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी फौज के पूर्व मेजर और पत्रकार आदिल राजा से लेकर कई सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके लिए सिस्टम के फेल होने और एक हाइब्रिड सिस्टम वाली सरकार लाने का नैरेटिव पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसके तहत ये कहा जा रहा है कि मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान से सुरक्षित निकल जाने का ऑफर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।
8: GHQ के अंदर प्लान बनाया गया है कि जनाब स्वीपिंग पॉलिटिकल ओवरऑल किया जाएगा और आसिम मुनीर को सदर बना दिया जाएगा और उसके पेशाब को डिक्टेटर को और उसके यूनिफॉर्म के अंदर सदर बनाया जाएगा और तमाम उसके पास पावर भी होगी, वो सिर्फ आसिफ जरदारी की तरह का सदर नहीं होगा और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी इसी सिलसिले में सदर जरदारी से कराची में जाके मिला है और सदर जरदारी ने हमारी इत्तला के मुताबिक बताया कि यार मैं तो मान भी लूं, जारी बात है उसकी फाइलें बहुत सी खुली हुई है, नैप की फाइलें बड़ी खुली हुई है, मेरा बेटा नहीं मानता और उसने तो कोई करप्शन भी नहीं की हुई और वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। तो उसको कहा गया, सदर जरदारी को मोहसिन नकवी ने कहा कि देखें मैं भी तो आपका बेटा बना हुआ हूं, लेकिन ऊपर से अब ऑर्डर ये आ गया है कि बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आप आ जाएं, आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगा, दुबई जाके रहना है, उसके अलावा अमेरिका में रहना है, जिधर भी रहना है वो आपको सेफ एग्जिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेफ एग्जिट भी नहीं मिलेगा।
0: मोहसिन नकवी ने अचानक 21 साल पुराने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू घोटाले का मुद्दा उठाया है। सिस्टम फेल होने का दावा करने वाले मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें जज, नौकरशाह, राजनेता और बैंकर सभी शामिल रहे हैं।
9: इतना बड़ा स्कैम मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स हर एक इन्वॉल्व है और 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग पैसे खाते रहे। तो मेरा ख्याल है कि अभी सिर्फ बिल्डिंग तक नहीं हमें रहना चाहिए, मैं तो पूरी तजवीज़ दूंगा कि जो जो इसमें जिस जिसने वो उनको नुकसान पहुंचाया उन सब के पीछे जाना चाहिए।
0: सवाल ये है कि आसिम मुनीर ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए मोहसिन नकवी को ही क्यों चुना? आखिर मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर के बीच रिश्ता क्या है? एक तो पाकिस्तानी राजनीति और मीडिया में मोहसिन नकवी को आर्मी चीफ आसिम मुनीर का सबसे भरोसेमंद मोहरा और फ्रंट मैन माना जाता है। आसिम मुनीर से नकवी का करीबी पारिवारिक संबंध है और वो उनकी पत्नी सैयदा इरम आसिम के कजिन हैं। सच ये है कि आसिम मुनीर अपने हर सुलग रहे सूबे को संभालने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। एक दावे के मुताबिक सिर्फ जुलाई के महीने में पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में 205 लोग मारे जा चुके हैं, उनमें से 112 फौज और पुलिस के जवान हैं। ऐसे में पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के मुख्य प्रांतों का पुनर्गठन करने की योजना बना रहे हैं। इस योजना के तहत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पीओके को छोटे छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटा जाएगा मुनीर का इरादा बलूच, पश्तून, कश्मीरी और सिंधी उपराष्ट्रवादी पहचान को कुचलना और आंदोलनों को कमजोर करने का है।
10: मेरा ख्याल है एक तो एहसास हो गया है कि इस वक्त रियासत को बहुत से खतरे हैं फ्रॉम सब नेशनलिज्म, बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, अब आज़ाद कश्मीर में भी, एंड ये जो हमारा सिस्टम है अकोमोडेट नहीं कर पा रहा उनको, और जो प्रॉब्लम है विद सिक्योरिटी वर्सेस वेलफेयर या सिक्योरिटी वर्सेस राइट्स, उसका इशू बना हुआ है। इसलिए उनका ये ख्याल है कि अब एक ही तरीका है कि जो सब नेशनलिज्म उभर रही है जो बिकॉज ऑफ फोर प्रोविंसेस या फाइव जो भी है, इसको कुचला जाए एंड छोटे यूनिट्स बना दिए जाए जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स किए गए, नॉट नेशनल यूनिट्स।
0: यानी पाकिस्तान में अब आसिम मुनीर का खेल साफ साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि इस प्लान को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए कब तक का वक्त रखा गया है। आज तक ब्यूरो।
11: पाकिस्तान के अंदर घरेलू झगड़े की रिपोर्ट आपने देखी है, आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी मुनीर को ट्रंप से बड़ा झटका मिला। ट्रंप ने अमेरिका ईरान के बीच जारी बातचीत में मध्यस्थता करने वाले देशों का नाम लिया, लेकिन ट्रंप की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम गायब था। अब तक पाकिस्तान बार बार यही दावा करता आया है कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका वही निभा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वही है। आखिर ईरान के साथ बातचीत में ट्रंप ने मुनीर को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? आइए दिखाएं आपको हमारी इस रिपोर्ट में।
0: पाकिस्तान को ट्रंप ने दिखाया ठेंगा। शांति वार्ता से मुनीर को किया बाहर। ईरान को ट्रंप की आखिरी चेतावनी।
12: If I am given a chance to let a lot of people live, I want to give that chance. So I'm under no time constraint. You know, I don't happen to be running.
0: समझौता नहीं तो अब महायुद्ध तय। ईरान का पलटवार, टारगेट है लॉक। पाक के डबल गेम से भड़का युद्ध। पाकिस्तान न मुश्तबा का न ट्रंप का।
13: मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये वो लम्हा इज्जत और तकरीम का ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासा बलंका से लेकर कौलालंपुर तक टेलीविजन और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा।
0: भले ही ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बारूदी वार पलटवार का सिलसिला थम गया है, दोनों मुल्कों के बीच स्थायी युद्ध विराम के लिए पर्दे के पीछे मध्यस्थों के जरिए वार्ता शुरू हो गई है, लेकिन ईरान अमेरिका के बीच शांति दूत बनकर नोबेल पुरस्कार जीतने का सपना देख रहे पाकिस्तान को जोर का झटका जोर से लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ चल रही बातचीत से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। अब अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान नहीं बल्कि सऊदी अरब, कतर और यूएई है।
14: Backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yep.
0: चंद हफ्तों पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति यही दावा कर रहे थे कि शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका है, लेकिन अब ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर की भूमिका को लेकर ट्रंप के दिमाग में संदेह है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनकर शांति शांति की माला जप रहा था, वहीं दूसरी तरफ चीनी हथियारों को ईरान तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। यानी पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था।
15: President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran.
16: Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake. But he knows I'd be quite disappointed.
0: 8 अप्रैल को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में यही ढिंढोरा पीटा कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों का युद्ध विराम करवाया। यहां तक कि स्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति पाकिस्तान गए, लेकिन स्थायी युद्ध विराम छोड़िए, चंद दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया। मतलब न तो ईरान ने पाकिस्तान की बात मानी और न ही ट्रंप ने, लेकिन मुनीर और शहबाज यही माहौल बनाते दिखे कि अमेरिका और ईरान के बीच समाधान निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मध्यस्थता से।
13: आज जिस इज्जत से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नवाजा है, मैं समझता हूँ कि इसमें न सिर्फ आप सबकी इज्तमाई काविशें, खलूस, मेहनत, अमानत और दयानत, और सबसे बढ़कर अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उन दोस्त ममालिक के लिए, बरादर ममालिक के लिए, जिस खलूस के साथ आपने इस जंग की आग को ठंडा करने के लिए कोशिशें की हैं, वो अल्लाह ताला को पसंद आई और उसने कबूल फरमा लिया।
0: सच्चाई यही है कि आज भी ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी युद्ध विराम की संभावना बहुत कम है, भले ही ट्रंप ये दावा कर रहे हों कि ईरान के साथ नए दौर की वार्ता शुरू हो गई है, दोनों मुल्कों के बीच हमले थम गए हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। जब तक अमेरिका अपने उल्लंघन जारी रखता है, तब तक होर्मुज के हालात में कोई अहम बदलाव नहीं होगा। ईरान की आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करने या अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के लिए ईरानी प्रतिनिधि मंडल भेजने की कोई योजना नहीं है। ईरान ओमान के साथ होर्मुज के माध्यम से एक नया रास्ता बनाने पर चर्चा कर रहा है, जिसमें एंट्री और एग्जिट लेन के साथ साथ एक एकल गलियारा शामिल होगा। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत का बॉयकॉट किया है, तो दूसरी तरफ ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दी है।
17: کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم.
18: در تنگی هرمز.
17: در تنگی هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم.
0: दरअसल होर्मुज को लेकर अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका का दावा है कि होर्मुज खुला है, लेकिन होर्मुज पर आज भी ईरान का कब्जा है। ईरान की इजाजत के बिना कोई भी जहाज होर्मुज पार नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज पर नए रूट को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत चल रही है। ईरान का दावा है कि बहुत जल्द नए रूट को लेकर सहमति बन जाएगी, लेकिन होर्मुज पर अमेरिका के बताए रूट से जहाजों के गुजरने पर पूरी तरह पाबंदी है। मतलब होर्मुज को लेकर ईरान अड़ा हुआ है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति यही कह रहे हैं कि अब ईरान के पास आखिरी मौका है। ट्रंप की माने तो ईरान पर सबसे बड़े हमले के प्लान पर एन वक्त पर रोक लगा दी, क्योंकि हमले के डर से ईरान ने मध्यस्थों के जरिए उनसे संपर्क साधा। दावा यही है कि युद्ध विराम की पेशकश ईरान की तरफ से की गई।
16: Iran knew it. They knew what was coming. It was going to come last night, and it would have gone on for a long time. And there'd be essentially very little left. There'd be nothing left. And if I'm given a chance to let a lot of people live, I want to give that chance. So I'm under no time constraint. You know, I don't happen to be running.
0: वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अगले 24 घंटों में हुर्मुज को खोलने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो सकता है। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से यही कहा गया है कि दोनों मुल्कों के बीच राजनयिक समाधान निकालने की कोशिशें जारी हैं। मध्यस्थ देश दोनों के बीच बातचीत में मदद करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि जब अमेरिका के साथ ईरान बातचीत से इनकार कर रहा है तो समझौता कैसे होगा। सवाल बड़ा है क्योंकि हूती की तरफ से सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया गया है, मतलब हमले अभी पूरी तरह थमे नहीं हैं। अब देखना यही है कि अगले 72 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का रास्ता निकलेगा या फिर महायुद्ध का रास्ता खुल जाएगा। आज तक ब्यूरो
11: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावनधरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनीत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को स्कूल का पहला दिन था। टीचर और बच्चे वक्त पर स्कूल आ चुके थे, क्लास शुरू हो चुकी थी, पर अभी सेकंड पीरियड शुरू ही हुआ था कि 21 साल का एक लड़का स्कूल के अंदर दाखिल होता है। इंग्लिश पढ़ाने वाली मैडम को गार्ड से बुलवाता है। मैडम बाहर आती है, पर इसके बाद जो कुछ होता है वो दिल दहला देने वाला था। दिल्ली के दरवाजे पर यह दिल्ली मथुरा बाईपास से लगभग 6 किलोमीटर अंदर सिकरोना गांव है और इसी गांव में ये एक प्राइवेट स्कूल है, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 3 अगस्त सोमवार की सुबह करीब 9:15 बजे का वक्त हुआ था। स्कूल में बच्चे आ चुके थे, क्लास शुरू हो चुकी थी, तभी स्कूल के इस गेट के बाहर एक मोटरसाइकिल रुकती है और उस पर सवार गमछे से अपना पूरा चेहरा छुपाए एक लड़का इसी गेट से स्कूल के अंदर दाखिल होता है। गेट पर ही खड़े होकर वो कुछ कहता है। असल में कैमरे के उस पार स्कूल की एक महिला गार्ड खड़ी है। ये लड़का उसी से बात कर रहा है। तस्वीर तो दिखाई दे रही है, पर जो सुनाई नहीं दे रही वो ये कि लड़का उस महिला गार्ड से कहता है कि वो इसी स्कूल में पढ़ाने वाली इंग्लिश की टीचर संध्या मैडम का पति विक्की है। मैडम को चाबी देने के नाम पर वो महिला गार्ड से मैडम को बाहर बुलाने के लिए कहता है। गार्ड उसका मैसेज लेकर क्लासरूम की तरफ चली जाती है।
1: लेडीज थी यहाँ पे, तो उसने एक्चुअली उसने ना बिल्कुल उसी जिस तरीके से मैं बता रहा था, उसका हस्बैंड भी कई बार आया गमछा वगैरह लेके, तो उसी तरीके से वो भी आया था। उसने नाम भी उसका अपने उसके हस्बैंड का लिया था कि उससे बोलो विक्की आया है।
0: अब नकाबपोश लड़का वहीं गेट पर खड़ा संध्या मैडम का इंतजार कर रहा है। कभी जेब में हाथ डालता, बाहर निकालता, कभी थोड़ा आगे पीछे जाता। इस बीच दो बच्चे भी बाहर आते हैं, एक शायद पानी भरने के लिए, दूसरा बच्चा यूं ही खेलने के लिए। लेकिन उस नकाबपोश लड़के के हाव भाव में जल्दबाजी और बेचैनी तो नजर आ रही है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगता कि उसे कोई डर या खौफ है। यहाँ तक कि इस दौरान वो एक बार भी गेट से स्कूल के बाहर देखने की कोशिश तक नहीं करता। अब स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हुए उसे पूरे 2.25 मिनट हो चुके थे, तभी पहली बार अब वो गेट से आगे क्लासरूम की तरफ आने या जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ता है। अब शायद उसके सामने कोई है, वो उससे बाहर आने के लिए कहता है और फिर इसके बाद जो होता है कम से कम वो देखने दिखाने लायक बिल्कुल नहीं। अब अचानक स्कूल के अंदर एक महिला की चीख सुनाई देती है, चीख के साथ ही उस लड़के की आवाज भी।

0: 34 सेकंड, कुल 34 सेकंड की कहानी थी। स्कूल के अंदर दाखिल होने के बाद उस महिला के सामने ये लड़का सिर्फ 34 सेकंड रुका और इन्हीं 34 सेकंड के हर सेकंड में उसने चाकू से उस महिला पर एक वार किया। यानी कुल 34 सेकंड और 34 वार। इसके बाद 35वें सेकंड में वो स्कूल के गेट से बाहर निकल जाता है। स्कूल खुला हुआ था, बच्चे और टीचर क्लास में थे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने महिला की चीख न सुनी हो। उस महिला की चीख खुद उस स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल डॉक्टर तेजपाल शर्मा ने भी सुनी। वो भाग कर नीचे भी आए, महिला को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावर ने चाकू दिखाकर उन्हें भी डरा दिया। सब कुछ सेकंड में हो रहा था जब हमलावर को लगा कि उसका काम हो चुका है, वह स्कूल से निकल जाता है।
1: अपने ऑफिस में बैठा था, यहाँ पे केबिन में, तो यहाँ से मुझे बाहर से चीखने की आवाज आई एकदम से, लेडीज की आवाज थी, तो ऐसे लगा कोई बच्चे की चीखने की आवाज है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बरसात का मौसम है, कहीं किसी बच्चे को बिजली वगैरह का शॉक वगैरह नहीं लग गया हो, उस वजह से मैं भाग के यहाँ पे बाहर आया था। तो वो बल्कि लेडीज पड़ी हुई थी, वो मुझे दिखाई भी नहीं थी, वो बहुत पतली सी दुबली सी लड़की थी वो, और वो यहाँ पे मुझे जब दिखाई दिया कोई चाकुओं से उसे मार रहा था, मैंने उसे डांटने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी, उसको रोकने की कोशिश करी, तो वो दो बार तीन बार मेरी तरफ भी चला चाकू लेके, तो यहाँ पानी की बोतल भरी हुई रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो वजन था, फिर मैं वापस अंदर डंडा वगैरह लेने गया, तब तक वो यहाँ से चला गया भाग।
0: चाकू लेकर स्कूल आया हमलावर अच्छी तरह जानता था कि वो क्या करने आया, इसीलिए उसने न सिर्फ गमछे से अपना चेहरा छुपा रखा था, बल्कि जिस बाइक पर वो स्कूल आया था उस बाइक का नंबर प्लेट भी उसने हटा दिया था ताकि कोई उस तक पहुंच ना पाए।
2: हम उसी स्कूल में खड़े हैं, ये सरस्वती पब्लिक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और आप यहाँ गेट के बाहर हैं। मैं आपको सबसे पहले वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ आप वो ब्लड देख सकते हैं। दरअसल जो आरोपी है वो उसने सबसे पहले यहाँ पहुँचकर ये संध्या नाम की महिला टीचर थी, उनको ये यहाँ पर बुलाया, और जब वो टीचर यहाँ बाहर आई तब उन पर अचानक से उसने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। जैसे ही ये हमले की वारदात हुई तो उस समय स्कूल के संचालक भी यहाँ पर थे, और उन्होंने जैसे ही उसको रोकने की कोशिश की, जैसा कि उन्होंने बताया, तो जो आरोपी हमला था उसने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। इसके बाद वो जो हमलावर था वो क्योंकि उसने एक नकाब पहन रखा था, मुंह उसका पूरा पूरी तरह से छुपा हुआ था, और एक वो बिना नंबर की बाइक पर यहां से सवार होकर फरार हो गया।
0: जी हां, 34 सेकंड में जिस महिला पर 34 वार किए गए उसका नाम संध्या था, 26 साल की संध्या, इसी स्कूल की इंग्लिश टीचर, और गमछे से जिस लड़के ने अपना चेहरा छुपा रखा था उसका नाम है अमित। चाकू के 34 वार के बाद जाहिर है संध्या के बचने की उम्मीद तो थी नहीं, और वही हुआ, संध्या ने इसी स्कूल में इसी जगह पर दम तोड़ दिया।
3: संध्या इस दरवाजे से आती है, यहां पर विकी मौजूद था, जैसे ही संध्या आई सीसीटीवी में, ये जो सामने आप देख रहे हैं इस कैमरे में पूरा वाक्य कैद हो गया। एकदम से उस शख्स ने हाथ पकड़ा, शायद संध्या पहचान गई, वो पीछे हटने की कोशिश की होगी, लेकिन उस शख्स ने एकदम से हाथ पकड़ा और खींच लिया, और यहीं पर उसने जो चाकू पहले से तैयार रखा था अपने पास, उस चाकू से लगातार वार करता रहा, और यहां पर संध्या गिर गई। जब वो गिर गई तो इसी दौरान जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो यहां पर आए, उन्होंने एकदम आगे आकर के बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में चाकू था, वो पीछे की तरफ हटते हैं। यहाँ आप जो पानी की बॉटल्स देख रहे हैं, ये बॉटल उठा करके वो सोचते हैं कि वो बचाव करें, लेकिन इतनी देर में ही उसने तकरीबन 30 से ज्यादा वार जो है संध्या के ऊपर चाकू से की, और फिर वो फरार हो गया।
0: संध्या के कत्ल के बाद अमित बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से मौके से भाग चुका था, पर पुलिस स्कूल आ चुकी थी, जांच शुरू होती है, पूछताछ होती है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, और आखिरकार करीब 9 घंटे बाद अमित को पुलिस पकड़ लेती है।
4: बाद जब हमने इस चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपने सोर्सेज को एक्टिव किया, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जब चेक की, तब ये चीज सामने आई कि एक युवक है जिसके इस तरीके से संपर्क है, और उसका जो हुलिया है उसी से मिल रहा था, और फिर उसे जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद

0: से में जो रंजिश का कारण और जो पीछे के जो संबंध थे वो सारे डिस्क्लोज।
1: एक स्कूल के अंदर दिन दहाड़े हुई इस दहला देने वाली वारदात की वजह और पूरी कहानी जाने, उससे पहले इसी अमित से जानते हैं कि आखिर उसने संध्या को मारा क्यों। हालांकि अमित को सुनने से पहले इतना याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि वो सब सच बोले, अपने बचाव में वो झूठ भी बोल सकता है।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
3: अमित।
2: क्यों मारा उसे?
3: उसका और मेरा रिलेशन था 2 साल से। मतलब वो पहले मेरे साथ गई थी, बीच में उसके हस्बैंड को पता लग गई थी, वो मेरे साथ गई थी 5-6 दिन रह गई थी, फिर वो घर आ गए, उसके हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं किया उससे, फिर वो मारी कम से कम 3-4 महीने रुक के, फिर वो मेरे साथ गई 6-7 दिन रह गई। अब मेरे और उसकी 2 महीने से बात नहीं हुई थी, 1.5-2 महीने से वो गई थी मेरे साथ, वो वहाँ से आने लगे, उसका हस्बैंड कह रहा था, उसके हस्बैंड कॉल जाने लगे उसके पास कि आ जा तू घर को बैठी, मैंने कही इससे मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आया।
1: अब आते हैं पूरी कहानी पर। संध्या साल भर पहले ही इस स्कूल में इंग्लिश टीचर बनकर आई थी। इससे पहले वो फरीदाबाद के ही कोट गांव में एक दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी। वहीं पढ़ाने के दौरान अमित की संध्या से पहली बार मुलाकात हुई। संध्या की शादी हो चुकी थी, 3 और 5 साल के उसके 2 बच्चे हैं। अमित हमेशा संध्या के पीछे लगा रहता। एक बार संध्या ने पुलिस में भी अमित की शिकायत की थी।
0: मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उससे जानता था, और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था, वो उसे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था, और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
4: बताया जा रहा है कि अमित कई समय से संध्या को परेशान कर रखा था। संध्या ने पुलिस कंप्लेन की थी और सरेआम माफी भी अमित के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन अमित इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था।
1: बाद में पंचायत में भी मामला पहुंचा। कहते हैं कि अमित ने पंचायत के सामने माफी मांगी और फिर कभी संध्या को परेशान या उसका पीछा न करने का वादा किया, लेकिन असल में वादा झूठा था। वो पुलिस में शिकायत और पंचायत के सामने हुई बेइज्जती का अब संध्या से बदला लेना चाहता था।
0: दो साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था, जिस बात से वो आहत था अपने, जिसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने इस तरीके।
1: वो अमित ही था जिसकी वजह से संध्या ने कोटगांव स्कूल की नौकरी छोड़ दी और फिर पिछले साल 6 अगस्त को इसी नए स्कूल में नौकरी कर ली।
4: जो महिला थी, टीचर थी संध्या, वो आपके यहाँ कब से काम कर रही थी और क्या कोई हस्बैंड या उनके परिवार से कोई आता था?
5: वो यहाँ पे लगभग 1 साल उसको हो चुकी है, अभी 6 तारीख को 1 साल हो जाएगी उसको, और बीच में उसके हस्बैंड आते थे यहाँ पे, तो गेट पे से एक बार चाबी या उसका लंच बॉक्स पकड़ा के और चले जाया करते थे।
4: तो चेहरा बंद उसने बांध रखा था?
5: जी सर, एक्चुअली क्या, एक तो नेचुरली कल, बल्कि मुझे, क्योंकि मैंने, मेरी कभी उसके हस्बैंड से मुलाकात नहीं हुई, तो कल बल्कि इन लोगों ने भी मुझे यही बताया था, वो 2-4 बार जब भी बेचारा आया है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन की वजह से आजकल सिस्टम चल गया है, बाइक से मोस्टली लोग, और फिर यहाँ अभी फिलहाल रोड भी बन रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से लोग कई बार मास्क टाइप का, इस टाइप का लगा लेते हैं, देहाती आदमी है तो स्वापी से ढक लेते हैं, ये है।
4: मतलब कोई अनयूजुअल नहीं है चेहरा?
5: सर हाँ, 36 ईयर्स हो गए हमें स्कूल चलाते हुए सर, आज तक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल हमें दुख है कि हमारे परिवार का सदस्य ऐसे इंसिडेंट में चला गया।
1: ये संध्या के पति विकास है। विकास के मुताबिक वो अमित ही था जिसकी वजह से उसकी पत्नी और बच्चे को गांव और स्कूल दोनों छोड़कर यहाँ आना पड़ा। हालांकि विकास अपने कुछ साथियों के साथ अमित के घर उसे समझाने भी गया था, यहाँ तक कि पंचायत ने भी अमित को समझाया।
6: उसके घर भी गए थे हम पहले, उसने तंग भी करी थी वहाँ पे, पेरेंट्स की मीटिंग थी कोई स्कूल में, तो पढ़ाती थी जैसे स्कूल में, तो उसने बच्चे को दिक्कत करी, पढ़ाई वढ़ाई में कमज़ोर था, उसने मना कर दिया, तो उसने उसको धमकाया अमित को भी। अमित को धमकाने से उसने बदला के चक्कर में फिर मेरे से बोली, संध्या मैं स्कूल छोड़ रही हूँ, मैंने व्यस करता हूँ वहाँ से ट्रांसफ़र करके वहाँ से सरस्वती में, वहाँ से छुड़वा के सरस्वती में आई, फिर यहाँ पे दिक्कत करने लग गया वो, फिर मैं 3-4 बंदे लेके उसके घर वालों को

0: पास गए थे, घर वालों को हाथ विनती जोड़ दो, उन्होंने मान गए भाई अब नहीं आएगा, अब नहीं करेगा कोई दिक्कत। फिर मैंने रिपोर्ट भी करी है पहले, फिर उन्होंने घर वालों ने बोला भाई हाथ जोड़ने की बात है, अब कर लो फैसला, आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। गांव का सरपंच खुद कह के गया, पाम पकड़ के गया है, और अब फैसला कर ले लास्ट बार। मैंने कहा ठीक है जी, और कल की ये नहीं पता लगी क्या हुआ
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे, वो सामने चाहिए हो।
2: एक स्कूल के अंदर एक टीचर के साथ बाकायदा कैमरे पर जो कुछ हुआ है उसे देखकर हर कोई सन्न है। अमित की उम्र सिर्फ 21 साल है, 10वीं पास है और अब पढ़ाई छोड़कर दूध का कारोबार करता था। इस उम्र में ये सोच और ये कदम बताता है कि रिश्तों को लेकर हाल के वक्त में होने वाले जुर्म का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। या तो अब रिश्तों में आने के बाद कत्ल हो रहे हैं, रिश्ता टूटने पर हो रहे हैं, या फिर जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने पर। इसमें वो ना भी शामिल है जिसे सुनने के बाद कई कत्ल हो चुके हैं। सचिन गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, फरीदाबाद आज तक। एक नर्स पत्नी का पति बीते 2 सालों से गायब था। रिश्तेदार जब भी पूछते पत्नी यही बताती कि वो नौकरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका पति उसी शहर में बीते 2 सालों से एक फैक्ट्री में सो रहा था। सच्चाई सामने आने के बाद अब पुलिस उसी फैक्ट्री में पहुंचती है ताकि सच को बाहर ला सके। यह गुजरात के जामनगर इलाके में मौजूद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए यहां कई कारखाने हैं। 29 जुलाई बुधवार का दिन था, अचानक पुलिस की गाड़ियां इस कारखाने का रुख करती है। इलाके की एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। शायद ऑपरेशन की खबर आसपास के लोगों को भी मिल चुकी है, लिहाजा कारखाने के चारों तरफ अब भीड़ भी इकट्ठा है। ये उसी कारखाने के अंदर का सीन है, कुछ पुलिस वाले बैठे हैं तो कुछ खड़े हैं। इन्हीं पुलिस वालों की मौजूदगी में एक मजदूर कारखाने के अंदर इस जगह फर्श पर ड्रिलिंग मशीन से खुदाई शुरू करता है। सब कुछ यहाँ सामान्य है, पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ मुस्कुरा भी रहे। पुलिस वालों को खबर देने वाला जमीन के ऊपर था, लेकिन जो खबर थी वो जमीन के अंदर थी। लिहाजा शुरुआत ड्रिलिंग मशीन से होती है और खबर की सच्चाई को गहराई से बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू हो जाती है। जैसे जैसे गहराई गहरी हो रही थी, यहाँ बैठे तमाम पुलिस वालों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। पता नहीं खबर सच है भी कि नहीं, पता नहीं 2 साल पुराना राज इस गड्ढे से बाहर आ पाएगा भी कि नहीं। खैर, खुदाई में अभी वक्त लगेगा क्योंकि खबर देने वाले ने यह बताया था कि असली खबर जमीन के 12 फीट नीचे है। अब 12 फीट पहुंचने में जाहिर है वक्त तो लगेगा ही, इसीलिए तब तक इस कारखाने से बाहर निकलते हैं और उन दोनों से मिलते हैं जिन्होंने ये खबर दी थी। पुलिस हिरासत में मौजूद ये पृथ्वी है, पेशे से एक नर्स, और इसके साथ खड़ा ये नीलेश है। ये दोनों इस वक्त इसलिए पुलिस की कस्टडी में है क्योंकि इन्होंने कत्ल की बात कबूल की है। पृथ्वी ने पुलिस को ये बताया कि कैसे उसने अपने पति जिग्नेश को मारा, और नीलेश ने पुलिस को ये बताया कि जिग्नेश को मारने के बाद उसने उसकी लाश कहाँ छुपाई। यानी दोनों ने एक कत्ल के बारे में आधी आधी जानकारी दी, और ये जानकारी जब पूरी हुई उसके बाद ही पुलिस ने आगे बढ़ने का फैसला किया। यानी जमीन के ऊपर खबर देने वाले यही पृथ्वी और नीलेश थे, और जमीन के नीचे जिसकी खबर दी गई वो पृथ्वी का पति जिग्नेश है। तो यहाँ तक की कहानी तो आप समझ गए। अब चलिए वापस उसी कारखाने में चलते हैं। शायद अब तक खुदाई पूरी हो चुकी होगी। और ये लीजिए, नीलेश ने बिल्कुल सही खबर दी थी। कारखाने में इस जमीन के अंदर नाप तोल कर ठीक 12 फीट की गहराई से लाश तो नहीं पर

पर लाश के सारे सबूत एक एक कर अंदर से बाहर आने लगते हैं। सबसे पहले मिट्टी के साथ कुछ इंसानी हड्डियां बाहर आती हैं, फिर बास्केट में कंकाल का ये सिर बाहर आता है, इसके बाद किश्तों में बाकी हड्डियां बाहर आती हैं। खबर सही थी। अब 2 साल पहले 12 फीट की गहराई में दफनाए गए किसी इंसान की लाश लाश की शक्ल में तो बाहर आने से रही, आएगी तो सिर्फ हड्डियां कंकाल की शक्ल में, और वही बाहर आई। अब पुलिस ने उन्हें कपड़ों की पोटली में बंद कर एम्बुलेंस में रखा और अस्पताल के लिए रवाना हो गए। 2 चीज जानने के लिए, पहली कि जिसका ये कंकाल है उसकी मौत कैसे हुई, और दूसरी क्या मरने वाला सचमुच जिग्नेशी है। मौत कैसे हुई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगी, लेकिन ये हड्डियां जिग्नेश की ही है ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसका पता डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। अब वापस फिर से पृथ्वी और नीलेश के पास चलते हैं, क्योंकि सारी कहानी यहीं से पता चलेगी। करीब 5-6 साल पहले पृथ्वी की शादी जिग्नेश से हुई, पर जब पृथ्वी की शादी हुई तब पृथ्वी नीलेश से प्यार करती थी। शादी के कुछ वक्त बाद तक तो पृथ्वी और नीलेश एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद फिर से करीब आ गए। जिग्नेश का जामनगर में फर्नीचर का बिजनेस था। बात 2 साल पुरानी है। एक रोज अचानक जिग्नेश गायब हो जाता है। जब काफी दिनों तक उसकी खबर नहीं मिलती तब रिश्तेदार और दोस्त पृथ्वी से जिग्नेश के बारे में पूछते हैं। तब पृथ्वी उन्हें बताती है कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया चला गया है और वहीं काम कर रहा है। जब रिश्तेदार जिग्नेश का फोन नंबर मांगते हैं तो पृथ्वी कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में जिग्नेश के दफ्तर में फोन पर बात करना मना है, इसलिए फोन हमेशा बंद रहता है। इस तरह अगले 2 सालों तक जिग्नेश से कोई भी रिश्तेदार संपर्क नहीं कर पाया। इधर इस दौरान पृथ्वी बिल्कुल आम जिंदगी जी रही थी। पारिवारिक फंक्शन से लेकर त्योहार तक में वो हिस्सा लेती। अब तो रिश्तेदार भी यकीन कर बैठे थे कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए पृथ्वी यहाँ खुश है। पृथ्वी की अब तक की चाल तो कामयाब रही। लगभग रिश्तेदारों ने यकीन कर लिया कि जिग्नेश सही सलामत और ऑस्ट्रेलिया में ही है। पर गड़बड़ इस महीने की 25 जुलाई को तब हुई जब जिग्नेश के चाचा का बेटा यानी उसका कजन पृथ्वी से मिलने पहुंचा। उसने कहा कि वो काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जहां जिग्नेश से भी उसकी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए उसने पृथ्वी से जिग्नेश का मोबाइल नंबर और पता मांगा। पहले तो पृथ्वी वही रटा रटाया बहाना करती रही कि वहां फोन पर बात करना मना है, लेकिन जब कजन ने कहा कि वो घर पर उससे बात करेगा और उसके घर जाएगा तब पृथ्वी घबरा गई। वो न जिग्नेश का ऑस्ट्रेलिया का पता दे रही थी न फोन नंबर। कजन को शक हुआ, उसने सीधे पुलिस के पास जाने की धमकी दी। अब पृथ्वी घबरा गई और पहली बार उसने खुलासा किया कि असल में जिग्नेश को उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 2 साल पहले मार डाला है। इसी के बाद 26 जुलाई को जिग्नेश का कजन पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देता है। रिपोर्ट लिखने के बाद जब पुलिस पृथ्वी से पूछताछ करती है तब वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है कि 2 साल पहले उसने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर जिग्नेश के कत्ल की प्लानिंग की। इसी साजिश के तहत नीलेश ने जिग्नेश को किराए के अपने इसी कारखाने में बुलाया, शराब में साइनाइड मिलाया और फिर उसे पिला दिया। जहरीली शराब पीने के कुछ देर बाद ही जिग्नेश की मौत हो गई। इसके बाद नीलेश ने इसी कारखाने में 12 फीट गहरा गड्ढा खोद कर उसे दफना दिया। जामनगर पुलिस इस बात पर हैरान है कि आखिर पृथ्वी और नीलेश ने पूरे 2 साल तक कत्ल के इस राज को छुपाए कैसे रखा। हैरानी इस बात पर भी है कि 2 साल तक जिग्नेश की कोई खबर नहीं थी। पूरे 2 साल तक रिश्तेदारों से उसका कोई संपर्क नहीं था, फिर भी किसी ने जिग्नेश के बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। ये अशोक मवादिया है, जिग्नेश के बड़े भाई। अशोक मवादिया ने ही पुलिस में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। इनका कहना है कि इन्होंने कई बार जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी बेन से जिग्नेश के बारे में पूछा, लेकिन उसने हमेशा इनसे झूठ बोला। इन्होंने गुजराती में हमारे रिपोर्टर को बताया कि वो बार बार यही कहकर हम सबको गुमराह करती रही कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में है। अशोक मवादिया का कहना है कि अगर उनका चचेरा भाई ऑस्ट्रेलिया न जा रहा होता तो शायद जिग्नेश का सच कभी सामने ही नहीं आ पाता। वो अशोक मवादिया ही थे

तो पृथ्वी बेन ने आखिर में फोन कर पहली बार ये बताया था कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में नहीं है बल्कि उसको मार डाला है। ये सुनने के बाद ही अशोक मवादिया पुलिस के पास गए थे। इन्होंने ही ये भी कहा कि पृथ्वी बेन को देखकर कभी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उनके भाई के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। सारी सच्चाई और कंकाल की शक्ल में लाश बाहर आने के बाद जामनगर पुलिस ने पृथ्वी बेन और उसके प्रेमी नीलेश को जामनगर की अदालत में पेश किया। पुलिस दोनों की 7 दिनों की रिमांड मांग रही थी, हालांकि अदालत ने 4 दिनों की पुलिस हिरासत दी है। अब इन 4 दिनों में पुलिस को न सिर्फ 2 साल पुरानी इस कत्ल की सारी कड़ियों को जोड़ना है बल्कि ऐसे पुख्ता सबूत और गवाहों को भी ढूंढना है जिनसे आगे चलकर दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। हालांकि जामनगर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक पृथ्वी बेन से पूछताछ के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा है। दर्शन ठक्कर के साथ ब्रजेश दोषी, जामनगर आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनीत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब। सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा, बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा

0: और भारत ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा। एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार पर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का हमला, एक्स पर पोस्ट करके कहा घूंगी गुड़िया। विरोध में बढ़ के एनसीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, कांग्रेस दफ्तर में किया जोरदार हंगामा और नारेबाजी। घूंगी गुड़िया बताने पर डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का जवाब, बोली समय आने पर बोलूंगी। सीएम फडणवीस का विपक्ष पर हमला, बोले खबरों में बने रहने के लिए राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति में इतने निचले स्तर पर कोई नहीं गया। डेप्यूटी सीएम इग्नेश शिंदे ने महिलाओं के अपमान से जोड़कर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को अपनी टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए, तुरंत माफी मांगे। महाराष्ट्र विधान परिषद उपसभापति सचिन अहिर ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, शिवसेना नाम चिन्ह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। छत्रपति संभाजी नगर में नर्सों का भर्ती और प्रमोशन की मांग को लेकर काम बंद प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई। गुजरात के वडोदरा में 5 गोदामों में लगी विकराल आग, ज्वलनशील सामान से भड़की आग की लपटें। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बिल्ली की मौत पर पशु प्रेमियों का कैंडल मार्च, 12वीं मंजिल से फेंकने के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। महाराष्ट्र के जलगांव में शातिर ठगी का खुलासा, कार से तेल लीक होने का झांसा देकर 12.5 लाख रुपए कैश उड़ाए, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद। नागपुर के एक मंदिर में रेकी के बाद चोरों ने चांदी का मुकुट और घंटा उड़ाया, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में स्पाकी आड़ में चलाया जा रहा था सेक्स रैकेट, भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 3 युवतियों को रेस्क्यू किया। वडोदरा में शातिर चोर की गिरफ्तारी, भारी मात्रा में सोना चोरी करने के आरोप में 22 साल में कई वारदातों को अंजाम दिया। जामनगर में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 38 प्रतिष्ठानों पर छापा, बासी और एक्सपायरी सामान नष्ट किया गया। वडोदरा में उफनती विश्वामित्री नदी और मगरमच्छों के बीच फंस गई थी भैंस, फायर विभाग और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर ने सफल रेस्क्यू किया। एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी का लोगों में क्रेज है, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा विदेश में भी बेटी को दे रही हैं देसी परवरिश, मालती मैरी को सिखाया दुर्गा सप्तशती का मंत्र, शेयर किया प्यारा सा वीडियो। गुड्डू मुन्ना और कालीन भैया की वापसी का शंखनाद, मिर्जापुर द मूवी के पहले गाने 2 नंबरी ने रिलीज होते ही बढ़िया सस्पेंस बढ़ा दिया है, फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रियलिटी शो बिग बॉस 20 का टीजर, शानदार लुक, सलमान खान नजर आए, 6 सितंबर से इसका प्रीमियर होगा। एक्टर इमरान खान ओटीटी डेब्यू को तैयार है, नेटफ्लिक्स की मिच्योर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम्हें नजर आएंगे अनाउंसमेंट किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दिया और उसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा किया है, सपकाल से माफी की मांग की गई है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था, उसका गलत अर्थ निकाला ना जाए। वहीं गूंगी गुड़िया बयान पर सुनेत्रा पवार ने भी महाराष्ट्र कांग्रेस पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि वक्त आने पर करारा जवाब मिलेगा।
2: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो सुनेत्रा पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
3: गूंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है। और ये सेवा उनको दिखती नहीं है लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
2: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
4: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए। और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
2: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गुंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
4: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहां पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहां पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहां पर दिखाई दे रही है।
5: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे हम, वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा। वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी।
2: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गुंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
6: इंदिरा गांधी जी को गुंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
2: मामला गरमाया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
7: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुड़िया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुड़िया ही शिवे आहे का, गुंगी गुड़िया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुड़िया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही, हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं जसं तो शब्द आहे अगदी तशा स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसलाय।
2: बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी, वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी, दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही, इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
4: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुनेत्रा पवार जी को गुंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कोलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
2: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
8: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे।
9: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है। और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहने, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
2: सुनीत्रा पवार पर दिए इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
10: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा, और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
11: सरकार किसी अच्छी सड़क या हाईवे पर चलने के एवज में टोल टैक्स लेती है, लेकिन बारिश के दौरान मुंबई नासिक हाईवे का बुरा हाल है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर दो लोगों की जान जा चुकी है। एक TDRF जवान की बाइक गड्ढे में गिरी और उनकी मौत हो गई। वहीं विभंडी में बाइक पर बैठी एक महिला को जान गंवानी पड़ गई।

0: बारिश के बाद सड़कों पर हुए जानलेवा गड्ढों से बचकर अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है।
1: आप कहाँ पे जा रहे हैं?
2: जलगांव
1: बाइक पे। तो कितना गड्ढों का सामना पड़ना पड़ता है?
2: कौन से? अभी तो पढ़ते पढ़ते बचे हम गड्ढों से, क्या बताओ।
1: कहाँ पे? मुझे समझ में आ रहा है कितना खड्डा है और मुझे डर भी लग रहा है।
3: कोई लेडीज रहेगी, क्या रहेगी?
1: हाँ, अभी एक एक्सीडेंट हुआ ना अभी यहीं पे कल परसों, मर गया वो बंदा।
3: हाँ?
1: बाइक पे मर गया।
0: यहाँ तक कि जिस हाईवे पर चलने के लिए टोल देना पड़ता है उस पर भी लंबे चौड़े गड्ढों में गिरकर लोगों की जान जा रही है।
2: हम लोग जब यहाँ पे आते हैं ना तो हर गाड़ी खर्चा निकलती है। हम लोग खर्चा करे गाड़ी में या अपना इंश्योरेंस भरे या क्या करे। ड्राइवर को
1: कौन से रोड पे चला रहे अभी गाड़ी?
2: कांदली कोशिंबी रोड है।
1: हाँ, मतलब कहाँ पे जाता है?
2: मुंबई नासिक हवे।
1: ओके,
2: बहुत परेशान है हम लोग।
1: कितना एक्सीडेंट देखते हैं आप डेली?
2: डेली का एक दो एक्सीडेंट देखते हैं इधर।
0: सरकार के दावों और सड़कों की रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम मुंबई नासिक हाईवे पर पहुंची।
4: इस वक्त हम मुंबई नासिक हाईवे के पड़गा इलाके में हैं। ये इलाका आप देख लीजिए पीछे, काफी ज्यादा सड़क जो है वो खराब है। दरअसल ये मुंबई नासिक हाईवे 2021 से यहाँ पर वाइडनिंग का काम चल रहा है, लेकिन आप देख लीजिए सड़क की ये हाल है। हाईवे है ये। आप यहाँ पे रोज ट्रैवल करते हैं?
5: रोज जाता हूँ। हाँ, रोज आना जाना रहता है।
4: आना जाना रहता है। और ये जो रास्ता है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
5: रास्ता आप हालत तो देख रहे हैं। ये जो एक महीना हो गया पूरा ऐसा ही खड्डे में।
4: हर बरसात में यही हालत?
5: हाँ, हर बरसात में यही हालत होता है।
4: मतलब पिछले कितने सालों से आप देख रहे हैं?
5: अरे 5-6 साल में ऐसा ही हालत रहता
4: है। मतलब हर हल्की सी बरसात हुई नहीं कि ये ऐसे ही आपको हिलते डुलते संभलते हुए जाना पड़ता है?
5: डांस करना पड़ता है।
4: बिल्कुल, यहाँ पे दरअसल टोल भी है। टोल लगता है लोगों को यहाँ ट्रैवल करने के लिए, कि इसके बावजूद आप पैसा भी दीजिए उसके बावजूद इस तरह की सड़क आपको यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। और खासतौर से बरसात के समय में भारी भारी ट्रक्स यहाँ से गुजरती हैं, तो ये सड़क का जो है ये हालत हर साल देखने को मिलता है। और लोग इससे ज़रूर परेशान ज़रूर हैं, लेकिन फिलहाल इसी पर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यही एक मुख्य सड़क है इस रास्ते को जोड़ती हुई।
0: थाने में ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यहाँ 2 दिनों में जानलेवा गड्ढों ने 2 लोगों की जान ले ली। शाहपुर में इस गड्ढे में बाइक गिरने से एक TDRF जवान की मौत हो गई, जिसके बाद से शाहपुर के बामनी गांव में मातम पसरा है। TDRF के जवान विकास कुरे सोमवार सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। TDRF के जवान विकास कुरे के परिवार में उसकी पत्नी और 9 महीने की जुड़वा बेटियां हैं।
4: इस वक्त हम मुंबई से नासिक के हाईवे पर हैं। ये दरअसल ये जो रास्ता है यहीं पर TDRF का जो एक जवान है वो अपने गांव से तकरीबन 5 बजे के आसपास, कहा जा रहा है कि वो शाहपुर से गुजरता हुआ आसनगांव रेलवे स्टेशन जा रहा था। अचानक से काफी स्पीड में था वो जवान अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए। ये देखिए, ये सड़क बहुत अच्छी है तो इसलिए काफी स्पीड में वो आ रहे थे। और बताया यही जा रहा है कि विकास जब अपनी गाड़ी अपनी 2-व्हीलर को जब इससे लेके जा रहे थे तो यहाँ पानी भरा हुआ था। उससे वो समझ नहीं पाए कि आखिर यहाँ पर ये पॉट होल है। उनकी गाड़ी जो कि तेज रफ्तार में थी इसको हिट किया उन्होंने और सीधे गाड़ी थोड़ी दूर और वो उससे भी आगे दूर जाके गिरे। उससे उनको बहुत तेज चोटें आई।
6: उधर गिरे थे, उनका हाथ मुड़ गया था, मोड़ा था सब, तो उनको उठाने के लिए गए हम, तो बोलते मेरा बैग निकालो। बैग निकालने के लिए गए तो हाथ मुड़ा था, तो बोलते रुको एम्बुलेंस आ रही, तो एम्बुलेंस में जाओ। 2 बंदे एम्बुलेंस बुलाने के लिए गए थे और हम 5 बंदे उधर ही खड़े थे। बाद में एक से एम्बुलेंस आ गई थी, हमने बुलाई थी वो नहीं आई, दूसरी आ गई, फिर उसमें डाला और वो गए थे, मतलब सरकारी अस्पताल में लेके गए।
7: एकदम खराब सड़क है ये, एकदम खतरनाक खराब सड़क है।
4: जब भी ट्रैवल करते वैसे आप लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते?
7: हेलमेट क्या पहनेगा, हेलमेट इस रास्ते में सर फूट जाएगा हेलमेट के वजह से। ये 4-व्हीलर नहीं लेके आते हम लोग, ट्रिपल सीट है, कभी बाइक पे चलाने के लिए लगा दिया इस सरकार ने। पहला 4-व्हीलर लेके आते थे हम लोग डेली, मेरा 2 4-व्हीलर घर पे खड़ा है, तो ये क्या रास्ते पे लेके आएगा? सस्पेंशन जाएगा, कुछ जाएगा, कौन जिम्मेदार रहेगा इसमें?
8: 2 बार टायर भी पंचर हो गया,
7: एकदम खराब। आगे जाओगे और ये टोल बराबर ले लेंगे। अभी ये मैं 2 दिन हो गया, मैं जयपुर से आ गया, ये रास्ते से ही ट्रैवल करके आ गया इंदौर वाले। इतना रास्ता फूटा है क्या पूछो मत।
9: हम लोगों ने यहाँ पे हड़ताल करके ये जो पूरा पैसेज है ये प्योर डामरीकरण करके किया था, लेकिन ये अभी मई महीने में ये लोगों ने पूरा वो लेयर निकाल के ये इस पे कॉन्क्रीट करना है करके ये छोड़ दिया, और ये अभी तक देखो इसका हालत क्या है।
10: 145 रुपए का टोल डेली देता हूँ, अगर आप सोचे गाड़ी नहीं लिया उसका रोड टैक्स दिया, उसके बाद भी डेली आ जा रहा हूँ 145 का टोल टैक्स दे रहा हूँ। अगर उसके बाद ही मैम यही गाड़ी अभी 2 महीने की गाड़ी है, 2 महीने भी 4 महीने रोड पूरा खराब हो गया, एक बारिश भी रोड झेल नहीं पाता है, ये सोचिए ये कंडीशन है रोड की। नितिन गडकरी जी हमारे कहते हैं कि वो ऑफिस में ऐसा सिस्टम रखे हैं कि वहाँ से कहाँ गड्ढा रोड पे सब देखते हैं, पर मैम आप बताइए एक गड्ढा उनको नहीं दिख रहा है।
0: ठेकेदारों ने भले ही सड़क पर वो गड्ढा भर दिया हो जहाँ विकास गोरे की मौत हुई थी, लेकिन सवाल है कि ऐसे गड्ढों पर तभी ध्यान क्यों जाता है जब किसी की जान चली जाती है।
4: कोशिश प्रशासन की यही है कि अगर यह हादसा हो गया है तो अब ज्यादा आगे ना हो, लेकिन समस्या लोगों की यह है कि ये गड्ढे भले ही आज भर दिए गए हों, लेकिन इस तरीके के गड्ढे हर बार हर थोड़ी दूर पे मुंबई नाशिक हाईवे पे, चाहे वो मुंबई से नाशिक की तरफ का रास्ता हो या नाशिक से मुंबई की तरफ का रास्ता हो, इन दोनों रास्तों पर हमेशा काफी ज्यादा जो पॉटहोल्स हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में दिखते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां बहुत धीमी भी चलती हैं और इस तरह के हादसे भी काफी ज्यादा होते रहते हैं।
0: वहीं ठाणे की भिवंडी में भी एक गड्ढे की वजह से बाइक पर पीछे बैठी सुनीता नाम की महिला की मौत हो गई थी।
4: ठाणे के अलग अलग इलाकों में लोगों का कहना है कि इसी तरीके से जो सड़कें हैं वो बेहद खराब हो चुकी हैं और सरकार को इन पर खास तौर से नजर देने की जरूरत है, ताकि अगर वो ध्यान देंगे तो ये शायद जिस तरीके से मौतें सुनीता पाल और विकास गोरे की हुई हैं, उस तरह की मौतें अब यहाँ नहीं होंगी। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ विद्या, ठाणे आज तक।
11: मुंबई पुलिस में सैलरी घोटाले पर ब्लेम गेम वाली सियासत शुरू हो चुकी है। साल 2019 और 2020 में कुछ ऐसे पुलिस कर्मियों को सैलरी बांटी गई जो सिर्फ कागजों पर थे। ये घोटाला करीब 6.5 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि यह घोटाला उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुआ था, जिसका खुलासा हमने किया है। उधर शिवसेना यूबीटी फडणवीस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है।
0: महाराष्ट्र पुलिस में एक सैलरी घोटाला सामने आया है। 2019 और 2020 के बीच मुंबई पुलिस के काल्पनिक कर्मचारियों को महीने की सैलरी के तौर पर करीब 6.5 करोड़ रुपए बांटे गए। 6 साल बाद ये खुलासा हुआ कि कर्मचारी सिर्फ कागजों पर थे। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के पेरोल रिकॉर्ड में 6.41 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड तब सामने आया जब पुराने सैलरी पोर्टल सेवार्थ से कर्मचारियों के डेटा को नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया गया। इस सैलरी घोटाले पर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि ये घोटाला उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।
12: आज 2020 का घोटाला है, अच्छा नहीं है। 2020 साल का घोटाला है, त्याच्यावर कारवाई चाललेली आहे आणि सगळ्या ज्यांनी ज्यांनी घोटाळा केला त्यांना त्या ठिकाणी निश्चितपणे कारवाई झालेली आहे आणि होते। बघा, कुठेही शंका निर्माण झाली आणि पुरावा असेल तर चौकशी झालीच पाहिजे, त्यामुळे निश्चितपणे या संदर्भातली सगळी चौकशी केली।
11: पुलिस के नाम पर
0: वही उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इस सैलरी घोटाले पर फडणवीस सरकार को पूरी तरह नाकाम करार दिया है।
13: आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस कर्मी रात दिन राज्य की देश की सेवा करते हैं, बदले में उनको वेतन दिया जाता है, लेकिन आपको अगर ये पता चले कि वेतन लेने वाले पुलिस की नौकरी पर हैं ही नहीं, फिर भी 6.5 करोड़ के करीब घोटाला हो जाए, वो वेतन लेकर चले जाए और पुलिस महकमे को पता ही न चले, ये कितनी बड़ी आंखों में धूल झोंकने जैसी बात हो गई। देवेंद्र फडणवीस जी, आप महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, सोचिए कितना बड़ा रेवेन्यू को नुकसान हो गया। एक तरफ हमारी पुलिस रात दिन मेहनत करती है, उनको समय पर वेतन मिले, उनकी पगार बढ़े, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ चोर उचक्के पुलिस के नाम पर नकली ढंग से वेतन लेके भाग जा रहे हैं। बताइए, ये दिखाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, चोर उचक्कों को कोई डर नहीं है, मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपने मंत्रालय पर नहीं है।
0: नॉर्थ रीजनल डिवीजन के एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के मुताबिक 10 गैर पुलिस कर्मियों को अक्सर कर्मचारियों के रूप में लिस्ट किया गया था और उनके बैंक अकाउंट में हर महीने सैलरी जाती थी। अब उन्हीं 10 लोगों के खिलाफ FIR की गई है।
14: बताया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों ने फर्जी कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाने के लिए मिली भगत की।
15: 2019-20 में ये घोटाला किया गया है और संबंधित जो भी क्लरिकल ऑफिसर था मेरे ख्याल से 2020 में उन्होंने कुछ VRS भी लिए, ऐसे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में सामने आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी इंक्वायरी चालू है, इसमें जो भी इंक्वायरी में जो भी सामने आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
14: इस दौरान ऑफिस में मौजूद 5 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, भरोसा तोड़ना और आपराधिक साजिश शामिल है। मुंबई पुलिस ने आरोपी अधिकारियों को बिना इजाजत सैलरी प्रोसेस करने के लिए नकली सर्विस आईडी और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम आईडी बनाने के खुलासे के बाद सस्पेंड किया।
16: मुंबई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक घोटाला उजागर हुआ है और आपको बता दे इस घोटाले में कुल 6,43,00,000 रुपए का ये पूरा घोटाला अभी तक सामने आया है, जिसमें 10 ऐसे लोगों को वेतन दिया जा रहा था जो कि पुलिस कर्मी ही नहीं थे, जो पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे, पुलिस सिस्टम में मौजूद नहीं थे, पर इन्हें सैलरी दी जा रही थी, इन्हें वेतन दिया जा रहा था और ये वेतन हर माह उनके अकाउंट में जमा हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये जो पूरा घोटाला है ये 2020 साल से शुरू हुआ था और तब से सिस्टम माइग्रेशन सिस्टम में धांधली कर जो कर्मचारी, जो अफसर इसमें शामिल थे, इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे और अभी तक जो घोटाला है 6,43,00,000 रुपए का है और ये अमाउंट आगे जाकर और भी बढ़ सकता है। अभी इस मामले में एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सीनियर क्लर्क को सस्पेंड किया गया है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जांच सौंपी गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल था, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इसमें कौन अन्य कर्मचारी शामिल थे। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
11: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं मुंबई मेट्रो में एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मुंबई में जन्म प्रमाण पत्र के पेंडिंग मामलों की वजह से वीजा, शादी और विदेश में पढ़ाई में देरी हो रही है। बीएमसी को पुराने जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड को प्रोसेस करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को लिखे गए एक पत्र में म्यूनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने लगभग 1 करोड़ पुराने रिकॉर्ड की मंजूरी में तेजी लाने के लिए 7 और जिला रजिस्ट्रार नियुक्ति करने की मांग की है। उनके मुताबिक मौजूदा सिस्टम में बहुत ज्यादा बोझ है, इसीलिए ओटीपी आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है।
1: सब दे चुके हम लोग।
2: मुंबई में अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपको उसमें कुछ करेक्शन कराना है या उसे डिजिटाइज कराना है तो एक बहुत लंबा समय लग रहा है, जिसमें कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में बात करने के लिए बीएमसी हेल्थ कमेटी चेयरमैन हरीश बांदिरगे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये जो नई पॉलिसी आई है जिसमें सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उस वजह से एक बहुत लंबा आप कह सकते हैं बैकलॉग या बॉटलनेक मुंबई में देखने के लिए मिल रहा है।
3: कैसे है कि एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार जोनल वाइज मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज एक नोडल ऑफिसर बनाया गया था और मुंबई को एक ही डिस्ट्रिक्ट में काउंट किया गया है, तो जो ईएचओ है वो एक ही है और उनके पास अगर 3,000 पेंडिंग है तो अकेला ईएचओ थोड़ी करते बैठेगा। तो हमने एक मांग किया है, जो अपने एमओएच है 24 वार्ड है, 24 एमओएच को नोडल ऑफिसर दिया जाए तो ये इजी होगा।
2: और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कई लोगों की तक आपको कंप्लेंट्स आपके वार्ड में भी आ रही होगी कि किसी को फॉरेन स्टडी के लिए जाना है, किसी को शादी करना
3: नहीं, इसीलिए। और जब भी कंप्लेंट्स आने के बाद में मैंने पता किया, मैंने यहाँ पे मीटिंग बुलाया ज्वाइन, तभी मुझे मालूम पड़ा कि पहले तो था मतलब अलग अलग, लेकिन अभी ये जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो भी घोटाला हुआ है उसके बाद में वापिस नोडल जिला ईएचओ को किया गया है और उसके वजह से देरी हो रही है।
2: कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीएमसी स्टाफ भी डिमोटिवेटेड है? दो लोग इस घोटाले में सस्पेंड हुए, 85,000 जो बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें आए सामने आया कि ये गलत तरीके से अप्रूव किए गए थे, उसके बाद ये लगता है आपको प्रोसेस में और प्रॉब्लम हुआ है?
3: नहीं, कैसे है कि पहले प्रोसेस इजी होती थी लेकिन उसमें घोटाले भी बहुत हुए। 19,000 सर्टिफिकेट विदाउट पेपर के सामने आए हैं, तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। तो अभी कैसे है, प्रॉपर हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि नोडल ऑफिसर ये 24 बनाएंगे तो इजी हो जाएगा वापस काम।
2: धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हरीश बांदिरगे थे, जिनका कहना है कि क्योंकि नोडल ऑफिसर जो ओटीपी आता है उसे अप्रूव करने के लिए एक ही है पूरे मुंबई के लिए, इसलिए भी एक बहुत बड़ा जो बैकलॉग है वो बना हुआ है और सेंटर से डिमांड की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पावर दिया जाए ताकि इस पूरे बैकलॉग को क्लियर किया जा सके। मंदार चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: The government controlled everything. They didn't want too much private industry.
7: The big family groups at that time, who traditionally were dominating Indian industry at that time. Slowly, I think new entrepreneurs came up.
6: There were businessmen who were coming into prominence and rising. Nobody had heard of Vijay Mallya's father, Vittal Mallya, at that time, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.

प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया।

संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भारी हंगामा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले ईडी कहां है। किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस पर एमपी और एसपी और कम्युनिस्ट और भगवान राम का अपमान करते हैं तो मुझे दुख होता है, विपक्ष बह रहा है घड़ियाली आंसू। प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट हटाने पर सरकार सख्त है, मेहता को भेजा गया समन, आज टॉप अधिकारियों से मांगा गया लिखित जवाब। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एमडीएमके के महासचिव की पुस्तक व्हाई क्वीन पार्लियामेंट का विमोचन किया। पुस्तक के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों, शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के खिलाफ बड़ा और कड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी बोले ऐसा करने वाले वो होते कौन है। राहुल गांधी बोले आरएसएस का इतिहास बदलने की कर रहा है कोशिश, इसके पीछे खतरनाक विचारधारा है, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली में फिर से बढ़ गई एसआईआर की डेट, 17 अगस्त तक घर घर आएंगे बीएलओ, 27 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। देश से भागे अपराधियों पर सख्त है सरकार, 7 साल में 36 देशों से लाए गए 274 भगोड़े। गृहमंत्री अमित शाह बोले वैश्विक कूटनीति और खुफिया तालमेल की सफलता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का केंद्र सरकार पर हमला, बोले 40,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े को कब लाएंगे वापस। यूपी विधानसभा में राम मंदिर पोस्टर विवाद, बीजेपी ने एसपी पर लगाया सनातन विरोधियों ने क्या आरोप। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी विवाद में एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप, बोले खुलासे के बाद भी सरकार ने नहीं की प्रभावी कार्रवाई। मदरसों को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, कालिम फाजिल की नहीं मिलेगी डिग्री, अब होगी सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। लखनऊ के फ्लिपकार्ट सीईओ ने सीएम योगी से मुलाकात की, यूपी के आई विजन और एमएसएमई विस्तार में साझेदारी का जताया भरोसा। योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले, 4 मंडलों को मिले नए कमिश्नर। दिल्ली में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, सीएम शुभेंदु अधिकारी और सुनील बंसल की शिष्टाचार मुलाकात। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बोली राम के नाम पर नारे लगाने वाले मंदिरों के दानपात्र भी लूट रहे हैं, हाथों पर रोक का लगाया आरोप। तमिलनाडु के तंजावुर में विवादित टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, अभिनेत्री त्रिषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हंगामा मचा। चेन्नई में उदयनिधि की गिरफ्तारी के बाद तंजावुर साउथ पुलिस स्टेशन पर जमा हुई समर्थकों की भारी भीड़, हालांकि पूछताछ के बाद पुलिस ने रिहा कर दिया था। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव के बीजेपी के हार के बाद बड़ा संगठनात्मक फैसला, दतिया जिले की पूरी कार्यकारिणी को भंग किया गया, सीएम मोहन के आवास पर हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया निर्णय। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनीत्रा पवार पर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का हमला, सोशल मीडिया पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल। विरोध में बढ़ के एनसीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा और नारेबाजी। गूंगी गुड़िया बताने पर डिप्टी सीएम सुनीत्रा पवार का जवाब, बोली समय आने पर बोलूंगी। सीएम फडणवीस का विपक्ष पर हमला, बोले खबरों में बने रहने के लिए कर रहे हैं राजनीति, महाराष्ट्र की संस्कृति में इतने निचले स्तर पर की जाने वाली बातचीत पहले बार देखने को मिली। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महिलाओं के अपमान से जोड़कर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को अपने टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए और तुरंत माफी मांगे। महाराष्ट्र विधान परिषद उपसभापति सचिन अहिर ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, शिवसेना नामचिन्ह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज। छत्रपति संभाजी नगर में नर्सों की भर्ती और प्रमोशन की मांग को लेकर काम बंद प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। थाईलैंड फुकेट से दिल्ली आते समय एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया विमान। टर्बुलेंस के चलते विमान में अफरा तफरी मच गई थी, 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स को चोटें भी आई हैं। एयर इंडिया हादसे ने डीजीसीए जांच के ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रखने की बात कही, दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में घायलों से मिले केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान चेहलुम जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट, कावड़ यात्रा और चेहलुम जुलूस साथ साथ निकालने के लिए 2 भागों में बटी सड़क। पुलिस ने सड़क के बीच में लगाए 10-10 फीट ऊंचे टेंट के पर्दे, यात्रा जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकले इसके लिए पुलिस तैनात, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर स्वदेश लौटे वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह का जोरदार स्वागत, अमृतसर हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। श्रीमद भगवद गीता के श्लोकों की ध्वनि से गूंजा अमेरिका के टेक्सास का डलास, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्रीमद भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया। मैसूर के अवधूत दत्त पीठम के पीठाधीश्वर श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी की मौजूदगी में कार्यक्रम, अमेरिका में आध्यात्मिक मिशन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजन। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही है बारिश, बीच में बद्रीनाथ धाम यात्रा का उत्साह बरकरार है, उफनती अलकनंदा नदी के बीच भी जारी है पवित्र यात्रा। मौसम की चुनौतियों के बावजूद सुचारू रूप से जारी है बद्रीनाथ धाम की यात्रा, अब तक 15,57,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। 3 दिनों के लिए पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शिवसागर जिले में बाढ़ पीड़ित इलाकों और राहत शिविरों का दौरा किया। सीएम हेमंत ने बाढ़ पीड़ितों के अंतरिम वित्तीय सहायता के लिए चेक भी सौंपे। ऑफिसर्स को घर घर जाकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में और पुंछ में भारी बारिश के बाद तबाही, कई इलाकों में अचानक से आई बाढ़ ने बिगाड़े हैं हालात। पुंछ के बेदर नाले में फंस गए तीन लोगों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने तीनों को बचाया। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश के चलते उफान पर है नदियां, तेज बहाव और भयानक नजारा सामने आया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में फ्लैश फ्लड का कहर, निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा। पिछले 24 घंटे में 24 बाढ़ की घटनाएं। पहलगांव में अचानक से आई बाढ़, नुनवान यात्रा, बेस कैंप की बाउंड्री वॉल गिरी, कैंप परिसर में घुसा पानी, एसडीआरएफ का राहत और बचाव काम जारी। राजौरी में भारी बारिश से मनावर नदी और कई नालों का जलस्तर बढ़ गया। तेज बहाव से बह गए कई जानवर, स्थानीय लोगों ने बचाया। उत्तराखंड में बारिश ने उफनाया बरसाती नाला, कालसी में सैलाब के बीच फंस गई थी कार। प्रशासन के लोगों ने ऐसे स्थानों से दूर रहने की अपील की गई है। टिहरी गढ़वाल में लगातार बारिश के बाद घनसाली में हाईवे पर पहाड़ी से गिरा मलबा, सड़क मार्ग साफ करने में जुटा है प्रशासन। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर, कई निचले घाटों में पानी भरा। बहगा में तमसा नदी से अनोखा रेस्क्यू, युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर बचाई नेपाल से लौट रहे 11 श्रद्धालुओं की जान। पहाड़ों पर बारिश से अलवर में अरावली के झरने गुलजार हुए, गरवाजी वाटरफॉल पूरे वेग के साथ बहता हुआ नजर आया। पंजाब में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट, जलंधर समेत कई शहरों में जलभराव। पंजाब के फजिलका में बारिश से धस गई थी सड़कें और गिरे बाइक सवार, दुकानदारों ने रेस्क्यू करके जान बचाई। गुरुग्राम के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ और लोगों को उमस से थोड़ी सी राहत मिली। यूपी में अगले 3-4 दिनों तक झमाझम बारिश का अलर्ट है, गर्मी से राहत मिलेगी, 4-6 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान। गुजरात के वडोदरा में 5 गोदामों में भीषण आग लगी, ज्वलनशील सामान से भड़क गई थी आग की लपट। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी, रेस्क्यू के दौरान गिरी दीवार, 2 फायर कर्मियों की मौत हुई, 3 घायल। गाजीपुर में दर्दनाक हादसा, नीलगाय से टकराया था बाइक सवार, सड़क पर गिरे दूध कारोबारी को ट्रेलर ने कुचल डाला, मौके पर मौत। राजस्थान के अलवर में तेंदुए के दिखने से लोगों में दहशत है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी तस्वीरें, तेंदुए की लोकेशन पता करने में जुटे हैं वन विभाग के कर्मचारी। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो से मिले 35 लाख रुपए, पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में गाय ले जा रही महिलाओं से मारपीट हुई, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। भोपाल में फर्जी क्राइम ब्रांच गैंग का पर्दाफाश, एमडी ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देकर युवक से लूट के मामले में 3 की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण सड़क हादसा, नौशेरा में लोडा वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, 2 लोगों के घायल होने की खबर। शिमला पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, 6 करोड़ के हेरोइन के साथ हरियाणा का युवक गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में हरिद्वार जा रहे कावड़ी की दिल्ली मेरठ हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई, गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में पत्नी से परेशान होकर पति ने आत्महत्या की, पुलिस ने पत्नी के साथ उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। एमपी के खरगोन में खाद चोरी के मामले में विरोध करने पर युवक की हत्या कर डाली गई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागपत में कावड़ विसर्जन के बाद लौट रहे कावड़ियों से भरा हुआ ऑटो पलट गया, महिलाओं बच्चों समेत 6 कावड़ियों के घायल होने की खबर। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बिल्ली की मौत पर पशु प्रेमियों का कैंडल मार्च, 12वीं मंजिल से फेंकने के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। महाराष्ट्र के जलगांव में शातिर ठगी का खुलासा, कार से तेल लीक होने का झांसा देकर 12.5 लाख रुपए कैश उड़ाए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। नागपुर में एक मंदिर में रैकी के बाद चोर ने चांदी का मुकुट और घंटा उड़ाया, सीसीटीवी फुटेज से आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 युवतियों को रेस्क्यू किया। वडोदरा में शातिर चोर की गिरफ्तारी, भारी मात्रा में सोना चोरी करने के आरोप, 22 साल से कई वारदातों को अंजाम दिया। जामनगर में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 38 प्रतिष्ठानों पर छापा, बासी और एक्सपायरी सामान नष्ट किया गया। वडोदरा में फंदी हुई विश्वामित्री नदी और मगरमच्छों के बीच फंस गई थी भैंस, फायर विभाग और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर ने सफल रेस्क्यू किया। एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी का लोगों में क्रेज है, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म, 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा विदेश में भी बेटी को दे रही हैं देशी परवरिश, मालती मैरी को सिखाया दुर्गा सप्तशती का मंत्र, शेयर किया प्यारा सा वीडियो। गुड्डू मुन्ना और कालीन भैया की वापसी का शंखनाद मिर्जापुर, द मूवी के पहले गाने 2 नंबरी ने रिलीज होते ही बढ़ाया है सस्पेंस, फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी। रिलीज हुआ रियलिटी शो बिग बॉस 20 का टीजर, शानदार लुक में नजर आए सलमान खान, 6 सितंबर से प्रेमियर होगा। एक्टर इमरान खान ओटीटी डेब्यू को तैयार है, नेटफ्लिक्स की मिच्योर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम में आएंगे नजर, अनाउंसमेंट किया गया। 1 महीने में थोक कीमत के 5% से ज्यादा बढ़ने के रिटेल मार्केट में चीनी
करीब 49.5 रूपए प्रति किलो हुई है। दक्षिण भारत में चावल के दाम में 10 से 15% तक बढ़ोतरी। यूपीआई से संदिग्ध लेन देन करने पर पिन डालने से पहले स्क्रीन पर आएगा अलर्ट। बैंकों के इस प्रस्ताव को फिलहाल आरबीआई और एनपीसीआई के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। देश में रियल एस्टेट के नए इंजन बनेंगे। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के डेटा सेंटर स्क्वायर यार्ड के मुताबिक 2030 तक बढ़ाएंगे रेजिडेंशियल डिमांड। देश के सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने 6.5% तक हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार इस बिक्री से सरकारी खजाने को करीब 3 अरब डॉलर का मिलने का अनुमान। डाबर के 100% आवे वाले प्रोडक्ट्स पर FSSAI ने रोक लगा दी है। डाबर के शहद और घी समेत कई उत्पादों की बिक्री पर रोक। यमन के समुद्री क्षेत्र के पास भारतीय जहाज MSV फैजे नूरे ओलिया पर हुआ बड़ा हमला। अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने से डूब गया जहाज। ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर ओमान से कही है बड़ी बात। बातचीत जारी है, सकारात्मक रही। जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने पर बात। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कूटनीतिक समाधान की कोशिशें जारी हैं। कतर, पाकिस्तान और ओमान मध्यस्थता में जुटे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। 5 लोगों की मौत हुई, 1 नागरिक घायल हुआ। यूक्रेन के सुमी समेत कई शहरों पर रूस का भीषण हमला। 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक बुनियादी ढांचों पर भी हमला किया गया। लेबनान में संघर्ष विराम समझौते को लेकर इटली की राजधानी रोम में लेबनान और इसराइल के वार्ताकारों के बीच हुई 7वें दौर की बातचीत। दक्षिण कोरिया ने जापान के राजदूत को किया तलब। विवादित द्वीपों पर जापान के दावे को लेकर जापानीज राजनयिक के सामने दर्ज करवाया गया विरोध। यूरोपीय यूनियन में बाहरी दखल पर फ्रांस के विदेश मंत्री ने जताई नाराजगी। का कुछ देशों ने यूरोपीय यूनियन के प्रवासन नीति के खिलाफ किया दुष्प्रचार। इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश कर रहे अवैध अप्रवासियों से भरा हुआ जहाज हुआ था बड़े हादसे का शिकार। 157 प्रवासियों को फ्रांस और ब्रिटेन की टीमों ने सुरक्षित बचाया। श्रीलंका में मूसलाधार बारिश ने ली 5 लोगों की जान, 3 लोग हैं घायल। कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर है। बीते 2 दिन से हो रही है लगातार भारी बारिश।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको तमिलनाडु के पूर्व डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बारे में बताएंगे। इस बार उन पर अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर बेहद भद्दी और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इसके बाद उनके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई और उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया हो, लेकिन जो विजय ने एक्शन लिया है बतौर मुख्यमंत्री उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जरूर पहली बार है जब स्टालिन के बयान को लेकर वो कानूनी शिकंजे में फंसे हो। आज आपको विस्तार से बताएंगे ये पूरा मामला क्या है। साथ ही ये भी बताएंगे कि विवादित बयानों को लेकर कुछ लोगों की राय चेहरा देखकर क्यों बदल जाती है। और इसके बाद आपको पेपर लीक और धांधी को लेकर रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बारे में बताएंगे और पूछेंगे कि जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ सबसे आगे खड़े थे वो आज रांची में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। जंतर मंतर में जो लोग दिखे वो झारखंड में क्यों छू मंतर हो गए। झारखंड के हजारों युवा परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। बारिश खराब मौसम के बीच फटे तिरपाल के नीचे बैठे इन छात्रों की मांग सिर्फ इंसाफ है। लेकिन हैरानी की बात है, जिन नेताओं, कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने दिल्ली के आंदोलन पर खूब आवाज बुलंद की थी और अच्छा किया था, आज वो इनके साथ खड़े क्यों नहीं दिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या न्याय की ये मांग सिर्फ राजनीतिक फायदे के तराजू पर तौली जाएगी। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के अगले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बनने वाले हैं। POK चुनाव में PMLN की विवादित जीत के बाद नवाज की शिक्षा पर चर्चा तेज हो गई है, लेकिन चर्चा ये भी है कि कानूनी पेच और बिलावल भुट्टो की बगावत के चलते नवाज की ये कुर्सी खतरे में भी पड़ सकती है। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें उदयनिधि स्टालिन का स्वागत एक हीरो की तरह आज हुआ है। ये उदयनिधि स्टालिन, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई, नारे लगाए गए, समर्थकों ने जश्न मनाया। और ये भी तब हुआ जब आज सुबह तक उदयनिधि स्टालिन की खूब आलोचना हो रही थी। लोग पूछ रहे थे कि वो एक महिला को लेकर इतनी निम्न स्तर की बात कैसे कह सकते हैं। ये वही मामला है जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को निशाना बनाने के लिए अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, क्योंकि दोनों की दोस्ती है और ऐसा लग रहा था कि लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा दिखेगा और उनकी आलोचना की जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों ने आज एक नई बहस छेड़ दी है और यहां से एक खतरनाक राजनीतिक ट्रेंड भी देखने को मिला है। कदम कदम पर जो खबरें आ रही हैं वो बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। एक ऐसा ट्रेंड जिसमें पहले एक नेता आपत्तिजनक बयान देता है, वो भी एक महिला के खिलाफ, फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसी होती है कि उसको अरेस्ट ही कर लिया जाता है और उसके बाद वही नेता खुद को पीड़ित बताने लगता है और आखिर में गिरफ्तारी को ऐसे पेश किया जाता है मानो उसने कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया। यानी असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और पूरी बहस गिरफ्तारी पर आकर टिक जाती है। यही लोकतंत्र के लिए सबसे हैरानी वाली बात है। गिरफ्तारी सही है गलत है ये तो कोर्ट तय करेगा। यहां यह भी सोचे कि अगर गिरफ्तारी किसी जनहित के आंदोलन, किसी बड़े सिद्धांत या जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए हुई हो तो उसे अलग नजर से देखा जा सकता है। लेकिन यहां पे मामला क्या था? मामला किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी का हो तो वहां सबसे पहले आत्ममंथन होना चाहिए, ना कि विजय जुलूस। और वो भी अभिनेत्री त्रिशा पर हमला क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री विजय की दोस्त है। जिस दिन राजनीतिक पार्टियां उनके समर्थक अश्लील भाषा पर शर्मिंदा होने के बजाय उसका राजनीतिक उत्सव और जश्न मनाने लगे, उस दिन लोकतंत्र में संवाद की जगह सिर्फ शोर बचता है। और ये तस्वीरें वही बता रही हैं, पहले देख लीजिए।

रहा है जिसकी आशंका रहती है। अब इसको जीत और हार, पॉलिटिकल नफा नुकसान के तराजू पर तोला जाएगा कि क्या जो गिरफ्तारी मुख्यमंत्री विजय ने की उसकी वजह से उनको ही चोट पहुंचेगी राजनीतिक रूप से, और क्या स्टालिन को उसका फायदा हो रहा है क्योंकि उनके लिए हुजूम इस वक्त इकट्ठा है। लेकिन इन सब से दूर हुआ क्या है, यहां हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि जो सिर्फ एक नेता या एक घटना का नहीं बल्कि हमारे पूरे राजनीतिक रवैये और मानसिकता का सवाल है। कैसे? पिछले महीने जंतर मंतर आंदोलन के दौरान कुछ युवाओं ने, आपने देखा ही सोशल मीडिया पर दिन रात यही बवाल चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक और अशोभनीय, बहुत ही ऐसी भाषा जिसको न चलाया जा सकता है न दिखाया जा सकता है। पूरे देश में बहुत बहस छिड़ गई। कई विपक्षी दलों उनके नेताओं ने कहा कि ऐसी भाषा गलत हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में FIR दर्ज करना, गिरफ्तारी करना अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।

0: होना भी चाहिए। लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक वीडियो संदेश जारी किया, युवाओं को गुमराह हुए बच्चे बताते हुए माफ करने की बात की और सही रास्ता दिखाने की बात कही। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग उन युवाओं के समर्थन में खड़े रहे। उनका कहना था कि सरकार को आलोचना, कठोर भाषा भी सहन करनी ही चाहिए। लेकिन अब आज की घटना देखिए। आज तमिलनाडु में पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक रैली में जो मुख्यमंत्री विजय की दोस्त है अभिनेत्री त्रिषा कृष्णन, उनको लेकर अश्लील टिप्पणी की। डबल मीनिंग में इतना भद्दा बयान दिया है कि वो बयान हम आपको बता भी नहीं सकते। यही नहीं, इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से जोड़कर देखा गया और बयान सामने आते ही पूरे तमिलनाडु में विवाद खड़ा हो गया। और आप तो जानते ही, किसी के खिलाफ एक बयान और उस बयान के बाद कैसे सोशल मीडिया पर तरह तरह से किसी को जलील करने के लिए उसका दोनों ही तरफ के नैरेटिव वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं, पार्टी टीवीके के कुछ नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस उनके घर पहुंची, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये अभिनेत्री त्रिषा है जिन्हें आप देख रहे हैं। एक बात देखिए बिल्कुल साफ है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सार्वजनिक मंच से किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पूरी तरह जायज है। भाई अगर कोई कंप्लेंट करता है पुलिस उस हिसाब से एक्शन ले। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अचानक कर लेना क्या ये सही है, क्या ये बदले की भावना से पिछली सरकार पर हमला नहीं है जो मुख्यमंत्री विजय कर रहे हैं। तो दोनों तरह की बातें इसमें आ रही हैं और दोनों ही तरफ से अगर कोई महिला पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, कोई भी शिकायत दर्ज कराए, इसमें 1% भी मतभेद नहीं है। लेकिन आज सवाल जो है वो सिलेक्टिव आउटरीच का है, जो एक मामले में तो दिखाई देता है दूसरे मामले में अचानक गायब हो जाता है। आप खुद सोचिए कि जंतर मंतर पर तरह तरह की गालियां दी गई। अब उस वक्त ये कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क दिया गया, लेकिन आज वही लोग उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी का कई लोग स्वागत कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी नेता का विरोध करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना, उसके खिलाफ बोलना जायज है, लोकतंत्र की यही ताकत है। लेकिन अश्लील अपमानजनक अभद्र भाषा के खिलाफ अब उसका विरोध तो होना ही चाहिए। लेकिन यह विरोध हर मामले में समान क्यों नहीं होता? आज अगर उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को सही कहा जा रहा है तो वही कसौटी उस समय भी लागू होनी चाहिए जब इसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल जंतर मंतर पर हुआ। ये दोहरा मापदंड, ये जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, इस पर बड़ा सवाल उठता है। और यही वजह है कि हमें लगा कि आज सबसे पहले आपको ये अंतर दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब सही और गलत का फैसला सिद्धांत से नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा से होने लगे तब लोकतंत्र कमजोर होता है। इस पूरे विवाद के 3 किरदार हैं। पहले हैं उदयनिधि स्टालिन, दूसरे हैं मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और तीसरी है अभिनेत्री त्रिषा कृष्णन। और ये पूरा मामला जो है वो 3 अगस्त से शुरू होता है। 3 अगस्त को अगर आप देखें, डीएमके के कावेरी जल विवाद को लेकर एक बड़ी रैली कर रही थी और यह तंजावुर में हो रहा था। उदयनिधि स्टालिन का आरोप था कि कर्नाटक तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय इस मुद्दे पर चुप है। कावेरी का मुद्दा तमिलनाडु के लाखों किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ। देखिए असल मुद्दा कैसे, जो गंभीर मुद्दा है वो कैसे पीछे रह जाता है। गाली गलौज, किसने किसको अरेस्ट किया, उस पर मुद्दा चला जाता है। मुद्दे को भटकाने की भी जो स्ट्रैटेजी होती है। इस मुद्दे के बीच उदयनिधि स्टालिन के भाषण के दौरान भीड़ के एक हिस्से ने अचानक त्रिषा त्रिषा के नारे लगाने शुरू किए। उस वक्त उदयनिधि स्टालिन चाहते तो भीड़ को तुरंत रोक सकते थे, कह सकते थे कि हम यहां किसानों कावेरी के मुद्दे पर बात करने आए हैं, किसी महिला पर टिप्पणी करनी सही नहीं है। वो ये भी कह सकते थे कि हमारी शिकायत मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ है, एक अभिनेत्री का यहां पर नाम नहीं लिया जाना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले मुस्कुराए, उसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिस पर अफसोस जताने के लिए भी शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर डबल मीनिंग की सारी सीमाओं और मर्यादाओं को लांघकर कोई बयान दिया जा सकता है तो वो बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया और इसी बयान के बाद विवाद भड़क गया और आज उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी हुई है। पहले ये बयान सुनिए।
1: ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரல,

0: ஆனா இதை பத்தி இருக்கக்கூடிய
1: முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன? திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்ன
2: जिस एफआईआर के आधार पर उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया गया वो मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके की एक महिला नेता की शिकायत पर दर्ज हुई थी। टीवीके ने इस मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग से भी की है और पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएमके भी इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका ये भी दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। हालांकि वो इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि वहां पर त्रिशा के नाम के नारे लगाए गए और उसके बाद उन्होंने ये कमेंट किया। सुनिए।
3: Did you say something wrong yesterday?
4: You decide. You saw the speech. Did I say something wrong? Did I say something? Anybody's name except the CM's name? No.
3: Why do you think this is happening?
4: This is just revengeful. Sorry.
2: इस टिप्पणी के लिए उदयनिधि स्टालिन पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी अगर अदालत इन धाराओं में उदयनिधि स्टालिन को दोषी मान ले तो वो कम से कम 7 साल के लिए जेल में जा सकते हैं। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से ही उदयनिधि स्टालिन को आज जमानत दे दी गई और कल वो तमिलनाडु के विधानसभा सत्र में शामिल हो सकते हैं। यहां इस बात को भी याद रखिएगा कि उदयनिधि स्टालिन पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के पोते हैं, जिनकी सरकार पर आज से 37 साल पहले जयललिता को विधानसभा में अपमानित करने का आरोप लगा था। तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा ये चर्चा होती है कि प्रतिशोध में जो भी सत्ता में आता है वो अपने विरोधी को तुरंत ही किसी ना किसी बहाने जेल पहुंचाता है, टारगेट करता है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करता है जिससे एक मिसाल बने। अब देखिए, उस वक्त 25 मार्च 1989 को विधानसभा में मुख्यमंत्री करुणानिधि जो है वो बजट पेश कर रहे थे। विपक्ष ने पहले जयललिता के इस्तीफे और उससे जुड़े विवाद को लेकर हंगामा शुरू किया। बहस के दौरान जयललिता ने करुणानिधि पर तीखे आरोप लगाए और दोनों पक्षों के विधायक अपनी अपनी सीटों से उठकर आमने सामने आ गए और देखते ही देखते सदन में धक्का मुक्की, कागज फेंकना, माइक उखाड़ना, हाथापाई की स्थिति बन गई। इसी अफरा तफरी के दौरान जब जयललिता को सुरक्षा घेरे में लेकर सदन से बाहर निकाल रहे थे तब जयललिता ने आरोप लगाया कि तत्कालीन डीएमके मंत्री दुरई मुरुगन ने उनकी साड़ी पकड़कर खींची। उनका आरोप था कि उस वक्त उनकी साड़ी का पल्लू फट गया, सेफ्टी पिन निकल गई और उन्हें चोट भी लगी। बाद में उनकी फटी साड़ी वाली तस्वीरें पूरे देश में देखी गई जिसने इस घटना को ऐतिहासिक बना दिया था और हमेशा इसकी चर्चा होती है। जब भी राजनीतिक प्रतिशोध की बात होती है तो ये जरूर सुनाया जाता है। और आज जब उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनक और डबल मीनिंग बात कही है तो लोग इस घटना को फिर से याद कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या विजय भी उसी राह पर चल रहे हैं जहां प्रतिशोध की बात की जाती है, या फिर वो एक नए नेता के रूप में उभरे, एक ऐसा नेता जो पारंपरिक राजनीति से अपने आप को दूर करके एक नई मिसाल बनाना चाहता था, और उसी मिसाल में क्या वो जीरो टॉलरेंस करना चाहते हैं ऐसी घटनाओं के लिए? बहुत सारे सवाल हैं। यहां एक सवाल और समझिए और वो ये है कि आखिर तमिलनाडु की राजनीति में जब भी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर हमला करना होता है तो बार बार अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का नाम ही क्यों सामने आता है? उदयनिधि स्टालिन ने से पहले इसी साल फरवरी महीने में बीजेपी नेता नयनार नागेंद्र, उन्होंने भी विजय पर तंज कसते हुए पूछा था कि वो त्रिशा कृष्णन के घर से बाहर कब निकलेंगे और बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली थी। यानी अलग अलग पार्टियों के नेता लेकिन निशाना एक ही। अब जरा सोचिए कि अगर किसी नेता से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो उसमें एक महिला को बीच में घसीटना क्यों जरूरी हो जाता है? आखिर इन नेताओं की मानसिकता में दिक्कत क्या है या फिर इनकी जो वैचारिक सोच है वो इतनी संकीर्ण इतनी लघु कैसे है कि वो इससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और ये मानसिकता आपको राजनीति में हर जगह मिल जाएगी। यहां ये भी देखिए कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और तृष्णा कृष्णन आखिर दोस्त कैसे बने और इस रिश्ते पर इतनी राजनीतिक छींटाकशी आखिर क्यों होती है। इसकी शुरुआत साल 2004 में तब हुई जब घिल्ली नाम की फिल्म में थलपति विजय और तृषा कृष्णन को एक साथ देखा गया था। दोनों उसमें एक्टिंग कर रहे थे। उस समय थलपति विजय तमिल फिल्मों के बड़े सुपरस्टार बन रहे थे, तृषा कृष्णन भी तेजी से अपनी पहचान बना रही थी। घिल्ली जब रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। ये सिर्फ सुपरहिट फिल्म नहीं हुई बल्कि तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने लगी। फिल्म में विजय और त्रिशा की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई। इस फिल्म का गाना अप्पड़ी पोडू आज भी तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गानों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, 2024 में जब फिल्म के 20 साल पूरे हुए तो इसे दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और दर्शकों ने एक बार फिर उसी उत्साह के साथ इस फिल्म को देखा। सोचिए 20 साल बाद गिल्ली की सफलता के बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की। 2005 में तिरुपाची, 2006 में आथी, 2008 में कुरुवी फिल्म आई। लगातार हिट फिल्मों के बाद विजय और तृष्णा तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ी में शामिल हो चुके थे लेकिन फिर दोनों में करीब 14-15 साल तक कोई फिल्म साथ में नहीं की। दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ते रहे लेकिन उनके प्रशंसक हमेशा उनकी वापसी का इंतजार करते रहे। कहा जाता है कि इसी दौर में थलपति विजय ने ऐसी फिल्में ज्यादा की जिनमें वो सामाजिक मुद्दों के साथ अपनी एक एंग्री यंग मैन की छवि गढ़ रहे थे। इन्हीं तमाम फिल्मों के बाद साल 2023 में लियो फिल्म आई जिसमें एक बार फिर थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन को साथ देखा गया और दोनों को लेकर फिर से कई अफवाहें उड़ने लगी। ये सिलसिला तब और बढ़ा जब नॉर्वे के ओस्लो में दोनों की साथ टहलते हुए तस्वीरें वायरल हुई। फिर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर दोनों साथ दिखे तो कुल मिलाकर आप समझ रहे हैं कि इस तरह की एक फोटो और उसके बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां बातें और इन सब के जरिए कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि दोनों साथ हैं और इस वजह से भी ये एक पॉलिटिकल हथियार बनता चला गया। मतलब विजय को टारगेट करना है तो त्रिशा पर हमला कीजिए। हालांकि विजय और त्रिशा ने इन खबरों को कभी सार्वजनिक रूप से खुद कभी नहीं स्वीकारा है और इसी दौरान त्रिशा के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लोगों का ध्यान जाने लगा, खींचने लगा। उससे भी जो लोग चाहते थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। थलपति विजय के जन्मदिन पर उन्होंने उन्हें द बेस्टेस्ट लिखकर शुभकामनाएं दी जबकि 2024 में विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स गोट रिलीज हुई और इस फिल्म में त्रिशा का छोटा सा कैमियो था लेकिन उन्होंने विजय के साथ वही मशहूर अप्पड़ी पोडू वाला डांस स्टेप दोहराया जिसने 20 साल पहले घिल्ली को यादगार बनाया था। फिल्मों के अलावा भी दोनों कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ दिखाई दिए हैं। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों की तस्वीरें काफी चर्चा में रही। 4 मई को जब विजय की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की उसी दिन त्रिशा तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। कई लोगों ने इसे विजय की जीत से जोड़कर देखा लेकिन इसकी भी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई है। ना त्रिशा ने कहा है कुछ ना थलपति विजय ने, सीएम विजय। 10 मई को विजय के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी त्रिशा मौजूद थी और 23 जुलाई 2026 को उन्हें चेन्नई के रोहिणी थिएटर में विजय की फिल्म जन नायकन देखते हुए भी देखा गया जिसके कारण जो नेता मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की राजनीति के विरोध करते हैं वो नेता उनके समर्थक त्रिशा कृष्णन पर गंदी राजनीति और सोशल मीडिया पर गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये राजनीति आज भी जारी है। जबकि हमें हैरानी होती है कि हर बार राजनीति में महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों बन जाती हैं या महिलाओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया जाता है। यहां ये भी सोचे कि जिस मंच पर तमिलनाडु के किसानों की बात होनी चाहिए थी वहां उदय निधि स्टालिन ने लाखों किसानों का नुकसान किया। आप इन तस्वीरों को देखिए जो तिरुचिरापल्ली से आई है और वहां किसानों ने अपने शरीर को रेत में जिंदा गाड़कर विरोध प्रदर्शन किया है और ऐसा उन्होंने किसी नाटक के लिए नहीं किया है या पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं किया है बल्कि इसलिए किया ताकि सरकारों को ये बता सकें कि अगर उन्हें कावेरी का पानी नहीं मिला तो उनकी खेती भी जिंदा दफन हो जाएगी, उनके परिवारों का भविष्य भी दफन हो जाएगा। यानी ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ना ही ये किसी मुख्यमंत्री की दोस्त को लेकर टिप्पणी करने का है या हल्के अंदाज में हंसने का है। और डबल मीनिंग जोक्स का है। ये लाखों किसानों की रोजी रोटी है। लेकिन अफसोस, इस गंभीर मुद्दे पर बात होने के बजाय उदयनिधि स्टालिन इस चर्चा को कृष्णा कृष्णन पर लेकर चले गए। वहां पर नारे लगे, उन्होंने भीड़ को रोकने के बजाय उस पर एक ऐसी डबल मीनिंग की टिप्पणी की, फिर मामला बढ़ा, गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद से अब रिहाई हुई है और अब माला पहनाया जा रहा है। आज हम आपको इन किसानों की पीड़ा भी दिखाना चाहते हैं जिनका आंदोलन कभी हेडलाइन नहीं बन पाता। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लाखों लोगों किसानों की जिंदगी चलाती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी ये नदी कर्नाटक के कोडगु जिले के तलकावेरी से निकलती है और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका कुल क्षेत्र करीब 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सबसे अहम बात यह है कि कावेरी नदी के पूरे बेसिन का लगभग 2/3 हिस्सा खेती के लिए इस्तेमाल होता है। यानी दक्षिण भारत के लाखों किसानों के लिए यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उनकी जीवन रेखा है। लेकिन यही नदी कई दशकों से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद की वजह भी बनी हुई है। और यहां आप कारण भी समझिए। कावेरी नदी का जन्म कर्नाटक में होता है लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में बहता है और दोनों राज्यों की खेती इसी पानी पर निर्भर है। बारिश अच्छी होती है तब विवाद कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश कम होती है दोनों राज्यों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। कई साल तक ये मामला अदालतों में चलता रहा, कई बार हिंसा हुई, कई लोगों ने इस हिंसा में अपनी जान तक गंवाई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया। कोर्ट ने कहा कि हर साल तय मात्रा में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना होगा। इसके लिए दोनों राज्यों की सीमा पर बिलिगुंडलू नाम की जगह तय की गई जहां ये मापा जाता है कि वास्तव में कितना पानी छोड़ा गया है। अब आप पूछेंगे कि जब बंटवारे की व्यवस्था है तय है तो फिर विवाद क्या है? तो कारण है, वो भी समझिए। 28 जुलाई 2026 को दिल्ली में कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी यानी CWRC की बैठक हुई। कमेटी ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वो 29 जुलाई से लगातार 15 दिनों तक रोज इतना एक लिमिटेड जो क्यूसेक पानी है, रोजाना 3500 क्यूसेक पानी जो है वो तमिलनाडु के लिए छोड़े। अगर ऐसा होता तो तमिलनाडु के करीब 4,500 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिल जाता। लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि ऐसा हुआ नहीं। उनका कहना है कि आदेश 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का था लेकिन सीमा पर सिर्फ 158 से 550 क्यूसेक पानी ही पहुंचा, यानी जितना पानी मिलना चाहिए था उसका एक छोटा सा हिस्सा मिला। इसी वजह से मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरकार की मांग है कि कर्नाटक को तय हिस्से का पानी छोड़ने का आदेश दिया जाए, कावेरी समझौते का पालन कराया जाए। यहाँ ये भी सवाल है कि क्या कर्नाटक जानबूझकर पानी रोकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इस साल पूरे दक्षिण भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। कर्नाटक में करीब 19%, तमिलनाडु में 13%, केरल में 23%, पुडुचेरी में 55% तक कम बारिश दर्ज की गई है। यानी सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं पूरा दक्षिण भारत पानी की कमी से जूझ रहा है। कर्नाटक का कहना है कि उसके बड़े बांध इस बार भर ही नहीं पाए। दावा है कि कावेरी में आने वाला पानी पिछले 30 साल से औसतन करीब 66% कम है और यही वजह है कि पहले उसे अपने शहरों और गांवों के लिए पानी का को बचाना पड़ रहा है और तमिलनाडु के लिए कम पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन मुसीबत तो किसानों की है जो तमिलनाडु में इस पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, मिट्टी में अपने शरीर को गाड़कर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात है ना कि अगर कर्नाटक की मजबूरी है तो तमिलनाडु की भी उतनी ही बड़ी मजबूरी है। उनके किसानों की क्या हालत है आप देख रहे हैं। तमिलनाडु को कावेरी डेल्टा को, तमिलनाडु का जो एक पूरा कावेरी डेल्टा है उसको तमिलनाडु का राइस बोल यानी धान का सबसे बड़ा इलाका कहा जाता है। अब ऐसे में उनके सामने क्या स्थिति है? अगर इसी समय कर्नाटक से पानी नहीं आया तो पूरी फसल समझ लीजिए कि खतरे में पड़ गई। पिछले साल समय पर पानी मिलने से करीब 7 लाख एकड़ में खेती हुई थी लेकिन इस साल अब तक बहुत कम हुआ है। लाखों किसानों की आय, उनकी साल भर की मेहनत दांव पर लगी हुई है और इसीलिए यह मुद्दा बहुत बड़ा है। ज्यादा से तंजापुर पूरे कावेरी डेल्टा पर पड़ा है, तमिलनाडु का अन्न भंडार कहा जाता है। और इस तंजापुर में जाकर उदयनिधि स्टालिन ने क्या किया वो आपने देख ही लिया। खैर तमिलनाडु में किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, और ऐसा न जाने कितने विरोध प्रदर्शन हो रहे होंगे जो कभी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। इन्हीं में से एक है झारखंड का जेंजी आंदोलन। पेपर लीक परीक्षाओं में धांधली के उसी मुद्दे को लेकर शुरू हुआ जिस पर जंतर मंतर का आंदोलन हुआ था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आंदोलन को लेकर कई नेता, कई राजनीतिक पार्टियां, कई कलाकार, बहुत सारे लोग वैसी चिंता नहीं जता रहे जैसी चिंता उन्होंने जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर जताई थी, जबकि दोनों आंदोलन और आंदोलनों का मुद्दा एक जैसा है, छात्र बैठे हैं। झारखंड में तो जो जेंजी युवा आंदोलन पर बैठे हैं उनमें 90% ऐसे हैं जिन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए तैयारी की थी और अपने कई साल इन परीक्षाओं को उन्होंने दे दिए थे, लेकिन आज इन छात्रों की डीपी लगाने वाला, इनकी रील्स शेयर करने वाला, इनके मुद्दों पर इंस्टाग्राम की स्टोरी डालने वाला दिख नहीं रहा, ना नेता, ना कलाकार, ना बड़े इन्फ्लुएंसर्स। ये आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है और ये छात्र अपनी मांग रख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें बारिश के बीच भी ये छात्र ऐसे तिरपाल के नीचे ठिठुरते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं। इन छात्रों की नाराजगी विपक्ष के उन नेताओं से भी है जो जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सक्रिय थे, लेकिन रांची के इस आंदोलन पर उन्होंने एक भी पोस्ट या बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी पोस्ट नहीं, जंतर मंतर पर आंदोलन जो हुआ उस पर वो लगातार आंदोलन करते रहे, वो खुद भी, हालांकि वो जंतर मंतर नहीं गए थे लेकिन वो गांधी स्मृति गए, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने धरना दिया। झारखंड के इस आंदोलन पर उनकी तरफ से अब तक एक भी बयान नहीं आया है। यह भी तब हुआ है जब झारखंड की गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस के चार नेता हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बने हुए हैं और खुद हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जंतर मंतर का आंदोलन पूरे जोर शोर से उठाया। उनकी पार्टी के कई सांसद जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन झारखंड के छात्र आंदोलन पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इसके अलावा 10 से ज्यादा बार जंतर मंतर के आंदोलन में मंच पर दिखने वाले अरविंद केजरीवाल, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जंतर मंतर जाने वाले जो कई शिवसेना गुट के जैसे उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, इस आंदोलन पर अभी कुछ भी बोलते हुए नहीं पाए गए हैं। ये सारे वो विपक्षी नेता हैं जो जंतर मंतर के आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि जंतर मंतर के आंदोलन में बोलना, उनको समर्थन देना वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि छात्र निकले थे और वो इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से थक हार कर निकले थे जहां पर पेपर लीक के बाद पेपर लीक और उनके पूरे भविष्य पर, उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा था। आखिरकार जब उन्होंने देखा कि व्यवस्था पूरी तरह से बहरी हो चुकी है तब वो जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन ऐसा ही हो रहा है इस वक्त झारखंड। उन छात्रों के साथ खड़ा होना जरूरी था, वो पेपर लीक के खिलाफ थे, आज इन छात्रों के साथ खड़ा होना जरूरी है। झारखंड का यह आंदोलन भी परीक्षा में धांधली के खिलाफ है, लेकिन अगर इसके समर्थन में कोई नहीं आता है तो सवाल खड़े होते हैं। यहां बात सिर्फ विपक्षी नेताओं की नहीं है, बल्कि अगर आप देखिए तो इस पूरे सिस्टम में बहुत सारे कलाकार भी थे, बहुत सारे समाज से जुड़े हुए लोग थे जो जंतर मंतर पहुंचे थे, लेकिन वो भी यहां पर नहीं दिखाई दे रहे। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें उन तमाम लोगों की है, इन्फ्लुएंसर्स की है जो उस पर खूब बोल रहे थे, लेकिन इस वक्त वो नदारद है। और ये सोचिए कि ये छात्र कौन है। ये बीजेपी के छात्र नहीं है जो इनका समर्थन ना किया जाए। इनमें कई छात्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्होंने हेमंत सोरेन और कांग्रेस को जिताने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में वोट दिया था, लेकिन अब यही छात्र कहते हैं कि आज जब इन्हें इंसाफ की जरूरत है, इन्हें एक स्टेडियम में संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया है। सुनिए।
0: आज का संघर्ष नहीं है मैम, ये हर साल का ही संघर्ष होता है। हम लोगों को एग्जाम देने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एग्जाम लेने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट, रिजल्ट जारी हो गया तो कटअप के लिए प्रोटेस्ट।
5: केंद्र में जो नीट पेपर लीक हुआ वहाँ छात्र जंतर मंतर में प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे, उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिली, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया। झारखंड में तो शिक्षा मंत्री भी नहीं है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधार होना चाहिए, यहाँ भी सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए।
6: ये रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो देखिए सूखा चावल इनको रात में डिनर मिला और ये कैसे खा रहे हैं
7: और बोतल भी नहीं जुड़ रहा है दोस्तों।
6: देखिए कुछ नहीं मिला है, थोड़ा सा चावल मिला है और ये चावल खाकर और आपको एक और दिखाती है। देखिए इनको भी सिर्फ चावल मिला है और ये अपने अपने हक के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं।
2: हम क्या मांग रहे हैं आपसे? आपके मुख्यमंत्री का सीट मांग रहे हैं? गांडे विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। हमारा मुद्दा है, हमारा मांग है कि जेएसएससी जेपीएससी में जो भी धंधाली हो रहा है उसको आप सही कीजिए।
8: पीसीएस का मुझे लगता है ना मेरा सपना टूट गया, वो दुख मेरा बहुत अंदर का दुख है, तो कहीं ना कहीं मेरा दुख ना इन लोगों का आवाज तो बन ही गया। सोशल मीडिया में आके रोना अच्छी बात नहीं है। जब मैं समाज को सुधारने की बात करती हूँ तो मैं रो नहीं सकती हूँ। मेरे पापा हमेशा मुझे टाइमलाइन देते हैं, बेटा 2022 लास्ट है। हमको भी बहुत टाइम मिला ऐसे बोलकर, 2022 लास्ट है, 2023 तुमको देख लिए, 2023 में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा हम लोग का भी जिम्मेदारी है, शादी दे देंगे। बात करना छोड़ दिए, घर नहीं बात करते हैं अब, घर जाना छोड़ दिए।
9: हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं, हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। हम लोग उसे क्या मांग रहे, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं, ना मैया योजना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो मेहनत किए सिर्फ उसका फल चाहिए, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा प्लान भी नहीं है, हमारा प्लान भी कहाँ है।
10: हम लोग को बताया दिया जाता है कि इस पार्टी से उस पार्टी से, ऐसा भी बात होता है। आपको लग रहा है सर इतना इतना रात हो गया और हम लोग जग रहे हैं किस पार्टी के लिए जग रहे हैं? यहाँ कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित है कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? हम लोग को चाहिए कि इस देश के सारे जो नेशनल न्यूज वाले हैं वो आए दिखाए झारखंड का क्या परिस्थिति है, क्या बना के रखे हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। जिस देश जिस राज्य ने सबको उजाला किया आज उस राज्य में इतना अंधेरा है कि उसको देखने वाला कोई नहीं है, यही हमारा व्यवस्था है।
11: हम छात्र काफी परेशान है, हमारी बातों को सुनिए। आज हमारी मांगे मान लीजिए, हम कल से लाइब्रेरी में होंगे। हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हम कोई आंदोलनकारी या क्रांतिकारी या हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम छात्र हैं और सिर्फ छात्र हैं।
2: कल यानी 5 अगस्त से महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए दिल्ली से कई नेता वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभिजीत दीप के खुद झारखंड के आंदोलन में शामिल होने जाएंगे या नहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं है। इस बीच झारखंड में पिछले 11 दिनों से चल रहा छात्रों का यह आंदोलन अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ऐलान किया है कि वो इसी 10 अगस्त को रांची में झारखंड विधानसभा तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और सरकार से झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में बड़े सुधार करने, परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने, पिछली परीक्षाओं में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच करने की मांग करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह भी कहना है कि वो सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से परीक्षाओं में धांधली की जांच कराना चाहते हैं और यही अभी पूरा पेच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। 2024 में जब लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब वो मामला भी ईडी ने दर्ज किया था। ऐसे में झारखंड सरकार को डर यही है कि अगर उसने सीबीआई को ये जांच सौंप दी तो केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड की परीक्षाओं में जांच करने का मौका मिलेगा और उससे आरोप है कि केंद्र सरकार का दखल झारखंड में बढ़ सकता है। तो दोनों पक्ष हमने आपको बता दिए और इसी मांग को लेकर यह पूरा आंदोलन फंसा हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च निकालने की का ऐलान किया है। यहां ये भी देखिए कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों को झारखंड सरकार या सीआईडी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं, इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इसी साल 12 अप्रैल को जब एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई तब पुलिस को यह खबर मिली कि रांची के पास एक निर्माणाधीन इमारत में कई लड़के इकट्ठा हुए जिन्हें परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। जब जांच हुई तो इस इमारत के अंदर 166 लोग मिले, इनमें कई छात्र थे और बाकी सॉल्वर गैंग के लोग थे जो 10 लाख रुपए लेकर कई लोगों को परीक्षा में आने वाले सवाल बताने, जवाब याद कराने का दावा कर रहे थे। जब यह मामला खुला तो कई छात्रों ने बताया कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और इसमें बिहार का अतुल वत्स मास्टरमाइंड है, लेकिन सरकार और पुलिस ने छात्रों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये कह दिया है कि यह मामला छात्रों से ठगी का है ना कि पेपर लीक, और इसी के बाद कई छात्रों ने पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा कि झारखंड के हर बार पेपर लीक होता है और हर बार इस मामले को पुलिस से दबा दिया जाता है और विवाद ज्यादा बढ़ता है तो उसकी जांच सीआईडी को सौंप दी जाती है। लेकिन अब इसे वो स्वीकार नहीं करेंगे और यही मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग जो छात्र वहां पर हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कई लोग स्वेच्छा से अपनी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और छात्रों ने भी कहा है कि वो मरते दम तक संघर्ष करने के लिए तैयार है।
12: कार हमारी ऐसी नौबत कर दी है, अस्पताल लेके आप भीख मांगने
13: पड़े। सरकार का जैसा रवैया उससे दुख भी बहुत है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे 10-11 दिन हो गया है लेकिन अभी तक कोई किसी ने पहल नहीं लिया है।
14: सीआईडी को जांच करने दे देता है, सीआईडी तो जांच करके देता है, सरकार का वो तोता है, जो चाहेगा वही करवाएगा। हम लोग का एक ही उम्मीद है कि सीबीआई को सौंप दे ये चीज।
15: 20 तारीख का हम लोग कॉल है विधानसभा घेराव का, हमें उम्मीद है उस दिन झारखंड सरकार की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि झारखंड के रांची शहर में वो जनसैलाब उभरेगा जो आज तक कभी हुआ नहीं था।
16: सहयोग जो है ये देख करके छात्रों का उत्साह और बढ़ा है और इसीलिए जो लड़ाई का जो साहस है वो छात्रों के बीच में और बढ़ा है और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे।
17: सरकार से ये कहना चाहूंगी कि हम आंदोलन में आंदोलन करना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है, आपने हमें मजबूर किया है तो हम घर छोड़ करके आज एक खुले आसमान के नीचे बैठे हैं आंदोलन कर रहे हैं।
18: का जो आरोप है कि सीटें बेच दी जाती हैं, आम बच्चे जो तैयारी करते हैं वो टकटकी लगाए बैठे रह जाते हैं, नौकरी कोई और ले जाता है, पैसे वाले को नौकरी मिल जाता है।
19: तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा। रहजनों से कोई गिला नहीं है। जेपीएससी अध्यक्ष, जेएसएससी सेक्रेटरी, दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर गवर्नमेंट, दे आर द बाय प्रोडक्ट। हम ये कहना चाहते हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा। मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं है, तेरी रहबरी पर सवाल है।
2: इस आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पहली बार कोई बयान दिया है और ये कहा है कि छात्रों को न्याय मिलकर रहेगा, वो प्रदर्शनकारी छात्रों से जल्द संवाद करेंगे। सुनिए,
20: छात्र लोग आपसे दो वोट की उम्मीद कर रहे हो लगातार।
21: आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी है, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितने गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है।
15: सर, कोई कमेटी बनाई जा रही है क्या?
22: डेलीगेशन भी मिलेगा क्या
15: सरकार के स्तर पर? सरकार से कोई डेलीगेशन जाएगा क्या
22: संवाद के लिए?
21: हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और न्याय।
2: और अब हम कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ उपद्रव की कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं जो कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ है, मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और इसके लिए शिव भक्त जो है वो गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं। गंगा जल लाने के इस पूरे एक संघर्ष को भक्तिभाव से कांवड़ यात्रा कहा जाता है, लेकिन ये देखा गया है कि लगभग हर साल कांवड़ खंडित होने की वजह से कांवड़िए कई जगहों पर नाराज होते हैं और इस बार भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। सबसे बड़ी तस्वीर मेरठ से आई है जहां पर कांवड़ियों के दो गुटों में मारपीट हुई, जिसमें एक गुट ने पुलिस वैन में बैठे दूसरे कांवड़िए को खींचकर मारपीट का आरोप लगा है और दर्जनों कांवड़ियों की भीड़ ने फिर आरोप के मुताबिक पुलिस के सामने भी जो हंगामा किया है। कांवड़ियों द्वारा हो रही इस मारपीट और तोड़फोड़ को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि पिटने वाले व्यक्ति पुलिसकर्मी थे, लेकिन ये गलत है। पुलिस के मुताबिक कांवड़ यात्रा के लिए निकले दो गुटों की में ये मारपीट हुई थी, जिसमें एक गुट गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहा था, दूसरा गुट कांवड़ लेकर वापस लौट रहा था और पुलिस कह रही है कि इनकी आपस की लड़ाई है।
15: मर जा।
1: अगर तुम्हारा नहीं था तो तुम ये करोगे क्या? अगर बंदों के बने को
3: सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ कावड़ियों द्वारा मेरठ पुलिसकर्मियों के साथ में मारपीट की गई है एवं उनकी वर्दी फाड़ी गई है। ये कथन पूर्णतः असत्य है। हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे तभी विरुद्ध दिशा से आने वाले अन्य कावड़ी व्यक्ति के साथ में इनके साथ आपसी टकराव हुआ और मारपीट हुई। ऐसी स्थिति में थाना दोराला पुलिस के द्वार में सूझबूझ समझ दिखाते हुए मौके पर पहुंच के दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया गया और जिसमें सोनू और उसका साथी गुड्डू इनको गाड़ी में बिठाया गया। दूसरा पक्ष उग्र होकर इन्हीं लोगों को गाड़ी से निकलते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है।
2: अभी दो दिन पहले रुड़की में भी कावड़ियों के उपद्रव का मामला सामने आया। यहां पर भी मामला कावड़ियों के बीच लड़ाई का था। कावड़ियों की गाड़ी की टक्कर सड़क पर कांवड़ लेकर जा रहे दूसरे कांवड़ियों से हो गई थी। इस बात से नाराज कांवड़ियों की भीड़ ने कार चालक को बुरी तरह पीटा, उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे लेकिन वो हंगामा करने वाले कांवड़ियों को रोक नहीं पाए। गाजियाबाद में कई जगह केस सामने आया है। यहां पर एक एम्बुलेंस ने कांवड़ को टक्कर लगाई जिसके बाद हंगामा हुआ। इस हादसे में कांवड़ को नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन कई कांवड़िए इस पर नाराज हुए और सड़क पर जाम लग गया। काफी देर बाद जाकर यह हंगामा शांत हुआ। बहुत बार लोग सोचते हैं कि आखिर कांवड़ लेकर आने वाले कांवड़िए छोटी सी टक्कर या विवाद पे क्यों, लेकिन दरअसल अगर आप देखिए तो इस तरह की घटनाएं कई सामने आ रही हैं और कांवड़ खंडित होने की बात जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं बवाल का कारण बन जाती है। दरअसल कांवड़ यात्रा में कांवड़ का खंडित होना संकल्प के टूटने जैसा होता है। कांवड़ यात्रा करने वाले शिव भक्त गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करने का प्रण लेते हैं। अगर किसी कारण से यात्रा के दौरान उनकी कांवड़ खंडित हो जाती है तो शिव का अभिषेक करने का उनका संकल्प टूटता है और इसी वजह से कई बार कांवड़िए भड़कते हैं। कांवड़ के खंडित होने से मतलब है किसी भी कारण से कांवड़ का टूटना, जमीन पर गिरना, कांवड़ में लाए जा रहे गंगा जल का जमीन पर गिर जाना, बह जाना और या फिर डाक कांवड़ लाने वाले कांवड़ियों का रास्ता रुक जाना। कई बार वाहनों की टक्कर, जाम, भीड़ की वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है और तब कांवड़ को खंडित मानकर जो कांवड़िए हैं वो नाराज हो जाते हैं। आमतौर पर कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग भी, आम लोग भी सड़कों पर जा रहे हैं और वहां से भी जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं वो कई बार रोड क्रॉस करते हैं या सामने से जाते हैं या बगल से जाते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक कॉरिडोर जैसा अगर बने तो शायद उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था ठीक हो पाए जिससे अन्य वाहनों की एंट्री बंद हो और उनके लिए एक रास्ता भी बन जाएगा और जो आम लोग हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ना होने की वजह से कई बार कांवड़ यात्रा वाहनों की चपेट में आ जाते हैं और इससे कांवड़ के खंडित होने का भी भय रहता है और इसके साथ कांवड़ यात्रियों की जान जाने का भी एक खतरा रहता है। हरिद्वार के पास ऐसा एक हादसा हुआ है। सड़क पर जा रहे कांवड़ियों को एक पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। टक्कर मारने के बाद आरोपी तो फरार हो गया लेकिन इस हादसे में कांवड़ियों को काफी चोटें आई हैं। कई कांवड़ियों ने यह भी माना है कि अगर यात्रा के लिए सड़क मार्ग पर अलग से कॉरिडोर की व्यवस्था हो तो फिर उनको दिक्कत नहीं आएगी। कांवड़ यात्रा साल में एक बार होता है और सावन के महीने में होती है और लाखों शिव भक्त इसमें शामिल भी होते हैं। हर शिव भक्त अलग तरह का संकल्प लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलता है। कांवड़ यात्रा के अलग रंगों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और अब आपको बताएंगे कि आखिर एक लड़की, एक महिला अपनी सुरक्षा के लिए आखिर क्या क्या करे, आखिर कहां जाए। उसने स्कूल बदला, रास्ता बदला, पुलिस की चौखट पर गुहार लगाई और तो और समाज के दबाव में आकर पंचायत में समझौता भी कर लिया लेकिन इसके बावजूद वो इस दरिंदे की नजरों से बच नहीं पाई। फरीदाबाद से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारी व्यवस्था के उन तमाम दावों पर बड़ा सवालिया निशान है जो महिलाओं की सुरक्षा का दम भरते हैं लेकिन उनके साथ क्या करते हैं वो देखिए। फरीदाबाद का सिकरौना इलाका एक प्राइवेट स्कूल में घुसकर महिला टीचर की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। यह आरोपी काफी दिनों से इस टीचर के पीछे पड़ा हुआ था। ये महिला इससे बिल्कुल भी मिलना या बात नहीं करना चाहती थी। आरोपी मुंह को ढक कर स्कूल पहुंचा, खुद को महिला टीचर के पति के रूप में पेश किया और बहाने से क्लास से बाहर बुलाया। जैसे ही महिला क्लासरूम से मेन गेट की तरफ पहुंची, आरोपी अमित ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ खींचा, ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। उसने महिला पर 34 बार चाकू से हमला किया। मौके पर पहुंचने के बाद भी स्कूल के प्रिंसिपल भी महिला को बचा नहीं पाए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर बैठकर फरार भी हो गया। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटों बाद उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये खूनी खेल अचानक नहीं खेला गया था, ये गहरी साजिश का नतीजा था। आरोपी 21 साल का अमित है जो सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है और दूध बेचने का काम करता है। वो संध्या से पिछले 2 साल से संध्या को जानता था। संध्या उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अमित एक तरफा सनक में उसका लगातार पीछा कर रहा था। यही से शुरू होती है एक महिला की, उसकी वो पूरी लड़ाई की कहानी जो उसने खुद को बचाने के लिए लड़ी। ये महिला पहले आरोपी के गांव के एक स्कूल में पढ़ाती थी। यहीं से वो संपर्क में आया और तंग करने लगा। परेशान होकर इस टीचर ने 1 साल पहले दूसरे गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपना रास्ता, अपनी टाइमिंग तक बदल ली ताकि उस दरिंदे का साया भी उस पर ना पड़े। इस कहानी का सबसे दर्दनाक और विचलित करने वाला पहलू जानते हैं क्या है? वो दौर है जब पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई थी। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब हमारी अगली मुलाकात आपसे होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ज्यादा परेशान ना हो। स्वभाव चंदन जैसा रखोगे तो सांपों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। नमस्कार।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दांत पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस।
2: पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए दाईं तरफ से लेकर बाईं तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
4: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते हैं कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसे को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
5: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाई कोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही सख्त से सख्त।
6: तो राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
1: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
7: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का सेवा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री के सदन में बताइए ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच,
8: ये भाई लीडर ऑपोजिशन तय कर रही है, ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं, तो दूसरे का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन करके जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
1: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
9: कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये लोग और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है।
1: खड़गे ने सवाल किया कि ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते, पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा पार्टी के विधायक सचिन यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया है।
10: मानसून सत्र में
11: ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन, आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
10: हमारी ये सरकार
11: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप सुनो, आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
1: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
12: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे।
10: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
11: अब उसको नीचे करिए, सचिन आप उस बंदे जी के फोटो को नीचे।
10: हमारी ये सरकार
11: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
10: मान्यता के साथ
11: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं, आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। You cannot do that. मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर इनके साथ जो भी लड़ेंगे मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं, इट्स नॉट अलाउड, ये इस बात में इजाजत नहीं देता हूँ।
1: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
10: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
13: यानी दोनों मिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। निपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है, डाका डालने का काम हुआ है।
14: देखिए ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य है नहीं, मुद्दे हैं नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो जब मुद्दे नहीं है तो अब आपको OTT पर जाने की जरूरत नहीं है। और काश ये गंभीर राजनीति करते, अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए।
15: चढ़ावा चोरी के मुद्दे से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो विपक्ष के हंगामे के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी अयोध्या में एक बार फिर एक्टिव हैं। वो साधु संतों से मिल रहे हैं।
16: पिछले 3-4 दिनों में चंपत राय ने आधा दर्जन से ज्यादा मठों में अपनी हाजिरी लगाई है और संतों से बंद कमरे में मुलाकात की है। इसके मायने क्या हैं? क्या अब अयोध्या से उनके चला चली की बेला है? क्या वो अयोध्या छोड़कर अब यहाँ से जा रहे हैं, या फिर अपनी सफाई उन संतों को पेश कर रहे हैं जो पहले के दौर में उन्हें कहीं ना कहीं उनसे नाराज रहते थे।
15: दूसरी तरफ बैंक लॉकर्स में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए गए गहनों की जांच भी SIT ने शुरू कर दी है। SIT अब लॉकरों में रखे सोने चांदी के गहनों का सत्यापन करेगी।
17: SIT को ये भी शक है कि इन आभूषणों के जरिए भी हेराफेरी की गई है जो रामलला को चढ़ाए गए हैं। अब ऐसे में SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है जहां पर बैंक को भी दायरे में लिया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अब SIT एक एक करके हर क्रम पर आगे बढ़ रही है और उनकी जांच बढ़ा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डेप्यूटी CM सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया। उसके बाद NCP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा करते हुए सपकाल से माफी मांगने की मांग की है। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था।
18: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी CM और NCP सुप्रीमो सुनित्रा पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद NCP कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
19: गूंगी गुड़िया बोल के

0: मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है। और ये सेवा उनको दिखती नहीं है लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
1: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
2: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए। और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
1: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गुंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
2: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहां पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रही है।
3: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे हम, वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा।
4: वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी, वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी।
1: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गुंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
5: इंदिरा गांधी जी को गुंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
1: मामला गरमाया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
6: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुड़िया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुड़िया ही शिवे आहे का, गुंगी गुड़िया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुड़िया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही, हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं जसं तो शब्द आहे अगदी तशा स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसलाय।
1: बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी, वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी, दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही, इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
2: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुनेत्रा पवार जी को गुंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कोलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
1: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिला

0: के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
1: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे।
2: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है। और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहने, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
0: सुनीत्रा पवार पर दिए इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
3: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा, और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
4: अमेरिका के टेक्सास में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ श्रीमद भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस।
2: चर्चा पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा ना हुआ हो और संसद स्थगित ना हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए, इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए बाई तरफ से लेकर अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
4: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं ऐसे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते हैं कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
5: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाईकोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही, सख्त से सख्त।
6: तो राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवादारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
1: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
7: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच,
8: ये भाई ये लीडर ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं, तो दूसरा के बाद सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
1: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
8: कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है।
1: खड़गे ने सवाल किया कि ईडी, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा पार्टी के विधायक सचिन यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया है।
9: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे,
10: हमारी ये सरकार
9: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप सुन लीजिए, आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
1: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
11: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे,
10: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही, इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
9: हम उसको नीचे करिए, सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
10: करिए। सरकार
9: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करिए, आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
10: सत्यता के साथ
9: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं, आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड, आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कैन डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया, ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर, इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है, चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप, चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं इट्स नॉट अलाउड, इस बात में इजाजत नहीं देता हूँ।
1: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
10: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चहावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
0: सीएम योगी ने यूपी में मदरसों की डिग्री पर हंटर चलाया तो यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने कह दिया कि मदरसे चाहे कहीं के भी हों, वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है।
1: सीएम योगी ने यूपी के मदरसों पर नया हंटर चलाया है। जी हां, योगी सरकार अब मदरसों की ओर से दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर रोक लगाने जा रही है। जी हां, अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक ही पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
12: तो ये करें क्या, हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
1: योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक ही पढ़ाई करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्हें यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा, लेकिन मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है।
13: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
14: मानसिक रोगी ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये हिंदू मुसलमान अब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, ये जैन जी समझा चुके हैं इन्हें।
15: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें ITI की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और ये
16: मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
1: ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया। उसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा करते हुए सपकाल से माफी मांगने की मांग की है। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था।
17: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सरकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो सुनीता पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
18: गूंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वैनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है, ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है। और ये सेवा उनको दिखती नहीं है, लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
17: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
19: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए। और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था, लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
17: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गूंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
19: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहां पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रही है।
20: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे हम, वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा।
17: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
21: इंदिरा गांधी जी को गूंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
17: मामला गरमाया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गूंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
22: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुड़िया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुड़िया ही शिवे आहे का, गुंगी गुड़िया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुड़िया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही, हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं जसं तो शब्द आहे अगदी तशाच स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसलाय।
17: बताया जा रहा है कि सुनीत्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी, वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी। दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही। इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
19: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुनीता पवार जी को गूंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कुलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
17: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
2: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे।
3: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है। और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहनें, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
17: सुनीता पवार पर दिए इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
4: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा, और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: अमेरिका के टेक्सास में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ श्रीमद भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर, चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दांत पेटी लेकर बैठा, संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस,
2: पूरी नहीं कर पाएंगे मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के, मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए, इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए बाई तरफ से लेकर बाई तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
4: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं ऐसे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते हैं कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
5: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाई कोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही सख्त से सख्त।
6: तो राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
1: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
7: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ED, CBI और अन्य केंद्रीय जांच,
8: ये भाई लीडर ऑपोजिशन कह रही है, ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं, तो दूसरे का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन करके जिनको जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
1: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
9: कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये लोग और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान मानते नहीं है।
1: खड़गे ने सवाल किया कि ED, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा पार्टी के विधायक सचिन यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया है।
10: मानसून सत्र में
11: ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
10: हमारी ये सरकार
11: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करें। आई विल नॉट अलाउड, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
1: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
12: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे।
10: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
11: अब उसको नीचे करिए, सचिन आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
10: करिए।
11: प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
10: सत्यता के साथ
11: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं। आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। You cannot do that. मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर नगर नहीं करेंगे आप। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लड़ेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं।
1: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
10: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
13: यानी दोनों मिक्स है। माने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। निपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है, डाका डालने का काम हुआ है।
14: देखिए ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य है नहीं, मुद्दे हैं नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो जब मुद्दे नहीं है तो अब आपको OTT पर जाने की जरूरत नहीं है। और काश ये गंभीर राजनीति करते, अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए।
1: चढ़ावा चोरी के मुद्दे से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो विपक्ष के हंगामे के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी अयोध्या में एक बार फिर एक्टिव हैं। वो साधु संतों से मिल रहे हैं।
15: पिछले 3-4 दिनों में चंपत राय ने आधा दर्जन से ज्यादा मठों में अपनी हाजिरी लगाई है और संतों से बंद कमरे में मुलाकात की है। इसके मायने क्या हैं? क्या अब अयोध्या से उनके चला चली की बेला है? क्या वो अयोध्या छोड़कर अब यहाँ से जा रहे हैं या फिर अपनी सफाई उन संतों को पेश कर रहे हैं जो पहले के दौर में उन्हें कहीं ना कहीं उनसे नाराज रहते थे।
1: दूसरी तरफ बैंक लॉकर्स में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए गए गहनों की जांच भी SIT ने शुरू कर दी है। SIT अब लॉकरों में रखे सोने चांदी के गहनों का सत्यापन करेगी।
16: SIT को ये भी शक है कि इन आभूषणों के जरिए भी हेराफेरी की गई है जो रामलला को चढ़ाए गए हैं। अब ऐसे में SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है जहां पर बैंक को भी दायरे में लिया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अब SIT एक एक करके हर क्रम पर आगे बढ़ रही है और उनकी जांच बढ़ा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डेप्यूटी CM सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया। उसके बाद NCP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा करते हुए सपकाल से माफी मांगने की मांग की है। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था।
17: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी CM और NCP सुप्रीमो सुनित्रा पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद NCP कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
18: गूंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उपमुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है और ये सेवा उनको दिखती नहीं है लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
17: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
19: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
17: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गुंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
19: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है यहाँ पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रही है।
20: उनको माफी मांगने के लिए

0: महाराष्ट्र में आंदोलन होगा।
1: वेळ आल्यानंतर चौक उतरती आहे मी, वेळ आल्यानंतर चौक उतरती आहे मी।
2: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गुंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
3: इंदिरा गांधी जी को गुंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
2: मामला गरमाया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
4: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुड़िया हा शब्द प्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुड़िया ही शिवे आहे का, गुंगी गुड़िया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुड़िया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही। हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं तो शब्द आहे अगदी तशा स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसलाय।
2: बताया जा रहा है कि सुमित्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी। वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी, दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही। इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
5: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुमित्रा पवार जी को गुंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कुलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
2: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
6: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे।
7: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहनें, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
2: सुमित्रा पवार पर दिए इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
8: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
9: अमेरिका के टेक्सास में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ श्रीमद भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस।
2: चर्चा पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले डीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए, इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर देकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए दाई तरफ से लेकर बाई तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
4: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं ऐसे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते हैं कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
5: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाईकोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही, सख्त से सख्त।
6: राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
1: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
7: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से देखा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, CBI, इनकम टैक्स और अन्य केंद्रीय जांच,
8: ये भाई ये लीडर भाई सत्ता के रही है, ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन करके जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
1: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
9: ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, मानते नहीं
1: है। खड़गे ने सवाल किया कि ईडी, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते, पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा पार्टी के विधायक सचिन यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया है।
10: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप उधर मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
11: हमारी ये सरकार
10: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप सुनिए, आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकालूंगा।
12: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
13: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
12: मानसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे,
14: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही, इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
12: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
10: अब उसको नीचे करिए, सचिन आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
11: करिए।
10: प्लीज आप उसको नीचे करिए, आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकालूंगा
11: के साथ।
10: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं, आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया, ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है, चलिए बाहर। नजर नहीं करेंगे आप, चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं, इट्स नॉट अलाउड, इस बात में इजाजत नहीं देता हूं।
12: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
14: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
12: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चहावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
11: दोनों मिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। नृपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है, डाका डालने का काम हुआ है।
15: देखिए, ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य है नहीं, मुद्दे है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो जब मुद्दे नहीं है तो अब आपको OTT पर जाने की जरूरत नहीं है। और काश ये गंभीर राजनीति करते, अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए।
12: चढ़ावा चोरी के मुद्दे से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो विपक्ष के हंगामे के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी अयोध्या में एक बार फिर एक्टिव हैं। वो साधु संतों से मिल रहे हैं।
16: पिछले 3-4 दिनों में चंपत राय ने आधा दर्जन से ज्यादा मठों में अपनी हाजिरी लगाई है और संतों से बंद कमरे में मुलाकात की है। इसके मायने क्या हैं? क्या अब अयोध्या से उनके चला चली की बेला है? क्या वो अयोध्या छोड़कर अब यहाँ से जा रहे हैं, या फिर अपनी सफाई उन संतों को पेश कर रहे हैं जो पहले के दौर में उन्हें कहीं ना कहीं उनसे नाराज रहते थे।
12: दूसरी तरफ बैंक लॉकर्स में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए गए गहनों की जांच भी SIT ने शुरू कर दी है। SIT अब लॉकरों में रखे सोने चांदी के गहनों का सत्यापन करेगी।
17: SIT को ये भी शक है कि इन आभूषणों के जरिए भी हेराफेरी की गई है जो रामलला को चढ़ाए गए हैं। अब ऐसे में SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है जहां पर बैंक को भी दायरे में लिया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अब SIT एक एक करके हर क्रम पर आगे बढ़ रही है और उनकी जांच बढ़ा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: सीएम योगी ने यूपी में मदरसों की डिग्री पर हंटर चलाया, तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कह दिया कि मदरसे चाहे कहीं के भी हों, वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री हैं।
12: सीएम योगी ने यूपी के मदरसों पर नया हंटर चलाया है। जी हां, योगी सरकार अब मदरसों की ओर से दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर रोक लगाने जा रही है। जी हां, अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक ही पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी PG की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
18: तो ये करें क्या? हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
12: योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन PG की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक ही पढ़ाई करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्हें यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा, लेकिन मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है।
19: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
20: मानसिक रोगी, ये मानसिक रोगी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये हिंदू मुसलमान अब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, ये जैन जी समझा चुके हैं।
21: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें आईटीआई की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और ये
22: मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
12: ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया। उसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा करते हुए सपकाल से माफी मांगने की मांग की है। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था।
23: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो सुनीत्रा पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
24: गूंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है, ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है और ये सेवा उनको दिखती नहीं है, लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
23: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
25: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए, और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था, लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
2: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गुंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते, पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
25: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहाँ पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्म आ गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रही है।
3: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे हम, वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा। वेड़ आल्यानंतर चौक उतर दिए मी, वेड़ आल्यानंतर चौक उतर दिए मी।
2: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गुंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
4: इंदिरा गांधी जी को गुंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
2: मामला गरमाया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
5: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं, आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुड़िया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुड़िया ही शिवे आहे का, गुंगी गुड़िया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुड़िया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही, हे एक वर्णन आहे। आणि ते वर्णन जसं जसं तो शब्द आहे अगदी तशा स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसलाय।
2: बताया जा रहा है कि सुनीत्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी। वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी, दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही, इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
25: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुनेत्रा पवार जी को गुंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कोलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
2: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
6: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे।
7: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है। और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहनें, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
2: सुनीत्रा पवार पर दिए इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
26: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा, और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: अमेरिका के टेक्सस में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ श्रीमद भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस।
2: चर्चा पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए, इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए दाई तरफ से लेकर बाई तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
4: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं ऐसे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते हैं कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
5: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाईकोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही, सख्त से सख्त।
6: राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
1: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
7: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से देखा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, CBI, और अन्य केंद्रीय जांच,
8: ये भाई ये लीडर भाई सत्ता के रही है, ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
1: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
9: ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये लोग और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, मानते नहीं
1: है। खड़गे ने सवाल किया कि ईडी, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते, पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा पार्टी के विधायक सचिन यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया है।
10: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप उधर मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
11: हमारी ये सरकार
10: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप सुनिए, आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
12: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
13: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
12: मानसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे,
14: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही, इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
12: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
10: अब उसको नीचे करिए, सचिन आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
11: करिए।
10: प्लीज आप उसको नीचे करिए, आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा
11: के साथ।
10: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं, आप सीएम की फोटो को ऐसे लगा देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कैन डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया, ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर, इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है, चलिए बाहर, नजर नहीं करेंगे आप, चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं, इट्स नॉट अलाउड, इस बात में इजाजत नहीं देता हूँ।
12: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
14: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
11: अब हम उठते हैं तो
12: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चहावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
0: सीएम योगी ने यूपी में मदरसों की डिग्री पर हंटर चलाया तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कह दिया कि मदरसे चाहे कहीं के भी हों वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है।
12: सीएम योगी ने यूपी के मदरसों पर नया हंटर चलाया है। जी हां, योगी सरकार अब मदरसों की ओर से दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर रोक लगाने जा रही है। जी हां, अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक ही पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
15: तो ये करें क्या, हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
12: योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक ही पढ़ाई करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्हें यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा, लेकिन मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है।
16: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
17: मानसिक रोगी, ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये हिंदू मुसलमान अब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, ये जयंती समझा चुके हैं।
18: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें ITI की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और ये
19: मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
12: ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया। उसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा करते हुए सपकाल से माफी मांगने की मांग की है। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था।
20: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सरकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो सुनीता पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
21: गूंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है, ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है। और ये सेवा उनको दिखती नहीं है, लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
20: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
22: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी

0: सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
1: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गुंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
0: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहां पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्म आ गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहां पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहां पर दिखाई दे रही है।
2: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे
3: हम, वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा। वेड़ आलानंतर चौक उत्तर दिन भी।
1: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गुंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
4: इंदिरा गांधी जी को गुंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
1: मामला गरमाया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
5: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुड़िया हा शब्द प्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुड़िया ही शिवे आहे का, गुंगी गुड़िया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुड़िया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही, हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं तो शब्द आहे अगदी तशा स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसला आहे।
1: बताया जा रहा है कि सुनीत्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी। वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी, दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही। इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
0: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुनीत्रा पवार जी को गुंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कोलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
1: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
6: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे।
7: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहनें, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
1: सुनीत्रा पवार पर दिए इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
8: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझ बल्कि

0: इससे सिर्फ मुंबई आज तक।
1: अमेरिका के टेक्सस में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ श्रीमद् भगवद्गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस।
2: पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए, इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए दाई तरफ से लेकर बाई तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
4: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते हैं कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
5: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाई कोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही, सख्त से सख्त।
6: राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
1: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
7: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ED, CBI और अन्य केंद्रीय जांच,
8: ये भाई ये लीडर ऑपोजिशन के नहीं है, ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरे का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन करके जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
1: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
9: ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, मानते नहीं है।
1: खड़गे ने सवाल किया कि ED, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते, पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा पार्टी के विधायक सचिन यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया है।
10: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप उधर मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
11: हमारी ये सरकार
10: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
12: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
13: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
12: मानसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे।
14: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
12: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
10: हम उसको नीचे करिए। सचिन आप, सचिन आप उसको मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
11: करिए।
10: प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
11: मतदाता के साथ
10: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं। आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। रखिए उसको नीचे। यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लड़ेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड, इस बात में इजाजत नहीं देता हूं।
12: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
14: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
12: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चहावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
0: सीएम योगी ने यूपी में मदरसों की डिग्री पर हंटर चलाया तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कह दिया कि मदरसे चाहे कहीं के भी हों वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है।
12: सीएम योगी ने यूपी के मदरसों पर नया हंटर चलाया है। जी हां, योगी सरकार अब मदरसों की ओर से दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर रोक लगाने जा रही है। जी हां, अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक ही पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
11: तो ये करें क्या, हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
12: योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक ही पढ़ाई करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्हें यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा, लेकिन मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है।
15: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
16: मानसिक रोगी है, ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये हिंदू मुसलमान अब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, जैन जी समझा चुके हैं।
17: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें आईटीआई की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और ये
18: मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
12: ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया। उसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा करते हुए सपकाल से माफी मांगने की मांग की है। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था।
19: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सरकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो सुनीत्रा पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
20: गूंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है, ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है। और ये सेवा उनको दिखती नहीं है, लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
19: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
21: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए। और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था, लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
19: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गूंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
21: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहां पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्म आ गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहां पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहां पर दिखाई दे रही है।
22: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे
23: हम, वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा।
19: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
24: इंदिरा गांधी जी को गूंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
19: मामला गरमाया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गूंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
25: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुडिया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुडिया ही शिवे आहे का, गुंगी गुडिया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुडिया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही, हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं जसं तो शब्द आहे अगदी तशा स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसलाय।
19: बताया जा रहा है कि सुमित्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी। वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी, दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही, इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
21: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुमित्रा पवार जी को गूंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कुलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
19: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
2: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे।
3: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है। और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहनें, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
19: सुमित्रा पवार पर दिए इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
4: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा, और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: अमेरिका के टेक्सास में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ श्रीमद भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस।
2: पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए, इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए दाई तरफ से लेकर बाई तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
4: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं ऐसे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
5: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाईकोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही सख्त से सख्त।
6: तो राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
1: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश, चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
7: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, CBI और अन्य केंद्रीय जांच
8: ये भाई ये लीडर भाई सकते हैं कि नहीं है। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं, तो दूसरे का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन करके जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
1: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
9: कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं।
1: खड़गे ने सवाल किया कि ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा पार्टी के विधायक सचिन यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया है।
10: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप उधर मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
11: हमारी ये सरकार
10: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप सुनो। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
12: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
13: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
12: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे।
14: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करने के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
12: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
10: हम उसको नीचे करिए। सचिन आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे करिए।
11: हमारी ये सरकार
10: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
11: सत्यता के साथ
10: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं, आप सीएम की फोटो को ऐसे लगा देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर। गुंडागर्दी करेंगे आप। चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लड़ेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड, इस बात में इजाजत नहीं देता हूँ।
12: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
14: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
12: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चहावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
0: सीएम योगी ने यूपी में मदरसों की डिग्री पर हंटर चलाया तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कह दिया कि मदरसे चाहे कहीं के भी हों वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है।
12: सीएम योगी ने यूपी के मदरसों पर नया हंटर चलाया है। जी हां, योगी सरकार अब मदरसों की ओर से दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर रोक लगाने जा रही है। जी हां, अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक ही पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
15: तो ये करें क्या, हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
12: योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक ही पढ़ाई करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्हें यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा, लेकिन मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है।
16: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
17: मानसिक रोगी, ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये हिंदू मुसलमान अब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, ये जी समझा चुके हैं।
18: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें ITI की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और ये
19: मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
12: ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया। उसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा करते हुए सपकाल से माफी मांगने की मांग की है। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था।
20: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो सुमित्रा पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
21: गूंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है, ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है। और ये सेवा उनको दिखती नहीं है, लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
20: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
22: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए। और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था, लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
20: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गूंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
22: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहां पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहां पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहां पर दिखाई दे रही है।
23: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे हम, वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा।
24: वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी, वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी।
20: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
25: इंदिरा गांधी जी को गूंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम

0: की गुंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
1: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुडिया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुडिया ही शिवे आहे का? गुंगी गुडिया हा अपशब्द आहे का? गुंगी गुडिया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का? नाही, हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं तो शब्द आहे अगदी तशा स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसला आहे।
0: बताया जा रहा है कि सुमित्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी। वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी, दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर NCP माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही। इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
2: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुमित्रा पवार जी को गुंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल NCP ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कुलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
0: CM फडणवीस और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
3: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे।
4: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहनें, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
0: सुमित्रा पवार पर दिए इस बयान के बाद NCP कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
5: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: अमेरिका के टेक्सास में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ श्रीमद् भगवद्गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दांत पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस।
2: पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए, इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए दाई तरफ से लेकर बाई तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
4: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते हैं कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसा को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
5: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाईकोर्ट के ने जो SIT के गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही सख्त से सख्त।
6: राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
1: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
7: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच,
8: ये भाई ये लीडर ऑपोजिशन के रही है, ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरे का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन करके जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
1: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
9: ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, मानते नहीं है।
1: खड़गे ने सवाल किया कि ED, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा पार्टी के विधायक सचिन यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया है।
10: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप उधर मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
11: हमारी ये सरकार
10: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकालूंगा।
12: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
13: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
12: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे।
14: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
12: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
10: हम उसको नीचे करिए। सचिन आप उसको मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे करिए।
11: हमारी ये सरकार
10: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकालूंगा।
11: मध्यता के साथ
10: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं, आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। You cannot do that. मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर। नगर दे करेंगे आप। इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं, इट्स नॉट अलाउड, ये इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूँ।
12: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
14: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
12: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
0: सीएम योगी ने यूपी में मदरसों की डिग्री पर हंटर चलाया तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कह दिया कि मदरसे चाहे कहीं के भी हों वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है।
12: सीएम योगी ने यूपी के मदरसों पर नया हंटर चलाया है। जी हां, योगी सरकार अब मदरसों की ओर से दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर रोक लगाने जा रही है। जी हां, अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक ही पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
15: तो ये करें क्या, हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
12: योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक ही पढ़ाई करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्हें यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा, लेकिन मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है।
16: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
17: मानसिक रोगी, ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये हिंदू मुसलमान अब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, ये समझा चुके हैं।
18: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें आईटीआई की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और ये
19: मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
12: ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया। उसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा करते हुए सपकाल से माफी मांगने की मांग की है। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था।
20: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो सुनीत्रा पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
21: गूंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है, ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है। और ये सेवा उनको दिखती नहीं है, लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
20: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
22: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए। और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था, लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
20: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गूंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते, पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
22: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, यहां पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्म आ गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहां पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहां पर दिखाई दे रही है।
23: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे
24: हम, वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा।
25: वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी, वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी।
20: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
26: इंदिरा गांधी जी को गूंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे, जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
20: मामला गरमाया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गूंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
27: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं, आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुड़िया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुड़िया ही शिवे आहे का, गुंगी गुड़िया हा अपशब्द आहे का, गुंगी गुड़िया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का, नाही, हे एक वर्णन आहे। आणि ते वर्णन जसं जसं तो शब्द आहे अगदी तशा स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसलाय।
20: बताया जा रहा है कि सुनीत्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी। वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी।
2: दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही। इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
22: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुनीता पवार जी को गूंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कुलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
2: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
3: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूज मध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे।
4: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है। और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहने, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
2: सुमित्रा पवार पर दिए इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
5: सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का ये संघर्ष और अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा, और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: अमेरिका के टेक्सस में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ श्रीमद भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस।
2: पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए, इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए दाई तरफ से लेकर बाई तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध रही हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जोर शोर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा रही है।
4: राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे, और ये देश के ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते हैं कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, एक किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसे को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो।
5: उस पे SIT का गठन हो गया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी। हाई कोर्ट के ने जो SIT का गठन की बात कही उसके अनुसार कार्रवाई हो रही, सख्त से सख्त।
6: तो राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, चोरी क्या हुई, डकैती हुई। वो कमेटी होम मिनिस्ट्री ने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस पर भी अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि ये भगवाधारियों में जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों डकैती की।
1: संसद के बाहर विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा, तो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से चंदा चोरी पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ कैश चढ़ावा, गहने और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र सरकार को ही देना होगा। इस पर खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तगड़ी बहस भी हो गई।
7: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का सेवा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ED, CBI और अन्य केंद्रीय जांच,
8: ये भाई लीडर ऑपोजिशन कह रही है, ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं, तो दूसरे का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन करके जिनको जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय।
1: किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है।
9: कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं, ये लोग और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है।
1: खड़गे ने सवाल किया कि ईडी, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कर रही हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। जीजू ने कहा कि राम विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, उसके बाद सरकार से जवाब मांगे। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा पार्टी के विधायक सचिन यादव को सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया है।
10: मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
11: हमारी ये सरकार
10: नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
12: आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चहावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की।
13: हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहां सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें।
12: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे।
14: नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी, लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
12: मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए।
10: आप उसको नीचे करिए, सचिन आप उसको मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे
11: करिए।
10: प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।
11: मतदाता के साथ
10: आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं, आप सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। You cannot do that. मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया। ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लड़ेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड, इस बात में इजाजत नहीं देता हूँ।
12: समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
14: ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जान बूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
12: विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है।
11: यानी दोनों मिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। निपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है, डाका डालने का काम हुआ है।
15: देखिए ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य है नहीं, मुद्दे है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो जब मुद्दे नहीं है तो अब आपको OTT पर जाने की जरूरत नहीं है। और काश ये गंभीर राजनीति करते, अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए।
12: चढ़ावा चोरी के मुद्दे से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है तो विपक्ष के हंगामे के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी अयोध्या में एक बार फिर एक्टिव हैं। वो साधु संतों से मिल रहे हैं।
16: पिछले 3-4 दिनों में चंपत राय ने आधा दर्जन से ज्यादा मठों में अपनी हाजिरी लगाई है और संतों से बंद कमरे में मुलाकात की है। इसके मायने क्या हैं? क्या अब अयोध्या से उनके चला चली की बेला है? क्या वो अयोध्या छोड़कर अब यहाँ से जा रहे हैं या फिर अपनी सफाई उन संतों को पेश कर रहे हैं जो पहले के दौर में उन्हें कहीं ना कहीं उनसे नाराज रहते थे।
12: दूसरी तरफ बैंक लॉकर्स में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए गए गहनों की जांच भी SIT ने शुरू कर दी है। SIT अब लॉकरों में रखे सोने चांदी के गहनों का सत्यापन करेगी।
17: SIT को ये भी शक है कि इन आभूषणों के जरिए भी हेराफेरी की गई है जो रामलला को चढ़ाए गए हैं। अब ऐसे में SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है जहां पर बैंक को भी दायरे में लिया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अब SIT एक एक करके हर क्रम पर आगे बढ़ रही है और उनकी जांच बढ़ा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने डेप्यूटी CM सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया करार दे दिया। उसके बाद NCP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर जबरदस्त हंगामा करते हुए सपकाल से माफी मांगने की मांग की है। अब महायुति ने सपकाल के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। विवाद बढ़ने पर सपकाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं था।
18: साल 1966 और उसके बाद भी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संसद में चुप्पी के लिए कई बार गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा था। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी गई। अब यही गूंगी गुड़िया का सियासी शोर महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र की पहली डिप्टी CM और NCP सुप्रीमो सुनित्रा पवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंगी गुड़िया करार दे दिया, जिसके बाद NCP कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में हमला बोल दिया।
19: गूंगी गुड़िया बोल के टिका टिप्पणी की है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री के प्रति, सुनेत्रा वहिनी अजीत पवार के प्रति कितना मन के अंदर द्वेष है ये प्रकट होता है। आज कुछ दिन नहीं हुए उनको उपमुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे प्रसंग में वो उप मुख्यमंत्री बनी है जब अजीत दादा अपने में से जाने के बाद वो सारा दुख झेल के आज उप मुख्यमंत्री बन के वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने में लगी है और ये सेवा उनको दिखती नहीं है लेकिन उनको गूंगी गुड़िया बोल के कहा जाता है।
18: उस समय सपकाल किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी सपकाल माफी मांगो इस्तीफा दो के नारों से कांग्रेस दफ्तर गूंज उठा। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
20: एनसीपी जो है आक्रामक होती हुई नजर आई और मुंबई कांग्रेस का जो तन्ना हाउस में कार्यालय है कांग्रेस का वहां पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तभी एनसीपी कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने वहां पर जोरदार घोषणाबाजी शुरू कर दी जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और फिलहाल ये जो मुंबई कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एनसीपी द्वारा जो कांग्रेस द्वारा जो वक्तव्य किया गया है उसका विरोध किया गया है और कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ये टिप्पणी जो है उसको पॉजिटिव तरीके में लिया जाए और इंदिरा गांधी जी को भी यही कह के संबोधित किया गया था लेकिन तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी थी उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था। सुनेत्रा पवार जी को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए लेकिन एनसीपी जो है वो अपनी माफी की मांग पर अड़ी हुई है।
18: हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सपकाल गुंगी गुड़िया वाले बयान पर माफी नहीं मांगते पूरे राज्य में एनसीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
20: एनसीपी कार्यकर्ताओं को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में लाया गया है यहां पर उनको डिटेन किया गया है। कांग्रेस द्वारा सुनेत्रा पवार पर इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। आप देख सकते हैं पुलिस बल ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए यहां पर पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहां पर दिखाई दे रही है।
21: उनको माफी मांगने के लिए तैयार करेंगे हम वो हर्षवर्धन सकपाल को बोलेंगे और उनको हम राजीनामा के लिए रेडी करेंगे ही करेंगे नहीं तो हमारा पूरा बॉम्बे में क्या पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन होगा।
22: वेड़ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी वेड़ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी।
18: वही एनसीपी शरद गुट के फायर ब्रांड विधायक रोहित पवार ने पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी को गुंगी गुड़िया कहा गया था तो उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था।
23: इंदिरा गांधी जी को गुंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है।
18: मामला गरमाया तो सपकाल को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुंगी गुड़िया कोई असंसदीय शब्द नहीं है।
24: अशा वेळेस हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणं म्हणजे चूप बसणं आणि तशी भूमिका ही त्यांनी त्या ठिकाणी निभावल्याच्या अनुषंगानं गुंगी गुड़िया हा शब्दप्रयोग त्या ठिकाणी केलेला आहे। गुंगी गुड़िया ही शिवे आहे का? गुंगी गुड़िया हा अपशब्द आहे का? गुंगी गुड़िया हा काही अनपार्लमेंटरी विषय आहे का? नाही, हे एक वर्णन आहे आणि ते वर्णन जसं जसं तो शब्द आहे अगदी तशा स्वरूपामध्ये हा उपमुख्यमंत्री यांच्यावर तो अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने बसलाय।
18: बताया जा रहा है कि सुनीत्रा पवार गार्जियन मिनिस्टर के तौर पर बीड जिले के दौरे पर गई थी। वहां उन्होंने प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ बैठकों के बारे में जानकारी देंगी, दूसरे मुद्दों या विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देंगी। उधर एनसीपी माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही। इधर कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ गई है।
20: कांग्रेस जो है अपने स्टेटमेंट पर कायम है और उनका कहना है कि इस टिप्पणी को जो है इस संबोधित जो संबोधन किया गया है सुनीत्रा पवार जी को गुंगी गुड़िया कहकर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। फिलहाल एनसीपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो है तन्ना हाउस में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, कोलाबा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच की तकरार कहां जाती है।
18: सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी सपकाल के खिलाफ गुंगी गुड़िया बयान पर आक्रामक अंदाज में दिखे। मायावती ने सपकाल के इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष की मुसीबत बढ़ा दी है।
25: मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूजमध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे. बदनाम होय तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे. आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे.
2: अरे उनकी बुद्धी भ्रष्ट हो गई है, मती भ्रष्ट हो गई है. ये केवल सुनेत्राताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है. और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहनें, और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान

0: अधिक तीव्र होने वाला है। बस सवाल इतना ही है कि क्या जनता के सही सवालों से इससे ध्यान भटकेगा और क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से जनता के हितों के प्रश्न जो है वो नहीं सुलझते, बल्कि इससे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है और सवालों से ध्यान भटकाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
1: अमेरिका के टेक्सास में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ श्रीमद् भगवद्गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले वो ऐसा करने वाले होते कौन है, आरएसएस की सोच को बताया खतरनाक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं, सरयू की पावन धरा को एसपी की सरकार ने किया था रक्त रंजित। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार का पलटवार, वक्त पर मिलेगा करारा जवाब, सीएम ने महिला अपमान से जोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रांची में 11वें दिन भी आंदोलनकारी छात्रों का प्रदर्शन जारी, जेपीएससी परीक्षा धांधली में सीआईडी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 14 अरेस्ट। और भारत ने पीओके में चुनाव की कवायद को बताया दिखावा, एमईए ने कहा बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा है लोगों का मुंह, पड़ोसी के पाखंड को समझे दुनिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्यसभा में अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तगड़ी बहस हुई। विपक्ष अब संसद में चढ़ावा चोरी पर अड़ गया है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद न चलने देने के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है।
1: चढ़ावा चोरी का चक्कर, सरकार और विपक्ष में टक्कर। चढ़ावा चोरी पर हंगामा, संसद में विपक्ष दान पेटी लेकर बैठा। संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का प्रदर्शन, संसद के अंदर तीखी बहस।
2: चर्चा पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा आग्रह आपसे।
1: खड़गे और किरण रिजिजू राम मंदिर पर भिड़े, सियासी शोले भड़के। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष की लड़ाई चढ़ावा चोरी पर आई। संसद के मानसून सत्र को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा न हुआ हो और संसद स्थगित न हुई हो।
2: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के संसद चलो मार्च पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने कोहराम मचाया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए, इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई और पूरे विपक्ष ने पोस्टर बैनर देकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीच में प्रियंका गांधी हैं और विपक्षी सांसदों ने पूरा घेरा बना रखा है और बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच में विपक्ष ने एक दान पेटी रखी हुई है जिसमें बारी बारी से चंदा डाला जा रहा है। एक साइड में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी और लाल तख्तियों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: हम लोग मकर द्वार पर हैं और मकर द्वार पे आप कुछ इस तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए दाई तरफ से लेकर बाई तरफ तक अमित शाह जवाब दो से लेके उसके अलावा तमाम ये पोस्टर और बैनर आपको नजर।
1: यही नहीं, संसद के मकर द्वार के पास समाजवादी पार्टी दान पेटी लेकर बैठ गई और डिंपल यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि कैसे डिंपल यादव दान पेटी से चढ़ावे की गिनती कर रही हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साध